0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि नित सवेरे योगशाला में आकर के नए आसन प्राणायामों को हम सभी मिलकर करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से 30 दिवसीय योग शिविर योगशाला में चल रहा है, जो कि हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिनों में से एक है। हमने पिछले एक महीने से लगातार एक नए नए योग प्राणायाम आसन और एक नए नए शब्द की उत्पत्ति के साथ में आसन प्राणायाम और कसरतें बहुत सारी सीखी। साथ ही साथ में अब हम आज जो आपको एक नए शब्द के साथ में वाहे प्राणायाम करवाएंगे, जो कि है ओजस। ओजस शब्द वाहे प्राणायाम में इसलिए जोड़ करके कराया जाता है क्योंकि ओजस का शाब्दिक अर्थ है शक्ति। यदि हम वाह्य रूप में शक्तिवान हैं, तो हमें आंतरिक रूप से भी शक्तिवान होना होता है। वाह्य प्राणायामों में, वाह्य आसनों में बहुत से ऐसे आसन हैं जिसके बारे में अगर हम विस्तार से करने बैठ जाएं, तो उनकी कोई गिनती ही नहीं है। अनगिनत वाह्य आसन होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य आसन जो हैं, वो हम अभी हम आप मिलकर के करने वाले हैं। सबसे पहले वाह्य आसनों के आगे ओजस शब्द का अर्थ क्यों है, ये हम जान लेते हैं। तो आइए हम सभी सबसे पहले ओजस का शाब्दिक अर्थ जानेंगे और फिर महत्व जानेंगे कि वाह्य आसनों के आगे ओजस का शब्द क्यों जोड़ा गया।

ओजस वैसे तो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, और इसे शरीर और दिमाग के लिए आवश्यक ऊर्जा के रूप में समझा जाता है। यह न केवल ऊतकों को शक्ति और सहन शक्ति प्रदान करता है, बल्कि यह कोशिकाओं के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की रक्षा करता है, जिससे सभी शारीरिक कार्यों और शारीरिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। ओजस क्या है? आइए हम आपको बताते हैं कि ओजस क्या है। ओजस नाम का मतलब ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच रखने वाला है। उसको सबसे पहले जान लेना जरूरी है। आपको बता दें कि ओजस का मतलब शरीर की ताकत से होता है। ओजस नाम से ही ये पूरा पूरा विख्यात है कि हमें अपने शरीर में किस तरीके से ताकत और किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए ओजस नाम को हम लेते हैं। ओजस योग की भाषा में हम अगर यूं कहें कि शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति, यह दोनों मिलकर के यदि कोई योग प्रक्रिया में आता है तो वो है ओजस। ओजस नाम अपने आप में यह बहुत ही अच्छा सा माना गया है। तो आइए हम आगे भी जानते हैं कि ओजस क्या है और इसका महत्व क्या है। ओजस का अर्थ जीवन शक्ति सार के रूप में किया जाता है। ओजस वह महत्वपूर्ण ऊर्जा है जो हमारी प्रतिरक्षा, ताकत और खुशी को नियंत्रित करती है। तीन चीजों को हम प्रचुर मात्रा में चाहते हैं। यदि हमारा ओजस कमजोर है तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा उत्साह, हमारी ऊर्जा शिथिल हो जाती है, और यदि यह सब शिथिल हो गया तो हम किसी भी क्षेत्र में उन्नति नहीं कर पाते हैं। तो शक्ति, उत्साह और ऊर्जा को शिथिल नहीं होने देना है, और शिथिल इसलिए नहीं होने देना है क्योंकि हमें ओजस वाय प्राणायाम साथ ही साथ करते रहना है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं ओजस वाय प्राणायाम यानी कि आसन। कल की सीरीज में हमने वाय आसनों में पैरों के आसन को बताया था, यानी कमर से लेकर के पैरों के आसन को एक साथ हम सभी ने मिलकर के किया था। आज हम आपको वाय आसनों में यानी ओजस वाय आसनों में हम आपको साइकिलिंग और पुशअप करना सिखाते हैं। वैसे तो यदि जब हम कोई वीडियो देख लेते हैं तो हम उसे बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी आवाज को सुन करके सीख करके करना तो ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वाला हो जाता है, जैसा कि अभी तक आप सभी लोग करते आ रहे हैं। तो आइए हम एक स्वच्छ वातावरण में सबसे पहले किसी एक मैट या चद्दर को बिछा करके बैठ जाएंगे। इसके बाद में हम किसी भी ऐसे वातावरण को शुभायमान करेंगे अपनी मुस्कान से, अपने एक सुगंधित वातावरण से। तत्पश्चात ओम का उच्चारण 3 बार यानी ओम का उच्चारण करेंगे हम कुछ इस तरह।

हाथों की हथेलियों में घर्षण करेंगे, अपने चेहरे और आंखों में लगाने के बाद में अब हम ओजस वाय प्राणायाम की ओर चलते हैं। योगा मैट या चद्दर पर अब आप सीधे लेट जाएं पीठ के बल। पीठ के बल लेट जाने के बाद में आज हम वाय आसनों में से सबसे पहला आसन कराने जा रहे हैं साइकिलिंग, जो आपकी थाई के लिए, आपकी कमर के लिए, पेट के लिए, भुजाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। जिन लोगों को लगता है कि वो फैट में हैं, यानी उनका बहुत बेली फैट हो गया है, बहुत ज़्यादा शरीर में आपको भारीपन लगता है, तो यह आसन आपको नित प्रतिदिन करने से आप खुद में एक स्फूर्ति और एक ओजस को पाएंगे। तो लेट जाने के बाद में आपको अपने पैर उठा लेने हैं, मतलब घुटने आपको मोड़ लेने हैं। आपने देखा होगा कि जब साइकिल चलाते हैं, काफी लोगों ने साइकिल चलाई होगी बचपन में और अभी भी, तो जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पेंडुलम जो होता है वो अप डाउन करते हैं, यानी ऊपर नीचे 1 2 3 4। इस तरीके से आपको पेंडलिंग करना है लेट करके अपनी पैरों की मदद से। पीठ के बल हम नहीं लेटेंगे, पीठ के बल आपको लेटना है और पैरों को ऊपर उठाते हुए साइकिलिंग चलानी है, पेंडुलम चलाना है, जैसे आप पेंडुलम करते हैं, पेंडलिंग करते हैं साइकिल की, उस तरीके से आपको कम से कम 3 सेट लगाने हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में आपको यह केवल 2 ही सेट लगाना है 15-15 के, यानी 15 आप गिन सकते हैं और उसके बाद में फिर आप 15 की गिनती कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपने 15-15 के 2 सेट लगा लिए। साइकिलिंग के बाद में आपको पैर सीधे कर लेने हैं और एक लंबी गहरी सांस लेकर के विश्राम कर लेना है। वाय आसनों में ये पहला है। आइए अब हम दूसरे वाय आसन की ओर चलते हैं। इसमें आपको दीवाल की सहायता से दोनों पैरों को दीवाल की तरफ खड़े कर देना है और आपके हिप्स बिल्कुल दीवाल की तरफ से लग जाएंगे, यानी पैरों को दीवाल के सहारे आपको सीधे पैर खड़े कर देने हैं। अब बारी आती है इसको पैरों को किस तरीके से मोड़ना है। पैरों को स्ट्रेस करना है, खींचना है बीच में स्पेस करके कि जितने पैर आपके खुल सकते हैं, यानी कि आपको अपने पैर दीवाल के सहायते से ओपन करना है, क्लोज करना है, खोलना है, बंद करना है और उसी अवस्था में आपको दोनों हाथों को भी करना है, यानी कि दोनों हाथों को सीधे कर लेना है सबसे पहले और दोनों पैर को, उसके बाद जिस तरीके से आप पैर खोलेंगे उसी तरीके से दोनों हाथ भी आप खोलेंगे, बंद करेंगे। यह भी आपको 15-15 के 2 सेट लगाने हैं प्रारंभिक अवस्था में। प्रारंभिक अवस्था में 15-15 के 2 सेट लगा लेने हैं और उसके बाद जिस तरीके से आपको लगे कि अब हम इसमें कर सकते हैं और ज़्यादा भी, तो आप अपने सेट्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि 3, 4, 5, जिस तरीके से आपको लगे या आप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात ये है कि आप में जितना ओजस है आप उतना ही पर्याप्त करें। जितनी आप में ऊर्जा है आप उतना ही इस वाय आसन को कर सकते हैं। तीसरा और मुख्य आसन हम कराने जा रहे हैं इसमें, जो कि है अब आपको दीवाल की सहायता से खड़े हो जाना है। दाहिना हाथ आप दीवाल पे रखेंगे, हाथ की हथेली को, और एक ही हाथ रखना है दाहिना, और आपको उसी तरफ खड़े हो जाना है तिरछा करके। अब एक पैर, यानी जो आप दाहिना हाथ आपने रखा है, अब आपको बायां पैर उठा करके ऊपर की तरफ खींचना है, फिर नीचे कर देना है, फिर ऊपर करना है, यानी पैर को हवा में उठाना है। इस तरीके से आप दोनों तरफ पैरों को कर सकते हैं। अभी आपने दाहिना हाथ रखा है, अब आप मुड़ जाएंगे दीवाल की तरफ, बायां हाथ रख देंगे और दाहिना पैर उठाना है। इस तरीके से भी आपका बेली फैट बहुत ही जल्दी कम होता है। पेट के पास जो चर्बी हो जाती है आपने देखा होगा, वो बहुत ही
खराब लगती है जब आप कुछ भी पहनते हैं, कहीं आप जाते हैं, तो उस बेली फैट को कम करने के लिए जो 3 आज वायासन बताए गए हैं, इससे यदि आप नित प्रतिदिन करेंगे तो आपको ओजस के साथ साथ यह बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण लगेगा। वायासनों को करने के लिए कोई सावधानी नहीं है, सिर्फ आपको ओजस का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कितना ऊर्जावान इसको करने से पहले और बाद में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो ये था आज का ओजस वाय प्राणायाम और आसन। इसी तरीके से हम 30 दिवसीय रोज किसी एक शब्द के साथ हर एक आसन की ओर बढ़ रहे हैं। नित प्रतिदिन योगशाला में आकर के हम कोई ना कोई नया आसन प्राणायाम सीखते हैं और करते हैं। और इसी श्रृंखला में हम कल फिर मिलेंगे, लेकिन अभी प्राणायाम आसन के बाद में हम 15 मिनट का योग आसन भी करने वाले हैं। तो आइए हम योग आसन की ओर चलते हैं और फिर कल मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। तब तक करें योग, रहें निरोग। हेलो दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए आज दोस्तों हम बात करेंगे अर्ध हलासन के बारे में। यह वह प्राणायाम है जो कि हमारी भागम भागी लाइफ में आज के जो कि हमारी भागम भागी जो लाइफ है, समय में जो भागदौड़ की भरी जीवन शैली और असंतुलित खान पान की वजह से लोगों को सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं हो रही हैं। भागदौड़ भरी जीवन शैली और असंतुलित खान पान ही डायबिटीज जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन रही हैं। ऐसे में शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, योग का अभ्यास, संतुलित खान पान अपनाना बहुत ही जरूरी होता है। योगासनों का नियमित अभ्यास व सिर्फ आप अपने शरीर को फिट रखने का काम करता है, बल्कि कई बीमारियों से बचाव भी उपयोगी होता है। शरीर को चुस्त, तंदुरुस्त और फिट बनाने के लिए कई तरह के योगासनों का अभ्यास किया जा सकता है। तो आज हम आपको अर्ध हलासन योग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नियमित अभ्यास आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अर्ध हलासन के नियमित अभ्यास से आपके पेट और पीठ की समस्याओं में बहुत फायदा मिलता है। पेट के भीतर मौजूद अंदरूनी अंगों को स्वस्थ बनाने के लिए अर्ध हलासन का अभ्यास बहुत फायदेमंद है। अर्ध हलासन को जो कि हम साथ में करेंगे और उसके फायदे भी बताएंगे। इसके नियमित अभ्यास से आपके शरीर की मांसपेशियों में भी बहुत ज्यादा विस्तार और अच्छा सा फायदा होता है। मेन हम बताएंगे कि अर्ध हलासन जो है वो पेट और पीठ की समस्याओं को दूर करने में अर्ध हलासन बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले अर्ध हलासन के फायदे जान लेते हैं, बेनिफिट्स होते हैं अर्ध हलासन करने के। मोटापे की समस्या आजकल आम तौर की लाइफ में बहुत बढ़ती जा रही है। जो खान पान है वो नियमित रूप से ना होने पर और ऐसे कई जगह पर जो कि आज की न्यू जनरेशन है, एक जगह बैठकर जॉब करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी वजह से भी उनका शरीर बढ़ता जाता है। फिर वो शाम को अपना एक जिम अपनाते हैं, यानी जिम की तरफ भाग दौड़ करते हैं। तो आज हम इसी सारी समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही नियमित रूप से और सरल रूप से इस प्राणायाम को, इस व्यायाम को करेंगे घर पर ही बैठ करके, तो हमारी ये सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। मोटापे की समस्या से जो भी लोग आजकल के ग्रसित हैं, उनके लिए अर्ध हलासन योग का अभ्यास बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका नियमित अभ्यास करने से आपके पेट और पीठ से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती हैं और साथ में आपको फिट रखने के लिए भी बहुत ही जरूरी है यह प्राणायाम। पेट की समस्याओं से अर्ध हलासन का अभ्यास बहुत ही उपयोगी माना जाता है।
इसका अभ्यास शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए भी फायदेमंद होता है, यानी कि सिर्फ हम एक्सटर्नली नहीं हम अभ्यास के लिए जुड़ेंगे, हम इंटरनल भी जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता है कि वह स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ, तो उन सारी चीजों को भी फायदे दिलाने के लिए अर्धहलासन बहुत ही आवश्यक है। जान लेते हैं कि अगर हम अर्धहलासन करेंगे तो उससे हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे दूर होंगी। तो नंबर वन यानी सबसे पहला फायदा है इसका पेट और पाचन तंत्र के लिए। जी हाँ, क्योंकि हम दिन भर में कई ऐसी चीजें खाते हैं जिसको खाने के बाद में ऐसा होता है कि कई बार हमारे पेट में दर्द होने लगता है, पेट की जो चर्बी है वो बढ़ने लगती है। तो इन्हीं सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए यह जो प्राणायाम है जिसका नाम है अर्धहलासन, तो आइए हम बताते हैं। अर्धहलासन को रोजाना अभ्यास करने से आपके पेट को बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए अर्धहलासन योग बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसका अभ्यास करने से आपको पेट से संबंधित यानी कब्ज, अपच की समस्या, भूख न लगने की समस्या से आदि बहुत फायदा मिलता है। यह योगासन आपकी भूख को भी ठीक तरीके से काम करने में यानी सुचारू रूप से ठीक करता है। दूसरा आता है इसी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए बेहतर। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोजाना अर्धहलासन का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी होता है। नियमित रूप से अर्धहलासन योग का अभ्यास आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर शरीर को बाहरी बीमारियां और संक्रमण से बचाने का भी काम करता है। तीसरा दोस्तों इसके अंतर्गत आएगा पीठ के लिए फायदेमंद अर्धहलासन। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से पीठ की मांसपेशियां मजबूत और हेल्दी होती हैं। कमर दर्द की समस्या और पीठ से जुड़ी कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो अर्धहलासन अभ्यास करने से बहुत ही उपयोगी होती हैं और वह जल्द ही ठीक होती हैं। अगर आपकी भी पीठ से जुड़ी समस्याओं हैं, आपकी समस्याएं हैं और उनकी आप शिकार हैं, तो रोजाना इस योगासन का अभ्यास कर सकते हैं। चौथा है शरीर का रक्त प्रवाह सुधारने में उपयोगी। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक करना अच्छी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन असंतुलित होने पर कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अर्धहलासन का रोजाना अभ्यास करने से आपको ब्लड का यानी शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में काफी हद तक मदद मिलती है। पांचवा इसका जो कि हमारा मुख्य उपयोगी है वो है वजन कम करने में। आज के समय में असंतुलित खान पान, निष्क्रिय जीवन शैली के कारण मोटापे की समस्या लोगों में तेजी से बढ़ रही है। मोटापे की समस्या से छुटकारा पाने के लिए न जाने कितने लोग कई कई दवाइयां, कई कई ऐसे योग अभ्यासन को अपनाते हैं जिसको करने के बाद में उन्हें फायदा तो मिलता है लेकिन कुछ ही समय के लिए। अर्धहलासन ही एक मुख्य रूप से फायदेमंद प्राणायाम है जो आपको जल्दी से वजन कम करने के लिए सुचारू रूप से सहायक सिद्ध होता है और अच्छी डाइट के अलावा रोजाना अर्धहलासन का अभ्यास भी करना चाहिए। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण ये पॉइंट थे कि आपको किस तरीके से आसन की जो विशेषताएं हैं, जो उपयोगिताएं थी वो हमने बताई। आइए अब हम बात करते हैं अर्धहलासन जो कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। जैसा कि अभी हमने बताया कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और आपके पेट से संबंधित सभी जो कि छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है। तो आइए दोस्तों अब हम बताते हैं कि अर्धहलासन हम कैसे करेंगे। विधि, अर्धहलासन करने के लिए सबसे पहले हम जमीन पर एक मैट का उपयोग करेंगे। यदि आपके पास योगा मैट नहीं है, योगा मैट उपलब्ध नहीं है,
तो आप कोई भी घर की चद्दर या कोई भी घर में जो मैट हो आप उसको बिछा करके या अर्ध हलासन प्राणायाम कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए मैट पर पीठ के बल लेट जाना है, यानी पीठ आपकी नीचे रहेगी मैट पे, और हाथों को जांघों के पास रखें। उसके बाद पैरों को उठाएं, यानी आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे हवा में। इसके सिर और गर्दन कमर जमीन पर रखें, यानी सिर आपका और गर्दन कमर जमीन पर रहेगा। यदि हम देखें अपने जो कि प्राणायाम हम ये करेंगे, तो यदि हम इसका अगर कभी फोटो देखें तो आपको अंग्रेजी का एल शेप आपको समझ में आएगा कि ये एल जो कि शेप होता है, एल शेप में आपकी बॉडी दिखेगी। और पैरों को नीचे से ले जाएं, यानी कि आपके दोनों पैर ऊपर रहेंगे और अपने को पैर के बगल में, यानी जहां पर हिप्स हैं वहां पे आप दोनों हाथों को रख दें। और यह आसन अब पूरा हुआ। हम फिर से बता दें आपको, दोनों जांघों को ऊपर रखें यानी हवा में, गर्दन पीठ और सर आपका जमीन पे, दोनों हाथ आपके हिप्स के पास से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, और दोनों पैर हवा में यानी सीधे। श्वास मध्यम गति से लेनी है और छोड़नी है। यह अभ्यास पूर्ण तभी होगा जब हम श्वास से नियमित यानी श्वास आती जाती श्वास को महसूस करेंगे, और टाइमर के हिसाब से स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट और धीरे धीरे हम अपने समय को बढ़ाते जाएंगे। अगर आपको कोई भी तरह की समस्याएं हैं तो अर्ध हलासन को अपने डेली रूटीन में शामिल करके सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको अर्ध हलासन अगर करने में आ रही है, तो आप हमें जरूर से जरूर चैट बॉक्स में आकर के, जब हमारा योगशाला प्रोग्राम सुबह आता है उसके बाद में जब आप साथ में हम योगासन कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की हलासन करने में या सूर्य नमस्कार करने में किसी प्रकार का अगर आपको कुछ ऐसी मन की वृत्तियां हैं, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो आप चैट रूम में आकर के हमसे प्रश्न कर सकते हैं और हम आप उसका आंसर भी करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का हलासन यानी हलासन प्राणायाम, और आशा करती हूँ आप इसका नियमित रूप से रोज अगर आप इसको करेंगे तो आपसे आपके शरीर से संबंधित, आपसे आपके पेट के संबंधित सारी समस्याएं ठीक होंगी। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और आऊंगी अपने नेक्स्ट यानी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आपके साथ बनी रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे सुना,
2: क्या
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9 45 583 53 46।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में, क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: पिघल गया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आपका वेलकम करते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग ओडा में। आपने ट्यून किया है रेडियो 11.6 FM, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग चौकार अदनान। सो यस, अब वक्त है आपको संडे स्पेशल शो की तरफ ले जाने का। भाई संडे की अपनी अलग बात होती है, संडे जब आता है तो न जाने क्यों जिनका तो ऑफ होता है उनका तो होता ही होता है, जिनका नहीं होता है जैसे कि मेरा, लेकिन न जाने क्यों एक अजब सा सुकून होता है संडे का सोच कर ही। से ये ख्याल सिर्फ मेरा है या आपको भी आते हैं ऐसे ख्यालात? खैर, बज़ाहिर अगर आते होंगे तो कुछ तो आप भी हमारे ही तरह सोच रहे होंगे, राइट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आज संडे है और आज देखते ही देखते तारीख जो है वो 20 हो चुकी है। अच्छा, पहले ही थी। ऑलराइट, सो 20 तारीख हो गई है, यानी सितंबर भी आधे से ज़्यादा गुज़र चुका है और 3 में से 2 की बात करें तो 2 पार्ट्स निकल चुके हैं। आज सेकंड मुकम्मल हो जाएगा 20 तारीख से। एंड इसके साथ ही साथ अब वक्त है आपको ले चलने का आज की थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताने का कि भैया आज का थॉट ऑफ द डे आपके लिए स्पेशल क्या है और क्या लेकर के आया है, राइट? सो थॉट्स तो यस बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं मुझे भी, क्योंकि ये थॉट्स न जाने क्यों अपने बहुत से लगते हैं, बहुत से लगते हैं, है ना? सो चलिए आपको ले चलते हैं ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि भैया आज का थॉट ऑफ द डे आखिर संडे स्पेशल क्या है जो आपके दिन को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने वाला है, क्योंकि आज को तो हम बना ही देते हैं थ्रू कॉलिंग प्रोग्राम, थ्रू क्वेश्चंस और थ्रू आपके आंसर्स। ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं आज ही के दिन जो हम लोग आपस में करते हैं और उसके बाद उसका असर ये होता है कि भाई हमारा दिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि हाँ बन गया, एंड डेफिनेटली बन भी जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, सच में बन जाता है दिन। तो आज दिन बनाने के लिए हम तो मौजूद हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो थॉट्स होते हैं ये भी ऑफकोर्स दिन बना देते हैं। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं आज के संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे की तरफ और बताते हैं कि आज का संडे स्पेशल थॉट ऑफ द डे आपके लिए क्या है, क्या लेकर आया है जो आज आपके संग होने वाला है, और अगर आपको पसंद आ जाए तो आप हमेशा ही उसे अपने संग रखने वाले हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, Ajay Khan.

तो क्यों ना आज का थॉट ऑफ द डे आपको एक ऐसी बात का रियलाइजेशन कराए जिसे आप कहें कि ओ अच्छा हाँ ऐसा भी तो होता है। सो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो इस तरह की होती है। फिलहाल हम बढ़ रहे हैं आज के थॉट ऑफ द डे की तरफ और आज है 20 सितंबर, वक्त हो रहा 8:43 और ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो अपने 99.6 एफएम पर और हम आपको बताने जा रहे हैं आज का थॉट ऑफ द डे। सो आज का थॉट ऑफ द डे कह रहा है कि इंसान का जो दिल है वो समंदर जैसा है। इंसान का दिल समंदर जैसा है, इसमें तूफान है, लहरें हैं और इसकी गहराई में मोती भी है। जी हाँ, सो इंसान का जो दिल है वो समंदर जैसा है और इसमें तूफान है, लहरें हैं और साथ ही साथ इसकी गहराई में मोती भी है। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। सो आज का मॉर्निंग थॉट बताता है कि इंसान में तो सब कुछ है। कई ऐसे लम्हे, कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें ऐसा लगता है तूफान सा आ गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया, सब कुछ बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा एक समय लगता है। इसके अलावा लहरें आती रहती हैं, हम खुश भी रहते हैं, स्माइल करते हैं, कुछ अच्छा सा महसूस करते हैं। और जब हम सच में अपनी दिल की गहराइयों में पहुंचते हैं या किसी के भी दिल की गहराई में, तो हम पाते हैं कि भाई इसके अंदर तो मोती भी है। सच में। सो ये जो मोती है ये बड़े ही ख़ास हैं हमारे लिए, बड़े ही मायने रखते हैं। एंड आई होप कि इस बात को भी हम समझ पा रहे होंगे। सो आज का थॉट यही कहता है कि इंसान का दिल समंदर जैसा है, इसमें तूफान है, लहरें हैं और इसकी गहराई में मोती भी है। सो मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं इस थॉट को हम रियलाइज कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। ऐसा होता भी है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी तो ऐसा तूफान कभी उठा होगा या हो सकता है चल रहा हो। लहरें भी आपने ज़रूर महसूस की होगी, वो मंद मंद मुस्कुराना, वो ज़िंदगी का यूं ही आराम से चलना और गहराई। किसी किसी मोमेंट में आपको लगा होगा कि आप इतने डीप हैं, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये लाइफ है दोस्त, और ये जैसा कि बताया ये दिल की खासियत है कि इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यस, इसीलिए कहते हैं कि इंसान के खुद के अंदर एक इतनी बड़ी दुनिया है कि जिसको एक्सप्लोर करने के लिए सारी उम्र भी बहुत छोटी है। और हाँ, जितनी बड़ी दुनिया बाहर है, खैर उससे कहीं ज़्यादा बड़ी अंदर है। बस कई बार जब हम झांकने लग जाते हैं तो हमको मिलने भी लग जाती है, उस दुनिया से रूबरू होने लग जाते हैं, वरना तो हम बाहरी दुनिया में तो खो ही रहते हैं। अब होता क्या है कि इस आंतरिक दुनिया के लिए, अपने अंदर झांकने वाली दुनिया के लिए कुछ वक्त चाहिए होता है, बिल्कुल सेपरेट इत्मीनान जिसे हम बोलते हैं, उसी में हमको बातें समझ में आती है और वहीं से हम समझ पाते हैं कि हाँ हमारे अंदर क्या कुछ है, मतलब क्या कुछ है, इतनी बड़ी चीज़ है जिसको आज तक हम समझ ही नहीं पाए, कितनी बड़ी बात है ना। तो यही कहना है आज के इस थॉट ऑफ द डे का। आई होप कि भाई आप भी इस बात को समझ पा रहे होंगे और कहीं ना कहीं इस बात से वाबस्ता भी हो गए होंगे। तो चलिए आप भी अपना हाल दिल बता सकते हैं कि क्या आपके अंदर भी समंदर है आपका दिल, जिसमें तूफान है, लहरें हैं और गहराई में जाने पे मोतियां भी मिलती है। यानी आपकी वो खूबियां, आपका वो फील जो आप बहुत रेयर फील कर चुके हैं लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है, लिटरली मतलब ऐसे हैं वो मोती। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने मोतियों तक हर उस दौर में पहुंचिए जब तूफान आए, तो शायद नीचे कुछ शांति मिलेगी और उसी ऊपर उठे तूफान का जब नीचे असर ख़त्म होता है तो पता चलता है कि जड़ें हमारी कभी नहीं तूफान में होती, जड़ों में तो मोती ही होते हैं। क्योंकि आपका इंटेंशन अगर कभी गलत नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक ये नया थॉट हो सकता है। ऑलराइट, सो आपको संडे का स्पेशल आज का सुविचार, आज का थॉट कैसा लगा है इसको लेकर के भी आप बता सकते हैं।
और ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन पे आपके पास ऑप्शन है कि आप जो कुछ लिखेंगे वो हम तक आएगा।

0: बहुत छोटी छोटी सी बातें कई बार पूरी पूरी दास्ता बन जाती, पूरी पूरी कहानियां बन जाती है। कई बार किसी से नज़र का मिल जाना, तो कई बार किसी से यूं ही टकरा जाना, कई बार मौसम का अचानक यूं बदल जाना, कई बार किसी रंग का दिख जाना, ये छोटी छोटी सी बात कई बार दास्तां बन जाती है। एंड आई होप कि आपने इन दास्ताओं को अपनी ज़िंदगी में महसूस ज़रूर किया हो। फिलहाल आइए चलते हैं, चूंकि आप सुन रहे हैं 89.6 FM को फ्रिक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM की एप्लीकेशन से। इसी एप्लीकेशन पर चैट का ऑप्शन होता है, जिस पर आप जो कुछ लिखते हैं वो हम तक आ जाता है और उसके बाद हम उसको पढ़ करके आप तक पहुंचा देते हैं, यानी आपने क्या कुछ लिखा है ये सब कुछ बता देते हैं। सो लेट्स गो।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो भैया आज का थॉट ऑफ द डे मुझे तो सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। मतलब क्या बात है, इंसान का दिल समंदर जैसा है जिसमें तूफान है, लहरें और गहराई में मोती है। वाह। मोहम्मद मुशीब जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर आरजे अदनान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग हमारे मुशीब भाई, बाराबंकी से सुनते हैं, थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है, वेलकम है गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। और आपने बताया है कि आज का थॉट ऑफ द डे बहुत ही खूबसूरत है। भाई क्यों नहीं होगा, जब हम थॉट को सुनते हैं और वो थॉट जब हम फील करते हैं, और फील कैसे होता है, जब उन चीज़ों से हम जुड़ते हैं, तो जुड़ना अपने आप में खूबसूरती है। किसी थॉट से जुड़ना, उसको फील करना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत अलग हैं। यस, मैं आपको ही कह रहा हूँ, आपको मतलब, हाँ आप ही सुन रहे हैं ना, आपको ही कह रहा हूँ। तो ये कीमती जो आपके अंदर कुछ बातें हैं, इसकी हमेशा कद्र कीजिएगा। और थॉट्स, ऐसे तो ना जाने कितने सारे थॉट्स आप पर कुर्बान किए मैंने। सो भाई, ये थॉट्स जो है हमारी ज़िंदगी में सच में बड़ा असर डालते हैं, और कुछ कुछ थॉट्स बरबस ही कुछ ज़िंदगी की सिचुएशंस में याद आने लग जाते हैं। मतलब हम बेहतर फील करते हैं तो भी, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो भी, हम लो फील कर रहे होते हैं तो भी, और अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरह से याद आता है। खैर, ज़्यादातर तो याद इंसान मुश्किलों में ही करता है भाई, वो तो जाहिर सी बात है, मदद के लिए भी इंसान मुश्किलों में ही पुकारता है। तो ये जो थॉट्स होते हैं, ये न जाने क्यों ऐसे वक्त पे भी बरबस याद ही आ जाते हैं, और ये थॉट्स से सजी हुई ज़िंदगी अपने आप में बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होती है। वैसे आपका ख्याल भी मेरे ख्याल से, इसी ख्याल से जो मेरा ये ख्याल है, आपके ख्याल से मिल रहा होगा ये ख्याल। अब आप सोचेंगे कि ये ख्यालों में हमने इतने ज़्यादा ख्याल पैदा कर दिए कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। सो कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं सोचना, बस इतना कह रहा हूँ कि आपका जो ख्याल है और मेरा जो ख्याल इस बारे में, वो एक सा है। यस, एंड प्रीति जी हमारी बहराइच से आ गई हैं, लिखा है, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, और साथ ही आपकी इस एक कप चाय के लिए, और आपने फ्रेंच फ्राइज़ भी रखे हैं। ऑलराइट, सुबह सुबह तो खैर नहीं खाते हैं, लेकिन चाय हम ज़रूर ले लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी ऑफकोर्स नाश्ते का प्रबंध करके फिर आती है। सो मुझे लगता है सीधे किचन से निकल करके आती हैं, और आप मुझे भी ऐसे कुछ चीज़ों को खिला पिला देती हैं जो सुबह के नाश्ते के लिए बहुत बेहतरीन हो जाता है। सो थैंक यू सो मच टू यू। फिलहाल चलिए, आज तो संडे है और आज वैसे भी 10 से 11 स्पेशल हो जाएगा गायका गुंडा विद आरजे अदनान, लेकिन उससे पहले कुछ स्पेशल सॉन्ग्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, जिसका नाम है यस गुड मॉर्निंग गोंडा।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

वैसे आज संडे है तो मुझे लगा कि कुछ सवाल तो पहले भी होने चाहिए भाई। 10 से 11 के बीच तो हम करते ही करते हैं। क्या आपको पता है कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में जो कि बुक्स पर बनाई गई है? संडे का दिन है भाई, मूवीज़ भी देखते हैं और हमारे पास ऑफ कोर्स बुक्स रीड करने का भी वक्त होता है और कई लोग करते भी हैं और बहुत अच्छी बात है। सो कुछ ऐसी बॉलीवुड की मूवीज़ रही हैं काफ़ी वक्त से जो आज तक बड़ी बड़ी नॉवेल्स और बुक्स की कहानियों पर बनाई गई है। अगर आपको नहीं पता है तो खैर हम बताएंगे, लेकिन अगर आपको अंदाज़ा भी है कि हाँ कौन कौन सी ऐसी मूवीज़ है, फिल्म्स हैं जो कि किसी बुक की स्टोरी किसी नॉवेल पर आधारित है, तो हमें को कमेंट करके आप बता सकते हैं चैट बॉक्स पर। साथ ही साथ चैट बॉक्स पर प्रीति जी ने आज के थॉट को लेकर लिखा, ऑसम थॉट ऑफ द डे, थैंक यू सो मच। एंड अरविंद, लवली मॉर्निंग एवरीवन एंड आरजे अदनान सर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अरविंद, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग स्पेशल शो में। सो चलिए फटाफट से बताइए, कमेंट करिए कि भाई आपको पता है कि आखिर बॉलीवुड की ऐसी कौन कौन सी मूवीज़ हैं जो कि किसी नॉवेल पर आधारित हैं, पता है ना? सो फिर बताइए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: सो मैंने कहा था भाई उन मूवीज़ का नाम जो इंडियन बेस्ड बुक्स की नॉवेल्स हैं उन पर बनी है। जी हाँ, एंड ये सच है, बिल्कुल सच है कि ये जो कई सारी नॉवेल्स हम बताने वाले हैं आपको, उसी पर बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ बनी हैं, और ऐसा वैसा नहीं, हिट भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। कई का तो नाम आपको मुंह ज़बानी जब हम बताएंगे तो आप कहेंगे हाँ हाँ ये तो ऑफ कोर्स सुना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मूवीज़ जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाली हैं। ऑफ कोर्स सुनने के बाद आप कहने वाले कि अरे यार इससे तो हम वाबस्ता थे और ऑफ कोर्स इसके बारे में हम जानते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये किसी नॉवेल पर बेस्ड रही है, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं जो नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स रीडर्स हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा अभी उतना नहीं जान पाए होंगे जो सिर्फ मूवीज़ देखते हैं, क्योंकि ये जो बुक्स पढ़ने वाले हैं ना, इनको पता होता है कि कौन से बुक पर आखिर कौन सी स्टोरी बनाई गई है, राइट? तो चलिए आपको हम आखिर बताते हैं कि ऐसी इंडिया में कौन कौन सी बॉलीवुड की मूवीज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा देखी गई, ज़्यादा लाइक की गई, और बनी किस पे, किसी कहानी पर आधारित हैं या जो नॉवेल्स होते हैं उस पर बेस्ड स्टोरीज़ हैं, और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया। तो उसमें से कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं? ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, चलिए बताते हैं आपको।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा।

हाँ जी, तो आपको हम बता दें कि फ़िलहाल कुछ ऐसी बुक्स हैं जिन पर नॉवेल्स बनी हैं। जैसे अगर हम पहला नाम ले तो वो आता है मुसाफिर कैफ़े का। अभी हाल ही में आई है मुसाफिर कैफ़े। दरअसल दिव्य प्रकाश दुबे की ये बहुत पसंदीदा हिंदी उपन्यास जो है वो है, और करियर लव बैलेंस पे ये बेस्ड है। सो नेटफ्लिक्स ने इसे एक रोमांटिक ड्रामा बनाया है जिसमें विक्रांत मैसी और महिमा मकवाना ने अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। और किताब के आखिर में जो अंत है वो थोड़ा अलग, फिल्म का अंत जो है ओपन एंडेड रखा गया है, यानी एंड जो है वो थोड़ा सा अलग है मुसाफिर कैफ़े बुक से। हालांकि बुकिश जो है वो काफ़ी अलग मानेंगे, जाहिर सी बात है बुकिश को कभी नहीं पसंद आता है कि उस पर कोई चीज़ बने, क्योंकि वो सच में बुक्स जो होती हैं वो हज़ारों इमेजिनेशन छोड़ देती हैं। इसके बाद अगला नंबर है देवदास। जी हाँ, देवदास आपने देखी भी है, सुनी भी है, और आपको ये पता है कि भाई इतनी ज़्यादा हिट कि ये 1935 में आई, फिर 1955 में आई, फिर सन 2002 में आई, और इसी पर देवडी भी आई 2009 में। सोचिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार। सो इसका जो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये भारतीय सिनेमा की सबसे ज़्यादा अडॉप्ट होने वाली किताबों में से एक है, और इसमें दिलीप कुमार वाली जो कि 1955 में आई थी, वो देवदास में वैजयंती माला ने चंद्रमुखी का रोल करने से पहले मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा पारो का रोल बड़ा है, लेकिन बाद में वो मान गई थी। संजय लीला भंसाली की 2002 में जो आई थी, उस फिल्म में शाहरुख खान ने अपने किरदार के शराबीपन को सच दिखाने के लिए शूटिंग के दौरान असल में अल्कोहल ली थी। इसके अलावा अनुराग कश्यप ने देवडी के रूप में इसका एक बहुत ही मॉडर्न कल्ट वर्जन भी बनाया था। इसके बाद बुक आई है नौहन्यते, जिस पर बनी है हम दिल दे चुके सनम। जी हाँ, अब आप सोचेंगे नौहन्यते, ये तो पहली बार नाम ही सुना है, और दिल दे चुके सनम इतनी ज़्यादा ऑफकोर्स फेमस ये मूवी है। सो ये आई थी 1999 में, हम दिल दे चुके सनम, बट ये इंस्पायर्ड है, और सबसे अच्छी बात ये कि ये बंगाली एक उपन्यास है। रोमानियाई लेखक हैं मिर्चिया एलियाडे, इनकी किताब है बंगाल नाइट्स के जवाब में लिखा गया था कि किताब का जो मेन विषय है, एक लड़की जो किसी और से प्यार करती है लेकिन शादी के बाद पति के साथ अपने पहले प्यार को ढूंढने निकलती है। सो संजय लीला भंसाली की सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जिसमें सलमान खान, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन, इसका जो मुख्य प्लॉट है वो बना था। इसके बाद आती है कोहबर की शर्त। जी हाँ, और कोहबर की शर्त पर है हम आपके हैं कौन। अब आप कहेंगे अरे ये भी बहुत ज़्यादा हिट मूवी है, क्या बात कर रहे हैं। एंड कोहबर की शर्त शायद आपने पहली बार सुना हो। सो फिल्म नदिया के पार 1982 में आई, और हम आपके हैं कौन 1994 में, और ये दोनों क्या है, कोहबर की शर्त से इंस्पायर्ड है। सो केशव प्रसाद मिश्र के इस उपन्यास के पहले हिस्से पर राजश्री प्रोडक्शंस ने नदिया के पार बनाई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के गांव में शूट हुई थी और ब्लॉकबस्टर भी रही थी। बाद में सूरज बड़जातिया ने इसी कहानी को मॉडर्न और अमीर परिवार के सेटअप में बदल करके हम आपके हैं कौन बनाया, जो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ऑल टाइम ग्रॉसर फिल्मों में से शामिल हुए। इसके बाद फिल्म आती है पिंजर। ऑफकोर्स पिंजर जो कि है अमृता प्रीतम ने लिखी बुक है उनके ज़रिए। सो देश का जब विभाजन हुआ था उस पर आधारित अमृता प्रीतम की इस दर्दनाक उपन्यास पर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने फिल्म बनाई। फिल्म में उर्मिला मातोंडकर और मनोज वाजपेयी के एक्टिंग को बहुत सराहा गया। फिल्म को राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। इसके बाद आई थी गाइड, जो कि 1965 में आई थी, और गाइड को लिखने वाले थे आर के नारायण। सो देवानंद और वहीदा रहमान की ये फिल्म हिंदी सिनेमा की क्लासिक मानी जाती है, और लेकिन अगर हम लेखक की बात करें यानी आर के नारायण साहब की, सो फिल्म के क्लाइमैक्स और हिंदी रूपांतरण से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने न्यूयॉर्कर मैगजीन में एक निबंध लिखा जिसका शीर्षक था मिसगाइडेड गाइड। सो इस फिल्म का एक अंग्रेज़ी वर्जन भी उसी वक्त पर्ल एस के बक के साथ शूट हुआ था। इसके अलावा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छः नहीं, सात नहीं, आठ मूवीज़ हैं जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि इंडियन ऑफ कोर्स ऑथर्स की स्टोरीज, उपन्यास, बुक्स, नॉवेल्स पर बनाई गई
ये बॉलीवुड की फिल्में हैं जिनके बारे में हम आपको बताते जा रहे हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है आपको भी ज़रूर काफ़ी कुछ नया मिल रहा है इस कॉन्वर्जेशन में। आप भी समझ पा रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी मूवीज़ है जो आप इतने अच्छे से देखते थे लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये किसी उपन्यास पर बेस्ड है।

0: सो भाई हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी इंडियन मूवीज पर जो बनी है इंडियन ऑथर्स के जरिए लिखे गए लिटरेचर्स पर और कहानियों पर। तो अभी तक हमने आपको कई सारी बुक्स के बारे में बताया, ऑफ कोर्स जिसमें अभी हमने आपको बताया गाइड के बारे में आर के नारायण के, इसके अलावा अमृता प्रीतम की पिंजर के बारे में और कोहबर की शर्त केशव प्रसाद मिश्र के बारे में, इसके अलावा न हन्यते मैत्री देवी के बारे में यानी हम दिल दे चुके सनम, देवदास जो कि शरत चंद्र जी ने लिखी थी इसके बारे में, इसके अलावा दिव्य प्रकाश दुबे के ज़रिए लिखित ये गढ़ी गई नॉवल मुसाफिर कैफ़े के बारे में। अब हम चलते हैं कुछ अगली मूवीज़ की तरफ और बताते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी मूवीज़ हैं जो कहीं ना कहीं किताबों की कहानियों या फिर नॉवेल्स पर बनाई गई मूवीज़ हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सो इसी फहरिस्त में अगला नाम आता है यही सच है, जो कि मन्नू भंडारी जी ने किताब लिखी थी और मूवी इस पर बनी थी रजनीगंधा। जी हाँ, नाम तो आपको रजनीगंधा याद होगा, राइट? यस यस यस यस। दरअसल रजनीगंधा जो है 1974 में ये मूवी बनी थी और मन्नू भंडारी की ये मशहूर कहानी पर बासु चटर्जी ने रजनीगंधा बनाई थी। इसने बॉलीवुड में मिडिल क्लास मिडिल पाथ सिनेमा की शुरुआत की और फिल्म बिना किसी बड़े सुपरस्टार या ग्लैमर के सुपरहिट हुई और इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो मालगुड़ी की कहानियाँ बाई आर के नारायण। जी हाँ, सो ये टीवी शो और फिल्म मालगुड़ी डेज जो कि 1986 में आई थी, ये इसी से इंस्पायर्ड थी और शंकर नाग के जरिए निर्देशित ये आइकॉनिक दूरदर्शन सीरीज आर के नारायण की छोटी कहानियों पर बेस्ड थी और इसका जो प्रसिद्ध स्केच आर्ट है किरदार वो स्वामी यानी मंजूनाथ आज भी 80s और 90s के दशक के लोगों के दिल के बहुत करीब है। इसका बैकग्राउंड थीम म्यूजिक ताना ना आज भी पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है और ज़रा सोचिए कि मालगुड़ी का मैंने नाम लिया, किस तरह से वो दूरदर्शन की सीरीज़ याद आ गई ना, मुझे भी याद आ गई। ऑफ कोर्स वो पटरी और वो रेल का डब्बा और वो छोटा सा बच्चा। इसके बाद नाम आता है तीसरी कसम का, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी किताब है और फिल्म बनी तीसरी ही कसम के नाम से 1966 में। सो रेणु जी की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर गीतकार शैलेंद्र ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था जिसमें राज कपूर और वहीदा रहमान थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही डिज़ास्टर हो गई यानी असफल हो गई जिससे शैलेंद्र साहब बहुत दुखी हुए, लेकिन बाद में इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और आज ये भारतीय सिनेमा के उत्कृष्ट शाहकारों यानी मास्टरपीस में गिनी जाती है, तीसरी कसम। यस, इसके बाद नाम आता है सारा आकाश, जो कि लिखने वाले हैं राजेंद्र यादव साहब और फिल्म भी आई उसी सेम नाम से सारा आकाश 1969 में। बासु चटर्जी ने इस फिल्म से अपने निर्देशन यानी डायरेक्शनल डिबट की शुरुआत की और ये फिल्म हिंदी सिनेमा में जो है वो न्यू वेव की शुरुआत करने वाली पहली फिल्म्स में से एक मानी जाती है। सो ये आगरा के एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर खींचातान और अरेंज मैरिज की सच्चाई को दर्शाती है। सो ये लिखने वाले राजेंद्र यादव साहब थे और फिल्म जो आई थी 1969 में आई थी। इसके अलावा अगला जो नाम है वो है साहब बीवी और ग़ुलाम, जो कि विमल मित्र साहब ने लिखा था और मूवी भी सेम नाम से आई, साहब बीवी और ग़ुलाम, और ये आई 1962 में। ये एक ऐतिहासिक फिल्म है जिसे गुरुदत्त ने प्रोड्यूस किया है और अबरार अलवी ने डायरेक्ट किया था। सो मीना कुमारी जी के ज़रिए निभाया गया एक छोटी बहू का किरदार अपने वास्तविक ज़िंदगी के दुख और शराब की लत से इतना मिलता जुलता था कि लोग इसे उनकी अपनी बायोपिक जैसा मानने भी लगे थे। नाम था साहब बीवी और ग़ुलाम। इसके अलावा अगला जो नाम आता है वो है तमस का, जो कि भीष्म साहनी साहब ने लिखा। जी हाँ, सो गोविंद निहलानी के ज़रिए बनाई गई 5 एपिसोड की ये मिनी सीरीज़ जिसे फिल्म की तरह भी रिलीज़ किया गया। सो डिवाइड जब हुआ था उसके बाद दंगों पर सबसे बिना किसी मिलावट और प्रभावशाली की रचना है ये, और जब ये टीवी पर आने वाला था तब इस पर रोक लगाने की लिए कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे बिना किसी कट के प्रसारित करने की अनुमति जो है वो दे दी थी। इसके अलावा नाम आता है सूरज का सातवां घोड़ा, जो कि धर्मवीर भारती जी की जरिए लिखी गई कहानी है और फिल्म भी आई सूरज का सातवां घोड़ा 1992 में। सो श्याम बेनेगल के जरिए निर्देशित इस फिल्म की कहानी सुनाने की शैली जो है वो स्टोरी टेलिंग यानी स्टाइल जो है वो बहुत अनोखा था। एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी, इसमें रजत कपूर यानी मानिक मुल्ला मुख्य भूमिका में थे और उनके साथ अमरीश पुरी, नीना गुप्ता और राजेश्वरी सचदेव थीं। सो इस फिल्म ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता था। इसके बाद आज की हमारी इस लिस्ट की लास्ट फिल्म द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, जो कि चेतन भगत लिखते हैं और इसी पर मूवी बनी है काई पोछे। जी हाँ, काई पोछे।
अभिषेक कपूर के जरिए निर्देशित इस फिल्म ने सुशांत सिंह राजपूत का बॉलीवुड डेब्यू करवाया था, साथ में राजकुमार राव और अमित साध भी थे। किताब में सन 2002 के गुजरात दंगों और भूकंप को पृष्ठभूमि में रखा गया था। फिल्म के शीर्षक काय पोछे का मतलब गुजराती में पतंगबाजी के समय, यानी मैंने पतंग काट दी है, होता है। ये फिल्म जो है द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ की चेतन भगत ने लिखा था और फिल्म काय पोछे इस पर बनी थी सन 2013 में। एंड आई होप कि आपने इस नाम को भी सुना होगा और इससे भी आप चिर परिचित होंगे। ये ऐसी मूवीज़ हैं जिनका नाम हमने बताया और ये ऐसी ही नॉवेल्स या कहानियों पर बेस्ड हैं, चाहे थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ हो, सूरज का सातवां घोड़ा, तमस, साहब बीवी और ग़ुलाम, सारा आकाश, तीसरी कसम, मालगुड़ी की कहानियाँ, यही सच है, गाइड, पिंजर, कोहबर की शर्त, ना हन्यते, देवदास और मुसाफिर कैफे। ये ख़ास वो नाम थे जो कि मूवीज़ पर बेस्ड हैं और जिसके बारे में हमने आपको वेरी द शॉर्ट बताया और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। एंड आई होप कि आप इसके बारे में भी जो चाहें वो बता सकते हैं। फिलहाल 10 से 11 चलेंगे अपने स्पेशल एपिसोड गागा गुंडा विद आरजे अदनान के लिए।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब
2: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: सो अब 10 बजने वाला है और आपको पता है 10 बजते ही हम शुरू कर देंगे कॉल इन प्रोग्राम। सो बी रेडी कॉल करने के लिए, क्योंकि आज है संडे का टाइम और संडे के दिन आज अदनान बात करते हैं सीधे आपसे कॉल पर। नंबर है 6393 316429 6393 316429।

0: So, फिलहाल हम बता दें कि भाई 10 बज चुके हैं और आपकी कॉल्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो चलिए भाई इसी कड़ी में पहली कॉलर यानी पहली कॉल उठाते हैं और पहले कॉलर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई पहली आज के कॉल पर कौन है और हम क्या कुछ कहने वाले हैं और उसका जवाब क्या कुछ होने वाला है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

0: हाँ जी, तो चलिए भाई चलते हैं कॉलर की तरफ और देखते हैं कौन है आज की हमारी पहली कॉल पर। हाँ जी हेलो।
1: धन्यवाद। ये गोंडा स्टेशन पे है ना?
0: जी जी, गोंडा स्टेशन पे आपने बुलाया।
1: गोंडा, अदनान जी बोल रहे हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, आरजे अदनान बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ जी, वृद्ध शरीर है तो मैं जम्मू संभाल से बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी जी,
1: मुझे लोग विद्यार्थी के नाम से पुकारते हैं और मैं राजकीय शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हूँ।
0: जी जी, विद्या रतन जी आपसे बात हुई है और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे।
1: हाँ चलो, बुढ़ापे की उम्र इतना सुविधा तो नहीं होती शरीर की, प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन आपसे मुलाकात हुई तो मेरा दिल उससे बड़ा उत्कंठित हुआ कि मैं फिर भी इनसे बात कर पाऊँ। और दूसरा प्रेरणा है अनु जी की, वो आपके साथ ही काम करते हैं शायद, तो उनकी भी प्रेरणा थी, तो इसलिए मैंने इस बार अपने आप को पहली कार बनाने का प्रयास किया है।
0: अरे वाह सफल हुआ
1: मेरा प्रयास सफल हो गया। मैंने नाश्ता भी टाल दिया, मैंने कहा पहले बात करूंगा अदनान जी से और बाद में खाना खाएंगे।
0: अरे क्या बात है, मतलब
1: और सारी प्रेरणा है ये हमारी मधुभाषिनी अनु जी की।
0: क्या बात है, बिल्कुल थैंक यू सो मच अनु को भी कि उन्होंने आपको इस तरह से इंस्पायर्ड किया, और उससे बड़ा थैंक्स आपको कि इतना समय निकाला आपने। तबीयत भी थोड़ी सी नासाज लग रही है, लेकिन
1: नहीं, मेरा मन बड़ा उत्कंठित था इस बात के लिए कि मैं बात कर पाऊँ, तो आज मैंने प्रथम कार बनाने का प्रयास किया तो मेरा सफल हुआ। ये आपको भी आपका धन्यवाद जी, और साथ ही अनु जी का भी और ईश्वर का भी जिन्होंने मेरी मुलाकात कराई है। मैंने आज आपके लिए
0: जी
1: विशेष करके एक कविता लिखी थी, जिसमें से मैं कुछ पद आपको प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने सुनाऊंगा आपको।
0: जी प्लीज।
1: मैंने लिखी तो काफी है, लेकिन थोड़ी सी मैंने नहीं लिखी, मानो के अनु जी ने ही लिखी है।
0: अच्छा ठीक है, सुनाइए प्लीज।
1: इनकी प्रेरणा से ही हुआ है जो पीछे। तो भाग्य से अनदान जी से हमारी मुलाकात हुई है, मिलाया है अनु जी ने, हमारी बात हो गई है।
0: वाह।
1: तो मुझाई हुई थी दिल की गली, मुझाई हुई थी दिल की गली, जो मौसम बहार चाहती है, बेताब है आंख मेरी आपका दीदार चाहती है।

0: गॉड
1: अनुजी है घर का चिराग, अनुजी है घर का चिराग, दे रहे हैं रोशनी सबको, सुनकर उनकी मधुर वाणी खुशी हो रही है हमको।
0: क्या बात है, क्या बात है, वाह।
1: अदनान जी क्या मिले, अदनान जी हमें क्या मिले, हमें वरदान मिल गया, रूप है इंसान का, हमें भगवान मिल गया।
0: अरे अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं इतनी इज्जत अफजाई के काबिल नहीं हूँ सच बताऊं तो।
1: अनुजी की वाणी से मधुवर्षा मधु बरसता है, श्रोताओं का इसको सुनने के लिए दिल तरसता है।
0: क्या बात,
1: सियासत का है जमाना, महंगाई का दौर है, हो रही है चोरियां हर तरफ हर जगह पर चोर है। ये मैंने एक जनता को सुनाया है, मैंने नहीं लिखी है ये कविता, अनुजी ने लिखवाई है। मैं तो भूला हुआ मुसाफिर हूँ, उन्होंने राह दिखाई है।
0: वाह क्या बात है, वाह मजा आ गया सच में।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मेरी हौसला अफजाई के लिए, आपका तह दिल से मशकूर हूँ। और ये सारी प्रेरणा जो है मैं सच कह रहा हूँ अनु जी की है।
0: बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत कविता आपने ना सिर्फ लिखी बल्कि हम तक अपने ही लफ्जों में पहुंचाया भी, इसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी, थैंक यू सो
1: मच।
0: बेशक। सो भाई ये तो थे हमारे साथ में विद्या रतन जी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके क्योंकि आप ऐसी शख्सियत हैं जिनसे जितना बात करो काफ़ी कुछ मिलता जाता है। एक तो आपकी ऐसी एज, आपका ऐसा एक्सपीरियंस जिससे हमको काफ़ी कुछ सीखने को समझने को मिलता है, और शुरुआत जब कोई अपनी ही लिखी गई कविता से हो जाए तो फिर क्या ही बात है, मतलब दिन बन जाता है, सुबह बन जाती है, और सच कहें तो संडे जो है वो भी बन जाता है। यस ऑफ कोर्स संडे बन जाता है। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर आखिर कौन मौजूद हैं और क्या कहने वाले हैं। हाँ जी हेलो।
2: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
2: हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।
0: नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब आपको भी।
2: हाँ जी सर, मैं थोड़े तो आज पंजाब विच गल करनी, तुसीं पंजाबी बोलदे बड़े सोहणे लगदे।
0: असी पंजाबी नहीं आदी मैनू।
2: मैनू भी किथे आंदी है सर, मैं भी ता तुहानू सुन सुन के बोलना सिखदा हां।
0: फिर तो आप गलत सिख रहे जी, मैं गुरु तो नहीं हुआ। ये फाउल हो जाएगा।
2: नहीं, अगर आदमी प्रयास करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता है।
0: बेशक सब कुछ कर सकता है बट मुझसे सीख नहीं सकता है क्योंकि मुझे खुद ही नहीं आती
2: है। मैं सुनता हूँ ना जब
0: जी
2: आप पंजाबी बोलते हैं कभी कभी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ वर्ड जो है थोड़े से दोहराए जाएं, याद किए जाएं थोड़े बात करने के लिए।
0: अरे आपने जितने वर्ड्स बोल दिए हैं अभी तक हमने इतने बोल ही नहीं पाए सही सही।
2: चलिए बोल लेंगे सर, आप बोलना शुरू किए हैं तो जिस चीज को शुरू किया जाए वो किसी न किसी दिन आ ही जाता है।
0: बिल्कुल, और वैसे भी कहते हैं ना चक दे फटे।
2: बल्ले बल्ले
0: बल्ले बल्ले। वाह क्या बात है, हमारे श्रोताओं को अपना नाम आप बता दीजिए।
2: हाँ जी सर,
0: अपने हमारे श्रोताओं को अपना नाम बता दीजिए आप।
2: अरे सर नाम में क्या रखा है, बातें करते हैं।
0: क्या बात है देखिए। नहीं हम तो पहचान गए लेकिन हमारे श्रोता नहीं पहचान पाए होंगे क्योंकि आप चैट बॉक्स पे भी आ चुके हैं, आपके लिए मैंने बोला भी है कि आप कविताएं भी लिखते हैं। और बहुत अच्छे कन्वीनर भी हैं आप, एंकर भी बहुत अच्छा करते हैं, हमारे श्रोता भी आपको नहीं पहचान पाए।
2: चलो श्रोताओं की मुश्किल थोड़ा सा आसान कर देते हैं
0: जी,
2: क्योंकि मुश्किलें जो होती हैं उनके भी हल निकलते हैं।
0: बिल्कुल,
2: मसलन हर मुश्किल के हल निकलेंगे,
0: हर मुश्किल के हल निकलेंगे,
2: हर मुश्किल के हल निकलेंगे, और आज नहीं तो कल निकलेंगे।
0: वाह,
2: हर मुश्किल के हल निकलेंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे। आज जो गम के काले बादल, कल खुशियों के पल निकलेंगे।
0: वाह क्या बात है, बहुत
2: दीप हौसलों के जलते रख, दीप हौसलों के जलते रख, अंधियारे भी हल निकलेंगे।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
2: अगली पंक्ति सर आपको देते हैं, रेतों की तपती धरती से, रेतों की तपती धरती से निर्मल शीतल जल निकलेंगे,
0: जल निकलेंगे।
2: राह में कांटे लाख बिछे हों, फिर भी आगे चल निकलेंगे,
0: चल निकलेंगे,
2: हल निकलेंगे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: सर एक समस्या जो आम आदमी हम सबकी होती है
0: जी,
2: जेब भले ही आज हो खाली,
0: जेब भले ही आज हो खाली,
2: जेब भले ही आज हो खाली, धन के भी अवसर निकलेंगे।
0: वाह,
2: ऐ अल्पज्ञ हताश न होना, ऐ अल्पज्ञ हताश न होना, मेहनत के भी फल निकलेंगे,
0: फल निकलेंगे,
2: हर मुश्किल के हल निकलेंगे, आज नहीं तो कल निकलेंगे,
0: कल निकलेंगे। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और मुझे लग रहा है देखिए आप लोग पहचान रहे होंगे, ऑफ कोर्स हमारे, अब मैं चलिए मैं ही रिवील कर देता हूँ, हमारे ये रवि तक्षक अल्पज्ञ जी हैं। जिन्होंने अपना टाइटल आपसे इंट्रोड्यूस कराया और बाकी का नाम मैंने आपको बता दिया है। हमारे प्रिय रवि तक्षक अल्पज्ञ जी हैं हमारे साथ में इस वक्त कॉल पर, और बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी हैं। जिस तरह से देखिए आपने शुरुआत की ना, इतना बेहतरीन समा बांध लिया, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ भी एंकरिंग कर रहे हैं।
2: क्या बात है, अरे मैं इस काबिल कहाँ हूँ।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, मैंने आपको एंकरिंग करते देखा है और बहुत उम्दा आपकी शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मिलते तो बहुत लोगों से लोग हैं, लेकिन जब दिल से मजा आता है ना और दोबारा मिलने की चाह होती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: बिल्कुल, ये मान के चलिए कि वो बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। तो वैसे एक सवाल भी था जो मुझे आज सबसे पूछना था, मैं आपसे शुरुआत कर देता हूँ।
2: जी सर।
0: कभी आपको लगा है कि जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आया है जो किसी फिल्म की तरह चल रहा हो, आपको यकीन ना आ रहा हो कि ऐसा लग रहा है कोई फिल्म चल रही है आपकी जिंदगी में, कभी कुछ ऐसा हुआ है?
2: ऐसा तो मैं जब महसूस करता हूँ
0: जी,
2: तो मुझे लगता है कि ये जीवन ही एक फिल्म है।
0: ओके ओके, अच्छा।
2: और उसकी तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो वाकई लगता है कि नहीं, जो है ये तो है कहीं ना कहीं। और कभी कभी हम कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाता है
0: जी
2: कि हम जिसकी कल्पना नहीं करते हैं
0: जी,
2: और जब हम उसको मतलब बड़ी गहराई से सोचते हैं, देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि वाह बनाने वाले ने भी क्या फिल्म बनाई है।
0: वाओ।
2: और उसका हमें आप अपने आप को मतलब वो परिस्थितियां ऐसी बदलती रहती हैं। एक व्यक्ति फिल्मों में तो मान लीजिए कि हीरो को जिसको बना दिया जाता है वो हीरो होता है
0: जी।
2: लेकिन हम हर रोल निभाते हैं, हम हीरो भी होते हैं, कहीं कहीं कॉमेडियन भी होते हैं, तो कहीं विलन भी होते हैं।
0: क्या बात कही है, वाओ बहुत बढ़िया, बहुत सही आपने अपनी बातों को रखा, और जो आपका नजरिया है जिंदगी को एक फिल्म की तरह देखने का वो आपने बयां कर दिया
2: जी। और कहते हैं जिंदगी को ऐसे जियो कि वो फिल्म हो जाए।
0: वाह, और आप उसके एक किरदार।
2: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
2: जब कोई आपकी जीवनी उठाकर देखे या आपकी जीवनी में घुसना चाहे जो है
0: जी,
2: तो उसे उसे जो है किसी फिल्म से कम एहसास न हो
0: ना हो, कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्यारी बात, एंड थैंक यू सो मच कि आपने कॉल भी किया और कॉल करते ही कविता से शुरुआत की और अपना जिस अंदाज में आपने खुद का परिचय दिया वो लाजवाब था।
2: सर एक चीज मैं कहूंगा जो है, क्योंकि एक रचना में काफी अरसे से जो है मैं सोच रहा हूँ, कभी वो मौका नहीं मिला।
0: जी जी जी,
2: क्योंकि हमारे बच्चे जो है तमाम ऐसे जो है युवा जो पढ़ते तो हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं
0: जी,
2: लेकिन शिक्षित होने के बाद आदमी जो है काम करने में थोड़ा संकोच महसूस करने लगता है, उसको उसके स्टैंडर्ड वो अपने मन में एक ऐसा वो बैठा लेता है कि वो उसी स्टैंडर्ड का काम चाहता है, और दूसरा कोई काम जो है उसके लिए थोड़ा क्या कहें उसको महसूस होने लगता है कि जो है ये हमारे स्टैंडर्ड से नीचे है, अपने आप को उसमें तुच्छ समझता है या अपमान समझता है उसको करना।
0: जी जी जी जी,
2: तो जैसे मान लीजिए बच्चे पढ़ जाते हैं, हमारे सबके पास जो है कहीं ना कहीं जो है ज्यादातर लोगों के पास खेती से जुड़े लोग हैं, खेती कुछ ना कुछ होती ही है। बच्चे पढ़ने के बाद जो है खेती में काम करना पसंद नहीं करते हैं, वो अपमान महसूस करते हैं, तो उनके लिए एक मतलब ऐसे लोगों के लिए जो है कुछ कविताएं हैं, मतलब कविता है एक, और मैं कहूं तो ये कविता जो है हमने अकेले नहीं, इसको हमने सामूहिक रूप से तैयार किया है, जो है हमारे एक मित्र हैं भाई घनश्याम मौर्य भ्रमर जी, जब कभी हम दोनों लोग मिलते हैं तो सामाजिक मुद्दे की जो है कविताएं लिखते हैं।
0: क्या बात है,
2: तो मैं फिलहाल आपको दो लाइनें दे रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा
0: जी।
2: इन नौकरी

0: नौकरी कहाँ ले सबका दे सरकार भैया, खेतियों में बाटे देखो बड़ा रोजगार भैया, खेतियों में बाटे देखो नौकरी कहाँ ले सबका, नौकरी कहाँ ले सबका दे सरकार भैया, खेतियों में बाटे देखो बड़ा रोजगार भैया, खेतियों में बाटे देखो।
1: क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत कम वक्त में अपनी बात कह दी और इस तरह दो लाइन में
2: एक अंतरा दूंगा सिर्फ
1: जी,
2: और वो भी बड़ा भावपूर्ण अंतरा है,
1: प्लीज सुनाइए।
0: नेता अधिकारी चाहे सोना के व्यापारी, नेता अधिकारी चाहे हीरा के व्यापारी, खई है आखिर दाल चाउर रोटी तरकारी पूरी तरकारी, और खेती है वो खेती है लोगवन के जिए के आधार भैया, खेतियों में बाटे देखो बड़ा रोजगार भैया, खेतियों में बाटे देखो। सर
1: क्या बात है, मतलब एक तो जो लाइंस थी उसमें एक बड़ा मैसेज और जिस इमोशन के साथ आपने गाया, मतलब मन तो चाह रहा था कि बस सुनते ही जाए, आपको सुनते ही जाए, मतलब जबरदस्त, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वाह क्या बात है, एकदम माहौल आपने बदल दिया।
2: इसके अंतर और भी है सर, कभी मौका मिला जो है तो
1: पक्का पक्का
2: किया जाएगा या सुनाया जाएगा जो है, क्योंकि ये मैसेज पूर्ण है गीत जो है।
1: बिल्कुल,
2: तो हमारे तमाम युवा ऐसे जो नौकरी की चाह में जो है पढ़ लिखने के बाद में जो है तमाम समय बिता देते हैं, वो काम नहीं करना चाहते हैं, खेती बाड़ी में अपने माँ बाप का जो है अपने जो पैतृक जो काम है जो है उसमें जाना जो है पसंद नहीं करते हैं, तो तमाम ऐसे अवसर हैं खेती में भी आज, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के लिए मैसेज देना एक प्रयास किया गया है मैसेज देने की। तो फिलहाल नारी ज्ञानस्थली एफएम ज्ञानस्थली के तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, तमाम लिसनरों को जो है मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरे कुछ चिरपरिचित लोग भी हैं उनको मैं स्पेशली प्यार भरा नमस्कार करता हूं, आपके स्टूडियो के जितने स्टाफ हैं उनको भी मैं आदाब करता हूं, और मैं एक बात जरूर कहूंगा सर, आप पंजाबी सीखिए और मैं अगली बार जब मेरी कभी आपसे बातचीत होगी, कभी हम आप मुखातिब होंगे आपसे, तो मैं प्रयास करूंगा कि उस चीज को दोबारा जो है
1: बिल्कुल डन डन डन पक्का। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: थैंक यू सर,
1: थैंक यू,
2: और सत्रियाकाल एक बार फिर से आदाब।
1: नमस्ते, सत श्री अकाल। और दोस्तों ये हमारे साथ में बहुत ही प्यारे रवि तक्षक जी हमसे जुड़े हुए थे। फिलहाल अब हम बढ़ रहे हैं आगे एक दूसरे कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो।
3: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
3: जी मैं नरेश बात कर रहा हूँ, अदनान जी।
1: नरेश प्रजापति जी कैसे हैं आप?
3: बस अच्छे हैं सर, और आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि आप अच्छे हैं।
3: नहीं, क्यों?
1: क्योंकि ज्यादा अच्छे लग रहे हैं।
3: क्या बात है सर, मजा आ गया भाई, आपने जो ये शब्द कहे ना कि बहुत अच्छे, हम भी यही कहेंगे कि हमारे प्रिय आदरणीय रिस्पेक्टेड अदनान जी हमेशा वही इसी तरह से अपनी बेहतरीन आवाज के साथ यूं ही मुस्कुराते रहे और 89.6 गोंडा एफएम जो ज्ञान स्थलीय उसमें अपनी आवाज का जादू बिखराते रहे।
1: वाह क्या बात है, बस दुआएं देखिए मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज होती है और आपकी दुआओं से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इतना सब कुछ हम बात भी कर पाते हैं, तो दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया।
3: बिल्कुल बिल्कुल, वाकई में भाई मजा आ जाता है ये प्रोग्राम सुनकर और जब आप आते हैं तो और मजा दो गुना नहीं चार गुना बढ़ जाता है।
1: थैंक यू सो मच। तो चलिए नरेश जी इस सवाल का
3: बड़ा अच्छा लगता है, प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है मुझे और मैं इंतजार करता हूँ संडे का, क्योंकि संडे को मेरी छुट्टी रहती है और ये जो संडे है ना आपके साथ जब प्रोग्राम में हम जुड़ते हैं तो वो सुपर संडे बन जाता है।
1: वाह क्या बात है, इसीलिए हम कहते भी हैं कि सुपर वाला है शो।
3: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा मौसम है सर आपके यहाँ का अभी?
1: धूप निकली हुई है काफी अच्छी से।
3: बिल्कुल यहाँ भी वही मौसम है, धूप यहाँ भी निकली हुई है और अब बारिश लगता है कि अब आ नहीं पाएगी क्योंकि अब ऐसा मौसम आ गया है कि जैसे अभी अब गणेश जी का त्योहार चल रहा है तो इसका भी समापन की तरफ है और उसके बाद फिर श्राद्ध चालू हो जाएंगे और उसके बाद फिर नवरात्र का आरंभ
1: हो जाएगा। सही बात है
3: जी। बिल्कुल, और जो सोयाबीन की फसल है वो भी आ गई है यहाँ तो गांव में, तो फिलहाल तो मैं ग्रीन सिटी से बात कर रहा हूँ इंदौर से।
1: जी जी जी जी जी। एक सवाल मेरा भी था ये आपसे।
3: जी सर।
1: सवाल ये था कि जैसे ऐसा होता है कि हमारे जिंदगी में जीवन में कुछ ऐसे पल या कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जब हमको लगता है कि हमारी जिंदगी ना होकर के किसी फिल्म की स्टोरी चल रही है, तो कभी क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? हुआ है तो क्या बता सकते हैं आप?
3: ये बात बिल्कुल सही कही आपने और ये जो है ना ये पल जरूर आते हैं। एक्चुअली जब मैं 10th क्लास में था और 10th में था मैं और उसको मैंने 80% से उसको पास किया, उसके बाद 11th में गया, अच्छी परसेंट बनी, टॉपर रहा मैं उस टाइम पे जब 11th में मैंने एडमिशन लिया तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैंने लिया, तो उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ अचानक से ऐसी घटनाएं घटी, एक तो मेरी तबीयत खराब हुई अचानक, उसके बाद फिर जैसे ही मैं सही हुआ तो मेरी मम्मी को पैरालिसिस हो गया, तो वो साल मेरा बिल्कुल पढ़ाई में मतलब पूरी तरह से हो ही नहीं पाया, यानी छूट गई थी उसका साल पढ़ाई, लेकिन मैंने फिर हिम्मत नहीं आ रही फिर से स्टार्ट किया और फिर पढ़ाई जारी रखी और ग्रेजुएट किया, ITI किया और आज एक बड़ी नामचीन कंपनी में एम्प्लॉई हूँ मैं।
1: वाओ कितनी खूबसूरती से बता दिया आपने।
3: जी तो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बस हमें हौसला बना के रखना है और हिम्मत नहीं हारनी, तो ये जो हमारी परीक्षाएं होती है ना वो हमें सीख दे जाती है कि भाई जिंदगी लड़ने का नाम है, लड़ते रहिए सफलता जरूर मिलेगी।
1: वाओ बहुत प्यारी बात कही हो, और वैसे भी ये आपने सिर्फ कही नहीं है, मतलब अपने जीवन से जो सीखा है जो आपने उसके बारे में भी बताया उससे जो मिला है वो आपने बताया है, ये रियलिटी आपने अपनी तरफ से बयां की है, ये बहुत प्यारी बात है।
3: क्योंकि जब मैं छोटा था लगभग मैंने 5वीं क्लास पास की उस टाइम पे 2003 की बात है ये, तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए, वो सिचुएशन कुछ सही नहीं रही उसके बाद पारिवारिक स्थिति की, फिर भी हमारी माताजी ने बड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाया और अच्छी परसेंट भी बनी मेरी, हमेशा टॉप ही रहा था मैं, तो यही है कि मेहनत जरूरी है, समस्याएं आती रहेंगी जीवन में, बस हमें ध्यान देना है अपने लक्ष्य की ओर।
1: बेशक सही बात है, एंड आपने जिस तरह से ध्यान दिया और आप यहाँ तक पहुँचे हैं आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इससे कहीं आगे जाएं और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आपकी जिंदगी में सुकून बहुत सारा हो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस शो को सुनकर वाकई में मजा आ जाता है और हमारे और भी लिसनर्स क्यों में है लाइन में, चलिए उनको भी मौका मिलना चाहिए भाई बात करने का और प्रोग्राम में, क्योंकि सबकी बातें सुनने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
1: बिल्कुल,
3: कुछ ना कुछ नहीं मैं तो ये कहूंगा बहुत कुछ सीखने
1: बहुत को मिलता है। थैंक यू सो मच,
3: धन्यवाद सर। ओके थैंक यू,
1: धन्यवाद। और ये हमारे नरेश प्रजापति जी फ्रॉम इंदौर, जैसा कि उन्होंने बताया ग्रीन एंड क्लीन सिटी मध्य प्रदेश से। सो चलिए भाई अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अगली कॉल पर कौन है जी, देखते हैं। हेलो
4: नमस्कार
1: जी। नमस्कार बादल जी, कैसे हैं आप?
4: बढ़िया बढ़िया, अच्छे अच्छे।
1: सो भाई आपकी जिंदगी का कौन सा वो पहलू रहा है जो आपको लगा कि काफी फिल्मी हो रहा है?
4: फिल्मी नहीं हो रहा है, लेकिन रियल हो रहा है, ऐसा हो रहा है।
1: रियल हो रहा है, अच्छा क्या लगा था आपको ऐसा? थोड़ा सा आप आसपास के स्पीकर से हट जाए क्योंकि वापस से रिटर्न हो रही है वॉइस, थोड़ा सा बस दूर।
4: स्पीकर बंद कर दिया।
1: जी जी जी हाँ, अभी बताइए।
4: हमारे साथ 9th, 10th, 11th में जब भी हम जो ये 26 जनवरी और 15 अगस्त का प्रोग्राम करते थे तो उसमें प्ले होता था
1: जी,
4: उसमें हमको हमेशा जो है क्या बोलते हैं विरोधी मतलब आतंकवादी या कुछ ऐसा हमको प्ले दे दिया जाता था और ऐसा ड्रेस कोड हो जाता था कि वाकई में जब फोटो देखते थे तो लगता था वाकई में रियल हो गया।
1: अच्छा
4: ओ
1: फिर
4: गेटअप ऐसा तगड़ा होता था कि वो रियल जैसा हो जाता था।
1: तो कहीं आज आप घर में कुख्यात तो नहीं माने जाते? बस हम इतना पूछना चाह रहे थे आगे।
4: वो तो माता जी बताएंगे। एनसीसी का कैंप गया था 48 बटालियन
1: जी,
4: तो वहाँ पे भी हमको वही रोल दे दिया गया। तो हम लोग सब पूरा गेटअप लेके गए थे जो है कुर्ता पैजामा और उसी तरीके का जो है वो जूता जो नागरा टाइप का आता है थोड़ा और बंदूक और सब कुछ। तो स्टेज प्रोग्राम था हमारे, कोई नाटक मतलब प्ले वो स्कूल वाइज मिलता है फुट बटालियन में
1: जी,
4: उसमें भी 8-10 लोगों की टीम में हमको फिर आतंकवादी बना दिया लोगों ने।
1: ये मतलब क्या ऐसी कौन सी क्वालिटी है आपके अंदर जो देखते ही आदमी कहता है ये सही भैया भैया ये रोल ठीक है इनके ऊपर?
4: अब हो सकता है, पता नहीं क्या है, मैं अंदाजा नहीं है, चश्मा लगाता हूँ पता नहीं इसलिए बना दिया।
1: नहीं नहीं चश्मे तो खैर हम भी लगाते हैं बट हमको कभी नहीं बनाएगा।
4: तो आप चश्मा लगा के काला कुर्ता काला पैजामा पहन के निकलते हैं?
1: कोई नहीं, उससे नहीं लगता है, मुझे लगता है कुछ बात आप ऐसी कर देते हैं जिससे कि आदमी को लगता है यार अब ये रोल इनके लिए ज्यादा सही है।
4: कुछ तो गड़बड़ है दया,
1: कुछ तो गड़बड़ है, और दया नहीं निर्दया।
4: ओके सोचते कहीं हमको ओरिजिनल में तो नहीं घोषित कर दिया?
1: नहीं नहीं ओरिजिनल
4: लगातार 3-4 सालों तक,
1: 3-4 साल और रहता तो भले ही घोषित हो जाते, लेकिन अभी 3-4 साल में तो ठीक है, नहीं होंगे आप डोंट वरी।
4: 15-16 साल तक, 17 साल तक,
1: सही बात है। फाइनली आप सेफ हैं, डोंट वरी।
4: लेकिन हाँ एक चीज था, प्ले अच्छा जाता था तो फर्स्ट भी मिलता था।
1: तो भाई रोल जब जितना बढ़िया खतरनाक विलेन रहेगा उतना ही तो उस सीन का मजा आएगा ना।
4: वही वही।
1: वाओ थैंक यू सो मच इस सवाल का जवाब बड़े ही प्यारे अंदाज में देने के लिए।
4: ओके ओके थैंक यू
1: थैंक यू। सो ये थे हमारे बादल गोयल जी फ्रॉम गोंडा, और आपने भी कॉल किया और ऑफ कोर्स अपनी बातों को किया। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो।
5: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
5: मैं सविता देवी बात कर रही हूँ।
1: और मैं आरजे अदनान बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप?
5: फिलहाल ठीक
1: हूँ। ओह तबीयत लग रही है गड़बड़ आपकी, क्या हुआ आपको?
5: हाँ बहुत ही गड़बड़ है, पता नहीं
1: ऐसा क्या हो गया
5: पता नहीं, कुछ अब डॉक्टर ही जान पाएंगे। तो वही बता रहे थे ना कि जीवन में लग रहा है कि आप एक कहानी देख रहे हैं। तो मेरा जीवन तो कहानी से भरी पड़ी है।
1: ओ, ओ, अच्छा।
5: तो जीवन में जो जो घटना हुआ है जो मैं अपने जीवन को जब पलट के देखती हूँ तो कहानी जैसा लगता है मेरा जीवन।
1: जब जीवन को पलट के देखते हैं तो आपको आपका जीवन कहानी जैसा लगता है
5: जी।
1: तो
5: मन उतना ठीक नहीं है। नहीं। हाँ लग रहा था कि आज चैट बॉक्स पर आ पा रही हूँ ना मैं आज
1: जी जी जी समझ गए थे कि आपकी प्रेजेंस नहीं है और अभी बताया भी आपने। बिल्कुल। सो सबसे ज्यादा तो दुआ है हम लोगों की, हम सभी की, कि आप जल्दी से ठीक हो जाए भाई। आप जब चहक के कॉल करती हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है और वो अंदाज वापस से जल्द ही आए और आपके लिए बहुत सारे सुकून, बहुत सारी खुशियों की कामना हम सब करते हैं। जी थैंक यू, आप जरूर आराम। सॉरी आपकी आवाज थोड़ी सी कट हो रही है।
5: ठीक है।
1: जी बिल्कुल, आप आराम करिए और बहुत सारी दुआएं एक बार वापस से आपको, ताकि आप खुश रहिए, क्योंकि आपका खुश रहना बहुत अच्छा हम सबको लगता है, बहुत अच्छा भाता है। थैंक यू सो मच टू यू। एंड अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो,
6: गुड मॉर्निंग सर।
1: अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपका नाम बता दी हमारे श्रोताओं को।
6: मैं तो बात कर रही हूँ अन्नु पांडे।
1: अच्छा बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा
6: है
1: आप गा रहे हैं। नहीं पता नहीं, बताइए मैं अब कैसे बताऊंगा, पहले कैसे बताऊंगा।
6: आपने याद किया ना, तो आज मुझको हिचकिया रही थी, इसीलिए पहले हिचकिया की आवाज आपको नहीं सुनाई थी, उसके बाद मैंने गुड मॉर्निंग बोला है।
1: कसम से याद ही नहीं किया मैंने।
6: अरे आपने पहले ही बी नाम लिया ना, तो घर में मेरा बी से ही नाम है, तो सब लोग बोलने लगे अरे जाओ जल्दी से सर बुला रहे हैं, और मैं इतनी देर से लाइन पे लगी हूँ, मेरी कॉल ही नहीं लग रही है।
1: बी से नाम है आपका?
6: हाँ घर का नाम मेरा बी से ही है।
1: अच्छा वी बोला, हमें लगा बी बोला, वही हमने कहा अनु सुना था, बन्नू थोड़ी ना सुना था।
6: अरे नहीं सर बी से है घर का नाम।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा।
6: और सर पता है ना, नहीं, अभी नहीं, मैं छतरपुर से सीधा गोंडा आई हूँ और गोंडा से मेरा टिकट है लखनऊ, तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी बात हो जाए फिर मैं लखनऊ के लिए निकलूँ।
1: ओहो हो हो, क्या बात है, पूरे देश की भाग दौड़ आपको दे दी गई है, क्या इधर से उधर कर रहे हैं आप?
6: अभी लगता है,
1: अभी लग रहा है। अच्छा और कब आपको लगा कि आपकी कहानी फिल्मी स्टोरी है, आपकी जिंदगी की कहानी? मतलब मेरा सवाल सबसे ये कि आपको कब लगा कि आपकी जिंदगी किसी फिल्म की स्टोरी की तरह इस वक्त चल रही है?
6: अरे सर मेरी तो जिंदगी हमेशा फिल्म की स्टोरी की तरह ही चलती है।
1: अच्छा
6: कभी ऐसा कोई पल आया ही नहीं कि जिसमें ये लगे ही नहीं कि फिल्मी मतलब स्टोरी
1: है। अच्छा अच्छा कभी आया ही नहीं है
6: ना, हर पल फिल्म की स्टोरी ही चलती रहती है।
1: अच्छा थोड़ा सा ख्वाबों से बाहर आना पड़ेगा आपको। All right,
6: सर ख्वाब में रहना अच्छा है, ख्वाब देखेंगे तभी तो पूरे होंगे।
1: नहीं कुछ बात बिल्कुल सही बात है, कभी कभी ऐसा लगता है हकीकत ऐसी हो चुकी है कि ख्वाब में रहना ही बेहतर है, ये मैं भी मानता हूँ। बहुत सही बात है। सो चलिए बहुत अच्छी बात है, एंड आपको हैप्पी एंड सेफ जर्नी, अच्छे से जाइएगा, एंजॉय करिएगा, और आने के बाद लखनऊ की और छतरपुर की स्टोरी हमको जरूर बताइएगा।
6: स्टोरी तो आपको अभी बता सकती हूँ, मैं कॉल के जरिए छतरपुर गई थी और कॉल के जरिए लखनऊ भी जाऊंगी और कॉल के जरिए मैं गोंडा स्टेशन पे रुकी हूँ।
1: चलिए तो बहुत अच्छी बात है, तो आप इस तरह पूरे देश में कॉल के जरिए फैलती रहिए, ऐसी हम काम करते
6: हैं। पता है
1: नहीं बताइए,
6: अभी ना आपसे आप बात करने के लिए आशी मुझको बहुत परेशान कर रही है, और सर आशी इतना चालाक है ना कि वो मुझको 2 रुपए भाड़ा दी है और बोली है आपके यहाँ चलने के लिए।
1: अच्छा
6: उसने मुझे कल 2 रुपए दे दिए और बोला आप यहाँ चलने के लिए, पैसे देती नहीं है, पैसे बहुत पहचानती है, पर जब आपके यहाँ चलने के लिए बोला तो दे दिया कि भाड़ा है कि हाँ, तो और वो हर पल सर आपको याद करती रहती है, अगर मैं रेडियो तखत पे रख दूँ ना तो वो इधर उधर अलग पलट के और लगता है आपको निकालने की कोशिश करेंगे। देखा तो उसी दिन से हमने कहा अरे रेडियो तखत पे नहीं रखते है,
1: कोशिश कर रही है ये तो ठीक है, लेकिन किसी दिन हम निकलना है, हम बस हम ये सोच रहे हैं।
6: सर अगर आप निकल आए ना तो आशी का दिन बन जाएगा, क्योंकि वो घर में किसी को देखती है तो वो आशी का नाम।
1: अच्छा थैंक यू, उस छोटी सी बच्ची
6: को आती है जब यहाँ तो रेडियो में भी आशी को बुलाती है।
1: वाओ बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी बच्ची, और इसके इतने से प्यार के लिए हमारे पास शब्द तो फिलहाल नहीं है, लेकिन बहुत सारा प्यार
6: आपको ना जब यहाँ आएगी घर पे तो ऐसे रेडियो पकड़ेगी और रेडियो चला के बोलेगी सुना बाबू।
1: अच्छा
6: बहुत प्यार से बोलती है। और किस भी देती है जो बोलो ना सर को किस दर्द।
1: अच्छा बहुत प्यारी बच्ची है और जरूर हम चाहेंगे कि जब ये कभी आए इधर तो इनसे मुलाकात हमारी जरूर हो।
6: अरे सर वो हर पल एकदम हर टाइम तैयार रहती है, किसी टाइम बोलो कि चलना है नाम सर से मिलने तो बोलेगी हाँ। और कभी तो मेरे फोन में निकालती है, मैं बोलती मेरे फोन में बैठे है, बोलती है हाँ। अरे मुझे बात करने दो।
1: ओके तो बहुत अच्छे से आपने बताया एंड थैंक यू सो मच अनु की आपने।
6: हाँ जी मुझे कुछ सुनाना भी है।
1: प्लीज सुनाइए।
6: हमको पबजी फोड़ना है।
1: ओके
6: इन किया तो नजर आए इंदौर, इन किया तो नजर आए इंदौर, त्रिपुरा तीन पूरा रखा तो पहुंच गए त्रिपुरा, धड़कन बड़ी दीवानों के शहर, धड़कन बड़ी दीवानों के शहर, दृष्ट मिलाने पहुंचे जब बजा झुंझुना, ठंडी ठंडी हवा महसूस की तो ऐसा लगा हम तो है शिमला।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, आपने सभी को जोड़ दिया और सभी आपके जानने मानने वाले जो आप लोग एक साथ मौजूद रहते हैं आपने सभी को डेडिकेट कर दिया। वाह क्या बात है।
6: हमने सोचा इतने लोग, अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं लेकिन हमने सोचा इनमें से कुछ शहरों को चूज करते हैं और कुछ इस पे अगर लिखे कुछ बनाए तो फिर ऐसे बन गया।
1: बिल्कुल एंड थैंक यू सो मच सुनाने के लिए अनु।
6: तो हमने कहा भी सर को सुनाते हैं ना, अभी इसमें कोई गुस्सा नहीं होगा पर राहुल भाई जरूर गुस्सा होंगे।
1: चलिए कोई नहीं, उनको तो मनाना, अब आपके भाई हैं भाई आप मनाइए, लेकिन आपने सुना दिया हम सब लोग को अच्छा जरूर लगा ये बात है।
6: हाँ, क्योंकि वो चिर जाएंगे ना, उनके शहर का नाम झुंझुनू है और हमने इसको झुंझुना बोल दिया।
1: कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच अनु कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।
6: ओके सर बाय
1: बाय टेक केयर। सो भाई ये तो थी अनु जिन्होंने हमसे बातचीत किया, अब चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो।
7: हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार अविनाश जी कैसे हैं आप?
7: जी बहुत बढ़िया है, आप सुनाइए।
1: सब बढ़िया सब मस्त। अब आप कोई बताइए ऐसी अपनी रियल लाइफ की स्टोरी जो आपको किसी फिल्मी स्टोरी जैसी लग रही थी।
7: जी हम सबकी लाइफ जो है वो कभी कभार फिल्मी स्टोरी लगती है लेकिन हम सबकी लाइफ ऐसा बनाना चाहिए जो हम सबकी लाइफ के ऊपर कोई फिल्म बने।
1: वाह वाह वाह, ऐसा क्या किया अभी आपने?
7: ऐसा तो कुछ किया नहीं है लेकिन ऐसा कारनामा कुछ अगर हो जाए तो पूरे देश देखेंगे कि इनके लाइफ इनका बायोग्राफी के ऊपर देखिए फिल्म बन रहा है।
1: 150-200 किलो अगर सोना ले लिया जाए, निकाल लिया जाए कहीं से तो पक्का बायो फिल्म मिलेगी।
7: पक्का, हाँ, पक्का मिल जाएगा लेकिन लेकिन वो जगह ढूंढना पड़ेगा ना, कहाँ से निकाला जाए।
1: कहाँ से निकाला जाए। बात तो बड़ी पते की आपने और ऐसा बिल्कुल सही कहा आपने कि जिंदगी में कई बार ऐसा मौका आता है जब लगता है कि किसी फिल्म की स्टोरी की तरह अपनी जिंदगी चल रही है। बिल्कुल सही कहा।
7: तो मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ आया नहीं है लेकिन कभी कभार अपने आप को मतलब कि उस फिल्म की कुछ देखते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि चलिए इस फिल्म में मैं ही हीरो हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसा अनुभव कर लेते हैं मन ही मन।
1: मतलब आपका बजट भी नहीं लगता और आपका मजा भी पूरा आपको मिल जाता है। ये अंदाज हमें बहुत बढ़िया लगा आपका। एंड थैंक यू सो मच अविनाश जी, बहुत अच्छे इंसान है आप और यूं ही खुश रहिए ऐसी दुआ है हमारी आपके लिए।
7: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए, ऐसे हर संडे को आप सबकी माइंड फ्रेश करते रहिएगा, मजा आता है आपके कार्यक्रम में जुड़ने का भी और जोड़ने का भी।
1: थैंक यू सो मच अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
7: जी जी शुक्रिया। और अनु पांडे जी जो पंक्तियां बोली सब सभी मतलब की राज्यों को मिला करके वो बहुत ही खास लगा।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
7: तो उनको भी थैंक्स है इतनी बढ़िया शेर शायरी बनाने के लिए अपने आपको। उनको देखिए उनको लग मतलब उनसे बात करके ऐसा लगता नहीं कि इतने अच्छे अच्छे शेर शायरी बना सकते हैं लेकिन जब वो बोलती हैं तो हमको हम सबको महसूस होता है अरे क्या बात है, इनमें तो काफी कला छुपा होता है लेकिन ये छुपा रस्तम है।
1: अरे किसी को नहीं लगता है, वो है ही ऐसी बनी रहती है, खाली है तो बहुत कुछ उनके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, बहुत सही दुआ जी, धन्यवाद। सो भाई ये थे हमारे साथ में अविनाश जी जो कि त्रिपुरा से सुनते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार आपका मिलता है हमको। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ और देखते हैं कि भाई अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो।
8: अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आई, मैं हूँ कौन, सर पहचाने।
1: भैया महाराष्ट्र से चल के आ गई हैं।
8: सही पहचाना।
1: आपकी ये जो बच्चों वाली आवाज है ना, ये इतना अलग है कि आप बस हेलो का जो करके आता ना, उससे भी हम लोग पहचान सकते हैं।
8: अरे वाह, तेरा मैं हेलो करूंगी नहीं।
1: बढ़िया,
8: आप पहचानने लगे तो आज से मैं हेलो करूंगी नहीं।
1: अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब कॉल मिलते ही बाय कर देंगी? बाय। तो भाई तनुश्री, आपका स्वागत है, वेलकम है। महाराष्ट्र से आप गुंडा एफएम पर आ चुकी हैं, और सवाल मेरा जो था वो ये है तनुश्री की जिंदगी में कभी कोई ऐसा पल या ऐसा कोई फेज आया है जब आपको लगा हो कि किसी फिल्म की स्टोरी की तरह आपकी जिंदगी चल रही है?
8: जी सर।
1: अच्छा, कब ऐसा
8: हुआ? कभी मैंने रेडियो आपके सामने कभी बोला नहीं, पर एक सीन ऐसा था जो बिल्कुल मतलब मूवी की तरह था मेरे जिंदगी में।
1: अरे वाह, क्या बात है, वाओ।
8: पर वो सीन सर अच्छा नहीं था, वो सीन थोड़ा बुरा था।
1: अच्छा, वो सीन बुरा था, लेकिन लगा आपको कि किसी फिल्म की तरह चल रही है आपकी लाइफ में?
8: जी सर, फिल्म की तरह ही लगा, मतलब ऐसा देखते हैं ना कि सपना देखा और टूट गए, ऐसे फिल्म देखी और कब टूट गए वो पता ही नहीं चले।
1: थोड़ा मजबूत क्वालिटी का नहीं था,
8: मतलब नहीं बता सकते थोड़ा दुख भरा है तुम्हें,
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उस चीज को समझते हैं। बस आपने इतना इशारा किया कि हाँ, लाइफ में सच में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि हमारी जिंदगी जो है वो किसी फिल्म की तरह चल रही है।
8: जी सर।
1: और गाने में तो आप एक्सपर्ट ही हैं, उस फिल्म के गाने में आप खुद ही अपना गाना गा लेते हैं, अलग से किसी सिंगर की जरूरत ही नहीं है।
8: जी सर। जी सर। और आज जी सर, थोड़ा सा मुझे पता है आज थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा ही गणपति बप्पा बेटे, तो मैंने एक हारमोनियम पर छोटा सा गाना प्ले कर मतलब थोड़ा सा ही दो अंतरा में प्ले करना चाहती हूँ।
1: प्लीज प्लीज सुना रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत है, आप सुनाइए।
8: देवा

0: वाओ, क्या बात है। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा, मतलब आपने महाराष्ट्र को जो है वो गोंडा में ला करके स्थापित कर दिया बाकायदा। बिल्कुल, गणपति उत्सव जो मनाया जाता है पूरे भारत का सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर, वो महाराष्ट्र स्पेशली मुंबई में, और वो आपने जिंदा कर दिया हमारे गोंडा में यानी उत्तर प्रदेश में भी। एंड थैंक यू सो मच टू यू तनुश्री, बहुत बेहतरीन आपने सुनाया।
1: और थैंक यू सर आपको भी कि आप मुझे गाने का मौका देते हैं।
0: अरे हम क्यों नहीं देंगे आपको गाने का मौका, आप बहुत अच्छा गाते हो, तो मौका तो मिलना ही चाहिए।
1: सर आपको पता है इस कार्यक्रम में भी इतना फोन लगाने के लिए, इतना मैं सब काम छोड़ कर मैं फोन लगाने बैठती हूँ। मेरा फोन लगना ही चाहिए। दो हफ्ते से मैंने ट्राई नहीं किया, पर इस हफ्ते मैंने बोला कहीं मतलब लगाना है फोन मुझे।
0: चलिए फाइनली लग गया।
1: जी सर, और आपसे बात करके सर बहुत खुशी होती है, मतलब तो आज का जाएगा मेरा।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है तनुश्री, आपकी आवाज, आपका अंदाज बच्चों वाला हम सभी को बहुत पसंद आता है। एंड बहुत सारी दुआएं आपके ऊपर।
1: जी सर, और दूसरे कॉलर को दूसरे कॉलर को भी मौका देती हूँ। ओके सर, बाय।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत सही बात है। एंड यस भाई, ये महाराष्ट्र से तनुश्री जिन्होंने हमको सुनाया, इनकी आवाज़ के कायल तो हम लोग पहले ही हो चुके हैं भाई। कई सारे ऐसे सॉन्ग सुन करके जो हम लोग इनकी ही आवाज़ में सुनते हैं, ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है। और यस, फ़िलहाल चूँकि आपसे लगातार बातचीत करते जा रहे हैं, और एक सवाल कि भाई लाइफ का कौन सा ऐसा फेज़ है जो आपको किसी मूवी की तरह लगा, चलिए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी, हेलो हेलो, ओके। सो भाई, कई सारे ऐसे फेजेस हमारी लाइफ के आते हैं, लिटरली आते हैं, जो हमको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं ये किसी मूवी से इंस्पायर्ड लग रहे हैं, यह सीधे सीधे कहानी चल रही है, फिल्म चल रही है। हाँ, गाना आप लोग अलग से कस्टमाइज़ करके हम गा सकते हैं अपने ही लिए, खैर वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन इस तरह से कई बार दौर आते हैं और हमको लगता है कि यार क्या चीज़ चल रहा है माई लाइफ में। फिलहाल चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हाँ जी, हेलो,
2: सर।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी
0: हूँ,
2: आप कैसे हैं सर?
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे श्रोताओं को अपने बारे में अपना नाम बता दीजिए।
2: मेरा नाम मोहसिन अंसारी और मैं मोरबी गुजरात से बात कर रही हूँ।
0: देखिए, पूरा इंडिया जुड़ चुका है, पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और अब उसी के बगल में गुजरात भी आ गया है। सो वेलकम करते हैं आपका गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, और स्पेशली संडे स्पेशल में। सो मोहसिना, आप मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा फेज रहा है जो किसी मूवी की तरह लगा हो?
2: मेरा गुजरा हुआ कल, जब मैं उससे बैठ के सोचती हूँ, ऐसा कभी याद करती हूँ, तो मुझे लगता है वो सारे मोमेंट्स जो है वो किसी फिल्म की तरह मेरे दिमाग में चलते हैं। जैसे मेरा कॉलेज जाना, फिर कोचिंग जाना, फिर फ्रेंड्स के साथ मूवी और शॉपिंग पे जाना, ये सारी चीजें मुझे किसी फिल्म का हिस्सा लगती है।
0: वाओ, क्या बात कह दी आपने। आपने कहा तो ऐसा,
2: सबसे अच्छा सबसे प्यारा जो आपका वक्त होता है वो आपके माँ बाप के साथ का होता है, फिर उसके बाद आपकी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और उनमें साथ देने के लिए खुदा ने हमें बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त बख्शे होते हैं। तो दोस्तों का साथ मुझे लगता है जब मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया तो वो मेरे लिए मेमोरेबल हो गया, मेरी मेमोरी में मूवी की तरह शूट हो गया। तो मैं जब उसे याद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपनी यादों को याद करना भी एक कला है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारी बात कही है आपने। एंड ऐसा मानते हैं क्योंकि जब भी हम खुद भी बचपन को मुड़ करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सच में एक मूवी की तरह था, इतना खूबसूरत, सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग थी।
2: हमारे वो दिन बचपन के जा चुके, नहीं आ रहा है सर। फेस्टिवल कितने ही आते हैं हम किसी भी रिलेशन से हो, लेकिन मनाते हर कोई है अपने अपने तरीके से, अंदाज अपना अपना होता है। तो दिवाली हम लोगों का बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता था, उसमें हम लोग मिठाइयाँ लेते हैं, नए कपड़े लेते हैं, खिलौने लेते हैं सर। वो एक मिट्टी से घर बनता है, हम लोग का घरौंदा होता है सर। वो सब याद करो तो ऐसा ही लगता है कि हाँ शायद तो फिल्म ही चल रही है।
0: हाँ, मुझे वो मिट्टी के खिलौने भी याद आ रहे हैं और शक्कर से बनने वाले खिलौने भी याद आ गए।
2: शक्कर से बने हुए खिलौने और सर वो कितने प्यारे प्यारे रंग होते थे, कितने मीठे मीठे होते थे सर। वो सब है तो अभी भी, लेकिन अब अपना वो बचपना नहीं रहा ना। अब हम बड़े हो गए, अब हमारे सामने हमारा न्यू जनरेशन आ रहा है, तो वो सब याद करो तो फिल्म के जैसे ही लगता है।
0: सही बात है, बहुत प्यारी बात आपने कही। और कहीं ना कहीं हम एक बार को एक झलक के लिए ही सही, लेकिन एक अपने बचपने को एक मूवी की तरह देख पाए आपके कहने से। थैंक यू सो मच टू यू मोहसिना, एंड बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सो भाई, ये थी मोहसिना जो कि मोरबी गुजरात से सुनती हैं गोंडा एफएम को। और देखिए ना, मतलब कितनी बड़ी बात है कि सच में हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसे मोमेंट्स लगते हैं यार कि कोई मूवी चल रही हो। फिलहाल प्रीति जी ने तनुश्री को कहा है बहुत खूब, थैंक यू सो मच। गुलफशा सिद्दीकी जी हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत खूब आपकी तरफ से भी थैंक यू। महेंद्र जी ने राजस्थान से कहा है नरेश जी की बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा, यस ऑफ कोर्स। और आपका सॉन्ग प्रेरणादायक है ऐसा कहा है रवि तक्षक जी को हमारे धर्मेंद्र मोहन जी ने फ्रॉम आवास विकास, थैंक यू सो मच। रोशनी रावत जी फ्रॉम उन्नाव उत्तर प्रदेश से है, गुड मॉर्निंग अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है। इसके अलावा जो है बहुत खूब विचार, थैंक यू सो मच। आशु जी ने भी कहा बहुत खूब सर जी, थैंक यू। एंड यस, अरविंद मौजूद हैं, आपका स्वागत है। महेंद्र जी ने कहा है गुड मॉर्निंग नमस्कार आरजे अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग नमस्कार आपको। और धर्मेंद्र जी लिखते हैं अदनान सर जी हैप्पी मॉर्निंग, समय बोला मैं एक बार जाता हूँ वापस नहीं आता, और किस्मत बोली मैं हर किसी के पास आती हूँ पर पहचान कम लोग पाते हैं, मेहनत मुस्कुराई और बोली जो मेरे साथ नहीं छोड़ता मैं उसकी किस्मत बदल देता हूँ। वाओ क्या बात है। लवली सिंह भी मौजूद है, आपने लिखा है अदनान सर गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह याद आई मैं भी मिलने चला आया, थैंक यू सो मच। आपकी फैमिली है और आप आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है लवली, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत है स्पेशली मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और देखिए कितने खूबसूरती से हम लोगों ने कितनी सारी बातों को किया और कितने सारे पलों को ऐसा लग रहा है कि साझा कर लिया है एक साथ, इतनी सारी बातें, इतना सारा बातचीत का जो अंश है वो निकल के आया और अपने आप में बहुत ख़ास बन गया। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल तो मुझे लगता है कि भाई अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है क्योंकि यस समय हो चला है। सो फिलहाल हम तो आपसे विदा ले ही लेंगे, लेकिन आप इस शर्त के साथ जाएंगे कि ज़िंदगी अगर एक मूवी की तरह है तो आप उसके किरदार हैं। और ये जान लीजिए कि आप एक किरदार होने के साथ साथ उस मूवी के डायरेक्टर भी हैं। यस, ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को जो दिशा और दशा देने वाले हैं वो आप खुद होने वाले हैं, और वो किसी और के अख्तियार में नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही अख्तियार में हैं, आपके ही वश में है, आपके ही बस में है। तो बस इस बात को मत भूलिएगा तो बाकी सब आपको याद रहने वाला है और सब कुछ अच्छा लगने वाला है। सो चलिए अब चलते हैं, फिलहाल आपसे विदा लेते हैं क्योंकि संडे स्पेशल इस शो से विदा लेने का समय तो है वो आ चला है। और कहीं ना कहीं आपसे आज बात करके ये ज़रूर समझ में आया कि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो सच में सुनने के बाद हम लोग उसको हैरान हो जाते हैं। हमने इतना ज़्यादा बिज़ी कर लिया वक्त के नाम पे कि हम शायद जो जीने के लिए चाहते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, हम जीना ही भूल चुके होते हैं। सो एक दूसरे को सुनना और थोड़ा सा बातें कर लेना, मुझे लगता है ये ज़िंदा होने का एहसास दिलाता है। सो बी लिव, हमेशा ज़िंदा रहिए और खुश रहिए, यही हमारी कामना है आप सभी के लिए। और यही हम चाहते भी हैं कि ऐसा हमेशा आपके जहन में रहे कि आप अकेले नहीं हैं, अपनी चीज़ों के लिए आप एक पूरा संसार हैं खुद के लिए, एक पूरा जहां है खुद के लिए। फ़िलहाल आज का मॉर्निंग शो कैसा लगा हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अभी आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, आपसे लेते हैं विदा आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। शो कैसा था बताइएगा, बाकी हम मिलते हैं आपसे ओपन माइक वाले प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो 11.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: और वक्त हो गया है हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी प्रोग्राम का, जो कि संडे स्पेशल आता है आपके अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए और आपके खुद के लिए, क्योंकि शुरुआत ही होती है कहानी से। सो फिलहाल कहानी तो हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इस शो की होस्ट यानी हम सभी की गीता दीदी का स्वागत तो कर लें। कैसी हैं गीता दीदी?
2: हेलो अदनान।
1: हाय।
2: सबसे पहले तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं उनको सुबह की सुप्रभात, और आज का दिन उनका बहुत अच्छा बीते ऐसी मैं कामना करती हूँ।
1: सो आपकी कामना अक्सर पूरी होती है।
2: बिल्कुल,
1: और आपने किया है तो डेफिनेटली आज सबकी सुबह के साथ साथ पूरा दिन अच्छा होने वाला है।
2: एकदम राइट है,
1: एकदम राइट है।
2: ये जो विशेष निकलती है ना, ये एकदम हार्ट से निकलती है,
1: है ना?
2: अंदर वाले,
1: क्योंकि ये बातें बिल्कुल ब्राइट है। बहुत अच्छी बात कही। सो दीदी आज किस रंग में आई है? देखिए मैं आते ही सबसे पहले आपके कपड़े का रंग पूछता हूँ।
2: थोड़ा तो थोड़ा थोड़ा मैच है ना?
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। काफी ज्यादा ही मैच हो रहा है। ऐसा लगता है एक ही थान के कपड़े से बनवाया।
2: अच्छा याद आया हमें, जब कहा एक ही थान, मालूम हम लोग बचपन में थे ना, तो मम्मी जो थी वो एक ही थान से कपड़े ले आती थी,
1: है ना, सारे भाई बहन।
2: और अब देखिए गलती उनकी होती थी और कुटाई हम लोग की होती थी, ठीक है ना। वो एक जैसे कपड़े होते थे, पता चला कि हम अगर दूसरा ले लिए तो दीदी कह रही ये तो मेरा है, और उसी में पता चला कि वो वाला कहाँ गया, वो वाला कहाँ गया, और कुटाई हम लोग की होती थी, तुम लोग ठीक से कपड़े नहीं
1: रख पाते हो। सही बात है।
2: तो आजकल तो बहुत भाई समय बदल गया है, अब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा तभी लगता था कि सब भाई बहन एक रंग में रंगे होते थे।
1: हाँ, ऐसा लगता था कि हाँ एक परिवार बन करके निकला है ये रंग में।
2: बिल्कुल।
1: लोग पहचान के बता देते थे, तुम बेटा उसकी बिटिया हो, तुम उसके बेटे हो।
2: हाँ, वो कपड़ों से पहचान हो जाती थी।
1: कि आज तुम्हारे भाई ने पहना है तो तुम भी उसी की बहन हो।
2: क्या समय था।
1: बात है, सही बात है, बहुत प्यारा समय था। और फिलहाल वो समय कहीं ना कहीं कुछ ही वक्त के लिए, लेकिन आप ले आती हैं स्टोरीज से। तो दीदी आज कौन कौन सी स्टोरीज है?
2: आज तो

0: एक गाना सुना है ना?
1: कौन सा?
0: कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। ये
1: आपका?
0: है गी हाँ बिल्कुल
1: आपका ज्ञान है
0: ऑफ कोर्स क्योंकि कहानियां इस समय मैं ही सुनाने वाली हूँ।
1: हाँ ये बात तो सही है, सुनाने तो आप ही
0: तो ऐसी कुछ कहानी है आज की, बहुत ही मोटिवेशनल है। और जो हो रहा है इस समय दुनिया में कि लोग अपने में मस्त हैं, बगल में क्या हो रहा उन्हें नहीं पता है, किसको किस चीज़ की नीड है उन्हें नहीं पता है, वो मतलब हेल्पफुल नेचर ही नहीं रहा लोगों का कि एक दूसरे की मदद करें। तो ये समय बहुत मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और पहले का समय था कि लोग एक दूसरे की परवाह करते थे, पूछते थे कि क्या परेशानी है। आज किसी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि एक दूसरे का हालचाल ले लें। मैं दिल्ली जाती हूँ ना तो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं, ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं जानता, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं जानता, कोई किसी को वहाँ पहचानता ही नहीं है कि ये हमारी ही बिल्डिंग के लोग
1: हैं। कितनी बड़ी बात है।
0: जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा है कि हम गोंडा जैसे छोटे शहर में है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे का हाल चाल भी लेते रहते, बस ये हमारे लिए सबसे अच्छा अचीवमेंट होता है।
1: और मुझे लगता है कहीं ना कहीं गांव की तरफ जाओ तो ये और चीज
0: और भी अच्छा होता है।
1: सही बात है। तो बात तो ये है कि सच में स्वरूप बहुत बदल गया है सोसाइटी का, काफी चेंजेस आए। तो मुझे लगता है आज की स्टोरी कुछ इसी के आसपास
0: तो नहीं? तो मैं इसीलिए ऐसी कहानियां सुनाती हूँ कि थोड़ा सा ही बदले इंसान, बदल जाए तो दुनिया और भी बेहतर हो जाएगी।
1: बेहतर हो जाएगी, राइट
0: जी।
1: तो चलिए भाई चलते हैं आज गीता दीदी की स्टोरी की तरफ।
0: तो होता क्या है कि ये बहुत पुराने समय की बात है। अच्छा चलिए कहानी सुनाने के पहले एक मैंने सुना है वो मिथ है या वास्तव में ऐसा होता है। कई बार मैंने सुना है अपने जब बूढ़े बुजुर्ग होते बात करते हैं, कहते वो एक बार खत्म हो गए थे तो वो गए थे वहाँ, मतलब शरीर सहित वहाँ पहुँच गए, आत्मा उनकी वहाँ पहुँच गई, मतलब स्वर्ग लोक में या नर्क लोक में, और फिर वो वहाँ से वापस आ गए। तो इस तरीके की बातें। अच्छा आप बताइए आप कितना सच मानते हैं?
1: पता नहीं, मैं मुझे तो नहीं लगता है,
0: लेकिन आज की कहानी मैं सुनाऊंगी तो लगेगा हाँ वास्तव में ऐसा हुआ था।
1: अच्छा फिर तो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
0: हाँ तो किसी गांव में एक रूपा नाम की स्त्री रहा करती थी। रूपा बहुत ही कंजूस और कठोर स्वभाव की थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि आसमान से तारे तोड़ कर लाना बहुत ही आसान है, लेकिन रूपा से मदद लेना बहुत कठिन है। कभी कभी यदि कोई गरीब भूखा जरूरतमंद उसके घर सहायता मांगने भी आ जाता तो वो उसको डांट कर फटकार कर तुरंत अपने घर से भगा देती थी। यानी कि बहुत ही कठोर हृदय की महिला थी वो। एक दिन रूपा गांव की कुछ अन्य स्त्रियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने गई। उन्हीं स्त्रियों में एक रेजा नाम की भी स्त्री गई जो बहुत ही गरीब थी। लकड़ियां इकट्ठी करते समय अचानक उसकी जो लकड़ी बांधने वाली रस्सी थी वो टूट गई। अब उसकी सारी लकड़ियां थी वो जमीन पे बिखर गई। अब रेजा बहुत परेशान कि कैसे वो लकड़ियों को अपने घर तक लेके जाए, और उसके घर में एक भी लकड़ी नहीं थी जिससे वो खाना पका सके। अब रेजा परेशान होकर रूपा के पास गई और बोली, बहन तुम्हारे पास अगर कोई डोरी हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरी डोरी टूट गई है और मेरे घर पर लकड़ियां नहीं हैं, मैं कैसे खाना बनाऊंगी, मेरे बच्चे भूख से बेहाल हैं। रूपा के पास बदले मतलब एक घास होती है ना एक तरीके की, उसकी रस्सियां बनती है, तो वो बबले की घास से बनी एक मजबूत रस्सी थी उसके पास। वह उसे देने में आनाकानी करने लगी, अरे मेरा काम कैसे चलेगा और मैं तुम्हें दे दूंगी तो मैं क्या करूंगी। रेजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, बहन आज मेरी सहायता कर दो, क्योंकि मैंने बताया है कि मेरे बच्चे भूख से परेशान हैं घर पे, कभी तुम पर भी संकट आएगा तो मैं भी तुम्हारी सहायता कर दूंगी। रेजा की बात सुनकर रूपा का मन थोड़ा सा पिघला। उसने अनिच्छा से अपनी बबले की डोरी उसको दे दी। और उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन का पहला और सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। लेकिन उस रस्सी देने से पहले उसने बड़े ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि देखो मेरी ये रस्सी मुझे वापस मिल जानी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। वो बोली, नहीं बहन, मैं तुरंत आपकी लकड़ी वापस कर दूंगी। कुछ समय बाद एक दिन रूपा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो बेहोश होकर गिर गई। लोगों को लगा कि उसकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी। लोगों ने देखा और कहा कि ये तो ख़त्म हो गई है, इसकी मृत्यु हो गई है। रूपा का सूक्ष्म शरीर यानी कि जो उसकी आत्मा थी वो यमलोक में जाके पहुंची। अब वहां पहुंचते ही उसे बहुत तेज की भूख लगी। उसने देखा कि कुछ लोग स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, तो वो उनसे भोजन मांगने उनके पास गई। लेकिन भोजन बांटने वाले ने कहा, तुम्हें भोजन देने के लिए महाराज ने बिल्कुल मना किया है। रूपा निराश होकर आगे बढ़ी। अब रात होने पर उसे बहुत ठंड लगने लगी। उसने देखा कि कुछ लोग आरामदायक बिस्तरों और रजाइयों में सो रहे हैं। वह बिस्तर बांटने वाले के पास गई और बोली, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे लिए भी चारपाई और रजाई की व्यवस्था कर दो तो बेहतर होगा। उस व्यक्ति ने जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे जाओ, तुम उस जमीन पे जाके सो जाओ। रूपा ने पूछा, क्यों, मेरे लिए चारपाई गद्दा और रजाई क्यों नहीं है? वह बोला, बिस्तर और चारपाई और रजाई देने के लिए महाराज ने बिल्कुल मना किया है। अब रूपा बहुत दुखी होकर यमराज के पास पहुंची। बोली, महाराज, मुझे ना तो यहाँ कोई भोजन मिल रहा है, ना पहनने के लिए कोई वस्त्र ही मिल रहे हैं, और ना सोने के लिए बिस्तर। मैंने ऐसा क्या अपराध किया है? यमराज ने शांत स्वर में कहा, रूपा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने धरती पर अपने कर्मों से कमाया है। इतना कहकर उन्होंने रूपा को वही बबले की डोरी पकड़ा दी, रस्सी पकड़ा दी। बोले, यही तो आपने दान किया था, इसी से तो आपने रेजा की मदद की थी। डोरी देखते ही रूपा को जंगल की वो घटना याद आ गई। उसे याद आया कि उसने एक बार रेजा की सहायता करते हुए अपनी वो रस्सी उसे दी थी। यमराज बोले, रूपा, धरती पर तुमने जीवन भर किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, किसी जरूरतमंद को वस्त्र नहीं दिए, किसी दुखी की सहायता नहीं की, इसलिए यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी संचित नहीं है। लेकिन एक बार तुमने रेजा की जो सहायता की थी, वही एक पुण्य तुम्हारे साथ आया है। तुम्हारे लिए यही बबले की डोरी भोजन है, यही वस्त्र है और यही बिस्तर है। अब इसी को तुम साधन बना लो। रूपा ने डोरी को देखा और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। उसने डोरी को जमीन पर बिछाया, लेकिन वो ना बिस्तर भी बन सकी, ना वो भोजन का ही काम कर सकती थी, ना भूख और प्यास कुछ भी शांत नहीं हो सकती थी, और वह पूरी रात ठंड से तड़पती रही। सुबह हुई, रूपा रोते हुए फिर यमराज के पास पहुंची और बोली, महाराज, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया है, मुझे एक बार धरती पर लौटने का अवसर दे दीजिए। मैं जब अब किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। और वो निरंतर उनके कदमों में, उनके चरणों में बैठकर रोती रही। रूपा की पश्चाताप भरी बातें सुनकर अब यमराज को थोड़ी सी दया आ गई, सो उन्होंने उसके सूक्ष्म शरीर को धरती पर वापस भेज दिया। उधर गांव में लोग उसकी अर्थी तैयार कर रहे थे, उससे शमशान घाट में ले जाने के लिए तैयारी हो रही थी। तभी अचानक रूपा के शरीर में हलचल हुई, उसकी धड़कन चलने लगी और कुछ देर बाद वह स्वतः ही उठकर बैठ गई। इस घटना के बाद रूपा पूरी तरह बदल गई थी। उसने गरीबों और भूखों को भोजन कराना शुरू कर दिया। ज़रूरतमंद लोगों को कपड़े देने लगी और दुखी लोगों की सहायता करने लगी। गांव वाले उसके इस परिवर्तन को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। रूपा अब सबसे एक ही बात कहती थी कि जीवन में किया हुआ छोटा सा अच्छा कर्म भी कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए जब भी किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो उसे हाथ से कभी जाने नहीं देना चाहिए, यानी कि ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद होती रहनी चाहिए। तो कैसी थी कहानी?
1: कहानी तो सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी। हालांकि रूपा की कंडीशन में तो उसको मौका मिल गया, लेकिन हम सबके पास नहीं है।
0: देखो, होता क्या है कि चाहे जितनी धन संपत्ति आप जोड़ लीजिए, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आपने कुछ अच्छे कर्मों को अगर कमा लिया है तो वही साथ जाने वाले हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन से ज्यादा सद्कर्म और परोपकार करते रहना चाहिए। ये कहानी हमें यही सिखाती है।
1: बेशक, तो रूपा के पास तो मौका उसको आके मिला है और हमारे पास मौका रूपा की कहानी को सुन करके मिला है।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझे लगता है कि अब इस पे गौर फरमाने वाली बात है।
0: हम लोग कितने कठोर हो जाते हैं कि हमारे आसपास जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती, हमको अफसोस भी होता, लेकिन देखिए कि उसका कोई निराकरण हम कर नहीं पाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हमारे पास तो वक्त ही नहीं है।
1: सही बात है।
0: तो इन नेक कामों को करने के लिए आपको वक्त निकालना ही पड़ेगा और इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है। जब भी जहाँ भी आपको कोई ज़रूरतमंद दिखे और ये लगे कि हम इसकी सहायता इसी समय कर सकते हैं, तो उस मौके को कभी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। मेरा तो यही कहना है। बाकी तो आप लोग सब खूब समझदार हैं।
1: बिल्कुल। सो भाई, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या आप भी अब तैयार हैं जब भी जैसे मौका मिले किसी की हेल्प करने के लिए?

0: पूरी मीठी चूरी और जलेबी खाए के नानी नानी नानी नानी नानी के घर जाए के नानी के घर जाए के नानी नानी नानी नानी नानी के घर जाए के
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: सुन मेरे नन्हे, सुन मेरे मुन्ने, सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
3: क्या माँ,

0: करनी। कनक के जादूगरनी ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता?
1: क्या माँ,

राजा को आते रानी फूली न समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।

0: lies.
1: No, Papa.
0: Sleep time now.
1: Okay, Papa.
0: Good night, Johnny.
1: Good night.
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
2: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
3: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: और आराध्या
1: बहुत अच्छे दीदी।
0: अच्छा तो इस समय तो मालूम है बड़ी धूम मची हुई है ना अपने गोंडा में।
1: जी दीदी।
0: क्या चल रहा है बताओ तो जरा। हाँ गणेश जी की पूजा चल रही है चारों ओर बच्चों ना, कितने सारे पंडाल सजे हुए हैं, कितना मजा आ रहा है। और तुम लोग गए थे देखने के लिए?
1: जी दीदी।
0: देखने गए थे?
1: जी दीदी।
0: और खूब रोज अच्छा अच्छा सब प्रसाद भी मिल रहा है ना, खूब मजा आ रहा है। और कितने प्यारे प्यारे गणेश जी बनाए गए हैं, इतने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, मुझे लगता है इतने क्यूट है, इनको गोद में लेके खिला लूं, है ना, ऐसा लगता है ना।
1: जी दीदी।
0: हाँ बहुत मजा आ रहा है इस समय तो। चलो भाई आज अनन्या तुम कहाँ घूमने गई थी? अनन्या कहाँ घूम के आई हो अभी?
1: रानी बाजार दीदी।
0: रानी बाजार? रानी बाजार में कौन रहता है? अनन्या की नानी। हाँ रानी बाजार में अनन्या की नानी रहती हैं। तो नानी के घर से आई है, कुछ पोएम वोएम याद है? हाँ मुंह से तो बोलो कि हाँ दीदी याद है। याद है? कौन सी पोएम याद है?
1: टोटा वाले और ट्रेन वाली।
0: टोटा वाली और ट्रेन वाली है? तो पहले टोटा वाली सुना दीजिए।
1: हरे रंग का तोता देखो लगता कितना प्यारा है। हरे रंग का टोटा को लगता कितना प्यारा है। लाल कोले चोच लिए सबका बड़ा दुलारा है।
0: अच्छा लाल रंग की चोच लिए और सबका बड़ा दुला। भाई तोता तो इतना प्यारा होता ही है क्योंकि वो बोलता भी है, बहुत प्यारा बोलता है ना।
1: जी दीदी।
0: मिट्टू मिट्टू मिट्टू मिट्टू है ना, मिट्टू मिट्टू कहता कितना मजा आता है।
1: जी दीदी।
0: और दूसरी कौन सी है पोएम आपकी? ट्रेन वाली।
1: चुप चुप दौड़ी रेल गाड़ी उसका ड्राइवर नहीं आना, उसमें बैठे एक बंदरिया पहने लाल रंग की साड़ी, पहले टिकट लेकर आओ पीछे पीछे चक्कर आओ भारी अच्छा वाले जल्दी कोई कुली बनाओ।
0: ओ माय गॉड, रेल गाड़ी में और बंदरिया बैठी हुई है और वो भी लाल घिंगरिया पहन के। अच्छा लाल साड़ी भी पहन के बैठी हुई है तो ये तो बहुत भाई, टीटी से तो पूछ के बैठना ही चाहिए, टीटी को टिकट भी दिखाना चाहिए है ना। तो और कौन सी है पोयम?
1: देखो हमारी रेलगाड़ी।
0: ओहो आज तो बहुत सारी रेलगाड़ी वाली पोयम हो गई। हाँ देखो हमारी रेलगाड़ी
1: कितनी लंबी रेलगाड़ी है, डोल डोल के छेड़ कराती है, हमको समय पे घर पहुँचाती है।
0: हाँ तो ट्रेन तो ऐसे ही होती है कि भाई सभी को समय पर उनके घर पहुँचाने का काम करती है, लेकिन मुझे तो बंदरिया वाली जो बंदरिया ट्रेन में बैठ गई वो तो मुझे बहुत मजा आया। तो चलिए बहुत अच्छी, तो बहुत प्यारी प्यारी तुमने ये पोयम कहाँ से सीखी है? स्कूल से? मैम सिखाती हैं? तो मैम को आप हमारी तरफ से नमस्ते बोलिएगा कि हमारी दीदी ने आपको नमस्ते बोला। जानती हो क्यों? इतनी प्यारी प्यारी जो अनन्या को पोयम सिखाई है। तो चलो चलते हैं अब हम किसकी तरफ चले?
1: सानिध्या
0: की ओर चलते हैं। सानिध्या, तो सानिध्या का एग्जाम कैसा हुआ पहले तो बताए सानिध्या।
2: अच्छा।
0: अच्छे हुए सारे पेपर्स?
2: जी दीदी।
0: देखो बहुत मेहनत की है इस बार सानिध्या ने, क्योंकि इसने एक बार यहाँ गोला भी मारा, एब्सेंट रही है। उस दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आज सानिध्या नहीं आई है, बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा था सानिध्या के बाद। तुम लोग का लग रहा था?
1: नहीं दीदी।
0: है ना, तो सानिध्या आज क्या सुनाओगी? भजन। हाँ तो भजन तो होना ही चाहिए क्योंकि इतने सारे पंडाल और उसमें इतने सारे भजन बजते रहते और सुन सुन करके बहुत अच्छा लगता है। तो चलो आज हम सुनते हैं सानिध्या का भजन।
3: सुनो मेरी विनती राम सरदार।
0: अरे वाह।

0: रामायण श्री राम की अमर कहानी है।
1: वाह।
0: रामायण श्री राम की अमर कहानी है।
1: वाह, तालियां बजा दो भाई। इतनी सुंदर ये भजन संग्रह था। बहुत सारे भजन आते हैं सानिध्या को। सानिध्या, और कोई भजन सुनाओगी?
2: जी दीदी।
1: कौन सा?
2: दीदी भजन नहीं है लेकिन कविता है।
1: अच्छा, कविता है?
2: जी दीदी।
1: तो चलो भाई कविता सुना देते हैं, सुन लेते हैं।
2: सच है विपत्ति जब आती है, टायर तो ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, सन एड नहीं धीरज थोते, विघ्नों तो डले लदाते हैं, टांटों में राह बनाते हैं, मुँह से न कभी उफ कहते हैं, संतत का चरण न दहते हैं, जो आपड़ा सब सहते हैं, उद्योग निरत रहते हैं, है कौन विधनिया साजड में, तट सटे आदमी ते मद में, थम ठोंट खेलता है जब न पर्वत ते जाते पांव उठर, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, डुड़ बड़े एट से एक पत्थर हैं, छिपे मानवों ते भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, विचित्रता बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है।
1: तो भाई मुझे याद आ गया, ये कविता तो मैंने शायद फिफ्थ में पढ़ी थी, और ये रामधारी सिंकर की कविता है।
2: जी दीदी।
1: हाँ, मुझे याद आ गया, ये कविता मैंने फिफ्थ क्लास में पढ़ी थी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने ये कविता लिखी है, और उन्होंने कहा भी है कि सच विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। कायर कौन होते हैं? जो मेहनत करना नहीं जानते, तभी उनको डर लगने लगता है कि अब मैं इस विपत्ति से कैसे निकलूं, है ना, यही तो होता है। तो कितनी अच्छी कविता उन्होंने लिखी है। सूरमा नहीं विचलित होते, सूरमा कौन? जो मेहनत कश लोग होते हैं ना, उनको जरा भी डर नहीं लगता है, और वो मतलब धैर्य नहीं खोते हैं, और सोचते रहते हैं कि अब मैं इस परिस्थिति का मुकाबला कैसे करूं, और चाहे जितनी विकट परिस्थितियां हो, वो अपने लिए मार्ग निकाल ही लेते हैं। बच्चों, तो ताली बजा दो इस कविता के लिए। ये मेरी बहुत फेवरेट कविता थी। हमारे जो टीचर जी थे, वो मुझे इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया करते थे, और मुझे आज भी ये कविता बहुत प्यारी लगती है और बहुत अच्छे से याद है। तो
2: दीदी
1: जी,
2: मुझे एक ही चीज से डर लगता है।
1: क्या?
2: टुट्टे से।
1: टुट्टे से डर लगता है, वाह। क्यों भाई, इतना प्यारा जानवर होता है कुत्ता, तो मेरा बहुत फेवरेट है भाई।
2: दीदी दौड़ा लेता है।
1: अच्छा, ये रोडीज कुत्तों की बात कर रहे हैं, जो रोड वाले कुत्ते होते हैं, वो दौड़ा,
2: दीदी
1: देखो
2: दीदी।
1: वो दौड़ाते नहीं है, जैसे आप उनको थोड़े से बिस्किट देती होंगी ना।
2: जी दीदी।
1: हाँ, तो वो तुम्हारे पीछे इसलिए लगते है की आज फिर मुझे सानिध्या बिस्किट देगी, तो दौड़ाते नहीं, आप खड़े हो जाया करिए, और देखिए वो आपको पहचान गए हैं।
3: उनको होप रहती है ना कि अभी हमको फिर कुछ मिलेगा।
1: मिलेगा बिल्कुल। अब हमारे यहाँ ना बहुत सारे कुत्ते, और जब मैं अपने घर जाती हूँ तो मेरे पीछे कम से कम 5-6 कुत्ते चलते हैं, ऐसा लगता है वो मेरे बॉडी गार्ड हो। और मोहल्ले के जो लोग है वो बहुत हंसते हैं, कहते हैं कि अरे दीदी इतने सारे कुत्ते पाल रखे हैं,
3: सब एनर्जी वाले।
1: और मैंने पाले नहीं है, वो खुद से पल गए हैं। जब भी मैं घर वापस जाती हूँ ना, तो उनके लिए एक पैकेट बिस्किट लेकर के जाती हूँ, और सबको मुंह में खिलाती हूँ। तो और जैसे ही मैं घर से निकलती हूँ, वो सब मेरे साथ पीछे चल देते हैं, और जब तक मैं रोड तक पहुँच नहीं जाती, वो मुझे सी ऑफ करने भी जाते हैं। ये कुत्ते बहुत प्यारा, कुत्ता बहुत अच्छा जानवर है।
3: डॉग्स को सबसे ज्यादा फेथफुल एनिमल्स
1: बहुत, और क्या, वो बहुत ही वफादार होता है। आप डरा मत करिए, आप खड़े हो जाइए करिए, और उसका एक नाम रखिए। मैंने सारे कुत्तों के अलग अलग नाम रखे, और उनको अपने नाम मालूम भी है। जैसे मैं बुलाती हूँ टॉमी, वो टॉमी भी आएगा, और जिमी तो वो जिमी ही आएगा, इतना वो अपने नाम जानते हैं। तो बहुत अच्छे होते हैं कुत्ते, और मेरा तो समय उन्हीं के साथ कट जाता है। अगर मैं घर पे हूँ, छुट्टी के दिन हो, तो मैं उनके साथ खूब खेलती हूँ, मजे करती हूँ। तो चलो चलते हैं आराध्या की ओर। और आराध्या आज क्या सुनाने वाली हो?
4: दीदी आज कविता है।
1: कविता?
4: जी दीदी।
1: देखो कितने बच्चे कितना याद करके आते हैं कि उनको प्रेम हो गया कविता। लोग कहते हैं कि अच्छा हम अपने साहित्य से थोड़ा सा विमुख होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। साहित्य हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि हमारे बच्चे हैं, और कविता हो, गीत हो, संगीत हो, सब में बहुत रुचि रखते हैं। तो चलिए सुन लेते हैं बिना देर की वो आपकी कविता भी।
4: मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगा, मन करता है अकड़ दिखा, मन करता है बाबा बनकर घर सबका हौसला जमाओ, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मोच बढ़ाऊ, मन करता है मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ जाऊ, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोली सुनाऊ।
1: वाह, तो ये मन है, मन तो बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कुछ ना कुछ बनना चाहता है, लेकिन बस आराध्या पापा तो नहीं बन सकती हो कि आपके मूछ नहीं निकल सकती है है ना? मम्मा तो बन सकती हो पर पापा नहीं बन सकती हो। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ।
4: दीदी एक कविता और है।
1: एक और है?
4: माँ मुझको पुस्तक दे दो मैं भी पढ़ने जाऊंगा, सबसे जल्दी नंबर लाकर सबसे ऊपर जाऊंगा, पढ़ लिख कर मैं बड़ा बन जग में नाम कमाऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी माँ तेरा लाल कमाऊंगा, तेरा लाल कहलाऊंगा।
1: बिल्कुल भाई, देखिए ये तो सभी बच्चे कहते हैं कि और स्कूल जाना भी चाहिए, और पेरेंट्स भेजते भी है अपने बच्चों को कि वो पढ़ लिख करके एक बड़ा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने, है ना? तो ये तो सबका सपना होता है, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनका बच्चा खूब तरक्की करे। तो और क्या
4: दीदी एक कहानी सुना दीजिए।
1: अरे कहानी?
4: जी दीदी।
1: हाँ
4: जी दीदी।
1: अतुल क्या कह रहे हो? बच्चे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे कहानी ये बच्चे में लगता है कि जब मैं कहानी सुनाने बैठती हूँ तब ये कहानी नहीं सुनते हैं, ये यहाँ आने की तैयारी में लगे रहते हैं इसलिए ये कहानियाँ नहीं सुनते, इसलिए इनको लगता है मैं कहानी नहीं सुनाती हूँ।
4: नहीं दीदी।
1: अच्छा तो कैसी कहानी सुना दूँ?
4: दीदी गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था?
1: ओ गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था?
4: जी दीदी।
1: ओहो मुझे भी सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था, कैसे हुआ था? याद आया मुझे, थोड़ा सा याद आ रहा, चलो मैं सुनाती हूँ। तो हुआ यूँ कि पार्वती जी और शंकर जी का जब विवाह हुआ तो फिर पार्वती जी जो है बहुत सारे ज्वेलरी कपड़े पहन, तो गर्मी लगती है ना, तो उनको लगा कि मुझे स्नान करना चाहिए, और थोड़ा सा उन्होंने स्नान की सोची। और उससे पहले क्या होता था, पहले समय में लोग उपटन लगाया करते हैं, कभी कभी तो मम्मा लोग लगाती है ना उपटन, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के ऐसे ऐसे, है ना? तो वो उपटन उन्होंने लगा रखा था, और उपटन लगा करके उन्होंने उनकी इच्छा हुई कि वो स्नान कर ले। तो स्नान करने के लिए, लेकिन वहाँ कोई था नहीं घर में, सोची कि कोई ऐसा ना हो बाहरी व्यक्ति आ जाए। तो उन्होंने फिर
4: दीदी महादेव कहाँ गए थे?
1: हाँ वो गए थे घूमने कहीं बाहर, भाई उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं ना जी। महादेव जी, तो क्या हुआ कि अब उन्होंने विचार किया, कहा कि कोई तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो घर की सुरक्षा करे, बाहर बैठे किसी अन्य व्यक्ति को अंदर ना आने दे। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो मैल उनके शरीर से निकला था, उपटन जो निकला था, उसका एक सुंदर सा बच्चा बना दिया उन्होंने, बालक, है ना? और उसको बना कर के, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा मतलब तप वाली थी, उन्होंने उसमें प्राण भी डाल दिए बच्चों, वो बच्चा जिंदा हो गया। तो उन्होंने उस बच्चे से कहा कि देखो तुम यहाँ पे द्वार पे बैठो, दरवाजे पे, और किसी को अंदर आने मत देना। बोले क्यों माता श्री? तो बोले मैं अंदर स्नान करने जा रही हूँ और अंदर किसी को प्रवेश करने नहीं देना। तो बोले ठीक है जाइए माँ, आप स्नान करिए, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। तो माता पार्वती चली गई अंदर स्नान करने के लिए, नहाने धोने के लिए। उसी समय मालूम है महादेव अपना काम निपटा करके सोचे कि घर चले, और जब वो घर आने की सोचने लगे तो उन्होंने देखा, अरे मेरे द्वार पे तो ये बच्चा बैठा हुआ है, ये इतना सुंदर बालक किसका है। तो फिर कहा होगा कोई बच्चा, और वो जैसे ही अंदर जाने लगे तो उस बच्चे ने रोक दिया, बोला ठहरिए, आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो मेरी माता का घर है और मेरी माता ने कहा है कि अंदर किसी भी अजनबी व्यक्ति को आने मत देना, इस क्योंकि मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अब शिव जी ने कहा अरे मुझे, मेरा घर है ये, कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपका घर है तो क्या, जब मेरी माँ स्नान कर लेंगी मैं तभी आपको अंदर जाने दूंगा। अब भाई शिव जी को तो बहुत जल्दी गुस्सा भी तो आता है
2: जी,
1: है ना, कोई उनकी बात अगर नहीं माने तो वो क्रोध भी करते हैं। अब उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा नहीं जाने दोगे, बालक बोला हरगिज नहीं जाने दूंगा। अब भाई शिव जी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, उन्होंने त्रिशूल निकाल लिया, कहा मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पर वो बच्चा जो था डरा नहीं, तो शिव जी ने उसका गला काट दिया, और ऐसे काटा गला अलग हो गया। अब इतनी देर में जो पार्वती माता थी उन्होंने स्नान किया, और स्नान करने के बाद जब बाहर आई तो देखा कि शिव जी गुस्से में खड़े हुए हैं और बालक का सर कटा पड़ा हुआ है। तो वो भाई, उन्होंने उसको बच्चा माना था, बच्चा बना के बैठा ला, तो वो रोने लगी, बहुत रोई, कहने लगी आपने मेरे बच्चे को मार दिया है और मैं नहीं जानती हूँ, मेरे बच्चे को जिंदा करो और उसका सर काटा क्यों, इसको इसका सर लगा के दो। अब वो सर तो बहुत दूर जाके गिर गया था, अब भोलेनाथ परेशान हो गए, कहने लगे अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने अपने गण को बुलाया, जो उनके नौकर चाकर सेवक थे ना, उनको बुलाया और कहा कि शीघ्र ही जाइए और किसी का भी सर लेकर के आइए, बस इसके सर लगाना है। अब उनके गण भी परेशान हो गए, लेकिन भाई आज्ञा को मानना ही था, तो चल दिए। चारों दिशाओं में गण घूम रहे थे कि किसी जो भी पहले मिले तो उसका सर मतलब काट ले वो। तब तक उन्हें एक हाथी का बच्चा देखा जो अकेले घूम रहा था, तो उन्होंने उसका सर काट दिया हाथी के बच्चे का, और ले करके पहुंचे, बोले ये लीजिए मैं सर ले आया जल्दी से, पहला बच्चा मुझे यही मिला, और उन्होंने उसको हाथी का सर लगा दिया। तो देखो सारा शरीर तो आप लोगों की तरह है ना गणेश जी का, लेकिन इतना सर किसका है, हाथी का है, और उसका नाम गणपति रखा गया। तब से जो है गणपति को सब लोग इतना महत्व देते हैं कि शिव के पुत्र कहलाए वो। और जानते हो कि वो प्रथम पूज्य कैसे बने, कहते हैं ना कोई भी जब हम अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है,
5: गणेश जी
1: का। और सबसे पहले पूजा किसकी की जाती है,
2: गणेश जी
1: की। तो ऐसा क्यों हुआ मालूम है, तो एक कॉम्पिटिशन हुआ बच्चों का कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वो देवताओं में पूज्य होगा। अब सारे लोग तो चल दिए, सबके पास तो बड़े बड़े वाहन थे, किसी के पास मोर था तो किसी के पास शेर था तो किसी के पास कुछ बड़े बड़े पक्षी थे, बड़े बड़े जानवर थे, पर जो गणपति थे उनके पास एक छोटा सा नन्ना मुन्ना चूहा था। तो अब सारे लोग तो चले गए पर गणेश जी नहीं चले गए, तो शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे, और गणेश जी ने झट से क्या करा कि शिव और पार्वती के साथ चक्कर लगा दिए और वहाँ पे बैठ गए। और सारे लोग थोड़ी देर में आए, भाई पृथ्वी की परिक्रमा करनी थी, सात बार करनी थी, तो वो धीरे धीरे करके थोड़ा देर में पहुँचे। तो मालूम है सब पूछा गया कि कंपटीशन में फर्स्ट कौन आया है, ठीक है, तो शिव और पार्वती जी ने कहा कि हमारा पुत्र गणेश, उसने हमको ही पूरा ब्रह्मांड, क्योंकि वो ब्रह्मांड के तो स्वामी थे ही, तो उन्हीं की उन्होंने ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली, और इसलिए सारे देवताओं को ये बात माननी पड़ी। और उन्होंने कहा कि आपको अगर कोई भी पूजा होगी तो सबसे पहले किसका किसकी पूजा की जाएगी, किसको किसका आवाहन किया जाएगा,
6: गणेश जी का।
1: इसीलिए किसी भी पूजा में सबसे पहले किसको बुलाया जाता है, किसका नाम लिया जाता है? हाँ, तो एक मंत्र कोई बच्चा जानता है गणेश जी का? किसी बच्चे को नहीं मालूम है? वाह भाई वाह, देखो कैसे हंस रही है आराध्या। सबको मंत्र याद होना चाहिए, एक्चुअली में मंत्र तो मुझे नहीं याद है। तो चलिए अगली बार सारे बच्चे मंत्र याद करके आएंगे, और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। आपको याद है
7: जी?
1: आपको भी नहीं याद है? अच्छा अतुल आपको? समर जी आपको? देखो किसी को ये मंत्र नहीं याद हो, इतना सरल मंत्र है। अब ये इस समय नहीं याद आ रहा, लेकिन याद है। चलिए कोई बात नहीं
2: दीदी, आप सुनाइए।
1: मुझे भी तो नहीं याद है। कोई बात नहीं, चलिए समय हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद में आपको मैं जरूर मंत्र सुनाऊंगी, और अभी समय है आपसे थोड़ी देर के लिए विदा लेने का, क्योंकि ये समय है हमारे ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के उस पार। ठीक है, ओके।
8: चकरकची चाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचकचो।

ये लो, ये आपका, ये आपका और ये आपका।

0: करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले तो वो मंत्र जो छूट गया था, मैं चाहती हूँ कि वो मंत्र शशकर बताएं। शशकर को याद होना चाहिए, क्योंकि शशकर एक ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो चलो हम तुम्हारा साथ देते हैं
1: जी।
0: हाँ बोलो बोलो, निसंकोच बोलो।
1: गजाननम भूत गणा,
0: धीरे धीरे भाई, इतनी जल्दी तो मैंने गजाननम भूत गणादि सेवतम कपित जम्बू फल चार भक्षणम उमा
1: सुतम शोक विनाश
0: कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो सबसे पहले जब पूजा होती है तो इसी मंत्र का उच्चारण किया जाता। लीजिए गणपति बप्पा जी, मैंने आपका मंत्र उच्चारित कर दिया, आप जहाँ भी हो और वहीं से हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, ठीक है ना सानिध्या
2: जी?
0: तो असानिध्या आप क्या सुनाने वाली हो?
2: दीदी तविता।
0: तविता, तो चलो जल्दी से सुन लेते हैं सानिध्या की तविता।
2: सूरज जैसा बनना हो तो सूरज जितना जलना हो, नदियों सब आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना हो। और हम आदम के बेटे हैं त्यों सोचे राह सरल हो, तुझ ज्यादा वक्त लड़ेदा पर संघर्ष जरूर सफल हो। हर एक संतत का हल होड़ा वो आज नहीं तो टल हो, लोहा जितना टपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने तो जितनी आग लड़े उतना ही पत्थर निथरता है, हीरे पर जितनी धार लड़े वो इतना खूब चमकता है। सूरज जैसा बनना हो तो सूरज जैसा जलना हो, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना हो, हर संतत का हल होड़ा वह आज नहीं तो तल होड़ा।
0: वाह भाई वाह, देखिए सब इस कविता का क्या निचोड़ क्या निकला है कि अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए त्याग करना होगा, यानी कि कुछ अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए परिश्रम भी करना होगा, है ना? क्यों सानिध्या
2: जी? दीदी
0: ऐसे ही है ना
2: जी?
0: तो भाई देखिए, अगर कोई एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं आप लोग तो उसके लिए खूब ढेर सारा परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो ऐसे ही परिश्रम करते रहिए और जो है आगे बढ़ते रहिए, और मम्मा का और पापा का और साथ में अपनी दीदी का भी नाम रोशन करते रहिए, ताकि लोग कहें कि ये बच्चे हम्प्टी डम्प्टी के बच्चे हैं जो इतना ज्ञान रखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम शशकर की ओर, और शशकर भी आज बहुत ज्ञान भरी बातें लेकर के आए हैं, और उनकी बातें देखिए, उनकी एज देखिए, दोनों में आपको लगेगा कि ये कोई बड़ा बच्चा बैठा, लेकिन ये बहुत छोटा मासूम सा क्यूट सा बच्चा है हमारे सामने। क्या सुनाने वाले हो शशकर?
1: दीदी आज मैं वर्ल्ड क्लीनअप डे के बारे में बताने वाला हूँ।
0: वर्ल्ड क्लीनअप डे, अरे भाई ये तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण डे है। तो चलिए बात करते हैं इस पर, क्या बताना चाहते हैं आप, क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को?
1: दुनिया भर में ठोस कचरे की समस्या से निपटने और पर्यावरण को साफ रखने के लिए चलाया जाने वाला एक वैश्विक सामाजिक अभियान है। यह हर साल 20 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने इसे आधिकारिक वैश्विक दिवस के रूप में मान्यता दी है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर से कचरे, प्लास्टिक और समुद्री मलबे को साफ करना तथा लोगों में कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले 2008 में एस्टोनिया देश से हुई थी, जहां हजारों लोगों ने मिलकर देश को साफ किया था। आज यह दुनिया के 190 से अधिक देशों में फैल चुका है। विश्व की सफाई दिवस का महत्व, ठोस कचरे से मुक्ति। दुनिया भर में कचरे की ढीले प्रबंधन से निपटने के लिए यह बहुत बड़ा सामूहिक प्रयास है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: इसके जरिए बच्चों, युवाओं और आम नागरिकों को स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। आधुनिक समय में केवल कचरा ही नहीं बल्कि डिजिटल कचरे, फालतू ईमेल्स, डाटा और फाइल्स जो सर्वर पर ऊर्जा खपत करते हैं, साफ करने के लिए डिजिटल क्लीनअप डे भी इसी से जुड़ा एक अहम हिस्सा बन गया है। हम इसमें कैसे योगदान दे सकते हैं? अपने आसपास सफाई रखें, अपने घर को आसपास पार्क या गलियों से प्लास्टिक एवं कचरा हटाएं। कचरे का सही निपटान, वेस्ट सेग्रीगेशन, गीला और सूखा कचरा हमेशा अलग अलग डस्टबिन में डालें। प्लास्टिक का कम उपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें और थैलों का उपयोग बंद करें।
0: बिल्कुल।
1: दूसरों को जागरूक करें, समाज और दोस्तों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। स्वच्छता ही सेवा है और एक स्वस्थ पृथ्वी ही हमारी सुरक्षित भविष्य की कुंजी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए होता क्या है कि कचरा यानी कि हम ही लोग तो फैलाते हैं कचरा। अपने घर का कचरा निकला और हमने रोड पे डाल दिया, रोड पे सफाई, और फिर कहते हैं गवर्नमेंट सफाई नहीं करती है। हमेशा हम गवर्नमेंट को दोषी मानते रहते हैं। हम अपने आप को कब दोष देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट से ज़्यादा तो हम लोग जिम्मेदार हैं कि कचरे का सही निस्तारण नहीं कर पाते हैं। और पढ़ते इतना है, इतना पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में इसके ऊपर बड़े बड़े भाषण होते हैं, लेकिन क्या हम अपने उसको विचारों में लाते हैं? नहीं ना भाई। हमको अपने आसपास स्वच्छता रखनी, हमको अपना घर तो साफ चाहिए, लेकिन सड़क वैसी की वैसी का कचरा निकाल के सड़क पे फेंक दिया। बहुत ही फैशनेबल हो गए हैं हम लोग, घर से चले हैं तो कोई हाथ में झोला नहीं है, वहाँ जा कर के कहते हैं कि सामान दीजिए, तो वो किस में देंगे? वो पॉलीथीन ही देते हैं। हमें शर्म आती है कि हम घर से कपड़े का बना हुआ झोला नहीं ले जा सकते हैं। अरे किसी तरीके का झोला, हमारी जो भी स्टैंडर्ड है हमारा, उस हिसाब से घर का, घर से कपड़ा, कपड़े का झोला सिल करके या फिर रेडीमेड झोले आते हैं तो हम ले जा सकते हैं, लेकिन हम लेके नहीं जाते हैं। उसी बस से थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा अगर हम सीख जाएं तो पर्यावरण हमारा एकदम सुरक्षित और संरक्षित हो सकता है। लेकिन ये काम हम कब करेंगे? जब हमारे हाथों से चीज़ें निकल जाएंगी, तब हम सजग होंगे और तब हम विचार करेंगे कि हमने क्या खो दिया। आज देखिए कितनी सारी लोगों को बीमारियां लग जाती हैं केवल गंदे पर्यावरण की वजह से, और इसके जिम्मेदार हम हैं। हर बार हमको प्रकृति टीच करती है, हमें सिखाती है, हमको सबक देती है, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। तो आज से क्या है, हम बच्चे जो हैं एक संकल्प लेते हैं कि अपने आसपास लोगों को अवेयर करेंगे, अपने आसपास साफ रखेंगे, और थोड़ी थोड़ी सफाई ही एक दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाएगी, और ये प्रकृति भी हमारा ही तब साथ देगी। तो एक बार ताली हो जाए। तो चलिए भाई, अब और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ यश जुड़ गए हैं, और यश आपको शत शत प्रणाम
3: आपको।
0: तो
3: आपको भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम।
0: तो आप कहाँ थे, इसलिए मेरे प्रणाम करने का कारण आप समझ गए होंगे बखूबी, कि पिछली बार आप नहीं आए तो मैं बहुत ही फील करने लगती हूँ कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, मिस करने लगती हूँ कि मेरे बच्चे क्यों नहीं आए हैं। तो कहाँ थे पहले तो ये बताइए।
3: अब मैं आपको क्या ही बताऊं,
0: क्योंकि नहीं मुझे बताइए ने, मैंने अंदाजा लगा लिया कि उस बार जो तीज का दिन था और बहुत ज्यादा रश था यहाँ पर सड़कों पे, बहुत ज्यादा ही, मतलब ये बैरिकेडिंग कर देते हैं ना, मुझे लगता क्यों बैरिकेडिंग करते हैं, इतनी गड्ढे हो जाते हैं सड़कों पर, फिर उन गड्ढों को भरने के लिए एक बार फिर से टेंडर निकाला जाता है, तो ये पैसे का खेल कब खत्म होगा, समझ में नहीं आता है कि क्या चलता रहता है। तो कितनी परेशानी हो रही थी लोगों को, कितने सारे बुजुर्ग थे, कितने सारे बच्चे थे, और ये बैरिकेडिंग थी, उसी भीड़ में लोग चल रहे थे। खैर ये तो त्यौहार हैं, ये भारत त्यौहारों का देश है, और ऐसे ही हम खुशियां बांटते रहेंगे, मनाते रहेंगे त्यौहार।
3: देखिए एक त्यौहार चल रहा है।
0: हाँ अभी भी चल रहा
4: है, लेकिन बस ये वो त्यौहार आज के दिन खत्म होने वाला है, क्योंकि आज विसर्जन है हमारे गणेश जी का।
0: लेकिन अच्छा लगता है कि ये जो प्यारे प्यारे गणेश जी पंडालों में सजे हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी खुशियां जो हैं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, और हम अपने जो दुख दर्द हैं ऐसे ही भूल जाते हैं।
3: अब हम आज बात करेंगे सितंबर इक्विनॉक्स के बारे में। अब ये क्या चीज है?
0: वही तो मैं पूछ रही हूँ।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल शो हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी। एंड आज हम बात करने वाले हैं, मतलब जैसे कि हम हमेशा करते रहते हैं, कि ऐसे साइंस के फैसिनेटिंग फैक्ट्स जिसको कभी किसी ने सोचा ही ना हो, या ऐसे टॉपिक्स जो कि कभी किसी को पता ही ना हो, उसके बारे में हम उठा उठा के चुन चुन के आपके सामने लाते हैं। एंड फिर से एक बार मैं आपके सामने आ गया हूँ लेके एक और टॉपिक, सितंबर इक्विनॉक्स। आखिर ये है क्या? देखिए, सितंबर तो आप समझ गए होंगे, सितंबर का महीना चल रहा है। इक्विनॉक्स क्या है? इक्विनॉक्स लैटिन के दो शब्दों से बना है। पहला तो एकस, जो कि इक्वल, मतलब उसका अर्थ होता है, और दूसरा है नॉक्स, यानी कि नाइट। जैसे हम जैसे बोलते नहीं कोई भी चीज़ रात में होती है तो उसे नॉक्टर्नल बोलते हैं, ये भी लैटिन से ही आया है। नॉक्स का मतलब नाइट होता है, यानी कि इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट। ये 22 से 23 सितंबर को अक्सर आता है,
0: रात और दिन
3: 22 23 सितंबर में ही हो रहा है। असल में साल में दो इक्विनॉक्स होते हैं, पहला मार्च इक्विनॉक्स एंड दूसरा होता है सितंबर इक्विनॉक्स। सितंबर इक्विनॉक्स पर सूर्य की एपरेंट पोजीशन सेलेस्टियल इक्वेटर पर होती है और वैसे नॉर्थ से साउथ की ओर क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है। इस समय सोलर डिक्लाइनेशन लगभग 0 डिग्री होता है। और मैं आपको बता दूं इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, तो मैं इसीलिए थोड़ा ब्रीफली समझाऊंगा। अब आते हैं इसके पीछे की फिजिक्स पर। अर्थ अपनी एक्सिस पर, जैसा कि हम सभी को पता है, हमें सब बचपन से पढ़ाया गया है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर लगभग 23.5 डिग्री तक टिल्टेड है और सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन करती है। अब ये जो एक्सियल टिल्ट है और जो रिवॉल्यूशन है, ये दोनों मिलाकर हमारी धरती पर सीजन्स लाते हैं। अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए हमारी धरती है उसमें कोई एक्सियल टिल्ट नहीं है, उसमें जो एक्सियल टिल्ट है वो 0 डिग्री है, तो हमारी धरती वैसी की वैसी रहेगी, एकदम सीधी। एंड जो सन की रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पाएंगे, जिससे इक्वेटर पूरे, मतलब इक्वेटर पर जो कंट्रीज हैं या फिर प्लेसेस हैं वो पूरे साल भर गर्म रहेंगे, और जो पोल्स हैं वो पूरे साल भर बहुत ठंडे
0: रहेंगे।
3: बिल्कुल, और एक्सियल टिल्ट ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी सीजन्स के लिए। सितंबर इक्विनॉक्स के समय अर्थ की पोजीशन ऐसी हो जाती है कि सूर्य की डायरेक्ट रेस लगभग इक्वेटर पर पड़ती है, इसलिए दोनों हेमिस्फीयर्स को मिलने वाली सोलर इल्यूमिनेशन कंपैरेटिवली बैलेंस्ड हो जाती है। और इस साल ये 22 से 23 सितंबर को हो रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर समाप्त होकर ऑटम की शुरुआत होती है, हमारा भारत भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग शुरू होती है। यही था पूरा खेल इस सितंबर इक्विनॉक्स का।
0: तो बहुत अच्छी जानकारी दी है कि इस दिन रात और दिन क्या बराबर होते हैं,
3: 12 आवर्स का डे रहता है, 12
0: आवर्स की नाइट रहती है। बहुत अच्छी जानकारी दी है कि ये दिन भी हमको याद रखना चाहिए। तो चलिए चलते हैं हम अथर की ओर, और अथर आज क्या लेकर के आए हो?
4: तो दीदी, जैसे कि सब लोगों ने आज के दिन इंटरनेशनल पीस डे के बारे में बात करी है, इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड क्लीनअप डे के बारे में बात करी है, तो मैं आज आपको इंडिया के एक ऐसे पोएट के बारे में बताने वाला हूँ जिनसे हम भली भांति परिचित हैं, और इनका नाम बस मैं एक वर्ड लूंगा और आपको पूरा नाम याद आ जाएगा, रामधारी।
0: हाँ, रामधारी सिंह दिनकर।
4: जी हाँ, तो आज मैं इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि आज ही के दिन इनका जन्म हुआ।
0: ने भी एक पोयम सुनाई जो मैंने 5th क्लास में पढ़ी थी,
4: तो जैसे कि उन्होंने पोयम सुनाया तो आज मैं आपको उनके बायोग्राफी के बारे में बस थोड़े से ही शब्दों में बताने वाला हूँ, संक्षिप्त में जिसे कहते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी सिर्फ आवाज से, मतलब लोगों को ये नहीं बताया कि मैं एक कवि हूँ, बल्कि उनकी कविताओं में ऐसा पैट्रियोटिज्म भरा हुआ था, कह सकते हैं उनकी कहानी उनकी कविताओं में पैशन था, जो कि हम लोगों को उनके कविताओं में भली भांति दिखता भी है। और जब भी हम लोग उनकी पोएम्स को पढ़ते हैं तो हम लोग सिर्फ उस अतीत को नहीं याद करते हैं, हम लोग साथ में जो एक फीलिंग होती है प्रेजेंट की, उसको भी हम लोग फील करते हैं।
0: जी।
4: तो देखिए, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था बिहार के सिमरिया गाँव में, और ये जैसा कि जानती हैं कि आप, इनका जो डेथ, मतलब इनका जो निधन हुआ था वो 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। खैर, वैसे तो ये अभी शुरुआत है, लेकिन इन्होंने जो जिन जिन रचनाओं इन्होंने लिखी वो हम सभी को आज भी याद है, जैसे कि उर्वशी हो गया, रश्मि रथी हो गया, ओंकार हो गया, और कुरुक्षेत्र भी हो गया, जो कि सबसे ज्यादा
0: कुरुक्षेत्र सबसे ज्यादा
4: पॉपुलर थी,
0: सुनी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, और बच्चों की लगभग प्रिय है ये।
4: जी, तो
0: दिनकर मंचन भी होता है
3: और उर्वशी पर तो उन्हें गीतांजलि पुरस्कार भी मिला।
0: जी बिल्कुल।
4: तो जैसा कि हम सभी को पता है कि दिनकर जी को हम अक्सर राष्ट्र कवि के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सिर्फ राष्ट्रवाद के कवि के रूप में देखते हैं तो हम उनके साहित्य को पूरी डेप्थ से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दिनकर जी की पोएट्री एक सिंगल डायमेंशन में नहीं काम करती। यहाँ नेशनलिज्म है लेकिन उसके साथ सोशल जस्टिस भी है, यहाँ वीरता है लेकिन उसके साथ कंपैशन भी है, और यहाँ भारतीय माइथोलॉजी है लेकिन उसके साथ मॉडर्न ह्यूमन डिलेमास भी है, और यही कॉम्बिनेशन दिनकर को इतना रिमार्केबल बनाता है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग रश्मि रथी को ही देख लें कि महाभारत का एक ऐसा कर्ण, एक ऐसा कैरेक्टर जिसे दिनकर ने न केवल माइथोलॉजी के पात्र के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसके माध्यम से आइडेंटिटी, इनइक्वालिटी, सोशल स्टेटस, मेंट लॉयल्टी और जस्टिस जैसे सवालों को सामने रखा। और सोचिए, एक ऐसी कविता जो डिकेट्स पहले लिखी गई थी लेकिन आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ उसका
0: संबंध है, बहुत
4: संचार कर रही है,
3: और इन्हीं सब चीजों की वजह से उन्हें राष्ट्र कवि बनाया जाता
0: है। बिल्कुल,
4: और उन्होंने कई बार तो देश मतलब राष्ट्र से ये डीपर क्वेश्चंस भी पूछे थे कि जैसे न्याय क्या है, समानता क्या है, मनुष्य की डिग्निटी क्या है, मतलब मनुष्य की मर्यादा क्या है, शक्ति की सीमा क्या है, जैसे हम लोग के पास एक पावर है, हम लोग की क्रिएटिविटी एक पावर है, तो आखिर में उसके लिमिट भी तो कहीं पर होगा, और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो उन्होंने पूछे थे जो आज भी कह सकते हैं इम्पॉसिबल है फाइंड करना उसका आंसर।
0: जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी आपने ये जो व्याख्यान दिया है रामधारी
4: सिंह। अगर आप हमें थोड़ा सा समय देते तो मैं उनके बारे में और बता सकता था, लेकिन वैसे
0: बहुत सारे बच्चे हैं आपके साथ, और अब चलते हैं हम समर की ओर। समर आज क्या बताने वाले हैं? समर जो हमारे बीच में एक ठंडी हवा का झोंका है, बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ।
5: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
0: नहीं, मैं तो यही कहूंगी, मुझे अगर तुम्हारा व्याख्यान तुम्हारे बारे में तो मैं तो इतना ज्यादा बोल सकती हूँ कि मेरे पास शब्दों की कमी हो जाएगी।
5: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ज्ञान से भरे वो हैं जिनके बारे में मैं बोलने वाला हूँ।
0: यही सही है,
5: नारायण सिंह, शायद नाम आप लोगों ने ना सुना हो, लेकिन एक बहुत महान वैज्ञानिकों में से एक, पटना साइंस कॉलेज जो आज IIT पटना है, वहाँ उसने बहुत बड़े बड़े महान साइंटिस्ट को निकाला, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन वहीं से पढ़े हैं, जैसे HC वर्मा, आनंद कुमार, और ये वशिष्ठ नारायण सिंह। वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में सबसे खास बात तब पता चली कि इनका मेंटल एबिलिटी इतना ज़्यादा है कि जब वो BSc कर रहे थे और वो गलती से MSc के एग्ज़ाम में बैठ गए और उसमें भी टॉप कर दिया।
0: ये तो मतलब सरप्राइज है कि BSc का एग्जाम देने पहुंचे और गलती से MSc के रूम में बैठ गए और उन्होंने
5: उसमें भी टॉप कर दिया, यूनिवर्सिटी टॉप कर दी उसमें, पटना यूनिवर्सिटी। 21 की एज में उनको नासा में फेलो बनाया गया। एक बार की बात है कि नासा में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया तो वहाँ के कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे थे, और वशिष्ठ नारायण सिंह तब वहाँ पे एक अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ 15 से 17 मिनट तक नासा की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को मैनुअली किया और बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट लेके आए। उसके बाद उन्होंने आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको भी चैलेंज किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि अंततः भारत उनकी प्रतिभा को नहीं पहचान पाया। बर्कले यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसर और IIT खड़गपुर में उनको फेलो बनाया गया और उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन अंततः जब उनकी मृत्यु हुई तो वो कूड़ा बीनते पाए।
0: ये दुर्भाग्य है हमारे देश का।
5: 2019 में उनकी मृत्यु हुई, और उनको अमेरिका जैसा देश अपने यूनिवर्सिटी बर्कले बुला करके वहाँ से ग्रेजुएशन PhD करा के और उसके बाद नासा जैसी बड़ी प्रेस्टिजियस संस्था में जॉब दे चुका था, और उसके बाद लेकिन उनका देश प्रेम ही उनकी मृत्यु का कारण माना, ऐसा कहते हैं कि वो देश प्रेम की वजह से भारत लौट आए और IITs में फेलो रिसर्चर के तौर पे काम किया, और उसके बाद
0: यहीं पर ये लगता है कि लोगों से गलतियां हो जाती हैं,
5: भारत ने उन पे नहीं काम किया और उसके बाद उनकी अंततः
0: वही कहा कि कहीं ना कहीं जो है कि बाद में हाँ।
6: और ये बहुत दुखद बात है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है लेकिन टैलेंट की वैल्यू
0: इज्जत नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम सत्यम की ओर, और सत्यम आज क्या, आपके पास समय बहुत कम है लेकिन फिर भी आप कम शब्दों में बता सकते हैं हमें आप क्या लेकर के आए?
7: दीदी आज मैं बात करने वाला हूँ अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस के बारे में। नमस्कार श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ाई के साथ खेल हमारे जीवन में कितना जरूरी है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
7: बहुत। खेल सिर्फ मैदान में जीतने का नाम नहीं, बल्कि खेल हमें अनुशासन, मेहनत, टीम में काम करना और दूसरों का सम्मान करना भी सिखाता है। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन खास तौर पर विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है
0: जी।
7: इस दिन खेलों के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ रहने, मिलजुल कर रहने और खेल भावना अपनाने का संदेश दिया जाता है। UNESCO के अनुसार विश्वविद्यालय का खेल युवाओं में सामाजिक और मानवीय मूल्यों को बढ़ाने में मदद करता है। अब सवाल आता है कि यह दिन क्यों जरूरी है? आज के समय में विद्यार्थी पढ़ाई, परीक्षा और दूसरी जिम्मेदारियों में काफ़ी समय बिताते हैं, ऐसे में खेल शरीर और मन को सक्रिय रखने में बहुत मदद करता है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, कबड्डी या कोई भी खेल, हर खेल हमें कुछ ना कुछ सिखाता है।
0: भाई देखिए, जैसे मतलब हम कोई भी खेल जो हमें पसंद है, अगर हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, पढ़ते पढ़ते एकदम बोर हो चुके हैं, तो अपना मनचाहा अगर खेल हमें खेलने को मिल जाता है तो वो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे लिए टॉनिक का काम कर रहा हो
7: जी दीदी।
0: और हम फिर से रिचार्ज हो जाते हैं और उतनी ही लगन से फिर अपने काम में, अपने मिशन में लग जाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंस है खेल की कि अब आप लोगों को खेल कैसा लगता है? अतुल जी आप बताइए।
8: बहुत अच्छा लगता है।
0: वो तो अभी पता चल जाएगा कि जैसे ही हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से ख़त्म होगा तो आप लोग खेल में लग जाएंगे। मैं देखती रहती हूँ कि आप लोग को ये जो आपके विद्यालय का परिसर है, जो ज्ञानस्थली का कॉलेज है, वो आपको एक मतलब गिफ्ट में मिला हुआ मैदान है। मैं तो यही

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9816 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: ये आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के ओपन माइक वाले प्रोग्राम में, संडे स्पेशल ओपन माइक अपना टैलेंट अपना एफएम ऑन रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम।
1: ये है गोंडा शहर की धड़कन। जी हाँ, और ये एक ऐसा मंच है जिस मंच पर आप आते हैं, हफ्ते भर की प्रतीक्षा होती है। और वास्तव में संडे का तो बेसब्री के साथ हमको इंतज़ार इसलिए भी होता है कि अपने चांद को हम जरा प्यार से निहार पाते हैं घंटे तक। जी मैंने सोची आपको चांद कहा,
0: सोचे ये हैरान हो जाए।
1: नहीं हैरान क्यों हो जाए, मतलब हम चाहते हैं कि आप चांद से हो जाए।
0: चांद से मतलब हाथ पैर कुछ ना रहे गोल गोल।
1: नहीं नहीं मतलब सर के जो बाल घने घने हैं।
0: अच्छा
1: ये अगर हमारी
0: में तो आप आगे चल रहे हैं।
1: हाँ इसीलिए आपका घना घना देखता हूँ तो अंदर से ईर्ष्या होती है कि बताओ मेरा हल्का हल्का हो रहा है, आपका भी एकदम घना घना है।
0: ईर्ष्या से ही तो आपके बाल और तेजी से
1: झड़ रहे हैं।
0: ईर्ष्या खत्म करे तो शायद थोड़ा सा रफ्तार
1: पकड़ ली जाए। जी हाँ, तो हम यही सोच रहे हैं कि ईर्ष्या समाप्त करके और क्या किया जाए, मोहब्बत की जाए। नहीं आपके बालों
0: वो तो आप अपने बाइक पे भी लिखा के टहलते हैं, मोहब्बत की तो आपको कमी ही नहीं है।
1: मतलब हाँ बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से
0: प्यार करता हूँ।
1: जी हाँ, तो सभी श्रोताओं का खैर मकदम है, स्वागत है इस्तकबाल है। जी हाँ, और एक मौका भी उनको दिया जा सकता है कि अगर वो चाहें तो अपने घर बैठे हैं, और अगर आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो चाहते हैं कि काश ये धूप आज इतनी तेज़ ना होती तो आज हम पहुंचते स्टूडियो में और अपनी सुरीली आवाज़ में गाते, जैसा कि कल मैंने अपने श्रोताओं को बताया भी था बहारे गज़ल में। तो आपके पास आपका दूरभाष क्रमांक है 63-93-31-64-29। आप चाहें तो जी हाँ हमें फ़ोन कर सकते हैं और आपकी प्यारी सी आवाज़ गूंजेगी इन वादियों में।
0: बिल्कुल, और चलिए इसी कड़ी में हमारे साथ हमारी एक कैंडिडेट मौजूद हैं ऑलरेडी, जो स्टूडियो में ही मौजूद हैं, शानवी। हाय, कैसी हैं आप?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
0: बहुत बढ़िया, बहुत वक्त बाद आज आप नजर आई हैं। गले ने साथ नहीं दिया है क्या इधर?
2: नहीं, मुझे जुकाम हो गया है इसलिए।
0: अच्छा, जुकाम हो गया है। कई लोगों की जुकामी आवाज बड़ी तारीफ के लायक हो जाती है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी जुकामी वॉइस बहुत पसंद है। आपके साथ क्या है, पसंद है या नहीं पसंद है?
2: मैं अपने आप की बात बताऊं तो मुझे नहीं पसंद है।
0: अच्छा, खुद नहीं पसंद है, कभी किसी ने तारीफ नहीं की?
2: नहीं, लोगों का पता नहीं।
0: लोगों का पता नहीं, ऑलराइट।
1: मम्मी ने क्या कहा कि मतलब जुकाम में बहुत अच्छा बोलती हो?
2: नहीं, मेरी आवाज़ बिल्कुल जैसे क्या बोलते हैं उसको, अजीब सी हो जाती है। लेकिन आज मैंने जब गाने की प्रैक्टिस करी थी, मैंने कहा अच्छा लग रहा है बीबी।
1: मम्मी ने बताया कि अच्छा लग रहा है। ऐसे जुकाम हो जाए तो मुकेश के गाने बहुत शानदार निकलते हैं।
0: अच्छा, हाँ, मुकेश कौन?
1: मुकेश कुमार।
0: अच्छा, मुकेश कुमार, हमें लगा वो मुकेश मोहल्ले वाले।
1: हाँ, नहीं नहीं मोहल्ले वाला नहीं।
0: आलू ले लो, हमें लगा वो अच्छा निकलता।
1: नहीं, वो तो जाड़े में अच्छा लगता है, मेरा तो पार्ट टाइम बिजनेस है।
0: अच्छा, पार्ट टाइम
1: आपका? मैं तो कर लेता हूं, जाड़े में करता हूं।
0: एक साथ बुला करके सारे 20-25 ठेले वालों को ट्रेनिंग देते हैं।
1: कस्टमर पहले ले बादाम।
0: अरे ये तो मतलब बिल्कुल ओरिजिनल वॉइस,
1: बिल्कुल मतलब जाड़े में एकदम 10:30 बजे जब यहाँ छूटता हूँ तो 10:30 से 12 मूँगफली बेचता हूँ, करीब 30 किलो मूँगफली बेच लेता हूँ कंबल ओढ़ के। कोई जान भी नहीं पाता कि मैं हूँ, कंबल ओढ़े रहता हूँ।
0: तो फिर आज क्यों बता रहे सबको कि आप हैं?
1: नहीं तो हम इसलिए, तब भी नहीं जान पाएंगे ना वो, क्योंकि चेहरा पहचान नहीं पाएंगे। मास्क लगाए रहते हैं, कंबल ओढ़े रहते हैं। आपको बता दिया कि मतलब चाहिएगा तो कभी ऐसी आवाज़ आए और ये मूँगफली खाने का मन करे और पैसा न देने का मन हो तो उस सुविधा का लाभ उठा सकते
0: हैं। लेकिन आप पकड़े जा सकते हैं?
1: अच्छा, पकड़े जा सकते हैं। अब आप
0: अगर किसी ने ऐसे कर दिया, रेडियो ज्ञानस्थली तो आगे आपके मुंह से खुद बखुद निकल आएगा गोंडा शहर की धड़कन, बस वही पकड़ लेगा आदमी। ये तो आरजे मनु है।
1: नहीं नहीं मतलब ये तो हमको लगता है कि गोंडा शहर की धड़कन नहीं, हम सभी के दिलों की धड़कन बन चुकी है। तो मैं तो अपने कार्यक्रम में अक्सर क्या करता हूँ, ये गोंडा ही नहीं अब तो बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन।
0: बेशक, सही बात।
1: फिलहाल ओपन माइक की जो धड़कन है वो एकदम धड़क रही है। हमारी शानवी जी कैसी हैं आप?
2: बहुत अच्छे।
1: अच्छा, आपके जितने भी पेपर्स हुए सब अच्छे हुए?
2: जी।
1: अच्छा, कौन सा खराब हुआ? मतलब कोई पेपर खराब नहीं गया आप ये लेकर?
2: नहीं, मतलब खराब भी नहीं गया लेकिन मतलब ठीक गया।
1: मतलब मैथ्स में कुछ दिक्कत आई होगी?
2: हल्की फुल्की आई थी।
1: हाँ, मतलब हल्की फुल्की दिक्कत आई ना।
2: हाँ।
1: तो जब कभी भी एग्जाम देने जाइए तो नोरामेंट और आयोडेक्स दोनों को एक साथ मिलाकर घुटने पर लगा लेना चाहिए, इससे सवाल बहुत जल्दी हल हो जाता है।
2: सवाल प्रैक्टिस करने से हल होता है लेकिन?
1: हाँ, मतलब जैसे हम जब जाते थे तो लगा लेते थे।
0: इसीलिए आज आप ऐसे
1: इसीलिए हम आज आप ऐसे देख रहे मतलब होता है मैथ वाला पेपर
0: होता है
1: लगवा लिया जाए तो
0: हो जाता है।
1: हाँ कभी ट्राई करके देखना शर्मिया, मतलब इससे क्या होता है दिमाग शार्प हो जाता है, मेरा मेंटल एडिक्ट अगर दोनों घुटनों पर लगा लो तो होता है कि नहीं। नहीं नहीं आप गलत समझिए, आप क्या समझिए।
0: चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं चूंकि शानवी हमारे साथ है तो हम चाहेंगे कि भाई शानवी की आवाज में, शानवी के अंदाज में इस प्रोग्राम का आगाज करें। और उसके बाद चूंकि हमारे को होस्ट ने अनाउंस कर ही दिया है कि आज ओपन है, मतलब आप कॉल करके भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, नंबर वही है 6393-16-429 पर। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं शानवी के साथ।
2: तो आज मैं गाने वाली हूँ एक मतलब 1890s का ऐसा गाना जो बीच में बहुत ट्रेंडिंग पे आया था और अभी भी ट्रेंडिंग पे ही है।
0: ओके
2: इतना न तू इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा।
0: वाह वाह वाह क्या बात है, बहुत ट्रेंडी रहा है इस सॉन्ग, राइट।
2: इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं

ऐसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इस तरह न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा।

गीत, मैं देश विदेश का बंजारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है ना।

हमारा, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक पागल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं

0: पाना मुश्किल है, मैंने छोड़ दिया है जग सारा। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है राम मेरा जल की धारा।
1: क्या क्या बात है भाई,
2: क्या बात है। बहुत ही प्यारा गीत और बहुत ही सुर के साथ गाया भी।
1: मतलब एक तो इतना स्ट्रेन है गले में, उसके बावजूद अगर आपने इस तरह से निभाया है तो ये काबिले तारीफ। हाँ, बाकी तो सब बाद में।
2: जी हाँ, वास्तव में टेम्पो भी गाने का वही रखा है।
1: बिल्कुल,
2: और बहुत ही प्यार के साथ गाया भाई। शानवी जी बहुत प्यारा गाती है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो ट्रेंडी सॉन्ग आपने उठाया है, मतलब लिटरली हर रील पे कहीं ना कहीं ये सुनाई पड़ रहा था बीच में।
0: अच्छा, आपको इस गाने की खासियत पता है?
1: बताइए।
0: कि ये जो सॉन्ग है वो रिलेटेड है एक सब्जेक्ट से।
1: एक सब्जेक्ट से?
0: गेस करिए।
1: कोई मतलब एजुकेशनल सब्जेक्ट है क्या?
0: जी हाँ। जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, क्लास 8 से 9।
1: इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक पागल आवारा।
0: बादल
1: आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसमें कोई सब्जेक्ट कहाँ नजर आया?
2: क्यों, सोशल साइंस?
0: पूरा सॉन्ग
1: सोशल साइंस। ओके,
0: सोशल साइंस पे ये है ज्योग्राफी सब्जेक्ट है इसका।
1: ओके,
0: तो यहाँ पे जो बोलता है कि मैं एक बादल आवारा, तो यहाँ पे बादल आया, कैसे किसी का सहारा बनूं। तो ये यानी कि ये मतलब इसको सहारा लेता
2: सहारा
0: है
2: ना,
0: इवेपोरेट जब इवेपोरेशन होता है तभी ये बादल बनता है। और उसके बाद मैं खुद बेघर बेचारा, यानी कि इसके पास खुद का कोई पार्टिकुलर जगह नहीं है।
1: ये बात तो बड़ी पते की कहीं, मतलब ये तो कभी ध्यान में आया नहीं कि इस तरह की कोई।
0: और आगे जो आता है, मुझे एक जगह आराम नहीं। तो बादल का भी एक जगह पे आपने देखा होगा, बादल का भी एक जगह पे नहीं रहता, वो उड़ते रहता
1: है, राइट।
0: तो एक ये हो गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो है वो नील गगन के दीवाने, तू प्यार ना मेरा पहचाने। यानी कि यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो बोलता है कि नाम मेरा जल की धारा, तो जो जल है, जो पानी की बूंदे है, वो हमेशा इसके साथ चलती रहती है।
1: ओ,
0: तो इसका कभी ये मतलब तब तक चलती रहती है जब तक कह रही है कि जब तक ना कहे तू मैं हारा। तो टोटली कहे तो ये ज्योग्राफी के मतलब चैप्टर से रिलेटेड है।
1: वाओ, क्या बात है। मतलब मैंने कभी इस निगाह से नहीं देखा ना सोचा,
2: लेकिन मतलब शानवी जी ने देखा, क्या बात है। एनालिसिस बहुत अच्छा करती है शानवी बिटिया हमारी।
1: बिल्कुल,
2: ये बिटिया रानी हमको लगता है ज्योग्राफी से आईएएस बन जाएगी। नहीं, तैयारी करो, हो जाएगा।
1: ऑलराइट, तो चलिए फिलहाल एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए, देखते हैं कौन है। हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, नमस्ते सर।
1: नमस्ते, अपना नाम बता दी हमारे श्रोताओं को।
3: मेरा नाम भाषा पांडे
1: है। भाषा?
3: जी सर।
1: आशा या भाषा?
3: भाषा।
1: अच्छा, आशा पांडे, कैसी हैं आप?
3: भाषा।
1: आशा है, उम्मीद है, होप है।
2: हाँ,
3: हो गई। भाषा है।
2: आशा है। छोटी है कि बड़ी है? एक गाना था, दिल ये छोटा सा छोटी सी आशा,
1: ये बड़ी सी आशा,
2: ये बड़ी सी आशा।
1: ये नाम कुछ और बता रही है, आप समझने की।
2: अच्छा, भाषा बोल रही है, लैंग्वेज।
1: भाषा, भाषा।
2: अच्छा, भाषा जी, तो सबसे पहले तो आपकी भाषा वित्ता को प्रणाम।
3: आप कैसे हैं सर?
2: जी,
3: आप कैसे हैं?
2: एकदम, आपकी दुआओं का असर एकदम शानदार।
1: बिल्कुल, हिंदी इंग्लिश मिली हुई खिचड़ी लैंग्वेज जैसे हैं।
2: बिल्कुल।
3: मैं तो सर को बोरा भर भर के दुआएं दे रही हूँ।
1: बोरा भर भर के?
3: जी सर।
1: कुछ कुछ बोरे फटे हुए नीचे से, देखिए। ऑलराइट, चलिए, बहुत अच्छी बात है, दिल बड़ा होना चाहिए। खैर, दुआएं हर किसी को और दिल से नहीं मिल पाती है, इससे बड़ा शुक्रिया आपके लिए क्या ही हम अदा करेंगे। सुभाषा, आप कुछ सुनाने वाली हैं हम लोगों को?
3: तो लाइन एक गाना सुनाऊंगी।
1: अरे प्लीज प्लीज सुनाइए आप।
3: हमरे देश

जाए ऐसन फोकट की कमाई हम कबूरी लागे राम, ऐसन फोकट की कमाई हम कबूरी लागे राम। बोल हमरे देशिव के बुराई हम कबूरी लागे राम। सर के ऊपर उजली टोपी मन के अंदर काला, बैठ सजी सभाओं में करे बड़ा बड़ा घोटाला, ऐसे

0: वाह
1: वाह, क्या बात,
0: क्या बात है, क्या बात।
2: लाइन में भूल गई थी सर।
0: अच्छा, नेताओं को क्या पीटने वाली? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या थी।
2: अब भूल गई थी यार, नहीं नहीं तो अभी सुना देती।
0: अच्छा, वो बोरे वाली जो आपने दुआएं भर भर के दिया आरजे मनु को।
2: जी सर, आपको भी दे रही हूँ बोरे भर भर के।
0: कितने बोरा इनको दिया है, कितना बोरा हमको? हाँ, दिया है
1: डिस्ट्रीब्यूशन
2: में करना पड़ेगा।
0: हाँ, क्योंकि बाद में झगड़ा ना हो। हाँ, कि हमारा था इनका था ये वाला।
2: नहीं मनु सर, थोड़ा बड़े हैं तो उनको ज्यादा सा भर के देंगे कई बोरे, और आप थोड़ा छोटे हो तो आपको थोड़ा कम।
0: तुम्हारे प्लास्टिक वाली बोरी में हमारा
2: नहीं, वो जो सन की आती है।
0: अच्छा।
2: वो ज्यादा बड़ी होती है ना।
0: अरे वाह,
1: इसमें भूसा आता है।
0: अच्छा,
2: नहीं भूसा नहीं आता उसमें। उसमें कुछ भी रखो खराब नहीं होता है।
0: जूट वाला बताया आपने।
2: हाँ
0: हाँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। लेकिन भाषा आपने जो सुनाया, एक तो वो सामाजिक कटाक्ष था, बड़ा अच्छा था, और दूसरी बात ये कि आप बड़ा अच्छा गा रहे थे।
1: बहुत अच्छा।
0: हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ होते तो हम सर्टिफिकेट भी दे देते, बट नहीं, मजाक की बात नहीं है, मतलब सच में काफी अपने अच्छा गाए।
2: ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन अभी काफी टाइम हो गया सुना नहीं था, इसलिए मुझे पूरा याद नहीं था।
0: ओके, सो मुझे लगता है कि अगर कभी आपको नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो आप शायद कोई गाना जो याद होगा उसको अच्छे से सुनाएंगे हमको।
2: जी सर, अभी याद करेंगे तो सुनाएंगे। अभी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं थी सुबह ना, इसलिए गाना कोई याद नहीं था। अभी कॉलिंग से सुना तो अभी सोचा एक लाइन याद कर लूं, दो लाइन का गाना सुना दूं, और बाकी कई गाने आते पर एक एक लाइन ही आते हैं।
0: अच्छा, तो चलिए एक बार आप हमको मैशअप अगली बार कभी सुना दीजिएगा, एक लाइन सारा जोड़ करके।
2: वो तो नहीं हो पाएगा सर, भूल जाऊंगी।
0: नहीं, एक ही एक लाइन सारे गाने के लिए लेकर के।
2: एक गाना को और सुना दूं, दो लाइन।
0: अच्छा, सुना दिए, दो ही लाइन है ना?
2: पता नहीं, जितना याद आएगा उतना सुना दूंगी, दो लाइन, चार लाइन, पांच लाइन।
0: अच्छा अच्छा, ठीक है। वो हमारे पेट्रोल वाला है भैया, जितने टंकी आ जाए तुम भरते रहो, भरते रहो।
2: ओके। जिंदगी में चंदा फिर भी है पहला, चारों ओर उजाला, होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला, होश न खो दे कहीं जोश

0: घर को सवार देगा, दिल को करार देगा, रूप ये तेरा निराला, होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला, होश न खो दे कहीं जोश में देखने वाला।
1: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया है ये गाने वाला
2: वाली
1: वाली वाली बहुत मस्त सॉन्ग, क्या बात है, इतना फंकी सॉन्ग, इतने खुल करके गाना मस्ती के साथ में, हम लोग काफी एंजॉय कर रहे थे।
0: आप लोग वीडियो में दिखते नहीं ना, तो कोई देखेगा तो होश ही खो देगा, इसलिए मैं कहा कि होश खोने से पहले ना खोए।
1: अच्छा, होश खोने से पहले ना खोए, उसके बाद फिर खो दे।

0: उसके बाद खो दे।
1: हाँ पता नहीं आपको देखे कोई खो दे तो इसलिए मैंने कहा।
0: अरे नहीं ऐसे भी नहीं दिखते, वो तो आरजे मनु इतने हैंडसम है कि लोग, अब होश तो नहीं पता, लोग इनको देख के अपना पर्स जरूर खो देते हैं।
1: लेकिन नहीं पर्स भी नहीं खोते हैं, पर्स संभाल के रखते हैं। हम तो कम से कम नहीं खोएंगे, बाकी कोई खोता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम।
0: कोई बात नहीं, अच्छी बात है और बहुत अच्छे हैं आप। भाषा आपसे बात करके बड़ा मजा आया।
1: मुझे भी आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा और आज मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ लाइव शो में।
0: चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अक्सर आपकी कॉल्स आती रहेगी जब भी हम कॉल इन प्रोग्राम्स करते रहेंगे और यूं ही आप हम लोगों को अच्छे अच्छे सॉन्ग्स, मस्ती भरे सॉन्ग सुनाते रहेंगे।
1: कॉल करना तो चाहती हूं पर थोड़ी शर्म आ जाती है इसलिए नहीं करती।
0: कोई बात नहीं, अब आरजे मनु को देखिए सारी शर्म आपकी चली जाएगी।
1: नहीं सर तो दिखी नहीं रहे,
0: मतलब नहीं देखा तो आगे सामने से देख लीजिए,
2: मतलब शर्मीली दुल्हन की तरह मैं शर्माता हूं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाषा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। तो भाई ये तो थी भाषा जिन्होंने अपनी भाषा में बहुत अच्छा सुनाया
2: जी, जी, जी।
0: और अब मुझे लगता है नेक्स्ट कॉल आ रहा है, तो चलिए भाई इनकी भी कॉल रिसीव कर ली है और स्पीकर पर डाल करके ऑफ कोर्स अच्छा इनसे बात भी करना है, लगातार कॉल्स आ रही है।
2: जी हाँ बिल्कुल भाई, कॉल्स लगातार आ रही हैं और उम्मीद करते हैं कि अब की बार कॉल आएगी तो बिल्कुल भाई ये
0: तो मुझे लगता है कि कई बार समटाइम्स क्या होता है ना कि कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी आ जाते हैं और अगर ऐसे कोई टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कॉल करिए, आपकी कॉल उठाने का पूरा प्रयास किया जाएगा।
2: हेलो हेलो
3: हेलो
2: जी,
3: गुड आफ्टरनून सर।
2: गुड आफ्टरनून, हेलो
3: हेलो
2: जी हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है।
3: मैं सृष्टि बोल रही हूँ।
2: जी सृष्टि जी कैसी हैं आप?
3: मैं जी, आप कैसे हैं?
2: जी आपका आशीर्वाद।
3: हमारा आशीर्वाद
2: जी बनाए रखिए बस। तो अच्छा। क्या सुनाने वाली हैं आप?
3: जिन्होंने आपको संघर्ष देखा है सिर्फ वही आपकी कामयाबी का कीमत जानते हैं और उनको यही लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी है। खुद को इतना भी सरल ना बनाओ कि हर कोई आपका इस्तेमाल करके चला जाए, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता उन पर कपड़े सुखा दिए जाते हैं। अगर आपके जमीर और नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आप अपनी नियत से ही जाने जाते हैं, दूसरों की सोच से नहीं। थैंक यू।
2: क्या बात कही भाई आपने, क्या बात कही सृष्टि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इन पंक्तियों के लिए।
3: थैंक यू सर।
2: जी भाई तो ये हमारे साथ सृष्टि जी, हमारी एक बहुत अच्छी श्रोता और इन्होंने बताया और देखते हैं भाई हमारे पास फिर कोई आ चुका है, देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो
4: नमस्ते सर
2: जी। नमस्ते,
4: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदाना का इंदौर से।
2: अरे वाह जी, प्रणाम आपको, कैसी हैं आप?
4: अच्छे सर, आप कैसे हो?
2: मुझे लगता है कि आपको पहली बार आपसे मेरी बात हो रही है।
4: हाँ जी पहली बार बात हो रही है आपसे।
2: बहुत प्यारी सी आवाज़ है आपकी और बहुत अच्छा भी लग रहा है आपकी आवाज़ को सुनकर।
4: जी जी शुक्रिया सर।
2: तो क्या सुनाने वाली हैं आप?
4: गाना गाना है ना सर आज?
2: जी जी जी जी
4: आके दूर फिर न जाएंगे। पहला एक गाना तो ये हो गया था, दूसरा सुनाती हूँ। काली घटा छाई

0: चैन काली घट छाई, प्रेम रुत आई। एक गाना और बता देती हूँ।
1: जी
0: आएगी आएगी
1: आए हाय
0: आएगी, किसी को हमारी याद आएगी। मेरा मन कहता है प्यार से, जीवन में छाएगी छाएगी छाएगी, कभी कोई बदली छाएगी।
1: क्या बात
0: है, बताए तो मैं और गाने गा के बता दूं अगर आप बोले तो, मगर दूसरे कॉल भी आ रहे होंगे सर।
1: नहीं नहीं आप कम से कम दो और गा दीजिए।
0: दो और गा लो
1: जी।
0: आधी सच्ची आधी झूठी तेरी प्रेम कहानी, या तो पूरा सच्चा हो जाए या फिर कर ली बेईमानी। सजन फरीबिया फरीबी साजना, पूरी सोलाने सच्ची मेरी प्रेम कहानी। इसमें दूध ही दूध नहीं, जरा सा भी पानी। चल चल गोरिये गले भी गोरिये। और एक और गाना गाती हूँ, गाना बता दीजिए।

0: क्या बात है भाई, दो दो पंक्तियों में आपने एकदम जीवन का रहस्य निचोड़ कर रख दिया। क्या बात है, पहली बार आपसे बातचीत हुई, एक बार आपका नाम पुनः जानना चाहेंगे।
1: हसीना बी मंसूरी
0: जी,
1: हसीना हसीना
0: जी जी हसीना जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत प्रणाम आपको। जी बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा गाया गाया जी जी, प्रणाम। जी हाँ, देखते हैं भाई, हमारे साथ फिर कोई जुड़ चुका है, कौन है? हेलो
2: हेलो
0: हेलो जी
2: जी नमस्ते
0: जी, नमस्कार
2: जी, क्या हाल चाल है आपके?
0: जी आशीर्वाद है आपका।
2: आशीर्वाद तो ऊपर वाले का
0: है जी, आपकी शुभकामनाएं हैं
2: जी। गाने का एपिसोड चल रहा है, कुछ गाना सुना दें
0: जी? सुना दीजिए बिल्कुल।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, तेरा कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, तेरा कल क्या हो किसने जाना।
0: क्या बात है भाई, एकदम किशोर कुमार जी को आप कॉपी कर रहे हैं डिट्टो। बहुत अच्छा गीत लगा आपके कंठ से ये।
2: धन्यवाद सर
0: जी, प्रणाम। जी हाँ, तो ये हमारे साथ श्री सुरेंद्र कुमार सिंह जी थे, और देखते हैं भाई फिर कोई कलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार
3: जी, मोनू जी को भी नमस्कार मेरी तरफ से, और आदनान सर को भी नमस्कार
0: जी। उनका भी नमस्कार हमने स्वीकार कर लिया।
3: अच्छा
0: जी
3: जी, तो आज आपके कार्यक्रम में क्या क्या क्या कुछ सिस्टम बना हुआ है गाना गाने का?
0: हाँ हाँ, मतलब आज कालीन हमने कर दिया है।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या बोलते हैं, हमारे डॉक्टर लव जी तो सही है ना?
0: अब उनके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है हमको, क्योंकि वो एक ही दिन आते हैं शायद, कब आते हैं हमको पता।
3: वो तो सैटरडे को कल शाम को उनका आने का वक्त रहता है।
0: हाँ हाँ, तो वो चूंकि हम उस समय वहाँ रहते नहीं है, तो उनके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है।
3: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, उनके बारे में जानकारी हम अगले सैटरडे को निकालेंगे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कोई मतलब प्रोग्राम करते हैं वो?
3: हाँ हाँ, कोई प्रोग्राम वोग्राम करते हैं वो भी।
0: अच्छा, मतलब डॉक्टर ही, मतलब वो दवा बताते हैं?
3: वो तो हर किस्म के डॉक्टर हैं, हर किस्म की इलाज वो करते रहते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: हाँ वो उनका जो नुस्खे होते हैं वो बहुत ही फायदेमंद होते हैं श्रोताओं के लिए।
0: अरे वाह, तो भाई हम भी उनसे नुस्खा पूछेंगे, कुछ प्रॉब्लम हमारी भी है।
3: अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पूछ लीजिएगा उनका। अगर नंबर चाहिए तो मैं नंबर भी दे सकता हूँ।
0: जी जी, उनको दे दीजिएगा, हम जो मुलाकात करेंगे।
3: जी जी जी, उनका उनका नंबर है 3000 444 999, बस यही नंबर लगाइएगा, पहुँच जाएंगे आप।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपका नाम जानना चाहेंगे पहले।
3: जी जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हूँ, अविनाश तली।
0: अरे वाह, आप त्रिपुरा से हैं, क्या बात है।
3: जी जी जी,
0: क्या बात है, तो आज क्या सुनाने वाले हैं आप?
3: चलिए आज एक गीत सुना देते हैं
0: जी।
3: ओ मेरे दिल के चैन।

नहीं साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा।

0: को के सिवा दिल का तराना और नहीं, जचता ही नहीं, जचता
1: आंखों में
0: ही
1: कोई
0: नहीं।

0: अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो अगर साथ दो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब फैसला यूं ही क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। थोड़ा थोड़ा सा लाइन में मिस्टेक हो गया था।
1: अरे नहीं नहीं लेकिन आपने धुन पकड़ के रखी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी जी क्योंकि अब लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन अपना ओ लाइन में रहना चाहिए क्योंकि रास्ता भटकने से बाद में इधर उधर सारा कुछ गड़बड़ हो जाता है।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कहीं गड़बड़ होगा तो हम स्वयं संभाल लेंगे, आप निश्चिंत रहिए।
0: जी जी सही है, आपने एक बार संभाल भी लिया था।
1: जी कोशिश करते हैं।
0: पटरी से थोड़ा नीचे उतर रहा था लेकिन आपने संभाल लिया।
1: जी बिल्कुल, मतलब हमारा प्रयत्न रहता है कि गाड़ी को पटरी से न उतरने दें।
0: जी जी बिल्कुल,
1: आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, हालांकि हम मेरी आवाज़ नहीं प्यारी है लेकिन हमने सिर्फ पटरी पर लाने का काम किया।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, आप भी बहुत अच्छे करते हैं और आपकी आवाज़ कुछ डॉक्टर लव जी से भी मिलता जुलता है ना, इसलिए मैंने सोचा चलिए आपसे भी डॉक्टर लव जी से बात करवा दें, इसलिए आपका नंबर दिया था, आप लगा लीजिएगा कॉल।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।
0: जी बिल्कुल धन्यवाद
1: जी, प्रणाम
0: प्रणाम।
1: जी हाँ भाई, तो ये त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़े थे और शानवी से पूछते हैं। शानवी जी, आपने इतने सारे गीत सुने, बताइए आपको कौन सा गीत बहुत अच्छा लगा जो बहुत करीब हो आपके?
2: सब अच्छे थे। एक सारे अच्छे थे लेकिन जो अभी गाया गया कुछ जैसे सारे पुराने थे तो सारे मेरे दिल के करीब थे।
1: अच्छा, जनरली देखा जाता है कि जो आपके एज के बच्चे होते हैं छोटे उनको नए गीत पसंद होते हैं लेकिन आपको पुराने गीत अच्छे लगते हैं, तो ऐसा मतलब परिवार का माहौल ऐसा है या लोग ऐसे गीतों को सुनते हैं, आपको पुराने गीत कैसे अच्छे लगने लगे?
2: मेरे यहाँ जब मम्मी हो चाहे पापा हो, कोई भी वर्क करते हैं, कुछ भी अगर कुछ काम करते हैं तो वो हमेशा से, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि उन्होंने हमेशा या तो कोई भगवान से रिलेटेड गीत चलाए हैं क्या तो उन्होंने पुराने गाने चलाए हैं, और उसके बाद पुराने गाने सुनते सुनते और फिर उसी चीज़ को गाते हुए, और पुराने गानों में ना एक फीलिंग होती है।
1: हाँ सही बात है, एक एहसास होता है।
2: लेकिन जो मेन बात है वो है मेरे फैमिली का जो बैकग्राउंड है, वो मेरे फैमिली का माहौल, क्योंकि उन्होंने हमेशा से मुझे जैसे अब भगवान जी के गीत भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से वो सुनती आई हूँ। पुराने हाँ। गाने मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि मैं हमेशा से वो सुनती आई हूँ।
1: क्या बात, मतलब कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि आपको पुराने गीत अच्छे लगते हैं।
2: अब आपको एक मजे की बात बताऊँ कि मेरे क्लास में अगर हम लोग कभी भी अंताक्षरी खेलते हैं तो मैं तो रहना ही रहना है, क्योंकि अगर बॉयज वर्सेस गर्ल्स होगा तो मुझे रहना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसे ही कुछ कोई कहता है कि कोई गाना सुनाओ मेरे क्लास में, तो मैं उसे पुराना गाना सुनने को कहती हूँ कि ठीक है तुम कोई पुराना गाना सुनाओ मैं वो सुनाऊंगी। अब उसे वो पुराना कोई पुराना गाना आता ही नहीं है।
1: हाँ।
2: वो कह रही है नहीं यार ये नया वाला सुनाओ, ये नया वाला सुनाओ, और मुझे नया वाला गाना नहीं आता है।
1: हाँ।
2: मैंने कहा मुझे ये नहीं आता है और तुम्हें वो नहीं आता, मैंने कहा छोड़ दो अच्छा कुछ और सुनाओ।
1: अच्छा, तो आज इस गाने के अलावा भी कुछ सुनाएंगे आप हमको?
2: जी हाँ।
1: क्या सुनाएंगे बताइए?
2: मेरे पास कुछ लाइनें हैं जो कि चंदन राय की है।
1: चंदन राय की पंक्तियां हैं या चंदन राय की पंक्तियां हैं, और आइए उस पंक्तियों को सुनते हैं।
2: जो हारा जिंदगी से हो सफाई कुछ नहीं देता, जो हारा जिंदगी से हो सफाई कुछ नहीं देता, उसे तो शोरगुल में भी सुनाई कुछ नहीं देता।
1: जी
2: उसे तो शोरगुल में भी सुनाई कुछ नहीं देता। यही कहने का मकसद है, यही कहने का मकसद है कि हर एक चीज़ की हद है, ज़्यादा रोशनी में भी दिखाई कुछ नहीं देता, ज़्यादा रोशनी में भी दिखाई कुछ नहीं देता।
1: बात है भाई, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ। ज़्यादा रोशनी में दिखाई कुछ नहीं पड़ता, लेकिन फिलहाल हमारे पास एक कॉलर है, वो देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो हेलो जी, हेलो जी,
3: नमस्कार
1: जी, नमस्कार,
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
1: जी
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
1: जी राकेश जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: जी कैसे हैं आप?
3: बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है।
1: और क्या एमपी से ही हैं?
3: नहीं मैं हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला।
1: शिमला से? क्या बात है भाई, शिमला से आप हमको सुन रहे हैं।
3: जी मैं आपको आकाश रेडियो जो है एफएम का जो है गोंडा है जो मैं शिमला से सुन रहा हूँ, और मैं शिमला में ठंडी ठंडी हवा भी खा रहा हूँ और ऐसे में आपका प्रोग्राम भी चल रहा है।
1: क्या बात है, कभी हमको ही बुलाइए शिमला आए और जरा ठंडी ठंडी हवा का मजा लें।
3: बिल्कुल बिल्कुल आइएगा शिमला आइएगा, अगर अगर आपको बर्फ देखनी है बर्फबारी तो फिर जनवरी दिसंबर में आप आ सकते हैं, बड़ा आनंद ले सकते
1: हैं। मतलब आप साथ में रहेंगे ना हमारे?
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्या बात है, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि दिसंबर या जनवरी में हम आए और बर्फ देखें।
3: बिल्कुल बिल्कुल आप आइएगा शिमला और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी।
1: तो आप
3: हिमाचल घूमेंगे?
1: तो शिमला में आप क्या करते हैं भाई साहब?
3: हम तो सेब की बागवानी करते हैं।
1: वाह अच्छा, सेब वहाँ पर आप पैदा करते हैं?
3: जी सेब वहाँ पर पैदा करते हैं।
1: क्या बात है क्या बात है, और आज क्या सुनाने वाले हैं आप?
3: पूरा तो नहीं, तो दो लाइन में कुछ गाने की गुनगुना देता हूँ।
1: जी
3: मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना, मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। जी
1: क्या बात है, मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी न करना, और कोशिशें कामयाब हो जाती हैं और वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी पंक्ति आपने सुनाई, बहुत ही लय में सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
3: धन्यवाद
1: जी, प्रणाम। जी भाई, तो ये कार हमारे पास शिमला से थी, और अभी आप जी शानवी जी कुछ कह रही थी कि हाँ भाई ये गाना इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, ये सोशल स्टडी के ज्योग्राफी से मिलता जुलता है
2: जी।
1: तो आपको भी मतलब पहाड़ों पर जाना पसंद है, मतलब कभी गई हैं पहाड़ पर?
2: गई थी लेकिन बहुत कुछ ज़्यादा ही पहले गई थी।
1: मतलब याद नहीं है?
2: नहीं मैंने देखा ही नहीं, याद रही
1: सब। गई थी और पहाड़ नहीं देखा था?
2: मैं गई थी लेकिन मैं तब गई थी जब मैं अपनी मम्मी के पेट में थी, तो मैंने कुछ देखा ही नहीं।
1: ओहो, मतलब आपकी मम्मी ने आपको बताया है कि हम जब
2: मम्मा कहते हैं लोग मनाली गए थे कुल्लू मनाली, मैंने कहा आप मुझे क्या, फिर हमने तो देखा ही नहीं तो क्या फायदा जाने का।
1: मतलब आप नहीं गई थी
2: एक तरह से, वही कह सकते हैं।
1: मतलब लेकिन अगर कहीं जाना पड़े तो आपको कौन सा जो हिल स्टेशन है जो बहुत पसंद आएगा?
2: मनाली।
1: मनाली, अच्छा किसको मनाली
2: है?
1: हाँ भाई, तो मनाली तभी तो उसका नाम मनाली पड़ा होगा,
2: कुल्लू मनाली।
1: अच्छा तो किसी ने हाँ कुल्लू को मना लिया होगा तो उसका नाम कुल्लू मनाली। लगता है कि ये भाई बहनों के नाम जैसे प्रतीत होते हैं या पति पत्नी के नाम, क्या लगता है कुल्लू और मनाली का आपस में क्या रिश्ता होगा?
2: भाई बहन,
1: भाई बहन का रिश्ता, मतलब इसीलिए दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है, राधा कृष्ण?
2: नहीं
1: नहीं
2: क्योंकि वो तो फ्रेंड्स थे।
1: अच्छा मतलब कुल्लू और मनाली को हम भाई बहन कहेंगे?
2: हाँ।
1: अच्छा तो मतलब बहुत सारे गीत हैं आपके पास? तो उन गीतों में क्या कोई ऐसा भी गीत है जो आपके दिल के बहुत करीब हो जिसे आप गुनगुनाना चाहें, क्योंकि भाई अभी 2 मिनट है हमारे पास।
2: ठीक है, मेरे पास कई सारे गाने, एक तो जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है ये रातें ये मौसम, तो वो मतलब हमेशा से मेरा फेवरेट ही रहा है, मैं कहीं भी जाऊँ तो वो गाना होता है। तो चलिए आप कह रहे हैं तो मैं सुना देती हूँ।
1: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा।

सदा, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात।

0: बहकी निगाहें लुभाने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। थैंक यू।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई। बहुत ही प्यारा सा गीत होती है, वास्तव में बहुत ही दिल के करीब रहता है। तो भाई अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः मिलेंगे आपके ही कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। तब तक आपसे ये गुजारिश भी है, आपसे इल्तिजा है, प्रार्थना है कि जी अगले रविवार को आप मौका निकालिए और जुड़िए हमसे ठीक 12:30 बजे से। हम 1 से 2 लाइव होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आसमान वाले ने चाहा तो अगले रविवार को पुनः मिलेंगे ठीक 1 बजे आपसे। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, क्योंकि ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट, तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
0: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं आपके अपने कोंडा का पहला एफएम रेडियो ज्ञानस 89.6 एफएम पर। वक्त हो चला है 2:05 बाय स्टूडियो क्लॉक और आप सुन रहे हैं यानी कि संडे का स्पेशल वाला प्रोग्राम है द टॉप 20 विद योर होस्ट एंड दोस्त और आपकी अपनी आरशी उन्नति के साथ, अपनी रेडियो जॉकी उन्नति के साथ। और नमस्कार भाइयों बहनों, एक बार वापस से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने बॉलीवुड वाले स्पेशल प्रोग्राम है जिसके अंदर बहुत ही कम शब्दों में आपको बताना चाहेंगे कि होती हैं बॉलीवुड की बहुत सारी बातें, बॉलीवुड हिट्स और गॉसिप, फन, एंटरटेनमेंट और आपके बहुत सारे मैसेजेस जो हम तक आते हैं। तो फटाक से अपनी अपनी हाजिरी लगाइए इधर चैट बॉक्स के अंदर और ये बताइए कि आप रेडी हैं, क्योंकि आज हमारा जो सफ़र है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। ऑफ कोर्स, तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हमारी जो फ्लाइट है वो उड़ेगी आज गोंडा से और जाकर रुकेगी सीधे मुंबई के सबसे बड़े हॉल बॉलीवुड स्टार्स के सामने, उनके हिट्स, उनके सुपर डुपर हिट और 90s, 20s, 2004, 2003 एंड आपके 2026 के बेहद ही हिट ब्लॉकबस्टर हिट जिसके साथ हम करने वाले हैं थोड़ा सा ग्रूव और हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड के 20s हिट गाने बैक टू बैक। तो सुनने के लिए हो जाए तैयार, अपनी अपनी चैट बॉक्स पे लगाए अटेंडेंस और आइए बढ़ते हैं हमारे पहले गाने की तरफ। पहले गाने के बाद थोड़ा सा ज्ञान, क्योंकि भैया ज्ञान तो बनता है ना, ज्ञान की बूटी जब तक आपको नहीं मिलेगी तब तक क्या ही करेंगे आप, आपको ज़रूरत है उसकी। फिलहाल अभी आपको बोर नहीं करते हैं क्योंकि संडे का मूड होता है बहुत लाइट।

0: डेट जिसको एंजॉय करने का दिन आता है, क्वालिटी टाइम का दिन, एक ऐसा वक्त जिसमें हम खुद के लिए वक्त निकालते हैं, बट मुझे पता है आप अपने लिए वक्त कभी नहीं निकालते, स्पेशली हमारी घर की फीमेल्स वक्त नहीं निकाल रही हैं। वो कहीं ना कहीं आज भी सोच रही कि घर वालों को क्या बना के खिलाया जाए, हालांकि मुझे भी बताइए क्या बन रहा है, क्योंकि हम नहीं बना कर आए हैं कुछ भी। फिलहाल आइए इंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 20, मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर एक और हाई बीट गाना। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना एफएम रेडियो 99.6 एफएम रेडियो ज्ञानस्थली, आपकी अपनी आशुमती के साथ प्रोग्राम है इंडिया टॉप 20 यानी कि बॉलीवुड के हिट गाने बैक टू बैक मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: और भैया कुमार साहब ने अपने बोल में साफ साफ लिखा है कि दुनियादारी से मतलब वगैरह छोड़ दो, क्योंकि आपसे आप ही की जिंदगी है, ये वक्त आपका है, तो कल की इंतजार भी जरा छोड़ दो। बट आप समझते ही नहीं है, आप बैठे रहते कि कल करेंगे, आज करेंगे, ये करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, लेकिन करेंगे कब ये तो कभी तय ही नहीं हो पाता है। अब कुछ लोग हैं जो कहेंगे अरे हम ऐसा नहीं करते, आप भी करते हैं, हमको पता है, हम सब जानते हैं, क्योंकि हम आपकी आरजे उन्नति हैं, इसलिए हम आपको अच्छी तरीके से पहचानते हैं। अब क्योंकि ये गाना हमने स्टार्टिंग में इसीलिए प्ले किया था क्योंकि आज का डे होता है आपके लिए स्पेशल, यानी कि आपका क्वालिटी टाइम, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, मी टाइम, अपने पैशन के साथ एंजॉय करना पसंद करेंगे। बट हम कर नहीं पाते क्योंकि हमारे पास होता है बहुत सारा टेंशन, हफ्ते भर की टेंशन, इवन आने वाले हफ्ते की भी टेंशन कि मंडे को उठना पड़ेगा, ये वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, पार्टी में भी जाना है, शादी भी करनी है, शादी में बारात आएगी, बारात को खाना भी खिलाना है, और ये पूरी जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर लेकर इस तरह से चलते हैं, लगता है कि भैया अगर हमने नहीं सोचा तो दुनिया ठहर जाएगी, पृथ्वी घूमना बंद कर देगी, होता है ना? जी हाँ, होते हैं। और हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं सोचते हैं, लेकिन हम इतना कुछ सोचते हैं कि हमारा दिमाग हो जाता है एग्जॉस्ट। और आज का दिन होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए स्पेशल, ताकि आप जो ये थकान है, जो आपके दिमाग से थकान आ चुकी है, उसको थोड़ा सा निकाल दें। हम शारीरिक रूप से तो हर बार कहीं ना कहीं रेस्ट कर लेते हैं, सो लेते हैं, इवन आजकल तो हम सोते भी सिर्फ 5 घंटा है, क्या फ़र्क पड़ता है 8 घंटे सोने से, क्या फ़र्क पड़ता है 6 घंटे सोने से। हमें लगता है कि भैया 4 घंटे सोकर भी हम बहुत बड़ा तीर मार सकते हैं, और हमें लगता रहता है, इसलिए हम करते रहते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हर बार रेस्ट सिर्फ आपके फिजिकल नहीं होते, कई बार मेंटल भी होते हैं, यानी कि आपके दिमाग से भी आपको रेस्ट करने की जरूरत है। और दिमाग को रेस्ट कराने के लिए मेडिटेशन ही हर वक्त एक आखिरी ऑप्शन नहीं होता है, उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, अपना पैशन फॉलो करना, नई हॉबीज करना। और मैं आपको बता दूं कि भैया सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, साइंटिफिक प्रूवन भी है कि अगर आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो आपका दिमाग नई नई चीज़ें सीखता रहता है, उसे बहुत मज़ा आता है। बट मज़ा तभी आएगा जब आप कुछ करना चाहेंगे, बट आप पहले से ही अपनी एक लिमिट तय कर लेते हैं कि अब तो उम्र हो चुकी है, उम्र का तकाजा है, और मुझसे अब कुछ नहीं होगा, है ना? फिलहाल इस तरह की बातें नहीं सोचते हैं, आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मिश्रा जी की एंट्री हो चुकी है और वो लिख रहे हैं, हेलो मैम, हेलो, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं हम आपके टॉप 20 वाले प्रोग्राम में। एंड आते ही बोला है ये मेरा फेवरेट गाना है, और होना भी चाहिए, सभी का पसंदीदा गाना, वैसे मेरा तो एंथम सॉन्ग है, जिसमें से एक ये गाना है और एक है किशोर दा की आवाज़ में, कौन सा? एनी गैस, एनी गैस, 1000 दफ़ा तो हमने आपको बताया, लेकिन अगर आप गैस कर पाए हैं वो किशोर दा का कौन सा गाना है जिसको मैंने अपनी लाइफ का एंथम बना रखा है, हर दिन बस जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी हम थोड़े से परेशान होते हैं, टेंशन आती है, तो बस यही सोचते हैं कि आज ही आज है, कल का तो पता नहीं, कल क्या होगा, किसने जाना है, इसीलिए आज ही मुस्कुराना है। और मुस्कुराते हुए आइए बढ़ते हमारे अगले गाने की तरफ, क्योंकि मौसम में थोड़ा सा त्योहारों वाला फील है, इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स चल रहे हैं, हर तरफ आपको गुलाल दिख रही है, डाल दिख रहे हैं, और इन सब के बीच में होती है बहुत सारी डांस एंड मस्ती, और आने वाली है नवरात्रि, तो क्यों ना उसकी फीलिंग अभी से आपको दे दें, और आइए एंजॉय करते हैं मिल करके सॉन्ग नंबर 19, गाने का नाम है कमरिया फ्रॉम मित्रों, दर्शन रावल की आवाज में एंजॉय करते रहिए, और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 19।
2: એ જય માતાજી, માતાજી ને હમ કહીને કહું છું કે વાહ ફરે, વાદળ ફરે, વાયરો ફરે, પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો, આ મિત્રો કદી ના ફરે, કે હા

0: बात है भाई, कुमार साहब के लिखे हुए बोल दर्शन रावल की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे मित्रों से कम मारिया। और मुझे लगता है ना ये गाना एकदम इतना जबरदस्त है कि जहां भी प्ले होता है वहां आपके हाथ में रुक नहीं सकते। अगर आपके रुक रहे हैं भाई तो आप रोबोट है, आप इंसान नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कोई और कह रहा था। अब कौन कह रहा था इसका नाम हम आपको नहीं बताने वाले। फिलहाल के लिए अटेंडेंस आज बहुत कम आ रही है हमारे लिसनर्स की। क्यों भैया, क्या किया हुआ? लगता है आज हमारे सारे संडे का स्पेशल वाले लिसनर्स इतने ही तो सो रहे हैं। संडे सोने का दिन नहीं होता है, संडे होता है फन वाला डे। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हमारे अगले गाने की तरफ। और क्योंकि ये है मेरी वाली प्लेलिस्ट तो ऑफकोर्स इसमें आपको गाने भी शफल मोड पे मिलेंगे, यानी कि वो गाने मिलेंगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे। कुछ पंजाबी बीट्स, कुछ गुजराती बीट्स, कुछ बॉलीवुड हिट्स और उसी के साथ साथ आपके 90s के गानों का होना जरूरी है। बिकॉज भैया 90s के गाने जहां भी होते हैं वहां होते हैं इमोशन, जज्बात, ख्याल, किसी ना किसी को हम कर रहे होते एडमायर। तो आइए चलते हैं और एंजॉय करते हैं। फिलहाल अभी पहला गाना तो हम आपको 90s का नहीं सुनाने वाले हैं, हम आपको सुनाएंगे मैं तेरा हीरो फिल्म से सॉन्ग नंबर 18 साजिद वाजिद का संगीत है। एंजॉय कीजिए बेशर्मी की हाइट। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर के इंडिया टॉप 20 की काउंटडाउन वाली प्लेलिस्ट जिसके अंदर बजते हैं मेरे पसंदीदा, आपके पसंदीदा, हमारे पसंदीदा वाले गाने। तो सुनते रहिए गोंडा का अपना वाला FM रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन विद योर आरजे उन्नति, भूलिएगा नहीं।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर 18

0: हाँ जी, और कमाल की बात ये है कि हमारा ये तीसरा गाना है और तीसरे गाने में भी बोल लिखे हैं कुमार साहब ने। साजिद वाजिद का संगीत है, बेनी दयाल और शालमली की आवाज़ में आप एंजॉय कर रहे थे मैं तेरा हीरो फिल्म से बेशर्मी की हाइट। और हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं कि सब सोवत हैं गधा बेच के, क्योंकि हमने कल घोड़ा बेचने पर सवाल किया था कि क्यों लोग घोड़ा बेच के ही सोते हैं, कुत्ता भी बेचा जा सकता है, गधा भी बेचा जा सकता है। तो हमारे मिश्रा जी ने जवाब भी दे दिया है कि घोड़ा नहीं गधा बेचा गया है फिलहाल के लिए। अब आप बताइए कि कितने लोग गधे बेच के सो रहे हैं, कितने की कमाई हो चुकी है। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ, और अब हम आपको लेके चलेंगे 90s की तरफ, जब हमारे एक्टर्स लगते थे कि सीधे किताबों से निकल के चले आए हैं, पोइट्री वाली फीलिंग दिया करते थे उस दौरान। एक एक्टर जिसको हम प्यार से कहते हैं बादशाह, उनका बहुत ही पसंदीदा गाना रिलीज किया गया था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था ये सॉन्ग भी, बहुत ही उम्दा गाना था और इतनी दफा मैं इसकी तारीफ कर चुकी हूँ। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं एक हाई बीट सॉन्ग, और ऑफकोर्स इसके अंदर नजर आए हैं आपके शाहरुख खान के साथ साथ आपकी अपनी पसंदीदा जूही चावला जी। और कहते हैं कि जहां पर जूही चावला और ऑफकोर्स आपके SRK आते हैं तो वहां SRK की मस्ती थोड़ी ज्यादा हो जाती है। अब ऐसा क्यों है ये तो उनकी ऑडियंस ही जाने, बट हाँ, जिस फिल्म में जूही चावला उनके साथ नजर आई है कमाल की एक्टिंग करते हैं साहब। इसके अलावा एक लौते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें विलन बनने से भी डर नहीं लगता। जहां एक्टर्स की दुनिया में होता है कि अगर हम हीरो से विलन बन गए तो लोग हमको सिर्फ विलन की नजरिए से देखेंगे, शाहरुख खान साहब को एक्सपेरिमेंट करना पसंद है और इसीलिए लोग उन्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद किया करते हैं। हालांकि हम आपको बता दें, शाहरुख खान सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी कई देशों में पॉपुलर हैं, स्पेशली आपके पड़ोसी वाले देश चाइना में, जहां उनको इतनी मोहब्बत दी जाती है, इतना पसंद किया जाता है, और वहीं पर उनकी फैन ऐसी भी है जो उनके लिए चांद पर ज़मीन खरीदती है हर जन्मदिन। अब सोचिए एक दिन ऐसा आएगा जब पूरा चांद शाहरुख खान के नाम हो जाएगा। हाय, फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं हमारा अगला गाना, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से बन के तेरा, जो कि मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक ही स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

0: अंजी और आप इंजॉय कर रहे हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से बन के तेरा जोगी। अलका जी और सोनू निगम की आवाज में आपने इंजॉय किया। जतिन ललित का म्यूजिक है और इस गाने में आपकी अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस नजर आए हैं, जैसा कि हमने तारीफ में पहले ही कुछ शब्द कह दिए थे। एंड महेंद्र दीवन जुड़ गए हमारे साथ फ्रॉम राजस्थान, आपका स्वागत करते हैं। पहले तो हम इन द टॉप 20 में और उसके बाद आपके मैसेजेस को देख लेते हैं। आपने लिखा है गुड आफ्टरनून नमस्ते अर्चनती मैम जी, गुड आफ्टरनून नमस्ते, कैसे हैं आप आज इतनी जल्दी कैसे? अजी लो जी, आप ये भूल गए कि आज इतवार है यानी कि संडे वाला वार है और जिस दिन ये होता है उस दिन हम कुछ ज़्यादा ही रेडियो स्टेशन में मौजूद रहते हैं आपके साथ। एंड इसके बाद लिखा है आपने कि मैं तो 3 बजे के इंतज़ार में सब कुछ बेच कर सो गया था। अजी ऐसा नहीं करते हैं, सब कुछ नहीं बेचा करते हैं, आप मुझे बता दीजिए मैं आकर ले जाऊँगी, बेचने की क्या ज़रूरत है। फिलहाल अगर आप 3 बजे के इंतज़ार में थे तो हम आपको फिर से याद दिला दें कि हम संडे को 2 से 5 रहते हैं यानी कि लगातार 3 घंटे रहते हैं। एंड सारी दुनिया का रेडियो स्टेशन चेक करके मज़ा नहीं आया तो सो गए थे, लेकिन नींद नहीं आई तो सोचा कुछ ना कुछ सुनते हैं, 3 बजे तक कुछ तो बज ही जाएगा। क्या बात है भैया, क्या बात है। अगर आपको याद होता कि आज संडे है तो आप ऐसा नहीं करते, आप दुनिया भर के रेडियो स्टेशन चेक नहीं करते, आप सिर्फ अपना ही गोंडा का अपना FM चेक कर रहे होते। फिलहाल कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आइए आगे बढ़ते हैं और इन्जॉय करते हैं अदनान सामी की आवाज़ में एक ऐसा गाना जो आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ ले जा सकता है, यानी कि वो गाना जो आपकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। और आई थिंक ये गाना सभी रिलेट करते हैं इससे, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं खुदा से इसी उम्मीद में होता है, यही मांगता रहता है। क्या मांगता, ये तो अदनान सामी की आवाज में आप सुन के जान लेंगे। अगर आप रिलेट करते हैं इस गाने से तो चैट बॉक्स में बताइएगा। एंजॉय करते रहिए, इन द टॉप 20 मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और जाने से पहले ही हमारे के गुप्ता जी की एंट्री हो चुकी है फ्रॉम तिरंगा कॉम्प्लेक्स, लिख रहे हैं डियर उन्नति जी नमस्कार, हम हूं आ गए, आइए आइए आपका भी इंतजार था, स्वागत करते हैं हम इन द टॉप 20 में। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून।
1: Radio Garasani 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 16.

0: और ये गाना था अदनान सामी की आवाज में, आपने एंजॉय किया है। और मुझे लगता है ना कि एरोप्लेन का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मोटरसाइकिल की डिमांड जरूर आ गई है खुदा के पास। लेकिन चैट बॉक्स में है, यानी कि मेरे पास मेरे पास साइकिल भी नहीं है। हमारे के गुप्ता जी लिख रहे हैं, हमको कोई मोटरसाइकिल ही दिला दे, एरोप्लेन का हम क्या ही करेंगे। बिल्कुल सही बात, जो जरूरत है उसी की डिमांड भी करनी चाहिए। एंड हमारे महेंद्र जी लिख रहे हैं, हमको भी कुछ 2-3 किलो सोना दे दो, अभी आप सोकर आ रहे हैं, अभी आपको 2-3 किलो और सोना चाहिए। सोचिए जरा, सोचिए 2-3 किलो का ज्यादा नहीं हो जाएगा? 2-4 ग्राम होता तो शायद सोचा जा सकता था। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, अगला सॉन्ग पेश करते हैं आपके अपने दलेर मेहदी साहब की आवाज में। तो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मुझे पता है इनकी आवाज सुनने के बाद आप अपनी सीट से उछलते जरूर है, उछलते हैं ना, हाँ बिल्कुल उछलते हैं। फिलहाल आइए एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 15, मिलते हैं इस गाने के उस पार, लेकर के आपके अपने 2000 के बाद वाले गाने को, क्योंकि अभी तक आप एंजॉय कर रहे हैं 90s, और अब शफल मोड जाएगा सीधे नए जमाने की तरफ। तो एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 15.

0: अगर आपने भी एंजॉय कर लिया है दिल खोल के, तो स्वागत करते हैं वापस से आपका आपके अपने वाला शो इंडिया टॉप 20 में, क्योंकि आप भूल चुके हैं कि हम शो एंजॉय कर रहे हैं ना कि बारात है ना, मुझे पता है। फिलहाल हमारे महेंद्र दीपन जी लिख रहे हैं, मैंने ऊपर वाले से कहा, गौर फरमाइएगा जरा, अब मैंने ऊपर वाले से कहा भगवान जी बस 2-3 किलो सोना दे दो। ऊपर वाले ने कहा बेटा जितना चाहिए उतना दूंगा। मैं खुशी से बोला सच में? भगवान बोले हाँ लो सो जाओ। सोने का तो मिला नहीं, सोने का पता भी नहीं, लेकिन 8 घंटे की नींद जरूर पूरी होगी। तो जनाब यही तो सोना है आपके लिए, एक्चुअल वाला, क्योंकि आजकल 8 घंटे की नींद मिल ही कहाँ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि भैया 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही, जिसके लिए इतना पैसा कमाया जा रहा है, जिसके लिए दुनियादारी की जा रही है, वो सुकून की नींद ही हमारे बिस्तर से गायब हो चुकी है। अब नींद के लिए भी हमें दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, नींद के लिए भी हमें न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है, थकाना पड़ रहा है, बहुत सारे काम करने पड़े, बहुत सारे टेंट्रम करने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी 8 घंटे की नींद पूरी हो रही। और अगर आपको 8 घंटे की नींद भगवान ने दे दी है, ऊपर वाले ने, खुदा ने दे दी है, तो मुबारक हो, आपको इस दुनिया की सबसे कीमती चीज तो यूं ही मिल गई है। एंड इसके बाद आपके बहुत सारे डांसिंग इमोजीज हैं जो मुझे पक्का पता था ही आएंगे। एंड इसके बाद है अंबर जी का मैसेज। अंबर जी आपका भी स्वागत करते हैं हम आपके इंडिया टॉप 20 में। अमित जी लिख रहे हैं फुल बारात वाली वाइब, बिल्कुल आएगी आएगी आएगी, थामा थामा अभी तो आपको और फीलिंग आएगी। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए। जैसा कि हमने कहा था थोड़ा सा नया नवेला वाला हो जाए, तो आइए एंजॉय करते हैं धुरंधर से शरारत, और हम आपको सिखाएंगे शरारत कहाँ इस गाने के जरिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलेंगे अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: Radio Garasani 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 14.

0: और आप इंजॉय कर रहे थे शरारत फ्रॉम धुरंधर। और हम आपको बता दें कि घड़ी में वक्त हो चला है 2:50, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 1 घंटा होने जा रहा है इंजॉय करते ही टॉप 20 की प्लेलिस्ट। और जैसे ही हम नंबर 10 पे हिट करेंगे, वहां से स्टार्ट होगा हमारा रोमांटिक वर्जन, यानी कि आपकी अपने रोमांटिक सॉन्ग्स का एक ऐसा कलेक्शन जिसको इंजॉय करते हैं आप जब जब शाम ढलती है। जैसे जैसे सूरज आसमान से नीचे होता है, वैसे वैसे हमारी प्लेलिस्ट के बीट्स भी डाउन होते हैं। और यही तो खास बात है कि हम एंजॉय करते हैं हाई बीट से, और ख़त्म होते होते हम पहुंच जाते हैं सूथिंग रोमांटिक रिलैक्सिंग गाने की तरफ। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो आपको थोड़ा सा मूव ऑन होने में मदद करने वाला है, अगर आपका किसी ने दिल तोड़ दिया है, आपका हृदय किसी ने तोड़ दिया है, तो भैया अपने दिल को संभालिए, उठाइए, क्योंकि हम एंजॉय कर रहे हैं जा रहे हैं अपने इंडिया के पहले ड्रैकुला का गाना, यानी कि थामा फिल्म से तुम मेरे ना हुए तो ना सही। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार। आप सुन रहे हैं द टॉप 20 विद राजू नदी, और ये है रेडियो ज्ञानस 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: रेडियो ज्ञानस 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 13।

0: और आप सुन रहे थे तुम मेरे ना हुए ना सही, मधुबंती बख्शी की आवाज में, और साथ ही थे सचिन जिगर, अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे इस गाने के बोल। थामा फिल्म से आप इंजॉय कर रहे थे। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। और आपके साथ वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता, वक्त का मेरे से कॉम्पिटिशन है, मेरा वक्त से कॉम्पिटिशन है, और इसी कॉम्पिटिशन के तहत आइए बढ़ते हैं अगले सॉन्ग नंबर 12 की तरफ। सॉन्ग नंबर 12 आपके लिए पेश करते हैं हम धत्तेरे की मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि कभी कभार मन नहीं करता है जाने का, स्पेशली जब पार्टी में जान डालने वाले डीजे वाले बाबू हो। तो एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। सुनते रहिए इन द टॉप 20
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर 12

0: हां जी, और भैया चैट बॉक्स में एंट्री हो चुकी है हमारे अरविंद जी की, और अरविंद जी ने आते ही कहा है हेलो नदी मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? शुभ दोपहरिया आपको भी एंड आप सभी को भी। इसके साथ उनका एक सवाल है कि पूछना था कल मंडे होगा ना? ना, कल मंडे नहीं होगा, कल सोमवार होगा, यानी कि सोम का दिन होगा, सोमवार होगा। और फिलहाल के लिए कमाल की बात ये है कि अरविंद जी की एंट्री होते ही उनका पसंदीदा गाना हमारी लिस्ट में है। इतनी देर से आओ कि आपका पसंदीदा गाना आपके आते ही बज जाए। अब कौन सा गाना है आइए बता देते हैं हम। गाने का नाम है मेरे नसीब में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और यहाँ से शुरू होंगे अब आपके रोमांटिक गानों का सफर, यानी कि एक घंटा सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स जो कि 90s के हो सकते हैं, अरिजीत सिंह की आवाज़ में होंगे, आतिफ असलम की आवाज़ में होंगे, इवन आपके अपने फेवरेट किशोर दा की आवाज़ में भी होने वाले हैं। तो बने रहिए, इंजॉय करते रहिए।
1: Radio Gana Sari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 11.

जी, और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके अपने अगले गाने की तरफ, इंडिया टॉप 20 का सॉन्ग नंबर 10, और ये आवाज होने वाली है आपकी अपनी अलका जी की। फिल्माया गया है माधुरी दीक्षित पर, और ये गाना बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग भी है, स्पेशली आजकल बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। अब क्योंकि मेरी आवाज़ से आपको कंफर्म हो चुका होगा कि यहाँ से हमारे गानों के बीट क्या होंगे, हमारे गानों का सुर ताल कहाँ जाएगा, तो आइए एंजॉय करते हैं। तू शायर है, मैं तेरी शायरी, सुनते रहिए।

0: भी आई थी माधुरी दीक्षित, और आपको पता होगा कि कौन सी फिल्म है। अगर पता है तो जरा चैट बॉक्स में बताइए। चैट बॉक्स में आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, अंबर जी की तरफ से, महेंद्र जी की तरफ से एंड हमारे अरविंद जी की तरफ से भी। और वो लिख रहे हैं कि जब हम लोग उन्नति मैम से खुसरफुसर करते हैं तो पहले यही पूछते हैं कि आप अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं, तो इनको सब पता है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं, सर्वज्ञाता आरजी उन्नति ही है यहाँ पर, है ना। चैट जीपीटी करने की जरूरत नहीं, गूगल मैप करने की जरूरत नहीं, हमसे पूछिए, हम आपको सब बताएंगे। फिलहाल हम आपको ये जरूर बताने वाले हैं कि अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ आपके अपने बचपन की तरफ। अगर बचपन की यादों को ताज़ा करना है ना, तो भैया सॉन्ग नंबर 9 को स्किप करने की सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि इतना खूबसूरत होने वाला है। आप सच में कहेंगे कि हाय अल्लाह, ऐसा काई किया आपने, मेरे बचपन की यादें मुझे काई याद दिलाई। अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो बताइएगा, आपका नाम बदल देंगे, अपना नाम तो बदल नहीं सकते। इसलिए आइए एंजॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 9, यारो सब दुआ करो। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार लेकर की एक बेहद ही रोमांटिक, बेहद ही उम्दा गाना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 9।

0: भाई राम शंकर जी की आवाज में आप एंजॉय कर रहे थे और साथ में थे हमारे कोरस सिंगर, और जिस तरह से एक कवाली वर्जन में इस गाने को पेश किया गया था ना, बेहद ही लाजवाब है, बेहद ही उम्दा है। और जैसा कि हमने कहा था भैया कि आपको बोलना ही पड़ेगा कि ये गाना आपके बचपन की याद दिला रहा है। फिलहाल महेंद्र जी का मैसेज आया है, नाउ आई विल जस्ट एंजॉय द सॉन्ग्स फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम अंटिल 4 PM, इट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट For me to be active in the chat box till then, but I'm definitely listening. Thank you so much बताने के लिए, लगातार आप सुनते रहिए, enjoy करते रहिए। And इसके बाद मिश्रा जी का मैसेज है, आए हाय कहाँ से मिला आपको ये गाना, हम भूल गए थे इसको, आपने याद दिला दिया। जी हमारा काम ही यही है, भूले बिसरे गीतों को आप तक पहुँचाना। And अरविंद जी लिख रहे हैं, लगता है उन्नति मैम आज सबके अंदर का प्यार जगा के रहेंगी, पुरानी वाली याद आप। ओके, पुरानी वाली याद आप रही हैं, यानी कि याद आ रही है, लेकिन वाइफ के सामने रो नहीं सकते, चलो प्याज का सहारा ले लेता हूँ। क्या बात है, क्रिएटिविटी लेवल देखिए आप इनका। एंड एक किलो प्याज कोई हमको भी दे दो, ये लाइन हमारे अरविंद जी लिख रहे हैं क्योंकि इनको रोने का मन कर रहा है, फिलहाल रोना नहीं है। आइए लेके चलते हैं आपको के की आवाज़ की तरफ, और कहते हैं के इमरान हाशमी और प्रीतम, जहां ये ट्रियो साथ में आते हैं वहां बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर हिट तैयार होता है। तो आइए एंजॉय करते हैं तुझे सोचता हूँ, फिर मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर

0: हाँ जी, और आप एंजॉय कर रहे हैं केके की आवाज में तुझे सोचता हूँ। और ऑफ कोर्स हमारे अरविंद जी ने लिखा है कि इतने खतरनाक सॉन्ग पर रोना ही आएगा जी। चलिए आपको मुस्कुराना भी सिखा देते हैं। एंड इसके बाद लिखा है अमित जी ने, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ केके। बाय द वे, आपको कैसे पता चला? मुझे यही सुनना था। अब हमारे साथ एक कनेक्शन है जो हमारे लिसनर्स के साथ दिल से दिल तक का कनेक्शन होता है, तो हमें पता चल जाता है। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक आप सभी के लिए जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए छोटी सी बात यह है कि भैया जाओ पानी पीकर आओ, वाटर ब्रेक है आपके लिए। पानी वानी आप लोग नहीं पीते हैं, पीकर आइए। और हम मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर के राजा डटपड़ा से अरिजीत सिंह की आवाज़ में, तेरे होकर रहेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे रेडियो गान असली अपनी आज नदी के साथ। ये है आपका अपना इंडिया टॉप 20।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: रेडियो 99.6 FM presents India Top 20 songs. Song number 7.

0: हाँ जी, तो आप सुन रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। एंड हमारे साथ नाज़िया अंसारी जी जुड़ गई हैं, जो पूछ रही हैं उनकी मैम आ गई हैं जी। हम तो 2 बजे से ही आए हैं, आज आप थोड़ा सा लेट आई हैं। एंड साथ ही आपने लिखा है गुड आफ्टरनून टू यू, लेकिन आज आप बहुत परेशान हैं और परेशानी की वजह क्या है भाई? परेशानी की वजह ओके तो हम समझ गए, लेकिन ये बताइए कि गया कौन है, और अगर आपने उनसे बात नहीं की है तो जाकर बात कीजिए, क्योंकि कई बार बात करने से, चीज़ों को समझने से, वक्त देने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, शख्स भी वापस आ जाते हैं, और अगर इसके बाद भी नहीं आना चाहता तो भाई ज़बरदस्ती तो आप नहीं कर सकते हैं ना जी। हाँ, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, और अगर नहीं होता है तो बताइएगा। फिलहाल आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत करते हैं हम इंटर टॉप 20 में। और इंटर टॉप 20 में उन्होंने एक गाने की फरमाइश भी की थी, लेकिन आज फरमाइश तो नहीं है, यानी कि कॉलेज क्यों गोंडा नहीं है, तो आपकी फरमाइश तो हम नहीं ले सकते। लेकिन कमाल की बात यह है भैया कि आपका लक थोड़ा आपके साथ है, और आपका पसंदीदा गाना हमारी प्लेलिस्ट में पहले से ही मौजूद है। तो आइए एंजॉय करते हैं। विनोद राठौड़ की आवाज़ में आप सुनने जा रहे हैं बाजीगर फिल्म से किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने। एंड नाज़िया अंसारी जी, आप परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, और जो भी मुमकिन होगा वो सोल्यूशन लाने के लिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे टॉप 20 विद राजीव नती, और ये है रेडियो 89.6 FM।
1: Radio Gana Sali 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 5.

0: अरे आप सुन रहे थे किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग पता नहीं क्यों आज लक कुछ इस तरह से हो रहा है कि जैसे जैसे हमारे लिसनर्स का मूड है मेरे गाने की प्लेलिस्ट वैसे ही डिज़ाइन हो रखी है। फिलहाल नाजिया जी हमारी थोड़ी सी परेशान हैं और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ही आइए प्ले करते हैं अगला गाना। अगला सॉन्ग जो है वो बहुत ही प्यारा है, दिल है कि मानता नहीं फिल्म से आप एंजॉय करने जा रहे हैं, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, आए हाय आए, बहुत ही प्यारा नगमा है, एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। और लिखा है नाजिया जी ने, चेहरा कोई नहीं पड़ता, अब हर बात जुबान से बतानी पड़ती है। चलिए अच्छी बात ये भी है कि जब हम खुद बोल के बताते हैं तो हमें पता होता है कि सामने वाला हमारी अच्छे सी बात को समझ पाएगा, क्योंकि चेहरा पढ़ना कभी कभार गलत फहमियां भी क्रिएट कर देता है ना। और रही बात इसकी कि आपका चेहरा नहीं पढ़ा, आज ही सामने बैठो हमारे, हम ना पढ़े तो बताइएगा, तब ये शिकायत जरा कीजिएगा, अभी तो हम आपके सामने आए ही नहीं है, तो बताइए कैसे पढ़े हम आपका चेहरा। फिलहाल आप एंजॉय करते रहिए तू प्यार है किसी और का, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। Song number 4.

0: अंजी, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता, तेरा नाम है क्या? मेरा नाम उन्नति है, आपका नाम क्या है? हालांकि ये आंखों की बात मेरी नहीं हो रही है, किशोर दा ने बहुत ही प्यारी आवाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस गाने को गाया था। एंड हमारी नाजिया जी का कहना है कि चलो अब बेहतर लग रहा है, बहुत बहुत अच्छी बात है। एंड आपका हम अब इस्तकबाल करते हैं आपके अपने टॉप 20 में, क्योंकि अब हमारी नाजिया जी वापस आ गई हैं। एंड लिखा है जी मैम, लव यू टू नाजिया जी। एंड ओके, तो अरविंद जी की भैया तबीयत खराब है और ये बात उन्होंने तब बताई है जब हमारा पूरा शो खत्म हो चुका है। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, इसीलिए कहती हूँ पानी पीते रहिए, चीजों से दूर रहिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए, और अगर थोड़े से भी सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो जाके चेक करवा लीजिए। लास्ट डे तक इंतजार नहीं करना होता है दोस्तों। अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा सुनिए, अच्छा अच्छा गाइए। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे आखिरी के दो गानों की तरफ। एंड इसके साथ ही मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, लेकिन लेकिन लेकिन जाएगा कहीं नहीं, क्योंकि कुछ ही पलों बाद, कुछ ही लम्हों के बाद आपसे मिलेंगे अपने अगले वाले शो क्लिनिक 11 असली में, जिसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो अभी तक आप एंजॉय कर रहे थे इंडिया टॉप 20 विद आरजीनती, और आगे आप एंजॉय करेंगे क्लिनिक ज्ञान असली विद आरजीनती। तो जाइएगा कहीं भी नहीं, लेकिन अभी आपके लिए आपसे चाहेंगे इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वाले शो में। तब तक के लिए एंजॉय करते रहिए। आपको छोड़ के जाती हूँ इन दो गानों के साथ, पहला गाना बोल दो ना जरा और दूसरा गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में बवाल फिल्म से तुम्हें कितना प्यार करते हैं। बेहद ही रोमांटिक दोनों गाने आपके लिए पेश करते हैं। आई होप आज का शो आपने एंजॉय किया होगा, आज की प्लेलिस्ट आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा और अपने पसंदीदा गाने का जिक्र ज़रूर कीजिएगा चैट बॉक्स में। हम मिलते हैं इस प्रोग्राम के बाद अगले वाले शो में, तब तक के लिए सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 2।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: हाँ जी नमस्कार आदाब, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। घड़ी में वक्त हो चला है 4:17 बाय स्टूडियो क्लॉक और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरजी उन्नति एंड मेरे साथ मौजूद हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल विश्वकर्मा जी जो लेकर आते हैं हमारे साथ मिलकर के आपके हेल्थ वाला प्रोग्राम क्लीनिंग ज्ञान असली। और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपने गोंडा शहर की धड़कन। तो सर आपका स्वागत करते हैं हम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी रेडियो ज्ञानस्थली टीम का कि वो हमें ये अवसर प्रदान करती है कि हम लोगों की सेवा कर पाएँ। और कई बार ऐसे भी, मतलब इतने दिनों का ये जो तपस्या है हमारी, ये रंग भी ला रही है। कई सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो हमें रेडियो के माध्यम से जानते हैं और वो सीधे हमसे जुड़ते हैं, हमारा पता ढूंढते हैं, हमारा मोबाइल नंबर ढूंढ करके वो निकालते हैं और सीधे जाके जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, हमारी पूरी रेडियो की टीम का शुक्रिया और हमारे लिसनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो भैया आप अपने अपने फोन उठा लीजिए क्योंकि चैट बॉक्स के साथ साथ आपका कॉलिंग वाला भी खुला हुआ है। 6393316429 पर आप कॉल करके अपने डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं अपने सवाल अगर आप हैं क्यूरियोसिटी के साथ अपने हेल्थ को लेकर के।
1: जी, और कहीं ना कहीं उसी क्यूरियोसिटी का जवाब लेकर के, उसी क्यूरियोसिटी के को जो सेटिस्फाई करने वाली नॉलेज है, आपके हेल्थ से जुड़ी हुई जो समस्या है उसका समाधान है, इन सभी चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़िए और अपने समस्याओं का समाधान हमसे पूछिए।
0: सर आपको पता है पोषण माह चल रहा है।
1: जी, पोषण माह चल रहा है और तरह तरह के कैंपेन और तरह तरह के अवेयरनेस की बातें भी लोगों को बताई जा रही हैं और जिसमें मुझे लगता है कि आप भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
0: बिल्कुल, और ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक भी है।
1: अरे वाह, अब हाँ, चूंकि ये आपका फेवरेट टॉपिक हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अक्सर आप ऐसी बातें करते हुए दिख जाती हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई बातें करते हुए। और मतलब वही ईश्वर की देन होती है कि आपको एक ऐसा शो भी मिल गया जिसको आप पोस्ट करती हैं जिसमें हेल्थ से ही संबंधित बातें होती हैं और हेल्थ के प्रति काफ़ी कंसर्न रहती हैं उन्नति मैम। और ठीक है, तो बताइए आपका जो फेवरेट टॉपिक है उसके बारे में लोगों को क्या बताएंगी आप।
0: वैसे तो आज जब मैं पोस्टर डिज़ाइन कर रही थी तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए, न्यूट्रिशन रखा जाए, पोषण रखा जाए, फिर मुझे याद आया कि प्लेट टू पावर रखा जाए।
1: अरे वाह, ये बड़ा ही, मतलब आपने अच्छा इसको एक टर्मिनोलॉजी दी है, प्लेट टू पावर। वाह, मैं इसकी तारीफ करना चाहूँगा और अब इसको मैं ही व्याख्या कर देता हूँ। चूँकि भाई जाहिर सी बात है, हमको एनर्जी चाहिए, हमको काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, बढ़ने के लिए या ग्रोथ करने के लिए, शारीरिक मानसिक या जो हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसके लिए।
0: आपसे माफ़ी चाहेंगे, हमारे पास एक कॉल है। हेलो।
2: हेलो।
0: हाँ जी, आपका नाम?
2: जी सुनीता मौर्य हमारा नाम है, हम गुड़वा घाट से बोल रहे हैं।
0: जी बताइए, आपका क्लिनिक ज्ञान असली में स्वागत करते हैं, क्या आपका कोई सवाल है?
2: जी हमारे कान में हरदम खुजली होती रहती है।
0: चलिए अब इसका जवाब तो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट ही दे सकते हैं आपको।
1: जी आपने अपना नाम सुनीता बताया।
2: जी सुनीता मौर्य हम गुड़वा घाट से बोल रहे हैं।
1: सुनीता मौर्य जी, बहुत बहुत आपका हम स्वागत करते हैं, आपका गुड़वा घाट से भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ऐसे दूर दूर लोगों से जब हमसे जो लोग जुड़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप?
2: सर हमारे कान में ऐसे खुजली होता है हमेशा।
1: अच्छा, दोनों कान में खुजली होती है या एक कान में खुजली होती है?
2: कान में, जो हम एक बार दवा लाइक डाले ना कुछ आराम ना हुआ, फिर दोबारा मंगाया ना दवाई, लेकिन वही से खुजली बंद ना हो रहा
1: है। आपने बिल्कुल सही कहा सुनीता जी। देखिए, कान में लगातार खुजली होना ये संकेत हो सकता है फंगल ओटाइटिस का, मतलब जो कान के जो पर्दे होते हैं उसके आसपास की जो दीवारें होती हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है
2: जी।
1: इसके लिए आपको कुछ एंटी फंगल दवाइयाँ खाने के लिए और कुछ विशेष तरह के ड्रॉप डालने के लिए दी जाते हैं, परंतु ये कान को देखे बिना, कान की स्थिति का जायज़ा लिए बिना दे पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर तो ये होगा कि आप हमसे संपर्क करें आवास विकास परिषद में और ज़रूर हम देख करके आपको उचित से उचित सुझाव देंगे निःशुल्क।
2: जी, आप कहाँ आना पड़ेगा हमको?
1: आवास विकास में उपाध्याय आटा चक्की के पीछे।
2: जी
1: जी, सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और सुनीता जी का प्रश्न ये था कि कान में खुजली होती रहती है, फंगल ओटाइटिस का केस लग रहा था, बाकी हमने इनको बुलाया है और यदि ये आती हैं तो ज़रूर हम इनका बेहतर से बेहतर उपचार करने का प्रयास करेंगे।
0: ऑल राइट, तो चलते हैं वापस से अपने टॉपिक पर जो कि हमारा प्लेट टू पावर है, यानी कि जो आप खाते पीते हैं वो किस तरह से आपके शरीर को लगता है।
1: जरूर, और हम इसी की व्याख्या कर रहे थे कि जो भी हमको ऊर्जा चाहिए होती है उसको पावर देने के लिए जो ईंधन होता है वो होता है हमारा भोजन। और भोजन को चूंकि हम प्लेट में खाते हैं, थाली में खाते हैं, तो उन्नति मैम ने एक बहुत ही सुंदर सा एक जोड़ के बना दिया है।
0: हमारे पास दोबारा कॉल है,
1: ठीक है, आज ढेर सारे लिसनर्स हमसे जुड़े हैं।
0: हेलो,
3: नमस्कार सर जी को। नमस्कार
1: जी, बहुत बहुत नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएंगे?
3: श्री देवी प्रसाद।
1: श्री देवी प्रसाद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं, बताइए आज क्या प्रश्न लेकर के आए हैं आप?
3: हमारा सवाल यही है सर कि जैसे भोजन करने के बाद तुरंत मैदान लग जाता है
1: जी,
3: उसके बाद में सर हल्का हल्का पेट दर्द होता है जी, और दवा भी खाते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा जैसे दो तीन खुराक दवा लगातार दो तीन दिन में खा लिए तो लैट्रिन टाइट हो जाती है, फिर उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है।
1: जी जी जी, मैं समझ गया। और क्या इसके अलावा भी और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप?
3: इसके अलावा एक सवाल और है कि पैर में जैसे छोटे छोटे दाने निकलते हैं, फिर उसके आस पास में बहुत खजवाता है सर, खुजली होती है।
1: ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको दो तीन चीज़ें जैसे लैक्टिक एसिड बैसिलस जो कि हमको दही वगैरह से मिल जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसके लिए आप कुछ सप्लीमेंट बी को सूल्स वगैरह ले सकते हैं, और इसके अलावा कभी कभी कुछ हमें जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ती है, परंतु जो हम ऐसी दवाइयाँ कॉमन मेडिकल स्टोर वगैरह से लेकर के खाते हैं तो वो उसमें वो नॉर्फ्लॉक्स टीजेड या ओफ्लॉक्स ओजेड करके ऐसे दवाइयाँ दे देते हैं जो कि एंटीबायोटिक होती है, तो उसको खाने से लैट्रिन का टाइट होना तो स्वाभाविक है, तो आवश्यकता है कि आप वो दवाइयाँ ना लेकर के लैक्टिक एसिड बैसिलस यानी कि जो आपके गुड बैक्टीरियाज हैं जिसको आप वीजी लैक के नाम से प्राप्त कर सकते हैं, तो वीजी लैक दवा लीजिए और इसको आप 15-20 दिनों तक अपने भोजन के बाद खाइए, भोजन में अपने शामिल करिए, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा जी। और इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है आपका कि दाने निकलते हैं उसके आसपास खुजली होता है, जी देखिए ऐसे मौसम में कई बार मच्छर वगैरह या किसी दूसरे कीड़े फतिंगों के काटने की वजह से भी हो जाता है, और कई बार ये छोटे मोटे स्किन के इन्फेक्शन भी होते हैं, तो यदि कोई ऐसा दाना निकलता है तो उस पर आप जो घरों में हम रेगुलर एंटी फंगल और ये क्रीम यूज़ करते हैं तो वो क्रीम आप लगा सकते हैं, जैसे सिप्लाडीन हो गया या क्वाडीडर्म हो गया, जो भी क्रीम आपके पास उपलब्ध हो वो क्रीम लगा सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा।
3: जैसे पैर में दाना निकला और आसपास में खुजली होता है
1: जी, तो वहाँ पे आप जो घरों में साधारण क्रीम सिप्लाडीन बीटाडीन या कोई ऐसी क्रीम होती है वो आप लगा सकते हैं जिससे ये समस्या आपको मतलब कम होगी
3: जी। जो चेहरा पे लगाया जाता है वही क्रीम?
1: नहीं नहीं, चेहरा पे नहीं, जो नॉर्मल दांत खाद खुजली में या फिर कटने जलने छिलने पे ये सारी क्रीम लगाई जाती है वो क्रीम आप लगा सकते हैं।
3: जी सर, जी सर
1: जी, क्या इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं आप?
3: और कोई जानकारी नहीं, आप आते हैं इसलिए हम बहुत अच्छा समझ लीजिए कि फील कर रहे हैं सर, कम से कम हफ्ते में एक दिन बात हो जाती है और कोई सवाल है तो उसका समाधान हो जाता है, और हमारे गोंडा में चैनल खुल गया है, पहला चैनल रेडियो स्टेशन 89.6 FM ज्ञानस्थली
1: जी जी,
3: तो इसलिए बहुत अच्छा फील हो रहा है।
1: बिल्कुल, आप लोगों का यही जो प्रेम है यही प्यार है जो हमें बल देता है आगे जी, हमें इसी से बल मिलता है कि हम आप लोगों की सेवा करें, और ठीक है हमारे पास कुछ और भी लिसनर्स हैं, क्या आप कोई और जानकारी चाहते हैं देवी प्रसाद जी?
3: कोई जानकारी नहीं सर, जानकारी देने के लिए तहे दिल से थैंक यू सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ये हमारे साथ जुड़े थे श्री देवी प्रसाद जी, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हमेशा हमको कॉल करते हैं अपनी समस्याओं के बारे में और कई बार अवेयरनेस से संबंधित बातें भी करते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और उन्नति मैम से जानते हैं कि पावर टू प्लेट यानी जो ऊर्जा की
0: प्लेट टू पावर,
1: अच्छा प्लेट टू पावर, थोड़ा सा मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया, मैं उसके लिए हार्दिक क्षमा चाहता हूँ। तो प्लेट टू पावर जो है इनका, मैं जानना चाहता हूँ कि इनके प्लेट में क्या क्या पावर डाल करके लाई हैं, आप प्लीज प्रारंभ करिए।
0: यही तो बात है, क्योंकि हमें आजकल यही समझ में नहीं आता है कि एक सही न्यूट्रिशन या फिर सही बैलेंस डाइट क्या होता है। इवन बचपन से बायोलॉजी की बुक में सबसे पहला पेज यही होता था, इवन मैंने कई बार देखा है पिक्चर्स बनी हुई है, बच्चे जानते हैं हेल्दी फैट्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट हो, और इन सबको मिलाकर एक बैलेंस डाइट बनता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे न जाने क्यों लोगों को पिज्जा बर्गर चाउमीन समोसा चाट पकौड़े पानी पूरी याद आता है।
1: जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कमाल की बात ये भी है कि जब हम सही पोषण की बात करते हैं तो लोग कहते हैं अरे ज्ञान मत दो इतना ज्यादा।
1: जी
0: और अगर आप वो लोग हैं जो फल और सब्जियां ज्यादा खाते हो या आपके घर पे स्नैक्स नहीं मिलते हैं तो लोग आपसे सवाल करेंगे बेटा तुम डाइट कर रहे हो क्या।
1: हाँ ये भी एक काफ़ी प्रश्न है कि लोग मोटे लोगों को ही हेल्दी मानते हैं, जो थोड़े मोटे गोलमटोल दिखते हैं वो लोगों का मानना होता है कि ये ऐसे लोग हेल्दी होते हैं।
0: बिल्कुल, जहाँ हमारी कंट्री से बाहर जो फिट लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, वहीं हमें लगता है कि हमारे इंडिया में जिनका वेट ज़्यादा है जिनकी उम्र ज़्यादा है और हम उन्हें रिस्पेक्ट ज़्यादा देते हैं।
1: जी
0: जो कि अच्छी बात है, मैं रिस्पेक्ट देना चाहिए सीनियर्स को, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे सीनियर्स हैं जो हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हैं उनकी आगे आने वाला जो फ्यूचर है जो 10 से 12 साल के बाद है क्या वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे, जो आज वो खा रहे हैं क्या ये उन्हें डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी शुगर और कहीं ना कहीं हार्ट अटैक की तरफ लेके ना जा रहा हो।
1: लेके ना जा रहा हो तो मुझे लगता है कि इस पर मुझे थोड़ा सा संदेह है, पर लेके जा रहा है इस पे मुझे कोई संदेह नहीं है।
0: बस यही एक सवाल है कि जो आज हम खा रहे हैं क्या वो फ्यूचर के लिए बेहतर है।
1: चलिए इस पे अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और प्लेट टू पावर आज का जो टॉपिक है, चूंकि मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैं बार बार लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि उन्नति मैम की क्रिएटिविटी है इसमें। देखिए जो आपका प्लेट टू पावर है उसमें बेसिकली आज के डेट में जैसा कि उन्नति मैम का प्रश्न है कि लोग ये जो जंक फूड खा रहे हैं चाउमीन बर्गर, मतलब लिटरली अभी कुछ दिन पहले मेरे एक पेशेंट आए थे, छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। वो उनके बॉडी का वेट लगभग 108 किलो था
0: जी,
1: और हाइट भी अप्रोक्सीमेट 5'6" या 5'7" के आसपास ही रही होगी, मतलब वो ओवरवेट थे काफ़ी ज़्यादा। तो उनसे मैंने पूछा, उनको थोड़ा पाइल्स की दिक्कत थी और ब्लीडिंग स्टूल की प्रॉब्लम थी, मतलब लेटरिंग में ब्लड आ रहा था उनके, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बाहर की चीज़ें खाते हैं, चूंकि वो मेरे जानने वाले भी थे तो मुझे पता तो था ही खाते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप एक ही दो बार खाते हैं या एक ही दो पीस खाते हैं जो भी आप चाट पकौड़ी खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, हम जब खाते हैं तो फिर घर पे भोजन नहीं करते हैं, हम पेट भर के वहीं खा लेते हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए कि जब आप जंक फूड डेली खाने लगते हैं, जैसे कभी ठीक है स्वाद के लिए खा लिया तो जैसे ठीक है, टेस्ट चेंज करने के लिए कभी स्वाद ले लिया आपने, आपका मन कह दिया, परंतु आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं आजकल बच्चों में एक बड़ी गंदी हैबिट, जैसे जो ये गुटखा सिगरेट और ये सारी चीज़ों की लत बच्चों को लग रही है, उसी तरह मैं ये देख रहा हूँ कि फास्ट फूड जो है ये बच्चों में एक लत की तरह लग रही है।
0: बिल्कुल,
1: और मतलब ये कहीं ना कहीं इस पे कई सारी रिसर्चेस भी हुई हैं जो खाने में ये जो अजीनो मोटो और ये जो वेस्टर्न मसाले हैं, मतलब वो विनेगर, जैसे आप देखिए भारतीय मसालों में जो भी चीज़ें चाट पकौड़ी बनती भी है उसमें ये ऐसे मसाले जो रासायनिक मसाले केमिकल मसाले नहीं यूज़ होते हैं, परंतु आप देखेंगे कि जो ये वेस्टर्न कल्चर है फूड का इसमें बहुत सारे रासायनिक मसाले भी यूज़ होते हैं जो केमिकल्स होते हैं। तो वो देखिए आप समझिए, जैसे वो आपको एक दो बार खाने में हमको ये लगता है कि इसको अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो हमको थोड़ा सा एसिडिटी हो जाएगा, थोड़ा सा अल्सर वल्सर हो सकता है, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बट आप समझिए कि इसको एक सिंगल एक्सपोजर पे प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर रेगुलर डेली बेसिस पे आपको मैं सिंपली एक बात बताता हूँ, जो आप अजीनोमोटो डालते हैं जिसको टेस्ट इन्हेंसर बोलते हैं, ये नेचर में लिड होता है, मतलब कांच होता है, तो अब ये लोगों के मन में कुछ ये भी प्रश्न आ रहा होगा, तो कांच होता है तो गल कैसे जाता है, देखिए कांच भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे मेटल धातुएं भी बहुत तरह की होती हैं, सोडियम बहुत ही कम उस पर गल जाता है, लोहा वगैरह बहुत उसका हाई टेम्परेचर पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये नेचर में लेड होता है, और यदि इसका आप रेगुलर सेवन करते हैं परमानेंट तो ये आपको आपके बॉडी में आपके इंटेस्टाइन्स में कोलोन कैंसर जैसी घातक बीमारी को अंजाम देने की क्षमता रखता है। अजीनोमोटो मतलब अजीनोमोटो यदि आप बराबर खाते हैं तो आपको आंतों का कैंसर होने के खतरे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक उसी तरह जो बच्चे आजकल जंक फूड के आदि हो चुके हैं, मैं डेली देखता हूँ सड़कों पे जो भी ये बर्गर चाउमीन फ्रेंच, अच्छा चाउमीन बर्गर तक तो भी एक सीमित था, आजकल मैं देख रहा हूँ और नए नए वो मंचूरियन मोमोज का जो है ग्रेवी बना करके और पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं, मुझको तो नाम भी उसका नहीं मालूम है। अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जिसमें इसका वो, तो मुझे लगता है मैं फेल ही हो जाऊँगा। ये जो रेगुलर बेसिस पे बच्चे मुझको कोचिंग के बाद शाम के समय में स्कूलिंग के बाद दिखते हैं, क्योंकि भाई घरों घर वाले उनको 150 रुपये 200 रुपये देकर भेजते हैं, बच्चा हमारा जा रहा है बाहर कुछ खाएगा पिएगा, लेकिन बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं फास्ट फूड के। मतलब सारी पॉपुलेशन नहीं है, फिर भी मुझे लग रहा है 40-50% बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड के, स्ट्रीट फूड में जंक फूड के एडिक्ट हो चुके हैं और वो डेली खा रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि अगर आपका बच्चा डेली ये रासायनिक मसाले, केमिकल मसाले से बनी हुई चीज़, ऐसे जंक फूड खा रहा है, तो उसके बॉडी में ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे कि ऐसी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां धीरे धीरे डेवलप होंगी। मतलब 2-4 दिन में वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन यदि आप रेगुलर खा रहे हैं तो आंतों का कैंसर, डायबिटीज़, शुगर, पेट की बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसी बीमारियां और ऐसी और तमाम बड़ी बड़ी बीमारियां वो क्रिएट करने की क्षमता रखता है जो जंक फूड फास्ट फूड आपके बच्चे रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं।
0: ऑल राइट, और क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं आपके बैलेंस डाइट की, सही पोषण की, क्योंकि पोषण माह चल रहा है तो न्यूट्रिशन की बात हो रही है, और न्यूट्रिशन में मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। ये बात सिर्फ जंक फूड की नहीं है, आपके अपने खाने की भी है। आप जो खाना घर पर बना रहे हो, मैं देख रही हूँ आजकल लोगों के बीच में खाने को टेस्ट एनहेंसर की तरह जो आपने बात की वो तो होता ही होता है, बट इसके अलावा हमारा इंडियन खाना जो पहले एक साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता था, जिसमें हल्दी आपकी कहीं ना कहीं एंटीबैक्टीरियल डाली जाती थी, धनिया ठंडक के लिए डाला जाता था, स्पाइसेस इसलिए होते थे ताकि खाना खराब ना हो, बट वहीं पर आजकल हम एक चीज नोटिस करते हैं, वो ये है कि जब तक तेल बहुत ज्यादा ना पड़ जाए खाने में, मसाले बहुत ज्यादा ना पड़ जाए, तब तक हमें लगता है कि खाने का टेस्ट नहीं आया
1: जी।
0: और ये चीजें कहीं ना कहीं नुकसान कर रही हैं, और इसी की वजह से इंडिया में धीरे धीरे वेट भी बहुत तेजी से गेन होता जा रहा है। एक तो बाहर का खाते हैं, दूसरा एक और चीज है जो शायद लोगों में अभी इतनी पॉपुलर नहीं है यंगस्टर्स को छोड़कर, वो है कैलोरी का कॉन्सेप्ट। अगर आप किसी बड़े को, स्पेशली अपने घर में मम्मी पापा को, आपसे बड़े दादी दादा को ये समझाओ कि आपको पर डे कितनी कैलोरीज खानी है, एंड वो कहते हैं कि अच्छा अंग्रेजी मीडियम हो, हमने तुमको पढ़ाया, तुम हमको पढ़ाओगे अब
1: जी।
0: ऐसा होता है
1: जी।
0: इवन मेरी मम्मी कहती है तुम तो पागल हो चुकी हो, तुम्हें तो हर एक चीज काउंट करने की आदत है, बिस्किट के पीछे पैकेट में देखोगी, 5 रुपए का बिस्किट है उस पर भी सर्विंग साइज देख रही होगी, कितने बिस्किट खाने हैं कितने नहीं खाने हैं, कितनी कैलोरीज हैं, और पीछे हमें आज तक न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना आया ही नहीं है
1: जी।
0: ये बात सच है कि जब भी हम पैकेट के पीछे देखते हैं तो उसमें 100 ग्राम की बेसिस पे लिखा होता है कि 100 ग्राम में 500 ग्राम
1: जी,
0: और हम उसको कभी रीड सही से कर ही नहीं पाते
1: जी। हमें लगता है जितना लिखा है उतना इस पैकेट के अंदर है,
0: बिल्कुल हम उसे कभी रीड नहीं कर पाते, और हम रीड करते भी नहीं है, हम सिर्फ पैकेट के बाहर की शक्ल देख लेते हैं और वही उठाकर घर में ले आते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और ये चीजें ही है हमारी खराब आदतों की वजह, और आजकल जो वेट गेन होता जा रहा है, जो लोग बीमार होते जा रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें सही न्यूट्रिशन के बारे में पता ही नहीं है। और अगर कोई हमको आकर ये बोलने लग जाए कि सही न्यूट्रिशन लीजिए, तो हमें लगता है कि वो तो ज्ञान दे रहा है
1: जी।
0: ऐसा मेरे घर में अक्सर होता है
1: जी जी।
0: फिलहाल के लिए अब, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएं और वहां जाकर आपको एक डाइट चार्ट मिल जाए और कहा जाए कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, इसको भी छोड़ दीजिए, और तब आपको पता चले कि भैया आप तो चाय भी नहीं पीना है
1: जी,
0: तो बुरा ज्यादा लगता है,
1: बहुत बुरा लगता है।
0: और क्योंकि डायबिटीज होती जा रही है इंडिया में, इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, हार्ट अटैक इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसके पीछे की वजह यही है कि जो हमारा खान पान है, एक तो वो बहुत गलत हो गया है
1: जी,
0: दूसरा हम कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में भी बहुत पीछे हैं, वर्कआउट नहीं करते, हमें लगता है कि सिर्फ योगा जिसमें मात्र हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं वो कर लेने भर से हमारा सब कुछ मैनेज हो जाएगा
1: जी।
0: चलिए तो आपसे बात करते हैं कि एक सही पोषण क्या होता है।
1: देखिए यदि हम सही पोषण की बात करें तो आप इस तरह से समझिए कि इसको आप मतलब साधारण रूप से सर्च करेंगे तो पा भी जाएंगे, आपका यदि भोजन जिसमें 25% प्रोटीन के सोर्सेज हों, मतलब यदि आपकी थाली को हम 1 किलो का मान के चलते हैं वजन के हिसाब से, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यदि आपकी थाली 1 किलो की है तो उसको आप कुछ इस तरह डिवाइड करिए कि 25% उसमें प्रोटीन के सोर्सेज हों, मतलब या तो गाढ़ी दाल हो, पनीर हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उसमें कुछ अंडा हो, मछली हो या चिकन हो। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम अंडा, मछली और चिकन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बॉइल्ड चिकन की।
0: वो बहुत ज्यादा ऑयल में फ्राई चिकन की बात
1: जी, वो डीप फ्राइड और वो चिकन लॉलीपॉप और वो जो चिकन पॉपकॉर्न होता है, मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ।
0: बॉइल्ड सूप आप ले सकते
1: जी, बॉइल्ड चिकन सूप और इन टाइप की चीजों की मैं बात करता हूँ। तो 25% आपके जो प्रोटीन सोर्सेज हो, इसके अलावा 25% आपके भोजन में अनाज हो, ठीक है। यदि आपका 1 किलो का थाली है तो 250 ग्राम का पनीर के सोर्सेज, 250 ग्राम अनाज के सोर्सेज, 40% उसमें सब्जियां और सैलेड, खीरा, गाजर, ये सारी इंक्लूड हो, मतलब जिसमें सैलेड
0: आपके बाकी के विटामिन मिनरल्स और फाइबर का सोर्स
1: जी, विटामिन मिनरल्स और फाइबर्स का सोर्स जो कि 40% हो, और 10% आपके भोजन का हिस्सा फ्रूट्स हो, फल हो, जिसमें विभिन्न प्रजातियां आती हो। फल का मतलब सिर्फ केला, आम, अंगूर नहीं होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की। यदि आप अपने भोजन में 25-25-40-10, ठीक है, ऐसे एक रेशियो बना करके चलते हैं तो ये भोजन एक बैलेंस डाइट होगा। अब एक चीज का और ध्यान रखिए कि जैसे आयु के हिसाब से, उम्र आपकी कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, आपका बॉडी वेट कितना है, आपका BMR इंडेक्स कितना है, ये ऐसे बहुत से छोटे छोटे पैमाने होते हैं जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, परंतु हमारे एक जनसाधारण को, आम जनता को, इतने सारे पैमानों की बारीकियां सिखा पाना बहुत ही आसान तो नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि 25% प्रोटीन का सोर्स, 25%, अच्छा एक बात मेरे जहन में आ गई, मैं ये भी क्लियर कर दूं, बहुत सारी माएँ जो होती हैं जिनके बच्चे 3 साल से लेकर के 8-10 साल तक के बीच के हैं, उनका कंप्लेन ये होता है कि बच्चा हमारा मोटा नहीं हो रहा है, मांस नहीं चढ़ रहा है इसके बॉडी पे। आप देखिए, जैसे जो ये 3-4 वर्ष के ऊपर से लेकर के और लगभग 13-14 वर्ष की जो आयु होती है, एक बच्चा जो मेल बेबी है उसमें ये ऐसा एज होता है कि इतने में उसके बॉडी का बहुत तेजी से शारीरिक विकास होता है। जितना वो ये चीज़ें यूज़ करता है वो सारा उनको बॉडी में कंज्यूम हो जाता है, जितना कैल्शियम वो खाता है वो सारा कैल्शियम हड्डियों में यूज़ हो जाता है, सारा प्रोटीन मसल बिल्डअप में यूज़ हो जाता है, सारे मिनरल्स उसके रेगुलेशन में यूज़ हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे को यूजुअली जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ठीक है बच्चे के शरीर पे मांस नहीं चढ़ रहा है, बच्चा क्या खाता है, तो बच्चा कहीं आधा एक रोटी खाता है, इतना सारा चावल खाता है, नॉनवेज हमारे यहाँ खाते नहीं हैं या खाते हैं तो कभी हफ्ते महीने में एक दिन बनता है, अंडा हमारे बच्चे को पसंद नहीं है या अंडा हम लाते नहीं हैं, पनीर भाई ओकेशनल बनता है, जब कोई फंक्शन होता है तब बनता है, रोटी वो आधी खा रहा है, चना जैसी कोई चीज़ वो खा नहीं रहा है, दाल वो आधी कटोरी मुश्किल से ले पा रहा है जिसमें 80% पानी और 30% 20% दाल है। आप समझिए कि उस बच्चे को, अब मैं यदि अनुमान से बताऊं तो मान के चलिए कि एक बच्चा है जिसके शरीर का वजन 20 से 30 किलो है, उसको लगभग मान के चलिए 200 से 300 ग्राम जो है पनीर या चना जब वो खाएगा तब उसके बॉडी में वो रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी जितना उसके बॉडी को टोटल चाहिए। अब लोग कहते हैं कि 200 ग्राम चना कैसे खा सकता है बच्चा, 200 ग्राम, देखिए एक बार में नहीं खिलाना होता है, इसको शिफ्ट में खिलाइए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, तभी मसल बिल्डअप होगा उससे। लोगों को लगता है कि बस दाल भात खा के बच्चा हमारा एकदम से मोटा हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनका BMR हाई होता है तो उनके बॉडी में जल्दी डिपॉजिट नहीं होती है, वो जितना लेते हैं वो सारा कंज्यूम कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी एक जगह स्थिर बैठती नहीं, वो हमेशा कूदते फांदते रहते हैं। तो ऐसे कई पैमाने हैं, BMR हो गया, वेट हो गया, एज हो गया, आपका हाइट हो गया, जिनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कितना लेना है। ये तो मैंने परसेंट बताया कि इतना परसेंट प्रोटीन, इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट, इतना परसेंट ये सोर्सेज और इतना परसेंट फ्रूट का सोर्सेज। अब इसमें कितना ग्राम चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये तब हम बेहतर बता सकते हैं जब हमसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए पूछा जाए और हम उस व्यक्ति विशेष का एक अनुमानित हाइट, वेट और ये सारी चीज़ें पहले से पता कर सकूँ।
0: ऑल राइट, यानी कि आपकी कैलोरीज, आपको कितना कुछ खाना है क्या नहीं खाना है, ये तभी हम बता सकते हैं जब आप अपने बारे में बताएंगे कि आपका वेट कितना है, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, आपका फिजिकल काम कितना ज्यादा है, कि आप चेयर पे बैठ के कर रहे हो।
1: बिल्कुल। और देखिए जैसे क्या होता है, मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ, जैसे कई बार होता है कि पेशेंट का सब ठीक है, उसका बॉडी वेट भी ठीक है, एज भी ठीक है, सारी कुछ चीजें ठीक है, बट उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो यूरिन में प्रॉब्लम है, किडनी थोड़ा सा वीक है, या हड्डियों में दर्द रहता है, तो पता चलता है कि उनके बॉडी का जो फीटो प्रोटीन है वो हाई हो रहा है, तो उनको हमें प्रोटीन कम देना है। ऐसे कई सारे मेडिकल कंडीशंस भी पैदा हो जाते हैं।
0: अच्छा सर एक बात है, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो मुझे लगता है एक तो वेजिटेरियंस, दूसरा हमारे घर में जितने भी एल्डर्स हैं
1: जी,
0: इनका प्रोटीन हमेशा ऑलमोस्ट 15 से 10 के बीच में ही होता है
1: जी,
0: क्योंकि इनके पास खाने में क्या चीजें होती है, दाल होती है जो कि कभी कभी बनती है, रोज दाल तो कोई खा,
1: और जो बनती भी है वो प्रॉपर दाल नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: एक कटोरा दाल का मतलब ये हुआ कि आप चम्मच ऐसे धसाइए तो आपके चम्मच में पानी नहीं आना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और सिर्फ दाल आनी चाहिए, ऐसी दालें बनती नहीं है घरों में।
0: और इसके बाद आता है हमारे पास रोटी, रोटी जो कि एक अच्छा फाइबर का सोर्स हम मान सकते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। फिर आता है चावल, क्योंकि रोटी है तो चावल ना हो, चावल है तो रोटी ना, वैसा हो नहीं सकता, तो चावल है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। इसके बाद हम ऐड करते हैं सब्जियां, सब्जियां जो कि तेल में फ्राई होकर निकली हुई है, एंड स्पेशली वो आलू की ज्यादा होती है।
1: आलू सभी में रहेगा, उसके साथ एडिशनल ये गोभी, करेला, भिंडी, तरोई, ये सब कम रहेगा। ये जो सब्जियां होती हैं, कांदा, मतलब जो आप देखिए पसंद भी लोगों को कैसी सब्जियां आती हैं, कद्दू, बैगन, वो क्या कहते हैं, मतलब जो इजी, कुछ लोगों को वो घुइयां पसंद होती है, कुछ लोगों को गंजी बड़ी अच्छी लगती है, करेला किसी को नहीं अच्छा लगता, लौकी बस खा लेते हैं किसी तरीके से, मटर सबको अच्छा लगता है, तीन तीन बार खाते हैं ठंडियों में, शुगर वाले मरीज उधर से शुगर बढ़ा के आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो कुछ खा भी नहीं रहे, फिर मैं पूछता हूँ मटर वटर तो खा रहे हैं नहीं खा रहे, हाँ हाँ डॉक्टर साहब खा रहे हैं, दबा के खा रहे हैं, बस बस यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है।
0: बिल्कुल, यानी कि हमारा जो एक बैलेंस डाइट होता है, जो इंडियन खाना होता है, वो कहीं ना कहीं पूरा कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, और हमारा फिजिकल वर्क उतना नहीं होता
1: जी।
0: इसका इम्पैक्ट आपके वेट पर पड़ता है, आपके लिवर पे पड़ता है। और हम आपको बता दें कि आजकल लोगों को फैटी लिवर बहुत तेजी से हो रहा
1: जी।
0: है। इसके पीछे की वजह ये नहीं है कि आप शराब पी रहे हैं या कुछ और करें,
1: बिल्कुल नहीं,
0: आप इतना ज्यादा फैट कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं कि आपकी लिवर को वो थोड़ा सा ओवरलोड लग रहा है।
1: एक कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा लेना और दूसरा कैलोरी बर्न ना करना,
0: बिल्कुल,
1: ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर।
0: अब देखिए 1700 कैलोरीज अगर आप अच्छे खासे वेट के साथ हैं तो इतना तो आपके लिए जरूरी है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर आप 2000 के करीब जा रहे हो और आप उसको बर्न नहीं कर रहे हो तो वो फैट के रूप में कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है, और यही है जहां से फिर आपका इंसुलिन गड़बड़ करना शुरू करता है। अब इतनी सारी जानकारी मुझे हो चुकी है क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है
1: जी, और 2 वर्षों से ऐसे हेल्थ से जुड़े हुए शो को मैडम होस्ट कर रही हैं।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एक बैलेंस डाइट को समझाना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप, मैं अपने घर पे दिन भर कहती रहती हूँ मेरा प्रोटीन इंटेक आज 65 है, मेरा प्रोटीन आज 85 हो गया, मम्मी कहती है तुम बस प्रोटीन के पीछे ही पड़ी हो
1: जी।
0: मैं हर एक चीज का हिसाब रखती हूँ कि आज सुबह से मैंने प्रोटीन कितना खाया, आज 30 ग्राम ब्रेकफास्ट में खाया था तो 40 ग्राम मेरा लास्ट में खाना होगा, इसके बाद हमारा फाइबर कितना है। फाइबर को लेकर भी लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, फिर कहते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कई लोग फाइबर ले लेते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, और कई लोग फाइबर लेते ही नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दाल रोटी सब्जी और चावल में तो हमारा एक कंप्लीट डाइट होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इंडिया से बाहर देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे पहले करेला खाते हैं, फिर चिकन खाते हैं, और फिर कहीं जाकर उन्हें चावल की छोटी छोटी बोल्स मिल जाती हैं
1: जी।
0: और ये चीजें मैंने सच में नोटिस की है, एक 2 साल का बच्चा बैठ के करेला खा रहा है और हम अपने यहाँ के बच्चों को कह रहे हैं कि अब करेला खा लो।
1: बिल्कुल।
0: करेला कौन खाता है, दाल कौन खाता है?
1: देखिए मैं ये भी बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं ये जो बच्चों को आप स्वतंत्रता देते हैं जंक फूड खाने की, ये एक बहुत बड़ी कारण है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपके बच्चों का जो घरेलू खाना होता है उससे उनका जो मन धीरे धीरे हटने लगता है, वो घरेलू खाना नहीं खा पाते हैं। इसके पीछे का कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो एपेटाइट एक्टिवेट ही नहीं होती है कि हाँ खाना खाना है, वो एपेटाइट उनकी सिर्फ और सिर्फ ऐसे जंक फूड और इन चीज़ों के लिए एक्टिवेट होती है। तो बच्चों को आप अपने जंक फूड से बचाएं, उनको रेगुलर रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल ना खाने दें, और जो खा भी रहे हैं उसमें भी थोड़ा फिल्टर लगाएं कि वो जो ज़्यादा जंक होते हैं चाइनीज फास्ट फूड जिसको बोलते हैं उनको ना खा करके कुछ साधारण चीज़ें जैसे बर्गर खा लिया, समोसा पकौड़ी, ये हमारे भारतीय शैली का है, अगर ताज़ा बना है तो ठीक है, ज़्यादा बासी है तो दिक्कत है, ऐसा करके इन चीज़ों पर ज़रूर हमें पाबंदी और प्रतिबंध लगाने चाहिए।
0: और उसमें भी ध्यान रखना है कि आप किस क्वांटिटी में खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं ज़्यादा मैटर करता है, कितना खा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, मतलब ये नहीं है कि आप समोसा खा रहे हैं तो आज पेट भर के 6-7-8-10 समोसे ही खा लेते हैं, समोसा आपको बस एक ही खाना है। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है, ऐसा अक्सर देखा है, लोग दो दो समोसे खा जाते हैं, तीन खा जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं सबके लिए दो दो ही लाए थे। तो देखिए, जंक फूड आप जितना कम से कम खाएंगे उतना बेहतर होगा आपके
0: और इस पे भी फ्लेक्स होता है कि हम तो इतना खा लेते हैं, तुम क्यों नहीं खा पाते हो।
1: जी
0: मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, लोग मेरे एपेटाइट को देख के कहते हैं बस इतना सा, आपने इतना सा देखा है बट आपने ये नहीं देखा कि जो मेरा खाना है उसमें फाइबर कितना ज्यादा था, फाइबर बहुत जल्दी आपके पेट को भर देता है।
1: बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही सारे कारण हैं कि पेट की समस्याएं आजकल हर एज ग्रुप को हो रही हैं।
0: बिल्कुल, अगर आप सही मायने में फाइबर लेते हैं, पानी पीते हैं, तो आपको ना ब्लोटिंग होती है, ना गैस की इतनी दिक्कत होती है, ना कॉन्स्टिपेशन होता है, और आप बीमार भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप अपने घर की सफाई करते हैं, सुबह उठकर झाड़ू लगाते हैं, फाइबर सेम काम आपके डाइजेशन के अंदर करता है। बट यही एक चीज़ है कि हम सारी हेल्थ ड्रिंक्स पीते रहते हैं, क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम है इसको समझना। आजकल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसको कहते हैं हम डिटॉक्स ड्रिंक, और मैं ये लोगों को समझा के थक चुकी हूँ कि डिटॉक्स तो यही काम आपका लिवर किडनी बहुत पहले से कर रहा है,
1: बचपन से ही, जब से
0: आपको ये एक्स्ट्रा ड्रिंक की जरूरत नहीं होती है। बट ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लोगों को लगता है कि हम डिटॉक्स करेंगे तभी हमारा पेट साफ होगा।
1: फाइबर काम कर रहा है,
0: लिवर वही काम कर रहा है, किडनीज को आप पानी दीजिए और ऑफ कोर्स किडनी आपकी बहुत सारी चीजें साफ कर देगी, डिटॉक्स करेंगी ही करेगी। और कमाल की बात एक है कि मैंने न्यूज पढ़ी है जिसमें एक मोहतरमा थी जिन्हें पानी पीने का शौक थोड़ा कम था और जब उन्हें प्यास लगती थी वो कोल्ड ड्रिंक्स पीती थी, और सुनने में आया है उनके किडनी से, दोनों किडनी से मिलाकर 300 पत्थर निकले हैं। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये पेन उन्होंने झेला कैसे होगा।
1: हाई मिनरल्स की वजह से कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं इसी फेनोमिना का एक एग्जाम्पल है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी ज्यादा पीते हैं तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन जैसी समस्याएं होती हैं।
0: बिल्कुल, यानी कि आपकी बॉडी को सारी चीजें चाहिए, और जो चीज आपको मदर नेचर दे रही है वो डाइट नहीं हो सकता, वो एक हेल्दी रेंज है, आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं।
1: बिल्कुल,
0: एनवायरमेंट के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, बाकी अगर आप जंक फूड खाते तो खाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही क्वांटिटी में। और जो हेल्दी खाना खाते हैं उनसे थोड़ा ये कहना बंद कीजिए कि वो डाइट कर रहे हैं।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: एक्चुअली हमने बना रखा है कि जब भी हम हेल्दी चीजें खाएंगे इट ऑलवेज लाइक डाइट।
1: हाँ, और कहीं ना कहीं मतलब देखिए एक दो चीज़ें होती हैं, जैसे जो बच्चे जिम वगैरह करना स्टार्ट करते हैं या ऐसी चीज़ों के प्रति काम करते हैं तो उनके बॉडी में एक दो चीज़ें आती हैं, जैसे उनकी बॉडी टोन्ड होने लगती है, ठीक है, फिर फैटी लेयर धीरे धीरे बॉडी से डिसॉल्व होने लगता है, ठीक है, तो कुछ चेंजेस आते हैं जैसे गालों का चिपका हुआ होना,
0: गाल मेरा, मेरी मम्मी कहती तुम्हें तो ऐसा लगता है देख कर जैसे चुसा हुआ आम हो चुकी हो,
1: हाँ, वो जैसे गालों का चिपक जाना, क्योंकि भाई फैट बर्न होगा तो जाहिर सी बात है केवल मस्कुलर लेयर ही बॉडी में बचेगी। ऐसी चीज़ों को देख करके कई बार मैंने लोगों के मुँह से ये भी कहते हुए सुना है कि बेटा बीमार वगैरह तो नहीं हो तुम, ऐसा कोई गंभीर बीमारी हो गई हो 6 महीने से या ऐसी कोई समस्या,
0: क्योंकि हमारे यहाँ पर मसल मास से ज्यादा जरूरी है आपके अंदर फैट कितना है।
1: जी, वो एकदम गोल मटोल सा सारे साइड से मतलब कुछ ना कुछ अंश लटकता रहे आपके बॉडी से तो उसको माना जाता है कि हाँ ये बहुत हेल्दी।
0: अच्छा सर, आप बात कर लेते हैं क्योंकि हमने आपसे कहा कि मसल मास और फैट की क्वांटिटी ज्यादा मैटर करती है, तो एक इंसान कैसे पहचानेगा कि उसकी बॉडी में मसल मास ज्यादा है या फिर फैट ज्यादा है।
1: हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, इसको कैसे पहचाना जाए। अब आप इसको ध्यान से समझिए, जैसे जब आपको मैं उदाहरण बताता हूँ इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे आप जब अपनी मसल्स को स्टिफ करते हैं, जैसे जब ये हाथ के इंसान जो डोले होते हैं उनको दिखाता है तो ऐसे हाथ को स्टिफ करता है, ऐसा करने के बाद फिर आप उस पार्टिकुलर प्लेस को टच करिए, आपको महसूस होगा कि कुछ दूर तक तो टिश्यूज सॉफ्ट हैं, कुछ दूर के अंदर के जो टिश्यूज हैं वो हार्ड हैं। जब आपको जहां तक कि टिश्यूज सॉफ्ट महसूस हो रहे हैं, मसल्स को स्टिफ करके, मतलब मसल्स को तान करके और अपने हाथ पैर या जहां की भी आप चेक कर रहे हैं, यदि उसको ऐसा करके और आप उसको टच करते हैं, तो जितने दूर का टिश्यूज आपको, जितनी गहराई का आपको मतलब हल्का फ्लफी और नरम महसूस होता है, वो आपके फैटी कंटेंट हैं। इसके जब आप नीचे और थोड़ा सा हाथ को दबाते हैं, तब आप पाते हैं कि वहाँ पर एक मतलब भारी कोई मस्कुलर चीज़ है और वो मांस जो है, वो मसल वहाँ की स्टिफ हो गई है और उसको दबाने पर वो फ्लफी और एकदम हल्का महसूस नहीं होता है, बहुत ही कड़ा महसूस होता है। जो वो कड़ा वाला हिस्सा है आपके बॉडी का, वो आपके बॉडी की मस्कुलर लेयर है, वो मसल्स हैं, और जो फ्लफी होता है, मतलब लूज होता है, हल्का होता है, वो आपके बॉडी का फैटी कंटेंट है। ज़्यादा महसूस हो रहा है फ्लफी, तो ज़्यादा फैटी कंटेंट है, और अगर फ्लफी ज़्यादा नहीं महसूस हो रहा है, टाइट महसूस हो रहा है, तो आपके बॉडी में मस्कुलर कंटेंट है।
0: ऑल राइट तो इसका मतलब ये है कि आप किस तरह से पहचानेंगे आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है या मसल ज्यादा है,
1: बहुत ही आसानी से पहचान,
0: बहुत ही आसानी से। चलिए अब ये बात कर लेते हैं आपसे कि जिन लोगों के अंदर ये होता है कि हमारा तो कभी फैट बढ़ता ही नहीं है, वेट नहीं बढ़ता है, क्या उनके इंटरनल ऑर्गन के आसपास फैट जमा हो सकता है, जिसको हम आम भाषा में थिन फैट कहते हैं या जीरो फैट कह सकते हैं? और कई बार मैंने ऐसा पढ़ा है कि ये ज्यादा डेंजरस होता है उनके जिनका वेट गेन हो जाता है।
1: जी,
0: क्या ये बात सच है?
1: जी, ये बात बिल्कुल सच है। ज़रूरी नहीं है कि फैटी लीवर या ऐसी जो समस्याएं हैं जो हाई फैट के वजह से होती हैं, वो मोटे आदमी को ही हों। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो दुबले पतले होते हैं, उनको भी हो जाता है। शुगर जैसी बीमारी जो है, वो दुबले पतले इंसान को भी मैंने देखा है कि वो दुबले पतले हैं। थायराइड में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मोटे ही हों। तो देखिए, ये आवश्यक नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो मोटा हो उसके बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन के आसपास ही फैट जमा हो सकता है, वो किसी के भी हो सकता है। और यदि आपका प्रश्न ये है कि क्या वो ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है, तो इसका जवाब है हाँ, वो मोटे इंसान की अपेक्षाकृत उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
0: ऑल राइट, तो भैया अगली बार जरा चेक करवा लीजिएगा, हो सकता है कि आपने बहुत जंक फूड खाया है और आप फ्लेक्स कर रहे हो कि मेरा तो कभी वेट गेन होता ही नहीं है, पता चले आपको फैटी लिवर है और इसके बाद ये ज्यादा खतरनाक साबित हो जाए।
1: जी, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है।
0: चलिए, अब वक्त है चैट बॉक्स की तरफ चलने का और हमारे साथ अविनाश शुक्ला जी जुड़ गए हैं एंड जिन्होंने लिखा है, जय हिंद सर एंड मैम। जय हिंद आपको भी। राहुल सर, उन्नति मैम आधा डॉक्टर हो गई हैं, ओपीडी भी कर सकती हैं अब।
1: जी, मैं बहुत चिंतित रहता हूं इस बात को लेकर के कि कहीं ऐसा
0: आपकी जॉब मेरे हाथ ना आ जाए।
1: जी जी, उन्नति मैम कहीं ऐसा ना हो कि ये हम लोगों का पत्ता काट दें और मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर खड़ा कर दें। तो इस बात की तो मतलब चिंता हमें भी लगी रहती है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी।
0: एंड इसके बाद है, वैसे भोजन कितनी बार करना चाहिए सर? ज्यादा नुकसान करने वाली पांच चीजें बताइए जो हम रोज खाते हैं।
1: जी बिल्कुल, जरूर बताएंगे।
0: तो मैं ये बता दूं कि आप तेल और बटर बहुत खाते हैं।
1: देखिए, उन्नति मैम ने रिस्पॉन्ड किया, अपने जो उनका प्रोसेसर है उसे प्रोसेस करके इन्होंने तुरंत बता भी दिया।
0: सेकंड चीज, आप चीनी बहुत खाते हैं,
1: चिंताजनक विषय है कहीं ना कहीं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है, जाते जाते हम इस पे भी एक चीज आपको बता जाएंगे। भोजन कितनी बार करना चाहिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, भोजन वैसे जो एक ट्रेंड है कि हाँ, भोजन तीन बार, सुबह में अपना नाश्ता कर लिया, दोपहर में अपना भोजन कर लिया, शाम को अपना खाना कर लिया, ठीक है, लगभग यही होता है, इसको आप बरकरार रख सकते हैं। यदि इन्हीं तीन मील्स में, इन्हीं तीन खुराकों में यदि आप बैलेंस्ड यानी संतुलित आहार का सेवन करें, तो ये इसमें कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु देखिए, जैसे जो वो लोग होते हैं जो घरों के बाहर जाते हैं, काम करते हैं, ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, पैदल चलते हैं या फिजिकल काम करते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो जो भोजन कर रहे हैं नाश्ता सुबह का, वो भारी नाश्ता करें जिसमें एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी हो, अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी हो। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट से मैं बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट आप जो भी अपने भोजन में रख रहे हैं, वो सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन में ही रखिए। रात के खाने से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटा दीजिए आप, ठीक है। रात के समय में आलू मत खाइए, चावल मत खाइए, मीठी चीज़ें मत खाइए, ठीक है। दिन में खाना है तो खा लीजिए। अभी आप इन चीजों को समझें कि जैसे जब आप सुबह में इन चीजों का सेवन करते हैं, भारी नाश्ता करते हैं, तो वो आपकी बॉडी जब काम करती है तो वो कंज्यूम हो जाता है। प्लस यदि आप सुबह बहुत थोड़ा चाय पानी पीकर निकलते हैं और दोपहर में खाते हैं, तो इससे आपकी आंतें कमजोर होती हैं, अल्सर, एसिडिटी जैसी तमाम समस्याएं बनती है। नाश्ता भारी करिए, लंच जो आप बीच में करते हैं वो भी संतुलित आहार में करिए, ठीक ठाक खाइए, बहुत भारी नहीं खाना है। और रात्रि का जो भोजन है वो आप कम से कम करिए, कम से कम रात का भोजन करिए। और जो लोग ये कहते हैं कि सुबह भूख ही नहीं लगती है, वो एक काम ये करें कि रात का भोजन वो जल्दी करना स्टार्ट कर दें, 7-8 बजे तक 9 बजे तक भोजन करिए। आपको बेशक जगना 12 बजे तक पड़ रहा है वो अलग की बात है, आप 7-8-9 बजे तक वो कर दीजिए, देखिए आपकी सुबह नींद भी जल्दी खुल जाएगी और आपको भूख भी लग जाएगी। तो आप बेसिकली यही 3 टाइम का भोजन करिए, बीच में थोड़ा स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो आप आहार ले रहे हैं वो संतुलित लीजिए, ठीक है। सुबह का जो नाश्ता है उसको भारी आहार लीजिए, अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो। दोपहर में आप जो है संतुलित आहार लीजिए, बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम भी ना हो। और रात्रि में अल्प आहार लीजिए, थोड़ा हो, जितनी आपकी भूख है उससे कम खाना खाइए। इससे आपको कई सारे स्वास्थ्य के बेनिफिट भी मिलेंगे और एजिंग भी आपकी स्लो रहेगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था, दूसरा प्रश्न इसी से कोरिलेट कर देता हूँ जल्दी से। देखिए वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में खा रहे हैं जो आपको डेली नुकसान कर रही है, परंतु वो 5 चीज़ों की अगर आप बात करते हैं तो मैं उन 5 सफ़ेद जहरों को ही शामिल कर लेता हूँ जिनको लगभग लोग डेली खाते हैं। चीनी, चावल, नमक, मक्खन और मैदा, ये 4 चीज़ें जो हैं ये इनको वैज्ञानिक अपनी भाषा में वाइट पॉइजन यानी कि श्वेत विष बोलते हैं, सफ़ेद जहर बोलते हैं। चीनी, चावल, नमक, मक्खन और मैदा, ये स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे आपकी जान लेगा, एक बार में नहीं लेगा। तो आप प्रयास करें कि इन 5 चीज़ों से बच के रहें।
0: एंड उसके बाद गौरव जी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने लिखा है कि मसल मास पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि आप अपना BMI चेक करो या फिर कलाई को दूसरे हाथ के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से पकड़ो, अगर दोनों उंगलियां टच नहीं हो रही हैं तो समझ जाओ आप मोटे हो, अगर बहुत ही आसानी से टच हो रही हैं तो समझ जाओ आप पतले हो।
1: देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने भी एक तरीका बताया है गौरव जी ने कि इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, और इन्होंने आशा करते हैं कि ये बहुत ही कारगर तरीका आपके समझ में भी आएगा हमारे जितने लिसनर्स हैं।
0: एंड इसके बाद लिखा है कि हम सिर्फ अपने भोजन को कंट्रोल करके बड़ी आसानी से अपना वेट मैनेज कर सकते हैं, बहुत से लोग भूखे रहकर वेट कम करते हैं, उसके बारे में कुछ बता दीजिए।
1: हाँ, ये बड़ा ही अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है, गौरव जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले इन्होंने जो पहली बात कही कि भोजन को कंट्रोल करके बड़ी आसानी से वेट मैनेज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बताया है इन्होंने कि यदि आप अपने भोजन में ऐसे कुछ चीज़ें जो हाई फैट वाली चीज़ें हैं उनको निकाल दीजिए, अच्छी चीज़ों को उनके जगह पे शामिल करिए, फाइबर वाली चीज़ें शामिल करिए, हरी सब्जियां शामिल करिए, सलाद वगैरह शामिल करिए, तो आपका वजन जो है निसंदेह कंट्रोल हो जाएगा। इनकी बात बहुत अच्छी है, इसके लिए हम इनकी सराहना करते हैं। इन्होंने कहा बहुत से लोग भूखे रहकर पेट वेट कम करते हैं, इन्होंने, हाँ मैं थोड़ा दृष्टि की समस्या से हम पढ़ नहीं पाए, वेट कम करते हैं, और इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ये बड़ी ही अच्छी बात इन्होंने कही है, देखिए भूखे रहने से वेट थोड़ा बहुत कम हो सकता है परंतु ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, मैं कारण बताता हूँ। यदि आप भारी भोजन करते हैं, थोड़ा सा वो जो होते हैं फूडी जिनको कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, और हिंदी भाषा में इनको पिटाहा टाइप का जो वर्ड देहाती भाषा में यूज किया जाता है, थोड़ा मुझे याद आ गया तो मैं बता दिया, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो खाना खाते हैं, फिर जब उनका स्वाभिमान जगाया जाता है, जब उनको लोग ताने मारते हैं, तब वो क्या करते हैं, खाना ही खाना बंद कर देते हैं। आप समझिए इस बात को, आपका जो स्टमक है, पेट है, वो समय समय पर एसिड रिलीज करता है, जब कभी भी उसको भूख लगेगी तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब मरोड़ होती है, सिकुड़न होती है, जब सिकुड़न होती है तब एसिड रिलीज होता है। यदि उस एसिड को पचाने के लिए, एंजाइम्स को पचाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है तो वो आपके पेट की इनर लाइनिंग्स को डैमेज करने लगती हैं, इनर लाइनिंग्स को डैमेज करके वो धीरे धीरे इंटेस्टाइन में प्रवेश करती हैं और इंटेस्टाइन के भी इनर लाइनिंग को डैमेज करने लगता है वो एसिड। इसलिए जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं, वजन घटा रहे हैं, उनको भूखा तो नहीं रहना है बल्कि ऐसी चीजें खानी है जिससे आपकी भूख थोड़ी सी शांत हो जाए, थोड़ी सी, ये भी नहीं कि आप पेट भर के आत्मा तृप्त करके खा लीजिए, थोड़ी सी शांत हो जाए और आपका उसमें कोई भी फैटी कंटेंट ना हो, कोई भी कैलोरीज ज्यादा ना हो, वो बहुत ही लो फैट की चीज़ें हों, तो इन चीज़ों का सेवन करके आप अपने वजन को कम करें और नियंत्रित करें, ना कि भूखा रह करके। इससे आपके पाचन तंत्र, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एंजाइम्स बनाती है बॉडी, जो पाचन तंत्र का जो स्वास्थ्य है, जो दीवारें हैं वो डैमेज होती हैं, स्टमक की जो लाइनिंग्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, ख़राब होती हैं, और इससे भविष्य के लिए एक भारी इम्पैक्ट भी पड़ सकता है।
0: और इसी के साथ घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली, और ये था प्रोग्राम आपका क्लिनिक ज्ञानस्थली। अगला प्रोग्राम चटपटी चाटी, इन्जॉय करते रहिए, हमें दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।

0: एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।
1: ओ चाची, चाची हो, जब देखो तब सोता ही परा रहा था, काजनी का तना सूती रहा थी।
2: का दुलारी, तू कसम खाओ कि हमारा दरवाजा तोड़ के बाहर दे हो।
1: हम तोड़ डाले तो हर दरवाजा
2: तोड़ दे हो तो हम पाड़े जिसे बनवाई दी।
1: तो चाहे जितना पानी जिसे बनवाई हो, लेकिन हम तूरिन कर रहा है।
2: तो का धुई काम भावत है, एक तो दूधे में पानी मिला दो और दूसरा हमारा दरवाजा तोड़ दो।
1: ई बताओ चाची, जब देखो तब तुम्हार पल्ला अखिया मूंदे रहा था, काहे बंद कर रहा थी।
2: असरा कुकुर पैदा हुई गए है, का करी।
1: हाँ पूरे कहूँ चाची, बहुत कुकुर हो गए है।
2: हाँ यह
1: इतना पिल्ला हो गए है,
2: बहुत बहुत इस समय तो बहुत मार रहती है। सोए भरना
1: बाजे रास्ता।
2: हाँ तब यह से बंद रखी था।
1: हाँ तो चाची मेरे खोखी बहुत आवत है।
2: तो तू का तो बात बतावा रहा है ना, खोखी आवे तो तनिक काढ़ा वाढ़ा बना के पी लो। तो तू दूध पिए मस्त रही हो कि दूध पियो कि काढ़ा पियो?
1: दूधवा हमें मिला था तब का करी?
2: आए दूधवा ना पियो, खोखी आवत है तो।
1: हाँ
3: राम राम चाची,
4: राम राम चाची,
1: राम राम बहनी, राम राम
2: भैया। आ गई टोली, आ गई पूरी मोहल्ली।
1: कहाँ रही बहनी इतना दिन से, तू सबका चेत करते
3: रहे। अरे चाची बस आते रहे, याद आएगा सीमा के।
1: हाँ
3: अरे जनी सखी हो हमारे मेरे साथ पढ़ा थी।
1: हाँ
3: तुम कह लाओ चाची घरे आज
1: आओ थे बहनी। ये मैडम जी राम राम,
4: राम राम, राम राम चाची।
1: ई यहरियस कहाँ जात रहे बहनी, यही रोटिया पई हाँ।
2: ये पूरे मोहल्ला भरमा पूरे गौवा घूमा करत है, लेकिन हम जब कही बहनी हमरे घरे आ जाओ तब इनका तना काम हो जाए, इतना काम हो जाए कि कुछ कहे भर का ना ही है।
1: तब ये जोगा करावत थी ना यहरिया बहरिया।
4: जोगा?
1: हाँ अच्छा इनके बहन करावत, हम इनके मुखदिया उनके मुखदिया यक्का है, चीनी नहीं पाई थे वो।
2: ये वही समता हो।
1: हाँ और ये कमता हो,
4: ये कमता हो।
1: हाँ तो बहनी कमता ही बताओ कि तोरे जो बहन जी ही जे जोगा करावत थी तो जुराय सिखंडी हो गई हो
4: के?
1: नहीं अरे सिखंडी वो मान रहे महाभारत माँ।
2: तो वहाँ तो कही तो मिल लियो सिखंडी से। हाँ
4: अरे भाई हमें भी कोई बता दे सिखंडी क्या होता है।
1: सिखंडी होता माने सूख या सुखाए जाए,
4: सूखा जाए। उखा तो नहीं है। आप और हमरे के कहते हैं बहन के लिए बोल के चिंता दे दियो।
1: नहीं बहुत झुराए गई है,
2: मतलब ये कि वो झुराए गई हैं योगा करत करत, तो उनका मिलान कह दी सिखंडी से। जानत है ना सिखंडी कौन रहा है? हाँ
1: सिखंडी जानो महाभारत माँ रही
2: रही रही
4: जाओ चाची कहाँ बिल्कुल मिलाए दियो।
1: अरे बहनी हम जान नहीं पाए थे।
2: अच्छा चलो ये मान लेते ना वही रहे ना वही रही।
1: अच्छा यही बात है, वाह लो। तो वो क्या करी ना महाभारत माँ?
2: महाभारत माँ वही उनकी तरफ से कौरवन की तरफ से रहा है।
1: भोपू बजावत रहे रथ चढ़कर?
2: हाँ
1: भोपू नहीं बजावत रहे।
2: अब उनका किन्नर कह लो, किन्नर हम कहें रही हो रहे।
1: हाँ
2: हाँ दोनों रहे।
1: अच्छा
2: तो वो सिखंडी रहे।
1: अच्छा
2: उनका
1: अच्छा,
2: हाँ वो मेहरारू ना रही।
1: अच्छा अच्छा
2: हाँ।
4: और चाची का हाल
1: बढ़िया है? अपन सुनाओ
4: तबियत तबियत सब ठीक
1: पानी? हाँ तबियत तो खोखी बहनी हमारे बहुत आओत
2: है। तो बताई तो है, तो खोखी बढ़िया दवा लो, तो काढ़ा तो पियो ना।
1: कड़वा हरदिया जो ने दुधवा में मेरा लेई थे रहती
2: है
1: और भेलिया नाई के पी लेई थे।
2: ये दुधवा ना छुड़ी है हाँ। एकदम देखो कैसे गदरान जाती।
4: दूध नहीं पीना चाहिए खांसी में।
1: और हरदिया मेरा एक नाई पिए चाहिए
4: तो हल्दी तो पियो, लेकिन दूध में मिला के नहीं पीना
2: चाहिए। खांसी आवत है तय दिन ना पियो,
4: तय दिन ना पियो।
1: अरे बहनी दुधवा हमें इतना नीक लागत है, लोटा भर के पी लेते
2: लोटा लोटा भर के दुधवा पिया थी रात।
1: हाँ रतिया का।
2: हाँ
1: अब वह खाई थे बहनी जो चाटा जाता है चमन परास।
4: अच्छा चमन
1: हाँ, बहुत चम्मच लेके
2: तो,
1: चाट ले
2: तो वो खांसी। अब खांसी गोली हम बताए थे तुका।
1: हाँ बताओ बताओ।
2: देखो गुड़ ले लियो।
1: हाँ
2: अब खूब सोट बढ़िया पीसता रहो।
1: सोठिया पीसे परी की बजरिया ले ली पीसा वाला?
4: पीसा वो भी मिलता है
2: वाला ना लियो पीस लियो बढ़िया वाला। ये रही ओरिजिनल। अब तो अंग्रेजी पे आ जाइयो हमरे।
1: हाँ तो अभी कैसे बोलबो तुम?
2: ओरिजिनल मतलब
4: असली असली असली।
1: अच्छा
2: जैसे बाजार में मिलावट वाला मिली
1: सोठिया?
2: सोठिया।
1: अच्छा अच्छा फिर क्या करी?
2: तो उनका पीस डालो।
1: हाँ
2: फिर बट्टा लेके महीन महीन पीस लियो।
1: अरे
2: अजवाइन। अरे कचाओ ना कई डालो।
1: हाँ जवाइनिया और बताओ।

0: जवाई ले लियो और गुड़ ले लियो सोठ ले लियो
1: हाँ
0: और उमा तनिक वो का जात है कड़ुआ तेल मिले लियो कड़ुआ
1: अच्छा,
0: तेल
1: अच्छा
0: और छोट छोट गोली बनाए लियो
2: छोट छोट गोली
0: अब छोट छोट गोली
2: अब सही है छोट छोट गोली
1: हाँ छोट छोट गोली बनाए
0: तो बस वह गोली जो है खाए के ऊपर से गुनगुना पानी पी लियो
1: तो गोलियां खाई जाए खाई
0: अब रतिया पियो तो ज्यादा बढ़िया रही पनिया गरम
1: हाँ
0: और ऐसे दिनों में सवेरे जो है उठे हो
1: हाँ
0: तो एक गोली खाए पानी पी लियो
1: अच्छा
2: और बहन जी कहो हाल पूछत ना ये तू लोग आपन में बतियो आठ बैठ का
1: ना है तो देखो हम तुरंत मुख दिया आपन कई दिन भारिया के बानी आओ कहो हाल
2: देखी आपसे चलते फिरते मिलने आ जाते हैं तो थोड़ी बहुत अवधि भी हमें भी आ जाए
1: हाँ। नहीं बोले लगनी
0: तनी हम बताए थे कि अब जो है कि मौसम दुर्दशा हुई रहा है
2: हाँ, जुकाम बुखार
0: अब देखो कस हवा डोलत है
2: हाँ डोलत है
0: हाँ डोलत माने चलत है
2: चलत है,
0: हाँ तो हवा डोल रही है
1: हाँ
0: तो ये जानो बीमारी डोल रही
2: हाँ, बिल्कुल सही
1: सब बेराम
0: हाँ छोट बच्चन का संभाले की बहुत जरूरत है
1: हाँ
0: कपड़ा लत्ता पहनाए रखा उन्हें गामा पहलवान बनाए के हम देखा त्योराइन किया और छोट लड़का वो उनका पहनाए बैठी है बनियाइन तो हम गुस्साने न हमने कहा अब बीमार पड़ जाए तो लिए लिए डॉक्टर बैठ के यहाँ घूमियो
1: तो ही चाची रतिया के यहाँ पाड़े हो तो मनी पहले बैठ रहे दादा
0: आज तो पाड़े मना करो
1: अरे अरे हमारे मालिक
2: अच्छा मालिक
1: हमारे मालिक
0: तो मालिक
2: नहीं जान गए
1: तो वही बहनी बनी पहले बैठ रहे कछवा बनी पहले बैठ रहे तब उनका तो ना ही जुड़ी लाग ठंड लाग
0: तो भी बड़ा हुए ना हम कहे थे कि लड़कों छोटे लड़कों की बात कही थे कि उनके
1: अच्छा,
0: भर का
1: अच्छा।
0: बहुत ठंडा है
1: हाँ,
0: उन्हें बचावे चाहिए
1: हाँ, हाँ, उनके भर का तो ठंडा है
0: हाँ तो उन्हें पहनाए ओढ़ाए रखो
1: ये चाची तब अभी मशीनिया चले लगी जो ठंड कर थी
0: अबे ना चली
2: एसी
1: हाँ हाँ वही
2: वही
0: चलाए दो ठंडी मशीनिया चलाए दो कहे
2: हाँ, हाँ, अच्छा चाची एक बात आप लोगों से पूछनी है खांसी का तो आपने बता दिया
1: हाँ
2: ये जो शरीर जो गर्म हो जा रहा है सबका जल्दी जल्दी
1: हाँ
2: वो क्या है
0: अब देखो हम तनी बताए कि वायरल ही कहीं है वायरल हम तो इनसे कचान
2: वायरल
1: वह वायरल वायरल वाह
2: वायरल
0: डॉक्टर कहा था वायरल हुई गा तो ये बस ये इन पकड़ ले हैं बात का और आपका हमारा अंग्रेजी
2: चाची को भी तो वायरल है
1: हम वायरल है
0: देखो वायरल कही रही है हमको इतना समझाई थे इनका कि वायरल कहो लेकिन मनते नहीं है वायरल
1: काजी ना कैसे मुहा गोल कह रही थी बहनी हम गोल नहीं कह पाते तो हम कहते वायरल
2: वायरल
1: तो ये हम गोल मुहा नहीं को ये न गोल मुहा कह लेते
0: गोल लेती है कि नहीं
1: वायरल तो पढ़ी लिखी है चाची
2: सुनो चाची
1: हाँ
2: जो क्या कहते हैं समता हमारी बहन है
1: हाँ
2: तो योगा में भी बता रही है कि जब वायरल हो तब योगा नहीं करना चाहिए
1: अच्छा
2: करेक्ट तो
3: नहीं
2: इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही गर्म रहती है और योगा करने से हमारे जो शरीर है उसमें जो खून का जो ताप है रक्तचाप बढ़ जाता है जिसकी वजह से योगा नहीं करनी चाहिए
0: आराम करे चाहिए
1: आराम
0: करो
1: मैंने वल्ली रहो खटीवा
0: हाँ हल्का हल्का
1: उठाओ ना
0: हल्का हल्का
2: करे रहो
1: वल्ली रहो
2: अच्छा वल्ली रहो
1: हाँ खटीवा वल्ली
3: मुझे ना दीदी वल्ली का
2: वल्ली का मतलब
0: वल्ली लेटी रहो
2: लेटी रहो अच्छा अच्छा अच्छा
1: वह वल्ली जाओ अपन असोनवा देखा करो
2: बाहर
1: हाँ
2: खटिया
1: अरे हम तो
2: छत
1: चाची हम यहाँ करी थे पूरा गए थे जहाँ हमें छुट्टी तनी मिल जाते कमवा से भैंसी अच्छे चराए के लौटी आई थे तब का गई थी खटीवा डाल ले थे कमवा मैया और वल्ली जाए प्रेम से
2: वल्ली जाए प्रेम से
0: देखो इन अपन अलग अलग जोन है
1: हमें बड़ा मजा आवत है
2: चलो चाची चला जाए
1: कहा जा तू बहनी
2: जाई और समता बहन के आवे वाला है सो तब सुनी नहीं तो फिर
1: अच्छा देखो अपने बहन का कतना
0: बहुत है
1: रोजा उनके देखो सुना
2: घर, घर आई रात माँ
1: हाँ
2: तब डंडक हमका काड़ी
1: अच्छा तो डर के मारे सुनक पड़ा
2: डर के मारे सुनक
0: नहीं तो पूछी कि आज का सुने
2: आज का सुनो तब का बता पा
3: चाची बहुत अच्छा अच्छा बते तो तुम्ही दीदी तो काहे ना सुना जाए हम लोग सुनी थे
1: हाँ हम एक रोज बहनी हम सुने ना एक रोज या बड़ा नीक बोला थी वह उतना नीक ये ना बोल पाई
2: हम कहाँ और वो कहाँ
0: उनके प्रोग्राम जो है
1: हाँ प्रोग्राम बड़ा नीक करा थी
0: नीक करा थी वही
2: तो हम कहाँ वो समता कहाँ
1: और ये चाची बड़ा रकम रकम की चीजिया बनाऊ बतावा थी
0: हाँ और कहा
1: मनई बना लेती मनई कुल नहीं बोला थी
0: वह हम तुमका सिखाई थे
1: हमेरा रूए आवत ही कई उठो
2: कई कई कई
1: हाँ तो वही सब बतावत थी कि कैसे पपड़वा बनाओ
2: एक दिन हम कहे हमको भी बुला लो कहीं रहे दो तू बहनी तू का कर दो
1: तो बहनी तू कुछ जानने वाला तो नहीं
2: कुछ नहीं बस खाली अब
1: मैंने कहा थी कुछ जानता है ना
0: खाए तो जान
1: बहनी आता ना उसी आ रही हाँ क्यों देखो प्रोग्राम कर
0: से देखो ये मोटा नहीं है और समता दुबरान
2: हाँ, समता हाँ। आप देख लो खाते पीते घर के बिल्कुल
1: हाँ, लागत है कि नहीं सही सही कहा तू सही कहा तू बहनी
2: है ना तो चलो चाची राम राम टाइम होएगा भाई वरना अभी फोनिया टंटनाए दी इनके
1: गाँव मरबो करी गिरा गिरा
2: गिरा गिरा मारी
1: तो जाओ दादा जाओ जाओ
2: चलो चाची फिर मिल अब की
0: आवा करो अपन घर समझो
2: अपन ही घर है
0: तो आवा करो
2: चलो राम राम चाची
1: राम राम बहनी राम
0: जियत रहो
1: हे बहनी इनके हलवा पूछ ली सीमा बहनी के हाल
3: पूछ ले चाची तो बेचारी तब से चुप पर बैठी सोचते
1: कुछ
3: नहीं
1: बोलते अभी तो ब्याह में जल्दी भाए ना
2: हाँ चाची अभी जल्दी तो भाए
0: अरे ना कचाओ ब्याह
3: तब ऐसी गौन बिहार बेचारी बेचारी फैल जाए पानी का सब
0: कुछ और पूछ लो
1: तुम्हें सास वास ही बहनी
2: हाँ चाची सास तो ही
1: तो खूब अच्छा कचन के काम करावत थी
2: नहीं चाची बहुत नीक सास ही हमारी
1: अच्छा नीक सास पाई तब बहनी भागदारी
2: हाँ चाची भागदार तो है ये है
1: हाँ नहीं तो फिर ससुई यस होती ना कि कचर के काम हुआ करावा थी
2: नहीं चाची मैं सास हमारे ना ही बहुत नीक सास
1: ही सास नीक ही नहीं
0: हाँ। भैया आशीर्वाद है कि सास है सबकी नीक मिले अर्चना हाँ। है विनाऊ को बिहार लगा है
3: चाची हमारा नाम रचना है
0: अरे रचना अर्चना हम तो हमेशा तुमका कही था अर्चना
3: अब शिवानी चाची जो ने कही
0: उनका तो ब्याह लगा है ना
1: हे बहनी तुम्हारा लगा तोरा ब्याह लागे बहनी
3: हाँ बताई ना तुम्हें कुछ
1: तो बहनी परीक्षा अच्छा की तो मिठाई हो ना दी
3: यही ना बताई यही ना बताई चाची
2: मिठाई ना
0: दी
2: मम्मी बात किया करती सब कहा थे लग गवा अभी कुछ ना शादी बिहार लगा अभी हम छोट है
1: तो बहनी तो कहीं इनका ब्याह वाला है रचना
3: बहनी चाची हमसे सबसे बड़ी ही
1: हाँ तो एक दिन बहन बहुत नीक बिटिया ही बहुत
3: हम लोग ना नीक हैं चाची
1: नहीं थोड़े समय भी नीक हो रही वो बहुत नीक बिटिया ही मिले
3: गुणी
1: हो गुणी बहुत गुणी है और ये बता बहनी कि चाची हो अब तो आवत है होलिया
0: पापड़ बनायो कि नहीं बनायो
3: कहाँ पूछत रहे चाची
1: पूछत रहे की पकौड़वा तो नहीं बताओ हे चाची ये बताओ कि साबुनदाना के पकौड़वा कैसे बना
0: साबुनदाना नहीं साबुत दाना
1: साबुन
0: दाना
1: दाना
0: हाँ
1: तो ये क्या पपड़वा
0: एक पपड़वा बहुत सरल है हाँ ऐसे बनाए लोगे रतिया में भिगो डालो
1: हाँ
0: और भिगो के सवेरे एक बड़का भगौना में एक खूब पकाए लो
1: और कतना भिगो डाली
0: अब तो जस जस तुहार मर्जी हो जितना बनाए
1: तो, मन कतना पनिया डाली एक पेटी ले ली
0: एक पेटी कत्ते का आवत है जाना थी
3: पेटी का कहा थी चाची
0: पैकेट पैकेट कर
3: अच्छा ए चाची सुधर जाओ तब दिन से तोरे लगे आई थे हम लोग तब भो नहीं सीख पाओ
1: देख लो चाची देख लो तू ही नहीं हम सिखाओ तू अंग्रेजी
0: समय सिखाई है तू का तो जब तक ना सीख ले
3: ए चाची अच्छा ही बताओ हम लोग हम चाची कुछ बोल रही थी हम लोग समझ जाए थे अब कोई और के सामने बोले चाची सब मजाक उड़ाई ली
0: हमार बेइज्जती करवाए देती हमका तो नवा फेले बतावत थी ना
3: ना बतावा करो चाची चाची बहुत जानती तुम्हें समझाए
0: अब पापड़ दुनिया की ना ही बंद
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
3: अच्छा, अच्छा, बता
1: तब का करी पापड़वा कहीं यहाँ
0: अब पापड़ का उबा वो साबुदाना पानी खूब डाल के पता पता रुक खूब चलावो
1: हाँ
0: और उसमें तनिक जीरा ना दो
1: अच्छा जीरा ना दी
0: हल्का नमक ना दो
1: हाँ
0: हल्का नमक डालो
1: हाँ हाँ
0: बस वो एकदम पक जाए
1: हाँ
0: हाँ जब एकदम ऐसे हो कि सब दाना वाना सब एकदम पक जाए
1: पानी घस हो जाए
0: हाँ तब जानो कि वो पका है
1: अच्छा
0: अब तोरे तो छत है बड़ा एक
1: बहुत टीएम लगी तब
0: हाँ छत पे पन्नी बिछाए दो
1: हाँ
0: और अगर ना हो पन्नी तो बड़का थारा ले लो तो तिलक तिलक वाला थारा
1: हाँ, तेरे हाँ, पास हाँ,
0: है हाँ। खूब चिकन तेल लगाए दे
1: हाँ
0: और वह तनिक तनिक चम्मच लेके छोटा दाल वाला
1: हाँ।
0: और ऐसे ऐसे से चुआवत चले जाओ
1: तो मेरे न जाइए क्यों
0: ना ही दूर दूर
3: दूर, दूर पर चाची
1: अच्छा दूर दूर चुआ
0: हाँ। और पन्नियों पे चुआ दो तनिक वहाँ में तेल लगाए दो
1: हाँ।
0: और तनिक तनिक चुआ दो
1: तो घमाम झुराए जाए
0: हाँ दो दिन में एकदम बढ़िया झुराए जाए और बिल्कुल शीशा जैसा चमकी पापड़
3: लेकिन चाची एक और बहुत बड़ी समस्या है
0: का बहनी
3: बंदरवन के चाची
0: हाँ ये समय तो बनरवा जौन उत्पात करे
1: कछुआए हैं बानर दादा।
0: हाँ
1: कछु फैलाए नहीं सकत हूँ
3: अभी कपड़ा तक तो फाड़ आ रहा था।
0: खबर आ रही है कि बहुत बानर है काट ही रहे सबका और जो बड़का अस्पतलिया है ना।
2: हाँ
0: उमा वैक्सीन आवा है
3: बंदर के।
0: हाँ कि रोज रोज जाए के लगवाओ काटे हो
1: माई। हाँ। कई हो देखो तो कदनी का कोरोना आ जात है तब वो वैक्सीन लगवाओ।
0: अबे बताए ना कुकुर बहुत पनपा है समय।
1: अब कुकुर काटे तो वो वैक्सीन लगवाओ।
0: हाँ।
1: अब बानर काटे हो के वैक्सीन लगवाओ।
3: चाची एक दिन आई हम सब हमने सबके अंदर खून कम वैक्सीन ये दौड़ी।
1: हाँ वैक्सीन सही कहा थी बुटीवा। अब देखो जो आवा रहा कोरोना
0: कोरोना
1: जो ना कोरोना के रे चक्कर
0: कोरोना
1: तो करनवा के चक्कर में हाँ हमरे तीन वैक्सीन लाग रहा।
3: तीन वैक्सीन लाग
1: रहा। हाँ बहनी दुई तो एक ई हतवम ई हतवम और फिर ई हतवम।
0: अच्छा हम तो दुई लगवाएं भाई।
1: हाँ बहनी एक चोरी का नहीं का पूस्टर रहा पूस्टर वो लगाएं।
3: अच्छा बूस्टर चाची
1: वह पूस्टर वा वह लगवाएं
0: पोस्टर लगवाए हुआ है।
1: हाँ
0: तो उससे सुनी थे कि हार्ट की बीमारी होए लगा है।
1: अरे मोरी माई मर जा।
0: हम बताए थे कि र्यूमर फैलावे वाले बहुत है मतलब र्यूमर जाने के नहीं अफवाह अफवाह फैला देते हैं बहुत लोग जो है अफवाह फैला देते हैं
3: झूठ बात
1: तो ये पूरे बतिया है
0: पूरे नाई है सब फैलाए पड़े हैं
1: तो ये सब कहा फैलावत है जैसे कपड़वा फैलावा जाता है वैसे
3: बात फैलाए चाची
0: बात दूसरे से कहा तू उनसे कहा वही उनसे बताई वही उनसे बताई तो बात फैल नहीं
3: और गलत धारणा जगह जगह फैल गया चाची। हाँ। सब डराए गए
0: तो सब डराए गए कि ये जो पोस्टर लगा है।
2: हाँ।
0: तो इसे जो है हार्ट अटैक पड़ा था ये सब गलत बात है हार्ट अटैक अलग चीज है।
2: हाँ।
0: और ये बूस्टर अलग चीज है अब पोस्टर ना कहो बहनी यार।
1: अच्छा कहीं
0: बूस्टर
1: हाँ
0: कोई कही।
1: हाँ।
0: तो बूस्टर कहो पोस्टर ना कहो
1: बूस्टर कहा।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: जान गये ना
1: जान गये तो सीख गये बहनी।
0: हाँ। दुलारी के दिमाग बहुत हो।
3: हाँ चाची एक चक्कर इनका बता दे तो आए लेकिन कब्बो कब्बो भुला है यार
0: लेकिन कब्बो कब्बो हम पगल युवा दे
1: ना ही जानती हूँ। अब जैसे बताए हुई कि कहो कि बूस्टर अब हम घर जाबे बस बूस्टर हो गयी।
0: अब इनके लिए हम एक तो बहन जी बुलवाए रहा लखनऊ से बस इनका ABCD सिखावे आई रहा सुना थी इनके हाल बताए थे। तो आई बहनी कही कि हम तो ABCD सिखाए दिन कही कि अरे जाओ हम ACBCBD ना सीखा दरवाजा खोल दो भाग जाए रोए
1: लागे। हाँ हम डराए गए बहनी पूरे डराए गए कहे ना कि एक दिन बड़की मैडम और रही मैं बहुत डांटत रही कहा
3: चाची कितना कछवा देत रही मैम का
1: बहुत डट तो रही बहनी वो कहा है कि दुलारी का कि तुम ना सुधरोगी ऐसे बोलत
3: रही चाची
0: वही गांव वाली बहनी जो नाई रहा।
1: हाँ, नाई रहा जनी कौन मैडम
0: अरे उनका का नाम रहा भला नाम रहा तो नमव
1: कुछ मनबी मैडम मनबी
0: तनवी
1: तनबी मैडम। हाँ भाई दादा कचवाए मारी हमें पढ़ाए पढ़ाए पढ़ाए पढ़ाए और हम कच्चू बहनी ना पढ़ी पाए कच्चू एक शब्दवा ना पढ़ी पाए।
3: तब बताओ चाची अब आप
1: अब ये पढ़ाई ना ऐसे बांदर
0: ऐसे बांदर।
1: हाँ और बी से
0: ऐसे एप्पल कहीं रहा है एप्पल
1: अब हमारे चतिये नहीं रहा था।
0: हाँ तो कहा था तो थोड़ा पगलाई गई
1: और बी से मनई
0: हमो का पगलवाए
1: और सी से कुकुर
3: दे चाची।
1: हाँ,
3: हमें रुको रुको एक ट्रिक बताई थे।
1: हाँ ट्रिक ट्रिक का होते भाई ट्रिक
3: ट्रिक मतलब एक तो तरीका आसान तरीका बताई थे।
1: हाँ
3: का नाम है आपके पोतवा के
1: बजिंदर।
3: हाँ उसे ले लो उनके छोट क्लास में है ABCD वाला किताब रहा हुई ओका ले लो।
1: हाँ
3: और मन चित्रवा बना रहा था वही देख देख के चाची कोशिश करो याद करे।
0: हाँ ए फॉर एप्पल लिखा हुई है से बना हुई है
1: तो वही हम
0: सीख जाओ
1: हम कैसे अंग्रेजी पढ़ गए ए
0: फॉर एप्पल
3: तो हमसे
0: लगाई दियो फार ना ही लिखा हुई है तो ए
1: तो एपिल के यहाँ फाड़ा ना हो कही हुए ए फार दियो एपिल
0: तो ना सीख पाइयो रहा है तो चलो दूसरा बात करो।
1: हाँ कहा दूसरा बात अब हमें सिखावत ना ही हूँ अब कहा तू एपिल ले लो का फाड़ा रहो
3: थोड़ा चाची अच्छा ही बताओ।
1: हाँ
3: हम लोग मतलब ऐसा ना कह सकते कि अपने घर में रंग बनाए ली हमें
0: धर्मा बना सकत हो रंग
3: कैसे
1: चाची
3: हर बढ़िया चाची ले आई थी हम लोग खुला रंग जब उका लगाए वगाए लो तब बाद में पता चलते हम शीशा
0: ये समय बहनी जो है वो का जात है चुकंदर
3: चुकंदर
0: हाँ बहुत आवत है बाजार में और चुकंदर कैसे घिस डालो का इतना बढ़िया रंग तैयार हुए कि जहाँ जेके लगाए तो गुलाबी गुलाबी
1: चाची हम तो लिपि टिकिया नहीं लगाई थे का करी थी जाना तू वही चकुंदरवा लेके अपने उठवा पैया से रगन
3: देखे ना चाची एक जगह निमंत्रण रहा और चाची पहुंची रहा हम लोग के ना हम लोग के यहाँ आवा रहा और चाची पहुंचे सबसे पहले गई सलाद के लगे चुकंदरवा उठाए पहले मुँह हाथ करके लगाए तब खाए
1: रगन जा रहे और लाल लाल मुहा होएगा
0: सुनो चुकंदर बड़ी फायदे की चीज होए
2: हाँ चाची
0: हाँ उसका खाए ले बनाए ले
3: चढ़े ना चाची
0: हाँ खूब चढ़ा था बहुत बढ़िया रंग उसका होता है
3: तो चढ़ जाए तो छापन
0: नहीं चढ़ी ना जैसे सब नकली रंग लगावती है ना सब चिपक जाता है हथुआ मुहा पे ये चिपकी ना थोड़ी देर जब तक लगाए रही हो लगाए रही
3: तो बढ़िया है चाची बढ़िया पैसों ना खर्च हो बढ़िया सामान मिल
0: जाएगा बनवा डालो रंग बढ़िया
1: बहनी कहूँ जाओ जहाँ आयुष हुए खाए खाते कोई बनावे कहूँ जाओ जहाँ आयुष हुए
3: निमंत्रण हो चाची
1: आयुष
0: हल्दी मिला दो तो नारंगी रंग बन जाये है
3: अरे वाह
0: हाँ
1: हम तो बहनी हल्दिया पोत दे थे
3: तब तो जो बिहावन तेल होते वो वाला हो जाते है होली वादे
1: हम चाची हमारे घर कोई और रंगवा नहीं तो हरदिया उठाए पोती दे
0: हाँ तो मिर्चा वाली ना लगा दियो हरदी के पता चले कि
1: छटपटाए लगे कि हाँ अब का करी अब का करी
0: मुए जो है लेट जाए
1: और शिवरात्रिया के भूखा रहा
3: या ये रही चाची जगह जगह बिहाते हुई घर देते रहा हुई
1: हाँ
3: पूछो चाची पूछो
0: देखो शिवरात्रि पर्व जो होत है सबके लिए होत है जो चाहे और भूखे ना रह चाहिए
1: और सुनो तू तो कह रहा कि शिवरात्रि है हम वो बने पपड़िया
3: अब लाओ हमें खाओ हम ना ये चाची खाए वाला आ जाएगा
0: पपड़िया
1: कह रहा कि
0: बना रहा
1: हां
0: हम तो कूटू काटे पूरी बनाए वही का पपरिया तू का
1: नहीं कुछ कहूरा मिठाई बनेबे वही अटवे कहूरा काओ के हलवा बनाए को का काट देबे ऐसे थरिया में पाई लाए
0: हां तो वहां कूटू काटे बनाए
1: तो रहा खवाई बहु ना देखो धरे लुकवाए बैठी ही है
0: अब थोड़ बहुत धरा होई तो बाकी तो
1: वहां खवाई तो ब्रेक मार दियो लाओ लाओ खवा भूख रहा है
3: फिर जियन धरे होई हो चाची
0: नहीं नहीं सी वो छोड़ते नहीं है
1: हां मुझका मिठा
0: जात है तो एकदम पेट भर के खा लेते हैं
3: चाची भरे गए बच्चा
0: अब तारी बहुत धरा है
1: वही धरे हुई है लेकिन वो कहीं कि नाई है नाई
3: नाई नाई चाची की नाई आदत है चाची जो ने बावा थे खवावे करती है
0: इससे कहीं है ये हाँ
1: अब देखो ये इसे नहीं अब देखो बनाई और हम कहे ना कि हमें खवाओ जरूर तब चार ठो हमने लिए नाई कहूँ लुकवाई पाई
0: कहा तो धरा है अब मार दे हम तो का
1: अच्छा तो बिरेकवा मार दो
3: ब्रेक मार दो चाची ने बीमार हो जाई
1: बिरेकवा मार दो चलो खा ली मिठाई
0: चलो ले लो बिरेकवा और बहुत सामान धरा खा लियो
1: चलो
4: पशु में बुखार मुंह या नाक से बहाव दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें बाड़े में मक्खी मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें ध्यान रहे ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है सतर्क रहे पशुओं को सुरक्षित रखें पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी पीडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक्स एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में
6: आज ही कॉल करें 9260 981 9076
7: 9817976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
7: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: वाद चाची, बहुत मीठ रहा और बहुत नीक रहा। बहनी खायो?
3: हाँ चाची खाए।
1: सुना बहनी खायो?
2: हाँ चाची, बहुत बढ़िया रहा।
1: देखो पाँच एक बचाए रही हमारे सबका भरे।
0: तब का करी, बरत अरत वहाँ तो नहीं बनत है।
3: तब का चाची बचाए तो रही, दिल देखो पहले चाची के, थोड़े रहा लेकिन रहा जरूर।
1: अरे दिला इनका बहुत बड़ा है बहनी, दिला बहुत बड़ा है इनका।
0: दिला नहीं ये बिला हो। अब देखो होली आ रही बहनी आए,
1: हाँ,
0: तो तैयारी जोर शोर से कर लियो।
1: हाँ,
0: अब जैसे हम तो पापड़ बनाए थोड़ बहुत।
1: हाँ,
0: अब थोड़ बहुत तू बना डालो और हम कत्तू दे दियो, हम तुका दे दी।
1: हम देखो की? हम साबुन दाना के पापड़वा बनी बता। हाँ, हम का दे दे भाई। अब चाची तू हमें अलुआ का पापड़वा दे।
0: अलुआ हमारे बनी के पापड़ बनाए दिया हम।
1: हाँ,
0: हाँ,
1: बहुत जल्दी काम।
0: अरे भाई हम तो सती हुई गए ना बहुत पीछे, देखो धूप उप निकलत ना ही है।
1: हाँ,
0: अब दो चार दिन निकली।
1: हाँ,
0: तो हम कहा जाओ जुट जाई और अलुआ पापड़ बना के धर दिया।
3: तो चाची हम सबका बना लेते, मदद कराए देते।
0: तो सब गई रहो, कुंभ चली गई, कहू हुआ चली गई,
1: तो बेराम हो गई। सीमा बहनी तो कुंभ
2: चली गई ना, हुआ चलत चलत परेशान हो गए एकदम।
3: बताओ एक्सपीरियंस, बताओ सीमा।
1: और बहनी सीमा हुआ का पैदलवा चली रहा?
2: हाँ चाची, बहुत दूर चलन पैदल पैदल।
1: अच्छा,
3: और बताओ का भा रहा?
1: गुड़वा फूल गया हुई।
2: अरे बहुत फूल गया चाची, एकदम तबीयत खराब हो गई रही हुआ चलत चलत।
1: तो बहनी का करे गई रहा तोरे ना
3: काका देख।
2: अरे चाची सबे जैसे देखत करें कि सबे जाते वैसे हम चल दिए।
0: पादर हुए शेख सलाई घत है।
1: हाँ, और ससुर से आई तब कुंभ चली गयी,
0: कुंभ घूमे चली गयी। भाई
3: काका देखियो ना सीमा हुआ।
2: अरे कुछ ना, बस खाली हुआ चले चले रहा, इतना भीड़ रही भैया की गाँव
3: की मनाई के अलावा कुछ ना दिखाता।
1: तो पनिया मन गंगा जी मन हाय रहे खूब बुड्डी मार मार।
2: हाँ चाची, संगम में नहीं पहुँच पाए रहे, गंगे जी में पहुँचे।
1: अच्छा किनरवा नहा रही बुड्डिया में, तब संगम बहुत भीड़ रही।
0: काहे मानता की वह डुब्बी लगाओ त्रिवेणी माँ, गंगा जी है उनसे पवित्र कौन हो।
3: हुआ तक चाची जब पहुँच गए थे ही बड़ा भाग, हम सब तो पहुँचे नहीं।
0: वो त्रिवेणी नहा ली। कलो माख ना रखे बहनी।
2: हाँ चाची, हम बहुत खुश हैं कि भले गंगा तो नहाए इतने दूर गए।
0: तब का
3: हम तो चाची आज तक नहान में कहो तो खाली अयोध्या में यमुना जी नहाए, सरयू जी नहाए नहा।
1: हम तो अयोध्या ही नहीं नहाए ना तनु। कुंभवा नहाए अयोध्या आज तक हमें कोई नहीं
3: चक्कर।
1: बहनी गयन है मगर ये इन साथे गए चटपटी चाची के साथ, लेकिन कब्बो नहाए नहीं। हमारे पनिया से डर लागत। हाँ
0: नहीं तो हम तुका ले चला वो बिच्चे धारा।
1: आई रे मोरी मैया, हम मत जाबे दादा,
0: हम जाबे।
3: ए तो गाना आ रहा है चाची, गाय दी
0: गाय दो गाय दो।
3: यही पिक्चर धारा के तो एक तो गाना है आएगा, हम मम्मी गावत रही।
1: गाय दो बहनी गाय दो, गाय दो, बहुत बहुत बढ़िया। गाय दो, बहुत दिन से गनवा नहीं सुने। गाय दो

0: तब हम वहाँ कहते हमें बीच धारे न ले जाओ।
1: अब इस समय जब हम टिबिया खोली है तो पे होली का इतना बढ़िया बढ़िया।
0: हाँ बहनी, होली के बहु नहीं, होलिया में है तो पफड़वा बनाता है। चिपिसिया बनाए,
1: चिपिसियो बनाए हैं।
0: तू बनाए बहनी?
2: हम ना कुछ बनाए थे चाची, मम्मी जो बनाए फिर बनेबे करी।
0: इन का सबके मजा है बहनी, मम्मी लोग बनाए हैं।
1: हां तो मम्मी का वह पेरे रहो।
2: अरे चाची हम सब तो बनबो करबे करबे, अभी आराम कर ले।
1: नहीं नहीं तो तू के मम्मी के साथ लगे चाहिए।
0: और करू गोजिया उजिया बनी तो बहनी मम्मी के सतवा रही है वो कमा
2: का है। एक काम गई थी खाली चाची मम्मी साथ है, उधर एक एक गिन गिन के पसारे रहा था तब वो खाली वाला आवत थी।
0: हां वही में तो बहनी बहुत
2: मुंह चाची वही हम करिया हो जाए थे घमों।
3: खाली उबालत मम्मी ही, बाकी छीलब काटब डारब कुल कमा तो हमें लोग का पड़ जाता है। हमारा खाए छत पर
0: तब का कुल तो करते ही काहे कहू चाची।
1: अरे अब का बताए, इनका सिखवे तो है।
0: हाँ तो सिखवा है
3: ना, कुछ करती चाची।
0: हाँ बहनी तो नहीं करती कुछ
2: चाची, उनके बिहार वाला में सब सिखाए, हमारे मम्मी बहुत टाइम है।
3: देखो चाची यही
0: नहीं तो कमवा जाने चिंटालिया कुल जानो, भले ना करो
2: जान ले जान। तो चाची जमीन चली गई है तब मम्मी साथ है, हम अकेले पर जा तो कुल कमा मम्मी हम इनका कही है।
1: अच्छा चलो चलो सब चला करी, ऐसे चला करी।
0: एक होलिया गाय दो, एक चाची गाय दो, तने अपना कढ़ाई दो।
1: अब हम गाई
0: आई कढ़ाई दो
2: चाची, आप तो सुना थे कहा थे हो।
0: ये तो गावत जो नहीं है चाची, ये गावत हूं
1: कौन वाला,
0: ये कौन गाऊं नहीं चाची गावत ही हूं होलिया वाला।
2: छू रहा चाची, अरे
0: कन्हाई
2: कह के कुछ रहा चाची, कन्हाई
0: होली
2: आई रे। हां ये वाला गाय
0: दो चाची, गाय दो बहुत बढ़िया गाय थी। गाय दो होली।

0: चाची तो गाना बढ़िया चाची समझ पाए कि अब हम लोग जब आईबे होली में आपका होली मिले तो आपके खतन गाढ़ा रंग के रंग लेबे आपका हल्का रंग ना है पसंद है सीमा हरा वाला लाए हूं
1: हां हरा
0: गुलाबी
2: ये हरे रंग का रंग बहुत खराब हो
1: ऐसा रंग ना लायो कि हमरे चकत्ता पर जाए
0: ना ना चाची बढ़िया
2: ये चाची बनाए कहियो देखो बनी सुनी लो सुनी लो हमरे अम्मा बताओ तो सास हमरे बूढ़ा कहत रही कि रंगवा लगावे से पहले सबेरे वे उठ के और मुहा में कड़ू तेल पोत लगाई लो पोतारी लो पोतारी लो हथवा गोड़वा मुहा में सब पोतारी लो
1: हां तो ऊपर दूसरा रंग ना चाहिए
2: तब ऊपर दूसरा रंग मला करे ना तो चित्ती निकली ना दनवा निकली
1: हां हमरे तो बहुत निकली आवत
2: हमरो हमरा फाट जाते मुहा हाँ।
1: तो भाई हमारे ये सब रंग बाजार वाले बहुत खतरनाक
0: हैं चाची जैसे बताई हूं ऐसे बनाए के लेबे लेकिन गाढ़ा रंग लेबे
2: ए चाची हम तो अभी ये खेली थे हम तो ये रंगवा पनिया वाला
1: हां ये बढ़िया है जोन आरा रोट वाला अबीर होत है ये सबसे बढ़िया रहा
2: ये नीक रहा
0: था चाची
1: और रंग बिरंगा बढ़िया पीला
0: सुखन का सुखन का रंगवा खेलत तो नीक लागत था और गीलता वाले में यहां अजीब लागे लागत था ना अच्छा लागत
1: था ना ही अच्छा लागत है
0: जो कोई पीछे से भिगोए उगोए देता है बहुत गुस्सा लागत है
1: कपड़ों बर्बाद हो शरीर बर्बाद हो तो ये कौन होली हो यार
2: और जाने तो नहीं तभी गरम ठंड लागे लागत
1: और गरिया के होली में तो और बढ़िया
0: चाची नाचे तो अच्छा दीजिए
1: अब जाओ हम बुढ़ापे में नाचब
0: काहे नाचत नहीं हो चाची ना, नाची
2: अरे नाच दिन करब चाची तनी ठुमका लगा दिन
0: करब काहे चाचा भगवा पी भगवा नहीं पी के नाचत है
1: अरे दादा रे दादा
2: अरे नहीं जाने बहनी का बा या हमरे चिताई गवा पिछले जब सलिया परा रहा होलिया तब चाचा कहे कोई भांग पियाए दिन बहनी आप भांग पियाए दिन तो का करे तब चाचा भंगिया पी लीन अब एक जने भैया रहे जे मनिंदर भैया वो ढोलिया बजावे और वो गावे का रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे यहाँ गनवा गावे चाचा चिल्लाए चिल्लाए और हमरे लोग कहे कि चाचा का भवा है चाचा का भवा है
1: और दो चार दिन हंसत रहे कब्बो जो है बहुत रोवे लगे कब्बो हंसे लगे और तना खाए दादा बार बार मांगे गुजिया
0: ये असर होते चाची
1: हां
2: बहनी
1: भंगिया का असर बहुत बेकार
0: है ना देखें चाची ना जी भांग वांग ना पिया जाते
2: अरे लोगे पियाए न थे बहनी गुजिया में बनाए खवा देते
1: हां
2: नहीं चाची
1: हां देख सुन के खाओ गुजिया गुजिया
0: हां चाची हम अपने घर के खाबे तो हरे घर के खाबे बस
2: अरे बहनी हमरे घर में खाबा हम भांग नहीं में
0: अच्छा हां चाची तो रोइए खा ले
2: देख देखो तनी हमको भांग में रही थे भांग नहीं में रही थे हम
1: तू का मेरा बात
2: हम तो बहनी वहां खौवा डाली थे और जो है मेवा डाली थे वहां कुल खौवा मेवा कुल वहीं गमन जा कह के बस वहीं
1: दुलारी
2: भर दे थे
1: एक विनती है तो से
2: काओ देखो मुझे हम पानी ना मिला देखो हम बदनाम देखो जैसे इनका हम बदनाम किया है ना कि नाव फेली ऐसे ही हमें बदनाम
0: किया है जैसे बात आवत है दूध का चाची पहले यही एक सेंटेंस याद आवत है दूध में पानी ना
1: हमें निखुले दूध चाहिए
2: अब जैसे खाते तैसे हमारे खोखी आ जाते
1: देखो यही असर है पाप ना करो
2: नहीं हो पनिया नहीं मिलाई थे दूधवा में हम दूधवा में पनिया नहीं मिलाई थी हम पनिया में दूधवा मिलाई
0: बहुत ईमानदार
2: हाँ भैया अब दूध हम काहे पानी मिलाई पनिया मिलाई देते दूधवा और दही दे
0: अरे मैं चाची कोनो ईमानदार नहीं है
2: मतलब कितना ईमानदार
1: है मजाक से हट के बात बताई थे
2: हाँ
1: कि हमरे दूधवा में पानी ना मिलायो नहीं मालूम है गुजेवा जो सब बेकार हो जाइए बहुत मेहनत पड़ी हमका पानी जरावत
2: ये चाची अरे खौवा दे दो आउट जाए करे का है तू है
1: तो पानी मिलाई है
0: मिलाई है
2: थोड़े मिला दे भाई थोड़ा मिलावा जाता है
1: नहीं नहीं कुछ ना मिला
2: तभी जान ले तो हम भी 60 रुपया लीटर दूधवा दे भाई
1: 60 नहीं तू हमसे 61 ले लियो
2: हाँ
1: लेकिन पानी ना मिल रहे हो
2: अच्छा तो ठीक है अब यहाँ कर अब
0: ए चाची एक बतिया ध्यान ना दी हूँ आप तो गाय ली हूँ चटपटी चाची आप तो गाय ली हूँ और दुलारी चाची बात बात में टर गई गनवा ना आई गई
2: हमरे कुकिया आवत है गाओ गाई
1: सब याद है हमें अब इनका इसे छोड़ा थोड़े
2: ना हमरे कुकिया हमरे आवे लागे थे गाओ नहीं गत मैया बहनी हमरे
1: बहनी लोग बैठी है ना बहनी लोग अपना गई है
0: हां सब है बैठू गाई चाची
1: बुलवाए ले है हां और का
2: और हमरे सगरिया गईबो
0: गायो गा चाची गईबे काहे ना
2: तो चलो गाओ
1: अरे पहले तू शुरू करियो तब तो गईबे
2: हां हां जाई ते शुरू करे जाई तो कोकली चलो अब गाओ होली है

0: होली आए।
1: बहुत नेक चाची, बहुत
2: मजा आएगा, बहुत
1: बढ़िया। चाची आपसे रिक्वेस्ट है,
2: रिक्वच बनाई थी हाँ कुछ कही सीखा कि आपसे रिक्वच है
1: नाची?
2: हाँ
1: रिक्वेस्ट करन है चाची,
2: ई का होते चाची?
3: रिक्वेस्ट माने प्रार्थना,
2: तू हमारी तो हमारे था बिनती कर, तू तो भगवान के प्रार्थना कर।
1: तो कहा बिनती करी थे
2: हाँ,
1: कि जब वहाँ ढोलकवा बाजे लागी वहाँ होलिया में जब हम सब इकट्ठे आई थे नाचे गावे वहाँ ई गाना जरूर गाव, हम अकेले नाचब।
2: तो बहनी एक गौनिया नहीं सुनी है?
3: नहीं, ये गौनिया जो है तो हाँ। याद है ममता मौसी रहा
2: है,
3: बहुत गावत रहे,
2: बहुत
3: गोलिया बजाओ, हम बजेबे नहीं, हम कब बजेबे नहीं आवे,
2: ले हो कई लो बात,
1: अब आई गा चाची, अब आप बजई हो, आप गई हो
3: नहीं बजे
2: ये बहनी कुछ खाए मना कहा रहा,
1: अभी तो खेबे करी हो चाची
3: यार, इतना भूख लागत है इनके कि जैसे बस सवेरे से भूखे बैठी हैं।
2: नहीं तो यक्के रोटी खाए ना चाची, आज
3: कहाँ चली गई रोटियां,
2: रोटियां हराए गए, अब कमता बहनी बैठी बार बार बिस्कुट खाती थी, वही हमें दिखात है, उनके बहन के प्रोग्राम चला था वो प्रोग्राम वो सुनती और वहाँ देखो बिस्कुटों खाती।
1: चाची आपके मना बाहर लाग है,
2: ये बहनी हम खाई एक ठो, एक ठो हम दे दियो बिस्कुटवा,
3: ऐसे ना मांगो दुलार, दुलारी तो हमार नाक कटाए हो और कुछ नहीं,
2: काहे बहनी
3: काहे मांग मांग खाती
2: हो, कमता बहनी हो कमता,
3: अरे तो कमता है तो का भा,
2: तो कमता तो आपन ही ना, उनके बहनी समतस ना मांगो,
3: तो कब पेड़ बर्फी कुछ खवाए हो है कि उनका खाइबे करी हो,
2: उनका एक रोजिया हम खवाए ना, अरे तमकुम जो डारा जाते लौंगवा,
3: हाय भगवान लौंगवा के बदले बिस्कुट खाइयो,
2: हाँ
3: ये हमार दुलारी हो जाओ दुलारी,
1: लौंग खवा दी नहीं मीठ मीठ
3: कहा तो हार गोड़ है लाओ धैली
2: बुढ़ा,
3: हाँ
2: वाह रे चाची, वह देखो बहनी कहें तो देखो वो बिस्कुट वहाँ भिजवा दी और ये कहा थी कि ला बहनी ला हम खा ले बा
1: चाची, तो
2: ला दादा
1: हां हम खा ले
2: चाहे ना खाए, हम तो अब वहां जाबे कोठरियम तो खा ले बे हम,
3: अच्छा तो धई लो तो बहुत ज्यादा खो,
2: तो हम अपने चरम बांध ले बे अब
3: तो बहुत चालाक हो दुलारी भी, ये बात मानो है और ऐसा अकेले खाइयो जाके विटीवा का,
1: अरे चाची एक ठो बिस्कुट खाते झगड़ा ना करो,
3: ये दुलारी बहुत चालाक,
2: देखो देखो देखो इनका हम कितना सामान दई दे थे खवाए दे थे, एक ठो हम बिस्कुट पाए ना तो हमरे पीछे लागी गई,
3: तो कोठरियम काहे खाई हो भाई,
2: कोठरियम खावे की मन एक दो तीन चार पाँच, ये चाची
3: सब है
2: गंतिया सीखी है तब का गंतिया हमरे आए
1: तो हम सब तो ध्यान है ना दिए चाची,
2: हां ये एक दो तीन चार और पाँच
1: बस चाची, अब तुम्हें बड़े जरूरत नहीं
3: लो, तो अब कोठरी अब ना खाओ, पाँच जने हम लोग बैठे बांट दे सबका,
2: अरे मैया रे एक तो हम पाए
1: ना, ना चाची तू दुई खा ले हमरो संति खा ले
2: एक हम पाइबे,
3: वाह रे दुलारी
1: तू ले जा चाची चार ठो तू खा ले एक ठो अपने मजिंदर,
3: अतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाती हूं
2: हां
3: तो बहुत पढ़ जाती हूँ,
2: तब हम पढ़ाते नहीं है,
3: लगाओ पेटे में लगाओ दिमाग,
2: पढ़ाते नहीं है हम, मैं तब का करी है बहनी सीमा,
4: हाँ चाची
2: तू खा लियो बहनी, तू जाके ससुरे
4: नहीं चाची हम ना खावे, हमें तो सब कुछ मिला ही करे थे, मांगी हुए तो कम से कम खाओ तो,
2: अरे खा ले बहनी तू खा ले, और जो ने ससुर दिया जब जायो तब
3: इनका याद करो दुलारी चाची का,
1: इनका बिस्कुटवा कमी है
2: क्या का?
1: पहले इनके मालिक करत हाँ, का इनके मालिक
3: किराया तो का चटपटी चाची की याद आवत रहे कि नहीं,
4: हाँ चाची हुआ जाए थे तो बहुत याद आवत थी आप लोग,
3: तो बतवात हुई हो अपने सास से कि हमारी एक चटपटी चाची
4: हाँ, दिन भर वैसे बतवाओ,
2: तो भाई तुम्हारे मालिक का करे थे रक्षा चलावत रहे,
4: नहीं चाची किराना स्टोर खोले हैं,
2: ये कौन बनी सा स्टोर होता है,
3: अरे तू ना जान पाई हो, तू ना जान पाई हो, तू ना जान पाई हो,
2: ये कहा थी कोनो सटोर खोले हैं, ये का होते बहनी सटोर,
1: गरम हो गई,
4: अरे दुकान चाची ज, ज, अरे जैसे
3: दाल चावल की दुकान
2: और बिस्कुट वो भी कहा था,
4: बिस्कुट तो सबसे ज्यादा
1: चुराए चुराए खावा करती हूँ,
2: तब तू बहनी चुराए चुराए खा लो तू बिस्कुट, हुआ
4: जब अपना हो तो मैं चुराओ का है चाची,
2: ले बहनी ये तो बांध ले तू बोरा भर इनका दे दे तू दादा,
3: अब ले बोरा भर का करियो है घाटा लगा हुए दुकानियम है,
2: हाँ ये तो पूरा कहूँ, अरे तो बहनी पैसा ले हम तू है बहनी भैंसिया दे दे,
4: अरे नहीं चाची हम ऐसे थोड़ी ना आप लोग से पैसा ले बे,
2: तू हमें बिस्कुटवा दे दू हम तुम्हें भैंसिया बांध दे,
1: बताओ भैंस ले जाइए
3: बच्चा, भाई अब बेरा होत है दिया बाती की है
2: हाँ,
3: और अब चले समय आएगा है,
2: हाँ चले समय आएगा हम चली बिस्कुटवा खा ली,
3: हाँ होली दिवाली और त्योहार आवा नगजात है ना।
2: हाँ,
3: हाँ तैयारी करे खे बहु।
2: हाँ और चाची हमारे को जीवा मनाई नहीं हो।
3: हमारे पापड़ ऊपर पड़ा है।
2: हाँ
3: और ये बताई बहनी की बानर बहुत आए गए हैं।
2: तुम्हार पापड़वा बनरवा भून भून खात हुई है।
3: हमारे पापड़ ना खाई है काहे से हम दूध एक व्यापार नहीं करी थे वो पानी में रही
2: है बनी हमें दूध पीछे पड़ी आई देखो तनी
3: तब का
2: आई देखा गरी में पैरन जेठानी वही गनवा वही गवा देख लो तनी आई तब बनी चला जाए घर
3: चला जाए सबका। हाँ। राम राम बोलो
2: सबका राम राम बोल दिन जाए सीमा बनी फिर आयो।
4: हाँ चाची
2: आयो रंगवा खेल जाओ।
4: हाँ हाँ तो मजे आई।
2: हाँ तो ठीक है बनी चला जाए।
4: हाँ चाची चलो चलो।
2: हाँ शिवानी।
4: हाँ चाची
2: काव तू ने सनकी मटकी करा तू बहनी कुछ उनका संकार थी कहूँ उनका संकार
4: तो ना चाची ना चेर बहुत है चला जाए।
3: सब जितने हमारे भैया बहनी हैं उनसे यह कहे है कि इतवार 5 बजे जो है यही हमारा जो प्रोग्राम है ये सुना करें।
2: हाँ पटपटी चाची
3: जो है बार बार
4: नहीं
2: पटपटी चाची
3: चटपटी चाची
2: अच्छा चटपटी चाची
3: तो हमार नौ है भूल गई वाह।
2: अरे पटपटी नहीं करेगा चाची का के हम तो हमेशा पटपट पटपट करत रहा थी तो पटपटी नहीं करेगा
3: तो 89.6 FM
2: गोंडा
3: शहर की
2: धड़कन
3: ऊपर ये पे प्रोग्राम सुने।
2: हाँ
3: और सबका जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: सब पापड़ खूब बनाए ले।
3: हाँ पापड़ बनाए चिप्स बनाए बस
2: चिप्स बनाए ले
3: और यहाँ शुभकामना दे थे सबका।
2: हाँ
3: कि सब
4: ठीक है जाके सबका राम राम।
3: हाँ खेले
2: सबका राम राम
4: राम राम चाची
2: राम राम।
5: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं पशुओं को बीमारी से बचाएं।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
7: मतलब
6: मानसिक समस्याएं होंगी दूर जैसे नींद ना आना घबराहट काम में मन ना लगना आत्महत्या के विचार आना अत्यधिक गुस्सा अत्यधिक साफ सफाई भूत प्रेत देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना याददाश्त की कमी घरेलू कलह पढ़ाई में मन ना लगना बिजनेस में लॉस होना करियर की समस्या किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी बेहोशी के दौरे आना
7: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416 जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9286 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अरे सुना
2: क्या,
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला, ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। और इस प्यारे से कार्यक्रम में, इस खूबसूरत सी शाम में हम करते हैं आपका स्वागत। मैं हूं आप सभी का दोस्त मनु, और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आपकी को होस्ट, जिनके पास खजाना है और खजाने को कहते हैं निधि। तो जी निधि जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो निधि जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं आपके ही कार्यक्रम में।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: क्या बात है। और जब गीत चल रहा था मेघारे मेघारे, तो मुझको याद आया कि पिछली बार आपने बारिश पर बहुत कुछ बात की थी।
1: जी सर बिल्कुल
0: बिल्कुल। और मतलब वो जो बातें की थी वो अचानक मुझको याद आ गई। मतलब अच्छा, कुछ हमने जो पिछले हफ्ते किया वो इस हफ्ते याद आता है।
1: जी सर।
0: कुछ बहुत दिन पहले किया वो भी याद आता है। तो मतलब क्या ये यादें, ये क्या है, मतलब इनको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं?
1: सर अभी आप कह रहे हैं आपने कुछ बारिश पे, फिर मुझे वही याद आया,
0: फिर याद आया
1: कि यादें भी बारिश की बूंदों जैसी होती हैं।
0: जी।
1: कब और कहां से बरस जाएं पता नहीं, लेकिन जब बरसती हैं तो बीते हुए पलों को फिर से जिंदा कर देती हैं। जब भी बारिश आती है तो मिट्टी को कैसे ताज़ा कर देती है, फल जो हमारे गार्डन में लगे रहते हैं, जो पेड़ पौधे रहते हैं, सब बहुत हरे भरे हो जाते हैं और मन में भी एक बहुत अच्छा सा सुकून होता है।
0: क्या बात है। मतलब वास्तव में जो प्रकृति होती है उसकी खूबसूरती और उसकी यादें।
1: जी।
0: अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा पल है जो आपकी मेमोरीज में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो क्या कहेंगे आप?
1: सर मेरी कॉलेज लाइफ।
0: क्या बात है। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा मेरा बचपन।
1: सर मुझे मेरे बचपन का ज़्यादा याद ही नहीं है कुछ। अच्छा, मुझे लगता है मैं भूल गई।
0: अच्छा, मतलब आपने बचपन भूल गई?
1: मैं बचपन नहीं भूली सर, पर मुझे सिक्स क्लास से याद है और उसके पहले सबका मुझे कुछ याद ही नहीं है।
0: हाँ, जैसे आजकल के बच्चों पर आप देखिए तो पढ़ने का बड़ा दबाव रहता है ना।
1: जी सर।
0: कि LKG में ही लड़का गया और तुरंत तो UPSC टाप कर जाए ऐसी।
1: ये बात
0: मतलब
1: सही कह रहे हैं आप।
0: पेरेंट्स जो है वो मैं चूंकि शिक्षा भी देता हूँ तो मतलब हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंग्जियस हैं, चिंतित हैं अपने बच्चों को LKG से लेकर ही पढ़ाने के लिए। और उनके दर्द ये है कि KG 2 में पढ़ता हूँ और 2 KG का बस्ता है।
1: जी सर।
0: अच्छा, लेकिन हम लोग के टाइम में LKG UKG में 2 किलो का बस्ता नहीं हुआ करता।
1: बिल्कुल नहीं सर।
0: अच्छा, आपको आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से ली?
1: सर मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ली थी, तो वहाँ मेरे पास 2 बुक होती थी, मैं जाती थी। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा वैसे एक्टिविटी करवाया जाता था, जैसे मिट्टी का वो बना के लाना, काउंट करना।
0: हाँ।
1: फिर और एक्टिविटी होती थी ग्राउंड में गोल सर्कल बना के बैठना, फिर 1-2 काउंट करना। ये नहीं था कि मुझे बुक तक ही सीमित रखा गया था।
0: हाँ।
1: उसके बाहर की सारी चीज़ें हम लोग को सिखाई जाती थी, आज ऐसा करके लाना है, आज ऐसा करना है, ये सारी चीज़ें।
0: और मुझे लगता है कि जापान में भी आपने पढ़ा होगा, तो 12 साल तक के बच्चों का एग्ज़ाम लिया ही नहीं जाता।
1: जी
0: है।
1: सर मैंने भी ये पढ़ा है
0: ना। और वहाँ पर टीचर ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है,
1: ये किस फील्ड में जाना चाहता है और किस फील्ड में अच्छा कर सकता है।
0: हाँ, और उसको उस फील्ड में भेज दिया जाता है।
1: जी।
0: अच्छा, हम लोग के साथ क्या होता था या हमारे जो वो है कि एक सेट पैटर्न बना दिया कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, बैंक की जॉब करनी है। तो कहीं ना कहीं वो जो बचपन था, वो जो बचपन बीत गया।
1: जी।
0: वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी कहा कि गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। तो मतलब जब कोई बच्चों को पढ़ने के लिए डांटता है तो मैं कहता हूँ कि बच्चों के छोटे छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे।
1: वाह।
0: तो मतलब ये हुआ कि बच्चे छोटे हैं तो खासा, हाँ भगवान ने भी जिद कर ली थी, मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ, मतलब मुझे चंद्रमा का खिलौना दो, नहीं तो जई हो लोटी धदन पर वहीं तेरी गोद नहीं हो। मतलब बाल हट भी बड़ा अच्छा है। आपने कभी किसी बच्चे का हट देखा है?
1: जी सर बिल्कुल देखा है।
0: किसका?
1: हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, चाहिए तो चाहिए, फिर मुझे लगता है कि ये बढ़िया है, जिद कर लो चाहिए तो चाहिए। हम लोग इतने समझदार हो गए हैं, नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, और वो जिद कर लेते हैं, और वो जिद मुझे लगता है कभी कभी अच्छी होती है।
0: अच्छी होती है? मतलब आप अपने बचपन में जिद किया करती थी कि नहीं?
1: सर थोड़ा बहुत।
0: अच्छा, मतलब थोड़ा या बहुत? थोड़े और बहुत में बहुत डिफरेंस होता है।
1: सर थोड़ा।
0: थोड़ा। अच्छा, किस चीज की जिद करती थी आप?
1: बस मैं खाने वाने के लिए जिद करती रही हूँ।
0: अच्छा। नहीं वो तो आपका स्वास्थ्य बताता है कि आप खाते पीते घर की हैं। हाँ, अब वो बात अलग है कि आप पीती खाती नहीं
1: है। नहीं सर, हो सकता है पीते खाते भी हूँ।
0: नहीं, आजकल की बड़ी जो है दुश्वार एक काम है कि लोग चाहते हैं कि लड़की के लिए लड़का मिले, खाते पीते घर का हो लेकिन पीता खाता ना हो।
1: जी बिल्कुल।
0: तो मतलब हम लोग चूंकि खाते पीते घर के लगते हैं कि हाँ खाते पीते घर के हैं, तो खाने में क्या पसंद था बहुत ज़्यादा कि जिसको जिद करती थी?
1: सर पूरी सब्जी ही ज़्यादा पसंद थी मुझे।
0: तो पूरी सब्जी तो घर में बन सकती थी?
1: नहीं, पर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ना, अब मैं छोटी हूँ तो ये थोड़ी ना है कि मैं दिन भर कहूँ मुझे पूरी सब्जी ही खानी है, पूरी सब्जी ही खानी है।
0: नहीं, आपका बचपन तो ठीक था, आजकल के बच्चे तो पिज्ज़ा की है हट कर लेते हैं, ये पिज्ज़ा खाना है।
1: जी बिल्कुल।
0: मैं वो उनको नुकसान कर रहा है। हम लोग के टाइम में लगता है ये चीज़ें नहीं थी तो अच्छा था। भाई पूरी बहुत नुकसान कर जाएगी लेकिन पिज्ज़े से ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, मैगी से ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: तो मतलब बचपन का ज़माना आपको याद है?
1: मुझे अच्छे से याद है, थोड़ा थोड़ा
0: थोड़ा थोड़ा याद है। तो कौन सा पल ऐसा है जिसको कई बार मिस करती हैं कि हाँ नहीं एक बार वो फिर से लौट कर आ जाए?
1: जब मैं छोटी थी पापा से कुछ भी कहते थे ये चाहिए तो ये था पापा ला देते थे, अभी भी कहो तो पापा ला देते हैं पर अब कहने का मन नहीं करता है। और छोटी थी तब ये मन में नहीं आता था कि कहना है कि नहीं कहना है, बस कहना है, अब मन में आता है कि नहीं कहना।
0: अच्छा, मतलब आपको लगता है कि इंसान जो जो बड़ा होता है उसकी समझदारी उसकी खुशियाँ छीन लेती हैं?
1: ये बात आपने बिल्कुल सही कही, इंसान को कभी समझदार नहीं होना चाहिए
0: ना,
1: बिल्कुल नहीं।
0: मतलब इसलिए कहना चाहिए दिल तो बच्चा है। जी
1: जी।
0: मतलब दिल अगर बच्चा रहे तो ज़्यादा अच्छा है।
1: जी बिल्कुल।
0: मतलब अपनी ज़िंदगी की खुशी मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि अपने पैसों से इंसान ज़रूरतें पूरी करता है।
1: ख्वाब तो पापा के पैसों से पूरे
0: पैसों
1: होते
0: से पूरे होते हैं, तो कुछ ख्वाब तो आपके पापा ने आपके पूरे ही किए होंगे।
1: जी सारे पूरे कर दिए हैं, कुछ ही
0: सारे पूरे कर दिए। जी क्या बात है। और तो चलिए, मतलब आपने बचपन की बात छेड़ी, यादों की बात छेड़ी, तो आज जी हाँ हम इसी विषय पर बात करेंगे यादों पर, बात करेंगे बचपन पर। लेकिन जब भाई याद की बात आ गई है तो मुझे तो बड़ा जालिम ज़माना याद आ गया।
1: ऐसा तो, क्या हुआ था सर?
0: अरे अब हम नहीं बताएंगे कि ऐसा क्या हुआ, ये तो ये गीत बताएगा कि ऐसा क्या हुआ था। ये हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवास विकास से, मनुष्य गुड इवनिंग जी। उसके पश्चात महेंद्र दीपेन जी राजस्थान से हैं, नमस्कार गुड इवनिंग मनुष्य जी। जी महेंद्र दीपेन जी आपको भी प्रणाम करते हैं। और चलिए जब निधि जी ने कह दिया है कि भाई बचपन का ज़माना याद है, तो आइए क्यों ना उस बचपन के ज़माने को हम ना बताएं।
1: सर गाना ऐसा ना हो कि गाने से भी कुछ लोग को याद कर लें।
0: हाँ क्या बात है। चलिए तो फिर बचपन की ओर भी चलेंगे और यादों की ओर भी चलेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: और ये देखेंगे कि भाई हमारे बहुत ही प्यारे से श्रोता, बहुत ही अच्छे श्रोता हमारे तिरंगा कॉम्प्लेक्स हैं, श्री के गुप्ता जी उनका नाम है, और वो वास्तव में कृष्ण जैसा ही चरित्र रखते हैं। और उन्होंने लिख दिया है, गुरु जी मैम जी नमस्कार, हम आ गए हैं। तो भाई आप इनका स्वागत कीजिए।
1: जी बिल्कुल, आपका स्वागत है, अभिनंदन है कि आप आ गए हैं।
0: आप आ गए हैं, मतलब हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्रीमान कृष्ण कुमार गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स से दर्शन कब देंगे, और दर्शन हो चुका है। आइए, तो जब बातें हो चुकी हैं बचपन की तो हम नहीं बताएंगे, बताएगा ये प्यारा सा गीत हमारे एहसास को, मतलब हमारी भावनाएँ और हमारी को होस्ट निधि जी की भावनाएं इस गीत के माध्यम से आपके लिए। तो क्यों ना सुनाया जाए।
1: जी बिल्कुल,
0: सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। लड़की वाले ने पूछा लड़का कैसे चाहिए, मैंने कहा खाते पीते घर का हो, बोली और मैंने कहा बस लड़का खाता पीता ना हो, वरना शादी के बाद घर का बजट भी खा जाएगा और पेंशन भी। क्या बात है,
1: किसने ये बात कही?
0: ये महेंद्र दीपेन जी हैं, बहुत ही प्यारे श्रोता है हमारे, राजस्थान से सुनते हैं हमको। चलिए तो फिर चलते हैं भाई बचपन की ओर,
1: कोई यादों हमारी को। यादों को ना खा जाए इससे पहले।
0: हाँ, यादों को ना खा जाए। जी हाँ, और इसी के साथ सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM, क्योंकि ये है
1: गोंडा शहर की धड़कन।
0: धड़कन, जी हाँ, और आपको अब चलते हैं धड़काने इस प्यारे से गीत के माध्यम से।
1: जी बिल्कुल।

0: भगवान, रेनू ने मुझसे और मैंने रेनू से वादा किया है कि जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ,
1: जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ।

0: जब याद की बदली छाती है। और निधि जी, इसके पहले हमने सुना आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का,
1: जी सर,
0: इन दोनों में से कौन से गीत को आपने अपने दिल के ज्यादा करीब पाया?
1: आया वो याद जालिम
0: गुजरा जमाना बचपन का, मतलब कहीं ना कहीं हर इंसान को अपने बचपने से बड़ा लगाव होता है।
1: जी सर, बिल्कुल होता है।
0: अच्छा, बचपन की ऐसी कौन सी चीज़ है जो अब हम लोग मिस कर देते हैं, मतलब अब जो नहीं पाते हैं?
1: सर, उतना देर हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि कभी घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या कहीं ऐसे ही खेलने चले जाएं जहाँ कोई मतलब नहीं होता था और हमें लगता था ये क्या कर रहे हैं, पर जब अकेले में बैठ के अब वो याद आता है तब लगता है वो भी क्या दिन था।
0: हाँ, मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: मतलब घर पर आधे घंटे देर से पहुंच रहे हैं
1: तो कोई नहीं पूछ रहा।
0: और आपने तो कभी दीपावली के दिनों में घरौंदे बनाए होंगे मिट्टी के। हाँ
1: जी बिल्कुल,
0: मतलब वो वही सब त्योहार अपने निकट आ रहे हैं, मतलब एक अजीब सी खुशी होती थी भोपू बजाना। और जो खेल कूद होते थे हम लोग के ज़माने में, वो तो अब गायब हो गए। जैसे आपने कभी वो कमल कुदान खेल खेला है,
1: वो जो पैर को नाक के हाँ, जी बिल्कुल खेला है सर।
0: अच्छा, और जो चेन बना कर के खेला जाता था, चेन बना कर पकड़ो।
1: हाँ, मैंने ये भी खेला है।
0: अच्छा, नारियल लेस, कपड़ा प्रेस, जूता पाले
1: जी बिल्कुल
0: ना जी। मतलब उन खेलों में एक अजीब सा एक अपनापन होता था
1: जी।
0: मतलब अगर हम कहें तो लगता था कि जिंदगी अगर खेल हो जाए तो फिर क्या बात है
1: जी। अरे जिंदगी खेल ही है सर, जिंदगी खेल हो जाए। और मुझे लगता है हम लोग जितना धूप में रहते थे, खेलते थे, उतना ही ज़्यादा हम लोग के अंदर एनर्जी रहती थी। और आजकल के बच्चों को भी आप देख लीजिए, बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं।
0: हाँ, मतलब पैम्पर्ड हो रहे हैं
1: जी।
0: मतलब उस ज़माने में ऐसी नहीं हुआ करती थी, मतलब कूलर यदा कदा घरों में होता था
1: जी।
0: जो मतलब जिसके पास टीवी होती थी उसको लोग कहते थे कि भैया बड़े आदमी। मुझको याद है कि जब रामायण आता था 9 बजे से, तो मोहल्ले में किसी 2 या 3 व्यक्ति के पास टीवी हुआ करती थी, टेलीविज़न, और हम लोग रामायण देखने जाते थे और कहते थे भैया बड़े आदमी, अमीर आदमी, उनके यहाँ टीवी है
1: जी। ऐसा होता था पहले।
0: हाँ, एक अगर बाइक हो जाए किसी गांव में किसी के पास, राजदूत, अरे भैया राजदूत रखें। तो मतलब क्या लगता है आपको कि वो बचपन कहाँ चला गया आज के समय?
1: सर, सबकी बिजी लाइफ में वो बचपन खोसा गया है। बचपन क्या, अब जो क्वालिटी टाइम होता है एक इंसान का, वो खुद ही उसको नहीं वो वैल्यू दे पा रहा होता है। उसे लगता है बस ये सैटरडे से संडे तक किसी तरह ऐसे काम करना है, करना है, करना। फिर जब वो कभी बहुत शांत बैठता है, गैलरी की कोई फ़ोटो देख लेता है, शांत मन से कोई गाना सुन लेता है, या किसी उस जगह पे चला जाता है, तब उसे याद आती है, हाँ मैं यहाँ पहले आई थी, ये पिक्चर मैंने पहले लिया था, इस रास्ते से हम गए थे, हमने यहाँ पढ़ाई की थी, हम अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमते थे, पहली बार हमने यहाँ पानी बतासा खाया था।
0: हाँ, क्या बात है, पानी बतासा, मतलब मुँह में जो है वो पानी आ गया
1: जी।
0: अच्छा, एक चीज़ बताइए निधि जी।
1: जी,
0: ये पानी बतासा सुनकर मुँह में पानी आ जाता है
1: जी?
0: अच्छा, तो कहते लोग कहते नहीं है कि पानी बतासा सुना मुँह में पानी आ गया
1: जी,
0: तो पानी सुनकर मुँह में पानी बतासा क्यों नहीं आ जाता?
1: सर, इसका जवाब हमारे लिसनर दे सकते हैं।
0: हाँ भाई, आप बताइए कि गुलाब जामुन देखकर मुंह में पानी आता है, तो पानी देखकर मुंह में गुलाब जामुन क्यों नहीं आता है? आना चाहिए ना
1: जी। बिल्कुल,
0: है कि नहीं? इमली आपने हम खाए या ना खाए, लेकिन अगर देखी आपने तो मुंह में पानी हल्का सा आ जाता है, ऐसा होता है कि नहीं? और लोग कहते हैं ललचहे हो
1: जी।
0: अच्छा, क्या वास्तव में ऐसा होता है कि हम लालची होते हैं?
1: नहीं सर, ऐसा मतलब इमली के लिए लालची होना, वैसे इंसान थोड़ा सा लालची होता है पर इतना लालची नहीं होता। इमली के लिए लालच अच्छी बात नहीं है।
0: लेकिन अगर इमली कह दिया जाए तो मतलब लोग देखेंगे इमली को तो मुंह में पानी आ जाएगा
1: जी, क्योंकि आपने उसे खाया है, आप उसका टेस्ट जानते हैं। ऐसा होता है जब कुछ चीज़ों को आप जान रहे होते हैं और उसका नाम लिया जाता है तो वो आपके दिमाग में वैसे ही आ जाता है।
0: हाँ, और इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है
1: जी,
0: जानती है?
1: नहीं।
0: खट्टी चीजों को पचाने के लिए हमारे पास लार की आवश्यकता ज्यादा होती है।
1: अच्छा।
0: हाँ, मतलब स्लाइवा

0: हमको ज़्यादा चाहिए होता है। तो जब कभी हम खट्टी चीज़ों को देखते हैं तो हमारा माइंड ये मान लेता है, एज्यूम कर लेता है कि हम उसे खाने वाले हैं
1: जी।
0: और मुंह में लाल बननी अपने आप शुरू हो जाती है। आप जल्दी देखेंगे किसी मीठी चीज़ को जो आपको बहुत पसंद हो, गुलाब जामुन हो, चाहे जो हो, कलाकंद हो, अगर आपने उन चीज़ों को देखा है तो शायद आपके मुंह में पानी नहीं आएगा।
1: जी बिल्कुल।
0: इमली, अमरख, इनको आप कम भी पसंद करते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसको पचाने के लिए लाल की आवश्यकता अधिक होती है खट्टी चीज़ों को। तो माइंड एज्यूम कर लेता है कि हम इसका कंजम्पशन करने वाले हैं, इसको खाने वाले हैं, तो लाल बननी शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए अगर किसी व्यक्ति को खट्टा देख करके मुंह में पानी आ जाए तो ये नहीं करना चाहिए कि तुम ललचाहे हो।
1: जी सर। और इन यादों की बातों में मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ।
0: जी।
1: आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी याद है जिसे याद करते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाता है?
0: देखिए, अगर सच बताएं तो मुझको लगता है कि मैं अपने घर में जब छोटा था तो मतलब हमारे पिताजी जो है वो शाम को अधिकतर जाड़ों में जाड़े में गाजर का हलवा लेकर आते थे।
1: जी।
0: तो ये होता था कि सुबह जो है वो भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा तो फिर
1: सबको
0: मिलेगा खाने के लिए। तो अच्छा, मुझे इत्तेफाक से बहुत पसंद था। अब हम सोचें कि कई 250 ग्राम है तो उसमें सोचे कि लाओ निकाल लें, खा लें, चोरी कर लें जब सब लोग सो जाए तब। थोड़ा सा देर तक जागने की आदत हमारी तभी से पड़ी।
1: जी सर।
0: तो फिर मन में आता था कि निकाल लेंगे तो जूठा तो नहीं हो जाएगा, तब तो पाप पड़ेगा।
1: जी।
0: फिर सोचते थे कि जो हलवाई देता है वो उसी अपनी थाली में से ही तो निकाल के चम्मच से देता है।
1: जी।
0: तो जब उसने दिया तो जूठा नहीं हुआ, तो अगर हम चम्मच से निकाल लेंगे तो जूठा कैसे हो जाएगा? अब ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। और आज सोचता हूँ कि उन पलों को सोचता हूँ कि जब वो उस गाजर के हलवे के बारे में सोचता था तो आज हंसी आती है कि आज सामने रखा होता है तो खाने का मन नहीं करता था। और कभी कभी तो गाजर का हलवा चुरा कर खाने के लिए सब लोग सो गए 10 बजे 10:30 बजे, फिर भी 11 11:30 तक इंतज़ार होता था कि सब लोग सो जाएं, बस धीरे से जाएं, पन्नी खोलें, इसके पश्चात उसमें गांठ लगी होती थी उसको इतने प्यार से खोलना। और मम्मी, अगर हमने खोल लिया तो मम्मी सुबह जान जाती थी कि ये पन्नी रात में खोली गई थी।
1: जी।
0: तो मतलब ये होता है कि अब जिन चीज़ों के लिए तब हम लोग चोरी किया करते थे, छटपटाते थे, आज वो चीज़ सामने है तो मतलब उतना ज़्यादा खाने का मन नहीं करता।
1: जी, ऐसा बिल्कुल होता है, सबके साथ होता है।
0: मतलब मुझे लगता है कि क्या बहुत कुछ गंवा दिया ज़िंदगी ने। चलिए, लेकिन अब तो यह है साहब ना कि ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। तो अब तो अकेले बैठते हैं कभी तो ये बोलते हैं कि भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले, और ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देखकर पहचान न ले।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: जी, तो मतलब अब आप बताइए, आपको कौन सी चीज़ बहुत मिस करती है या आप स्माइल करती हैं?
1: कभी कभी होता है सर कि कोई अपना अच्छा दोस्त होता है या उसके साथ की गई कुछ बातें होती हैं, बैठो तो याद आ जाती हैं। मेरे कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम स्नेहा था, हम लोगों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। अब कभी कभी मैं बैठती हूँ तो एक दूसरे की कही हुई बातें याद आती हैं, फिर हम लोग एक मिनट के लिए कॉल करते हैं, तुम्हें याद है हम लोग ऐसे जाते थे, अच्छा तुम्हें याद है ये पेन मैंने दिया था। कभी उसकी कोई चीज़ हमारे पास मिल जाती है तो मैं पूछती हूँ ये कब आपने मुझे दिया था।
0: क्या बात, मतलब टेस्ट लेते हैं कि कितना याद है,
1: कितना याद है। हम लोग को ये भी याद है हमारी पहली बात कब हुई थी सर।
0: अच्छा, किस मुद्दे पर हुई थी ये भी याद?
1: ये NSS कैंप में हम लोग पहली बार मिले थे।
0: अच्छा, मतलब वहीं से आपकी सहेली बनी?
1: जी बिल्कुल।
0: और मतलब स्कूल के दिनों में आपका कोई सहेली?
1: जी सर, एक लड़की थी जिसका नाम अर्पिता शुक्ला था।
0: अच्छा, तो मतलब अब वो उनसे बातचीत होती है?
1: नहीं सर।

0: फिर नंबर चेंज हो गया, वो अलग हो गई, मैं अलग हो गई। पर उन्होंने, मुझे याद है कॉलेज लाइफ में हम लोग ऐसे कैंपस में बैठे हुए थे, तो मुझे एक लड़की की रिंग बहुत अच्छी लगी थी, तो वो मुझे एक घास का रिंग बना के दे दी थी, अभी भी वो मेरे पास है।
1: ओहो, इसका मतलब आप एहसासात की कद्र करने जानती हैं,
0: जी
1: क्या बात है। और वास्तव में हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं के साथ निधि जब कोई खिलवाड़ कर देता है तो शायद बहुत बुरा लगता है।
0: बुरा नहीं, बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। और यादें सर ऐसी होती हैं, कभी स्माइल के साथ, कभी आंसू आता है, कभी कुछ आता
1: हाँ
0: है, ऐसा
1: वही,
0: नहीं। हमेशा यादें आपको खुशी देती हैं,
1: खुशी
0: कुछ
1: देती है।
0: यादें आपको रुला भी सकती हैं।
1: वही तो मैंने कभी तुरंत उसी बात का जिक्र किया है कि भीग जाती हैं जो पलके कभी तन्हाई में।
0: जी
1: तो मतलब अक्सर जब इंसान अकेला बैठता है तो वो कुछ ऐसे पल होते हैं जो आंख में आंसू ला देते हैं।
0: जी बिल्कुल ऐसे होते हैं। और इन्हीं बात पे मुझे वो याद आया है थॉट,
1: जी क्या
0: समेट लो इन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे कल हो ना
1: क्या बात
0: हो भी ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो ना हो।
1: क्या बात है, शामिल उन पलों में हम हो ना हो, क्या
0: जी
1: बात है।
0: बिल्कुल, आज हैं हम कल हों ही ना हों, ये एक याद बन के रह जाएं।
1: क्या बात कही आपने। और वास्तव में जो लम्हे हैं उनको जी लेना चाहिए
0: जी बिल्कुल।
1: ताकि बाद में कसक न रह जाए
0: और
1: कि
0: सर इस टाइम में मुझे लगता है कि अगर कोई कहीं घूमने जाता है या किसी से मिलने जाता है, तो अगर 1 घंटा ही वो मिलने जाता है, तो आधा घंटा वो अपना फ़ोन में बिता देता है,
1: हाँ ये तो बात सही है। हाँ
0: तो
1: मतलब
0: उसको वैसे स्पेंड करो, क्या पता वो कुछ इंसान कहना चाहता हो, या आप कुछ उससे कह सके जो शायद आप फ़ोन की वजह से नहीं कह पा
1: नहीं
0: रहे
1: कह
0: हैं,
1: पा रहे।
0: या आपकी दूरियां कम हो जाएं।
1: हाँ मतलब आजकल देखिए तो लोग अगर किसी फंक्शन में गए हैं, पार्टी में गए हैं, तो ज़्यादातर तो उनका ध्यान सेल्फीज पर होता है
0: जी
1: फोन।
0: सर
1: और फोन ने हमको लगता है कि दूरियां थोड़ी सी बढ़ा दी हैं।
0: सर ये बात मुझे भी एहसास होता है। मैं अपनी मम्मी के पास कॉल करती हूँ, पहले था मैं 15 मिनट 20 मिनट, आजकल 4 मिनट। हाँ मम्मी ठीक है, बस इसे मतलब मैंने उनका पूछा, उन्होंने हमारा, शायद वो मुझसे बात करना चाहती हूँ, पर इतना बिजी वो रहता है, फिर कभी कभी मैं टाइम निकाल के कॉल करती हूँ, फिर मैं ऐसे ही पूछती रहूँगी, कुछ भी पूछती, हाँ मम्मी तो ऐसा तो ऐसा, तो मैं कब हुई थी, क्या हुआ था।
1: मतलब वो पल शायद जो है वो फिर लौट कर नहीं आएंगे।
0: जी
1: बहुत
0: बिल्कुल
1: प्यारी गजल आपने सुनी होगी कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो मेरे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
0: जी सर, और ये बारिश का पानी और कागज की कश्ती तो सबके बचपन की कहानी होगी।
1: कहानी होगी जी हाँ। मैं साथ आशु मिश्रा जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, चरण स्पर्श करते हैं आपको प्रणाम। और जुगल किशोर जी हमको भाई सुनते हैं मध्य प्रदेश से, क्या बात है भाई, आपको भी प्रणाम करते हैं। और अब चलिए ले चलते हैं आपको फिर नगमों की दुनिया में, लौटेंगे अपनी को होस्ट निधि जी के साथ इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, क्योंकि ये है
0: गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी।

0: जी याद याद याद बस याद रह जाती है, याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल, क्या बात है। और निधि जी आप बताइए कि मतलब ताजमहल के बारे में आप क्या सोचती हैं?
1: सर वो यादों में ही बना है, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त मिटा नहीं पाता, वो हमारे ज़िंदगी में बने उस ताजमहल की तरह होती हैं जिसे हम हर बार आंखें बंद करके फिर से देख लेते हैं। लोग कहते हैं प्यार की निशानी है ताजमहल, आपने सुना ही होगा
0: जी,
1: लेकिन मेरी नज़र में हमारी यादें भी किसी ताजमहल से कम नहीं।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि
0: मतलब
1: जगह बदल सकती है, लोग दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारी वो यादें वहीं की वहीं रहती हैं। आप कोई जगह पे किसी के साथ गए हों, कोई यादें हों, आप जैसे देखिए आपको याद आ जाता है। और ताजमहल को देखते ही आपको किसकी याद आती है सर?
0: मुझे किसकी याद आती है? मुझे मुमताज़ महल की याद आती है
1: जी,
0: कि मतलब सोचो एक वो थी कि जिसकी याद में ताजमहल बन गया।
1: जी बिल्कुल,
0: एक हमारी वाली है
1: क्या बना सर आपके वाली के में?
0: वही सोचना है कि मतलब यहाँ पर जिंदगी नहीं बल्कि हमको तो लगता है कि अर्थ की कीमत, रुपए की कीमत मृत्यु के बाद भी होती है। सोचिए अगर मुमताज़ महल शाहजहाँ की पत्नी न होती तो शायद ताजमहल उनके लिए न बनता।
1: सर लेकिन हमारी भी यादें ताजमहल की तरह ही होती हैं, उतनी ही खूबसूरत, जिन्हें हम दिल में समेट के रखते हैं।
0: हाँ लेकिन कभी कभी हमारी जो यादें होती हैं ना वो हमको कभी कभी रुलाती हैं। और एक गीत आपने सुना ही होगा कि जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं, बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं।
1: सर ये भी आपने सुना होगा, जब भी याद आए वो बहुत याद आए।
0: हाँ वो जब याद आए बहुत याद आए, क्या गाना चुनाया आपने। गमे जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, क्या बात है भाई। फिर गीतों पर आपकी पकड़ बहुत शानदार है निधि जी।
1: जी बिल्कुल सर,
0: मतलब वास्तव में अगर आपको खजाना कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एकदम आप गीतों का खजाना लेकर आती हैं
1: जी। हमारे लिसनर को भी कोई ऐसी याद आज याद आ गई हो तो वो बता सकते हैं हमें।
0: हाँ,
1: चैट बॉक्स में
0: श्रोताओं भाई आप भी कुछ बताइए कि आपको भी कुछ ऐसा याद है कि जिसको सोच करके कभी आपके होठों पर हंसी आई हो, या जिसको सोचकर आपके आँख में कभी आंसू आ गए हो, कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे लम्हात आपकी ज़िंदगी में हो तो शेयर कीजिए। आइए हम आप मिलकर बैठते हैं, ये रेडियो गणस्थली 89.6 FM का परिवार है, गोंडा ही नहीं हम सभी के दिलों की धड़कन बन चुका है अब तो। भाई हमारे साथ अमरेंद्र मिश्रा जी भी हैं, भाई प्रणाम करते हैं आपको, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सोनिया तिवारी जी हैं, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ हेलो, कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और जी गुड इवनिंग, शुभ संध्या भाई अमरेंद्र मिश्रा जी, आपको भी। सॉन्ग्स बिल्कुल ज़बरदस्त चलाते हैं सर अरे सब देखिए। और निधि जी बिग फैन, देखिए भाई आपके फैन आ चुके हैं अमरेंद्र मिश्रा जी, और आपकी आवाज़ का जादू धीरे धीरे छाने लगा है।
1: जी बिल्कुल, आपका स्वागत है।
0: हाँ मतलब अब देखिए हर रविवार को निधि जी हमारे साथ होंगी हमारी को होस्ट के रूप में, और अब हम चाहेंगे कि फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम का अनाउंसमेंट भी हम जो है वो निधि जी से ही कराएं। बिल्कुल, कभी किसी लम्हे आते हैं ज़िंदगी में उतार चढ़ाव वाले, जी हाँ, देता जा रहे दीदा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए, और देखिए अच्छे लोगों के साथ बात करते हुए समय कब बीत जाता है निधि जी, पता ही नहीं चलता।
1: जी सर बिल्कुल कह रहे हैं, हमारे लिसनर बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं।
0: हाँ मतलब हम और आप यहाँ पर बैठे और एक घंटा कब बीत गया, सवा घंटे कब बीत गया, उसका एहसास हुआ ही नहीं
1: जी।
0: और अब तो वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार हमारे श्रोता बड़ी धूमधाम से करते हैं। और जानती निधि जी वो घड़ी कौन सी होती है?
1: जी नहीं, आप बताइए।
0: अब आप सोचिए 7:45 पर क्या होता है।
1: जी फरमाइश।
0: हाँ तो बताइए भाई 7:45 पर ऐसा क्या खास होता है?
1: हमारा फरमाइश का शो आ जाता है सर
0: जी, मतलब गीत बजते हैं रेडियो का नस्लेट 9.6 एफएम पर, लेकिन वो बजते हैं जो सुनना चाहते हैं हमारे
1: लिसनर्स
0: जी, श्रोता सुनना चाहते हैं। तो अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियां जगती हैं अब कैसी भी आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक अचानक सब की सब ये चुप्पियां एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा
1: फोन आया है।
0: जी हाँ, तो अब हम करेंगे आपके फोन की प्रतीक्षा और आज आपकी फरमाइशी लेंगी हमारी को होस्ट निधि जी। नाम आपका होगा, गीत आपके होंगे, लेकिन लफ्ज होंगे हमारी प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी को होस्ट निधि जी के साथ। जी हाँ, तो चलिए आज के दिन को यादगार बनाते हैं और इस प्यारे से गीत के बाद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ। आपकी अपनी आरजे, आपकी अपनी होस्ट निधि जी के साथ। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

जी हाँ, आइए शुरू करते हैं हम फिर आज की पहली फरमाइश। तो पहली फरमाइश है सुरेश कुमार उर्फ दर्द कुमार की, याद ना जाए बीते दिनों की।

0: ये कौन गा रहा है?
1: है कोई प्यार के गीत गाने वाला, जंगल जंगल घूमता है प्यार के नए नए गीत लेकर, कभी दर्द भरे तो कभी खुशी के।

था लाल दुबट्टा मलमल का बहुत ही प्यारा सा गीत हमने सुना। और भाई इनकी फरमाइश की थी रोशनी रावत जी की बहुत ही प्यारी सी फिल्म और अपने ज़माने में सुपर डुपर हिट मूवी हुई थी। और अब चलते हैं भाई जी, क्या बात है भाई, इस दुनिया में सदी के महानायक के रूप में हम जानते हैं बिग बी को, यानी अमिताभ बच्चन को। और अमिताभ बच्चन के साथ कॉमेडी का जो बादशाह है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, उसे हम गोविंदा के नाम से जानते हैं। सोनिया तिवारी जी हमारी बहुत ही प्यारी सी श्रोता है। फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, पर्दे पर अमिताभ बच्चन के साथ गोविंदा। गीत के बोल हैं देता जे जोरे दिल ना देता जे जोरे। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर।

अगली फरमाइश की ओर, जो है धर्मेंद्र जी की तरफ से। वो हमसे खफा हैं, हम उनसे खफा हैं। बहुत सी प्यारी गीत सुनने के लिए आप तैयार हो जाइए।

तेरे को बाद में फोन करता हूँ। एक मिनट, दूरों किधर? ये बार है, कोई सरकारी दफ्तर नहीं। तू निकल यहां से, तेरी मेरी नहीं।

जी हाँ, यही तो मोहब्बत है। अदाओं पे मरने को जी चाहता है और खफा है फिर भी बात करने को जी चाहता है। जी हाँ, और इस बात को आगे बढ़ाएंगे हमारी बहुत ही प्यारी सी श्रोता अनु जी हैं, जो सुनती हैं हमको बेलसर से, और उन्होंने आज पैगाम भेजा है, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी के कायनाती गले से निकली हुई ये कव्वाली आप सभी के दिल को छूती हुई रेडियो गैंगस्टर 89.6 FM तक फिर पहुँचेगी। फिलहाल ये प्यारी सी फरमाइश अनु जी की आप सभी के लिए।

तो चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो है महेंद्र दीपेन जी की, जो हमें सुनते हैं राजस्थान से। बोल है, तुम जो चले गए होगी बड़ी खराबी। जी हाँ, किसी के जाने से बड़ी खराबी तो हो ही जाती है। फिलहाल आप ये गाना इंजॉय करिए और बताइए कौन आपकी लाइफ से चला गया और क्या खराबी हो गई।

चलते हैं अब अपनी अगली फरमाइश की ओर, जो है अमरेंद्र मिश्रा जी की ओर से। गीत के बोल हैं, तुझे जो मैंने देखा। तो आप देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली, क्योंकि सो चल रहा है फरमाइश का।

हाँ, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है और सुरेंद्र यादव जी ने चलो बुलावा है सॉन्ग भी फरमाइश कर दिया है। चलो बुलावा आया है। जी हाँ, सुरेंद्र यादव जी के लिए बुलावा जल्दी से ही आ जाएगा और मैं आशा करती हूँ हमारे सभी लिसनर्स को बुलावा जल्दी आए।

जी हाँ, अब चलते हैं आराध्या जी की तरफ, जो फरमाइश की हैं, ओ रब्बा मुझे प्यार हो गया। जी हाँ, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए और इनकी फरमाइश भी कुछ ऐसी ही है। तो हाँ, फिलहाल सुनाते हैं इनका गाना, ओ रब्बा मुझे प्यार हो गया।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत ही हमने सुना। और अब चलते हैं भाई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी ज़िला है जिसको मुरादाबाद के नाम से जानते हैं, शायद किसी मुराद ने आबाद किया होगा। और भाई वहाँ से बहुत ही हमारी प्यारी श्रोता शताक्षी शुक्ला जी की फरमाइश है, बहुत ही बहुत ही सी फरमाइश, लेकिन फरमाइश बहुत अच्छी है, चुनरी चुनरी। आइए थोड़ा सा मूड को बदलते हैं और चलते हैं गीत और संगीत के इस प्यारी सी दुनिया में शताक्षी जी के साथ मुरादाबाद से।

और ये तो चुनरी ऐसी है भाई जो दिल चुरा ले गई, क्या बात है। और वास्ते गीत में भी दिल चुराया। और अब चलते हैं अपने बहुत ही प्यारे और जानकार श्रोता की तरफ, जिनका नाम श्री राजेश सिंह है और बहुत ही प्यारा गीत उन्होंने भेजा है, कहाँ तक ये मन को अंधेरे, किशोर कुमार की आवाज़ में। बहुत ही प्यारा सा गीत श्री राजेश सिंह जी मालवीय नगर की फरमाइश पर।

जी हाँ, और आपको बताऊं कि मेरे जीवन की ऐसी फिल्म जहाँ पर पहली बार कोई एक्ट्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी, फिल्म देख रहा था मैं, फोर्थ या फिफ्थ क्लास का विद्यार्थी था, सलमान खान के साथ भाग्यश्री की फिल्म आई थी, मैंने प्यार किया, कहें तो उसे सजना ये तोहरी सजनिया, मुझे बहुत पसंद लगा। और आज फरमाइश आ गई है बिनी जी की, और इसी फिल्म की है कबूतर जा। तो चलिए कबूतर को भेजते हैं साजन के पास चिट्ठी लिखकर।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
5: ब्रिजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिस कर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रिजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
6: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
7: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
6: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित दो दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
8: सूर्यकरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
3: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, वास्तव में याद याद याद, बस याद रह जाते हो। वास्तव में मित्रों, याद ही वो पल हैं, वो लम्हे हैं जो जिंदगी में हम हमेशा के लिए संजो के रख लेते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में जब कभी अपना माजी, अपना बीता हुआ कल हमको याद आता है तो हम कहते हैं याद याद याद, बस याद रह जाती है। ये याद बहुत तड़पाती है। मैंने कभी लिखा था कि भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले, और ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देखकर पहचान न ले। जी हाँ, ये होती हैं यादें जो दिल के किसी कोने में ज़िंदगी की आखिरी सांस तक आपके साथ रहती हैं। चलते हैं अद्वित शुक्ला जी की तरफ, फरमाइश है मेरी खामोशी है।

0: कौन सी फिल्म?
1: जी हाँ दवाई ये चलते हैं भाई, श्री राम हेयर कटिंग सैलून आवास विकास से हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता आनंद जी हैं और गीत भेजा है उन्होंने, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर जाके, बहुत ही प्यारा सा गीत ये।

जी हाँ, बिल्कुल अच्छा लगता है थोड़ा सा तड़पना, थोड़ा सा सिसकना। अब चलते हैं भाई, बढ़ाते हैं अपने कदम बाराबंकी की तरफ। मोहम्मद मुशीब जी सुनते हैं हमको वहाँ से, और गीत भेजा है उन्होंने, लाल लाल होठों पे गोरी किसका नाम है।

बहुत ही प्यारा गीत भाई, ये रमेश गुप्ता जी की फरमाइश। तरफ चलते हैं राजू सीतापुर जी की फरमाइश, मेरी चमक छल्लो, और इसके पश्चात राजेश कुमार सिंह जी सिंचाई विभाग से, जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं।

जी हाँ, मतलब बढ़ते हैं भाई आज की अंतिम फरमाइश की तरफ, जो है भाइयों के भाई निब्बल भाई की बहुत ही प्यारी फरमाइश। फूट फूट कर गंगा रोए, गंगा तेरे देश में।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं, सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9286 9976 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपयू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें। आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम अब चल चुका है बहारे गजल, जिसमें हम बात करते हैं उन दानिश्वरों की, उन कलमकारों की, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से गायकों को गाने का मौका दिया और गायक ने, संगीतकार ने, अदाकार ने, सबने मिलकर सबका परस्पर सहयोग रहा और साहित्य, गीत, गजलें, नगमे हमेशा के लिए अमर हो गए। आज जिनको आपके बीच लेकर आए हैं उनका नाम है नदीम शाद। उन्होंने लिखा कि हम जो दीवार पे तस्वीर बनाने लग जाएं, हम जो दीवार पे तस्वीर बनाने लग जाएं, तितलियां आके तेरे रंग चुराने लग जाएं। हम जो दीवार पे तस्वीर बनाने लग जाएं, तितलियां आके तेरे रंग चुराने लग जाएं, फिर न हो मखमली तकिए की ज़रूरत मुझको, फिर न हो मखमली तकिए की ज़रूरत मुझको, तेरे बाजू जो कभी मेरे सिरहाने लग जाएं, चांद तारों में तब नूर इजाफी हो जाए, चांद तारों में भी तब नूर इजाफी हो जाए, छत पे जिक्र तेरा यार सुनाने लग जाए, चंद चंद सिक्कों पे तुम इतराए हुए फिरते हो, आहा कुछ पैसा है और इतरा रहे हैं, चंद सिक्कों पे तुम इतराए हुए फिरते हो, हाथ मुफलिस के कहीं जैसे खजाने लग जाए। जैसे लगता है किसी गरीब के हाथ में खजाना लग गया, ऐसे चंद सिक्के हैं और बड़ा घमंड हो गया। क्यों न फिर शाख सजर फूल सभी मुरझाएं। शाख मतलब डाली, सजर कहते हैं पेड़ को, फूल आप जानते हैं। क्यों न फिर शाख सजर फूल सभी मुरझाएं, भाई जब सहन में दीवार उठाने लग जाएं, उसने दो लफ्ज में जो बातें कही थी मुझसे, उसने दो लफ्ज में जो बातें कही थी मुझसे, उसको मैं सोच लूं, उसको मैं सोचने बैठूं तो जमाने लग जाएं, फिर जमाने में ना हो कोई परेशान नादिम, फिर जमाने में ना हो कोई परेशान नादिम, तेरे जैसे भी निकम्मे जो कमाने लग जाएं। जी हाँ, वास्तव में कहा जाता है मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। मेरे मन कछु और है कर्ता के कछु और। जब हम बात कर रहे थे ऐसे गीत, ऐसे नगमे जो हमेशा के लिए अमर हो गए, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम आता है गीतों की दुनिया में, और वो नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का। और जिस प्रकार से लता जी ने जब गाया है मेरे वतन के लोगों, तो शायद कोई कॉपी नहीं कर पाया उस गीत को अभी तक, शायद किसी ने कोशिश भी नहीं की होगी कि उस गीत का अपमान होगा। उसी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ हैं जो अपने आप में सिक्का राइजुल वक्त हैं, जो एक बार हुई और इतिहास ने उनको दोबारा कभी नहीं दोहराया। आज हम बात इतिहास की करने बैठे हैं, तो आइए आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की दुनिया में, और उनका एक बहुत ही प्यारा सा नगमा जिसको उन्होंने लाइव गाया था, और जब इसे फिल्म में गाया गया था तो लोग ये बताते हैं कि इसकी आवाज़, इसके सुर इतने ऊपर चले गए थे कि मोहम्मद रफ़ी साहब के गले की नस कुछ हल्की सी फट गई थी और डॉक्टर ने उनको 3 महीने के लिए गाने से मना कर दिया था। आपको बताते हैं कि कौन सा वो नगमा है जिस नगमे को इतने हाई पिच पर उठाया गया कि उसके पश्चात रफ़ी साहब ने 3 महीने तक कोई गीत नहीं गाया। जी आइए आपको ले चलते हैं नगमों की उस दुनिया में, उस इतिहास में, जिस
नगमे ने एक इतिहास रचा था और आज स्वयं में वो इतिहास है। जी हाँ, आइए उस पन्ने को पलटते हैं और आपको ले चलते हैं रफ़ी साहब की उस दर्द भरी आवाज़ में।

0: जी हाँ, ये संगीत बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ये मैंने आपको उस फिल्म से नहीं सुनाया है, बल्कि इसको लाइव गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने। नौशाद जी उनके साथ थे, जो महान संगीतकार हैं हमारे साथ। और वास्तव में भाई अरविंद जी लिखते हैं कि बहुत दर्द है इस गाने में। जी बिल्कुल, और हमारे साथ पंडित भवनाथ मिश्रा जी भी हैं भाई, और हमारे साथ तो बहुत से लोग उपस्थित हैं। जरा भाई सबका पहले तो स्वागत कर लेते हैं हम, कि हमारे साथ सुनील जी हैं भाई, गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या आपको भी। और इसके पश्चात इंद्र लोग, पहले से पता नहीं कहाँ ये कुछ लोग बात कर रहे हैं। और जी हाँ, मैं यहीं पर हूँ, पंडित भवनाथ मिश्रा जी हैं, माननीय मनुष्य जी शुभ संध्या, चरण स्पर्श पंडित जी आपको, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आपके चैनल रेडियो गणेश के लिए, अरे अब ये तो गोंडा की नहीं बल्कि हमारी आपके दिल की धड़कन है। और राजेश कुमार सिंह जी है, जी हाँ प्रणाम करते हैं आपको, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। क्या बात है भाई अरविंद जी, बहुत बढ़िया पंक्ति। और एकादशी व्रत मंगलवार को है, और इसकी सूचना हमको पंडित जी ने दे दी है। और जी, और इसके पश्चात ये झुकी झुकी निगाहें, जी हाँ बहुत उम्दा गीत बज रहा था, मनुष्य जी को सही दें शुभकामनाएं। और जी हमारे दादा हैं चरण स्पर्श अनिल जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी तो ये फिल्म से लिया हुआ गीत नहीं था, नगमा नहीं था, इसको लाइव गाया था। और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो दूरदर्शन ने इसको प्रसारित किया था। नौशाद साहब के साथ संगीतकार लोग बैठे थे, और रफ़ी जी ने इस गीत को डीडी नेशनल पर गाया था। ये तब की बहुत ही अनमोल रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको सुनाई, वास्तव में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी तारीफ, मतलब प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, तारीफ ही तारीफ है। अब चलते हैं भाई गज़ल की तरफ, और आइए भाई अब आपको ले चलते हैं, हल्की सी दिल की आवाज़ मिलती है श्रेया घोषाल से। जी हाँ, उनको हम लता मंगेशकर नहीं कहते, लता मंगेशकर का थोड़ा सा टच पाया है श्रेया घोषाल जी ने, और बहुत ही प्यारी एक गज़ल हमको लगती है श्रेया घोषाल की। तो आइए अब आपको ले चलते हैं श्रेया घोषाल की उस गज़ल की तरफ, सुनकर बताइए कि ये गज़ल आपको कैसी लगी।
1: सारेगामा कारवां द परफेक्ट गिफ्ट।

जी, बहुत ही प्यारी सी गज़ल श्रेया घोषाल की आवाज़ में, और उसके पश्चात आपने निगाहों पर बात की, चूँकि हमको बात करनी थी कुछ निगाहों पर। और वास्तव में इस दुनिया में सबसे खूबसूरत शायद नज़रें ही होती हैं, तभी तो कोई कहता है कि कीचड़ है, तो वो कहता है कीचड़ में कमल पैदा होता है, और किसी को चंद्रमा में भी दाग दिखाई देते हैं। तो ये तो साहब अपना अपना दृष्टिकोण है, अपना अपना नजरिया है। चीजें कैसी भी हों, हम उन्हें कैसे देखते हैं वो मैटर करता है, वो महत्वपूर्ण विषय वो है कि आप हैं कहां पर। नदीम शाद ने कहा कि सर उठाने की तो हिम्मत नहीं करने वाले, सर उठाने की तो हिम्मत नहीं करने वाले, ये जो मुर्दा हैं बगावत नहीं करने वाले, सर उठाने की तो हिम्मत नहीं करने वाले, ये जो मुर्दा हैं बगावत नहीं करने वाले, मुफलिसी मतलब गरीबी, मुफलिसी लाख सही हम में वो खुददारी है, मतलब स्वाभिमान वकार, मुफलिसी लाख सही हम में वो खुददारी है, हाकिम वक्त की खिदमत नहीं करने वाले। ऐसा नहीं है कि जिधर पलड़ा भारी देखा उधर हमने अपने आप को लेकर चले गए, जी नहीं, हम जहाँ थे वहीं खड़े रहेंगे, चाहे वो पलड़ा भारी हो या कमजोर हो। इनसे उम्मीद न रख, ये है सियासत वाले। देखिए शायर जब सियासत पर बात करता है तो यूं कहता है कि उनसे उम्मीद न रख, ये है सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले, हाथ आंधी से मिला आए इसी दौर के लोग, हाथ आंधी से मिला आए इसी दौर के लोग, ये चरागों की हिफाजत नहीं करने वाले, इश्क हमको ये निभाना है तो जो रख शर्तें, इश्क हमको ये निभाना है तो जो रख शर्तें, हम किसी शर्त पर हुज्जत नहीं करने वाले, फोड़ कर सर तेरे दर पर यहीं मर जाएंगे, फोड़ कर सर तेरे दर पर यहीं मर जाएंगे, हम तेरे शहर से हिजरत नहीं करने वाले। जी हाँ, आपके शहर से अब जाने का नाम नहीं लेंगे, अब आ गए हैं तो आपके शहर में ही रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है कि आदमी मुसाफिर ही तो है, आता है जाता है, और लेकिन कुछ ज़िंदगी में लोग ऐसे होते हैं कि आप यकीन माने या ना माने, लेकिन आपने अगर कभी अनुभव किया हो तो आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो जब एक बैग आपके सामने आ जाए अल्लाह फिर सडन अचानक, तो आपको उनसे जुड़ी हुई पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं, और तब जब आपका माजी आपको पुकारता है, आपका बीता

आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

जी, जब सामने तुम आ जाते हो, क्या जानिए क्या हो जाता है। कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है। वास्तव में इंसान के पास जो सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात है, जो ईश्वर ने उसको देकर भेजी, वो उनकी मेमोरी है, उनकी स्मृति है, उनकी यादें हैं, जो उनका पीछा नहीं छोड़ती। रिश्ते अगर बनते हैं तो वो हमेशा के लिए बन जाते हैं। वो कुछ पल, कुछ लम्हे, कुछ घंटे, कुछ महीने या कुछ बरस के नहीं होते। जो रिश्ते दिल से बनते हैं वो हमेशा बनते हैं। शेर है कि, गजल है कि, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता। वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। यानी हम किसी के घर ना आए, कोई हमारे घर ना आए, एहतियात बरता जाए, लेकिन ताल्लुक नहीं मरेगा, संबंध नहीं मरेगा। बुरे अच्छे हों, जैसे भी हों, सब रिश्ते यहीं के हैं। बुरे अच्छे हों, जैसे भी हों, सब रिश्ते यहीं के हैं। किसी को साथ दुनिया से कोई लेकर नहीं जाता। अब पंक्ति इस समाज का सत्य बता रही है कि घरों की तरबियत, मतलब संस्कृति, कल्चर, घरों की तरबियत क्या आ गई मोबाइल के हाथों में। छोटे बच्चों को फ़ोन मत दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ अच्छा करे, तो उससे फ़ोन ले लीजिए साहब, और उसके हाथ में कलम पकड़ा दीजिए, वो इतिहास रच देगा। लेकिन अगर उसने सेलफोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरबियत पर, कहीं ना कहीं अपने संस्कृति पर अफसोस रह जाएगा। हमारे साथ बहुत दिन के बाद श्रीमती सविता शास्त्री जी जुड़ी हैं चरण स्पर्श, और अत्यंत दुख का विषय है कि बड़े भाई साहब आपके नहीं रहे, और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे, और बहुत बहुत प्रणाम आपको, और पूरी सहानुभूति आपके साथ। रेडियो गणेश 89.6 FM की आपके साथ है। तो घरों की तरबियत क्या आ गई मोबाइल के हाथों में। कोई बच्चा अब अपने बाप के ऊपर नहीं जाता। खुले थे शहर में 100 दर, मगर एक हद के अंदर ही। खुले थे शहर में 100 दर, मगर एक हद के अंदर ही। कहाँ जाता अगर मैं लौट कर फिर घर नहीं जाता। और देखिए अंत में बहुत अच्छी बात है, अगर आप समझेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। साहब अगर आंसू बाहर निकल जाए तो फिर वो खारे पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। अरे शरीफों के घरों का मसाला बाहर नहीं जाता। शरीफ इंसान आपको सड़क पर लड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, वो घर के अंदर अपने सारे सवालात को सुलझा लेता है, और ये उनकी खास बात होती है। मोहब्बत के ये आंसू हैं, इन्हें आंखों में रहने दो। घर की बात घर में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। शरीफ लोग घर की बात को सड़क पर नहीं उछालते। और अरविंद जी लिखते हैं, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, जैसे सन्नाटे में कोई दिया बुझ गया। क्या बात है। और लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या बात है बशीर भट्ट साहब की, बहुत अच्छी गजल ये। अब के बिछड़े हुए तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे तरह सूखे हुए फूल
किताबों में मिले एक ख्वाहिश पूरी हो इबादत के बगैर, वो आकर गले लगा लें मेरी इजाज़त के बगैर। क्या बात है भाई। और अब चलिए, जब बात दर्द की हो चुकी है तो दर्द के बादशाह जो मुझको लगते हैं, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जब मैंने गज़लें सुनी तो दर्द को जब छुआ जिस व्यक्ति ने, जिस गायक कलाकार ने, जिस गज़लकार ने छुआ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो शुरुआत में अताउल्लाह खान और उनकी बहुत ही प्यारी सी एक गज़ल लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत दिनों के बाद ये गज़ल सुना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये गज़ल आपको पसंद आएगी। आप जरा सुनकर बताइए कि आपको गज़ल कैसी लगी। सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद ख़ास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए अताउल्लाह खान की आवाज़ में।

जी हाँ, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल ठीक 9:30 बजे आपके ही कार्यक्रम बहार ए गज़ल में पुनः होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी हाँ, उम्मीद करेंगे कि कल फिर आपसे मिले आप ही के कार्यक्रम बहार ए गज़ल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेश के 89.6 FM, क्योंकि ये अब गोंडा ही नहीं बन चुका है हम सभी के दिलों की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

नमस्कार दोस्तों, रात काफी आगे बढ़ चुकी है, सड़कें खामोश हैं और अगर आप अभी भी जाग रहे हैं तो शायद ये कहानी आपको ही ढूंढ रही थी। आप सुन रहे हैं 89.6 FM और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। आज की कहानी कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नोबेल पुरस्कार विजेता महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक रहस्यमयी रचना, हंग्री स्टोन्स यानी भूखा पत्थर। क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थरों को भी भूख लग सकती है, कि कोई इमारत इंसान की सांसों, उसकी यादों और उसके वजूद से जिंदा रह सकती है? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है, तो लाइट धीमी कीजिए और सुनिए भूखा पत्थर। रविंद्रनाथ टैगोर जी बताते हैं कि मैं और मेरा रिश्तेदार पूजा यात्रा से कलकत्ता लौट रहे थे, तभी ट्रेन में हमारी मुलाकात उस आदमी से हुई। उसका नाम सत्यचरण था। उसके पहनावे और हाव भाव से हमने उसे पहले तो बेहद देहाती समझा, लेकिन उसकी बातें सुनकर हम हैरान रह गए। वो सभी विषयों पे इतने आत्मविश्वास से बात करता था कि मानो सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने हर काम में उससे सलाह लेता हो। हम इससे पहले कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए उस व्यक्ति का व्यवहार देखकर हम अचंभित रह गए। विषय चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, वो विज्ञान के उदाहरण देता, वेदों पर टिप्पणी करता या किसी फारसी कवि की चौपाइयां सुनाता। और चूंकि हमें विज्ञान, वेदों या फारसी का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसके प्रति हमारी प्रशंसा बढ़ती ही चली गई। मेरे रिश्तेदार को पूरा विश्वास हो गया कि हमारे सहयात्री को किसी रहस्यमय शक्ति से प्रेरणा मिली होगी। वो हमारे असाधारण साथी के मुख से निकले सबसे साधारण कथन को भी श्रद्धा पूर्वक सुनते थे और चुपचाप उसकी बातचीत के नोट्स लिखते थे। जब ट्रेन जंक्शन पर पहुंची, तो हम सब अगली ट्रेन के इंतजार में वेटिंग रूम में इकट्ठा हो गए। रात के 10 बज रहे थे और जैसा कि हमने सुना था कि रेल की पटरी में कुछ खराबी के कारण ट्रेन बहुत देर से आएगी, मैंने अपने बिस्तर मेज पर बिछाया और आराम से सोने के लिए लेट ही रहा था, तभी उस व्यक्ति ने, सत्यचरण जी ने यानी, कहानी सुनाना शुरू कर दिया। क्योंकि यात्रियों के आने जाने की वजह से नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने जूनागढ़ में अपना पद त्याग दिया और उसके बाद उन्हें बारिश में कर वसूलने वाले सरकारी अफसर के रूप में नियुक्ति मिली। बारिश एक बेहद रमणीय स्थान है। सुस्ता नदी पथरीले रास्तों पर कल कल करती और कंकड़ों पर बहती है। नदी से 150 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती है और उस सीढ़ी के ऊपर नदी के किनारे और पहाड़ियों की तलहटी में एक अकेला संगमरमर का महल खड़ा है। इसके आसपास कोई मानव बस्ती नहीं है। बारिश गांव और कपास का बाजार बहुत दूर स्थित है। लगभग 250 वर्ष पूर्व सम्राट महमूद शाह द्वितीय ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस एकांत महल का निर्माण करवाया था। उनके समय में इसके फव्वारों से गुलाब जल की फुहारें फूटती थी और ठंडे संगमरमर के फर्श पर स्नान से पहले बाल सवारे हुए युवा फारसी युवतियां बैठती थी और स्वच्छ जल में अपने कोमल पैरों को डुबोते हुए गिटार के धुन पर अपने क्षेत्र की गजलें गाती थी। अब फव्वारे नहीं चलते, गाने बंद हो गए और वो महल सत्यनारायण जी को निवास के लिए दिया गया। सत्यनारायण जी आगे बताते हैं कि मेरे दफ्तर के पुराने क्लर्क करीम खान ने मुझे बार बार चेतावनी दी कि मैं वहाँ ना रहूं। उन्होंने कहा, अगर चाहो तो दिन वहाँ बिता लो, लेकिन रात में कभी मत रुकना। मैंने हल्की हंसी के साथ उनकी बात टाल दी। नौकरों ने कहा कि वे शाम तक काम करेंगे और रात को चले जाएंगे। मैंने तुरंत सहमति दे दी।
उस घर की इतनी बदनामी थी कि अंधेरा होने के बाद चोर भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। शुरू में उस सुनसान महल का अकेलापन मुझ पर किसी बुरे सपने की तरह हावी था। मैं बाहर रहता, जितना हो सके उतनी देर तक कड़ी मेहनत करता, फिर रात को थका हारा घर लौटता, बिस्तर पर जाता और सो जाता। एक सप्ताह बीतने से पहले ही वो स्थान मुझे एक अजीब सा आकर्षण डालने लगा। उसका वर्णन करना या लोगों को इस बात पे विश्वास दिलाना कठिन है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा घर एक जीवित जीव हो और मुझे धीरे धीरे मदहोश कर रहा हो। शायद ये प्रक्रिया घर में कदम रखते ही शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मुझे पहली बार इसका एहसास हुआ था। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत थी और बाजार में बेहद सन्नाटा पसरा होने के कारण मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैं उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गया। सूर्यास्त से पहले मैं सीढ़ियों के नीचे पानी के किनारे कुर्सी पर बैठ गया। नदी सिकुड़कर नीचे धस गई थी, दूसरी ओर रेत का एक चौड़ा हिस्सा शाम के रंगों से जगमगा रहा था। इस तरफ साफ उथले पानी की तलहटी में पड़े कंकड़ चमक रहे थे, कहीं भी हवा का झोंका नहीं था और शांत हवा में पास की पहाड़ियों पर उगने वाली सुगंधित झाड़ियों की घुटन भरी गंध फैली हुई थी। मैंने बाहर घूमने जाने को सोचा और उठने ही वाला था कि मुझे पीछे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैं ये सोच के दोबारा बैठ गया कि ये मेरा भ्रम है, तभी मुझे कई कदमों की आहट सुनाई दी, मानो बहुत सारे लोग सीढ़ियों से नीचे भाग रहे हों। मेरे शरीर में खुशी की एक अजीब सी सहरन दौड़ गई, जिसमें थोड़ा सा डर भी मिला हुआ था। हालांकि मेरे आंखों के सामने कोई नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि गर्मियों की इस शाम में खुश युवतियों का एक समूह नदी में स्नान करने के लिए सीढ़ी से नीचे आ रहा था। घाटी में, नदी में या महल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन मुझे उन युवतियों की हंसी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, मानो किसी झरने से 100 झरनों की कल कल आवाज आ रही हो। वे मेरे पास से दौड़ती हुई, एक दूसरे का पीछा करते हुए नदी की ओर जा रही थी। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा। जैसे वे मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, वैसे ही मैं भी मानो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। नदी एकदम शांत, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके स्थिर और साफ पानी में अचानक कई हाथों की झंझनाहट से हलचल मच गई हो, जिनमें कंगन खनक रहे थे। लड़कियां हंस रही थी, दौड़ रही थी और एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी, और सुंदर तैराकों के पैरों से छोटी छोटी लहरें मोतियों की बौछार की तरह ऊपर उठ रही। मेरे दिल में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। मेरे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं ध्यान से सुनूं तो उनकी सारी बातें समझ जाऊंगा, लेकिन मैंने कितना भी ध्यान से सुना, मुझे जंगल में झिंगरों की चहचहाट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ऐसा लगा मानो मेरे सामने 250 वर्षों का एक काला पर्दा लटक हुआ हो और मैं कांपते हुए उसका एक कोना उठाकर दूसरी तरफ देखना चाहता था। हालांकि दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा था। फिर मुझे तीव्र भय सताने लगा कि कहीं देवी ने मेरे एकांत का फायदा उठाकर मुझ पे कब्जा तो नहीं कर लिया। मैंने अपने रसोइयों को बुलाया और मसाले और घी से भरपूर लजीज और स्वादिष्ट मुगलई भोजन बनाने का आदेश दिया। अगली सुबह सारा मामला एक कल्पना जैसा प्रतीत हुआ। हल्के मन से मैंने साहबों की तरह टोपी पहनी,
और काम पे निकल पड़ा। मुझे उस दिन अपनी तिमाही रिपोर्ट लिखनी थी और देर से लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही मैं अजीब तरह से अपने घर की ओर खिंचा चला गया। मुझे लगा कि वे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। अपनी रिपोर्ट छोड़कर मैं उठा और उस विशाल शांत महल तक पहुंच गया। मंजिल पर सीढ़ियां एक विशाल हॉल की ओर जाती थी। दिन अभी ढला ही था, दीपक अभी तक जलाए नहीं गए थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर एक हलचल मच गई, मानो लोगों का एक समूह हड़बड़ी में बिखर गया हो और दरवाजों, खिड़कियों, गलियारों, बरामदों और कमरों से होता हुआ जल्दबाजी में बाहर निकल रहा हो। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं स्तब्ध खड़ा रहा। एक तरह की आनंद भरी अनुभूति से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं संगमरमर के फर्श पर फव्वारों की कलकल, गिटार की एक विचित्र धुन, गहनों की झंकार और पायर की खनक को सुन सकता था। ये सब मिलकर मेरे चारों ओर एक विचित्र अलौकिक संगीत रच रहे थे। फिर मैं एक सम्मोहन में आ गया। लगा यही तो सच है, यह अलौकिक दृष्टि ही संसार की एकमात्र वास्तविकता है। और उस शांत हॉल के अंधेरे में मैं खड़ा जोर जोर से हंसने लगा। उसी क्षण मेरा नौकर हाथ में जलता हुआ मिट्टी के तेल का दीपक लेकर अंदर आया और मैं दोबारा होश में आ गया और अपने इस जीते जागते सपने को सोचकर मुस्कुरा पड़ा। अपना काम समाप्त करके खाना खाकर मैंने दीपक बुझा दिया और एक छोटे से कमरे में अपने पलंग पर लेट गया। पता ही नहीं चला मैं कब सो गया था या कितनी देर सोया, लेकिन मैं अचानक चौंक कर जाग गया। हालांकि मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी और ना ही कोई दिखाई दिया, केवल पहाड़ी की चोटी पर एक तारा अस्त होता हुआ दिख रहा था और नए चांद की धुंधली रोशनी खिड़की से अंदर धीरे धीरे आ रही हो। मुझे कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मुझे धीरे से धक्का दे रहा हो। और जब मैं जागा तो उसने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन अंगूठियों से सजी अपनी पांचों उंगलियों से इशारा किया कि मैं चुपचाप उसके पीछे आऊं। मैं चुपचाप उठा, सब कुछ सुनसान था। महल के अनगिनत कमरों में जहां सन्नाटा पसरा था और गूंजती हुई आवाजें गूंज रही थी, मेरे सिवा कोई नहीं था। फिर भी मुझे हर कदम पर डर लग रहा था कि कहीं कोई जाग ना जाए। महल के ज्यादातर कमरे हमेशा बंद रहते थे और पहले मैं उनमें कभी नहीं गया था। मैं सांस रोके चुपचाप अपने अदृश्य मार्गदर्शक के पीछे पीछे चला। अब मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ थी, मैंने कितने अंतहीन अंधेरे और संकरे रास्ते, कितने लंबे गलियारे, कितने शांत और गंभीर सभाकक्ष और कितनी गुप्त कोठरियां पार की। हालांकि मैं अपनी सुंदर मार्गदर्शक को देख नहीं पा रहा था, फिर भी उसका रूप मेरी कल्पना में स्पष्ट था। एक अरब लड़की जिसकी भुजाएं संगमरमर की तरह कठोर और चिकनी थी और उसकी ढीली आस्तीनों से दिखाई दे रही थी। टोपी के किनारे से उसके चेहरे पे एक पतला सा घूंघट गिर रहा था। उसकी कमर पर एक कटार थी। मुझे लगा मानो हजारों अरब रात्रियों में से एक कहानी मेरे पास भी आ गई है। अंत में मेरी मार्गदर्शक गहरे नीले पर्दे के सामने अचानक रुक गई और नीचे किसी चीज की ओर इशारा करती हुई प्रतीक हुई। वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक भय से मेरा हृदय जम गया। मुझे लगा जैसे मैंने पर्दे के नीचे जमीन पर एक भयानक नीग्रो हिंजड़ा देखा जो कीमती जटाओं से लिपटा हुआ था, पैर फैलाकर बैठा ऊंग रहा था और उसकी गोद में एक नंगी तलवार थी। मेरी सुंदर मार्गदर्शक हल्के से उसके पैरों से टकराई और पर्दे का एक किनारा ऊपर उठ गया। मुझे कमरे के इस हिस्से की एक झलक मिली जिसपे फारसी कालीन बिछा था। अंदर कोई बिस्तर पर बैठा था
मैं उसे देख नहीं सका, बस सुनहरे कढ़ाई वाले चप्पलों में लिपटे दो सुंदर पैर दिखाई दिए। अंदर जल रही एक विचित्र प्रकार की अगरबत्ती की सुगंध ने मेरी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया। मैंने डरते हुए हिंजड़े के फैले हुए पैरों के ऊपर से कदम रखने की कोशिश की, तभी वो अचानक चौंक के जाग गया और तलवार उसकी गोद से संगमरमर की फर्श पर जोरदार आवाज के साथ गिरी। एक भयानक चीख सुनकर मैं चौंक गया और देखा पसीने से तर बदर बैठा था और सुबह की रोशनी में चांद किसी थके हारे नींद से वंचित रोगी की तरह पीला दिख रहा था। हमारा एक पागल मेहर अली अपनी रोज की आदत के अनुसार पीछे हटो चिल्लाते हुए सुनसान सड़क पर भाग रहा था। इस तरह मेरी अरेबियन नाइट में से एक का अचानक अंत हुआ, लेकिन अभी तो हजारों रातें बाकी थी। मेरे प्यारे श्रोतागण, सांस थाम कर बैठिए और आगे की कहानी आपको सुनाते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

फिर मेरे दिन और रात के बीच एक गहरा विरोधाभास पैदा हो गया। दिन में मैं थका हारा काम पे जाता, रात के मोहक दृश्यों और उसके खोखले सपनों को कोसता रहता, लेकिन रात होते ही मेरा दैनिक जीवन एक तुच्छ झूठा दिखावा लगने लगता। सूर्यास्त के बाद मैं एक विचित्र नशे के जाल में फंस जाता। तब मैं किसी बीते युग के अज्ञात व्यक्ति में परिवर्तित हो जाता। हर शाम मैं सिर पर लाल मखमली टोपी, ढीले पैजामे, कढ़ाईदार बनियान, रेशम का लंबा पहनने वाला गाउन और इत्र से सुगंधित रंगीन रुमालों के साथ तैयार होता। कभी ऊंचे गद्दीदार कुर्सी पर बैठता। कई बार रात का अंधेरा जैसे गहरा था, वैसे ही अद्भुत घटनाएं घटित होने लगती और मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकता रहता। मुझे उस सुंदर व्यक्ति की झलक चारों तरफ दिखाई देती। इन स्वप्न भंवर के बीच मेहंदी की खुशबू और गिटार की झंकार सुनाई देती। उस स्त्री ने मुझे पागल कर दिया था। उसकी तलाश में मेरी नींद, चैन सब खो गया था। उस रहस्यमय स्वप्न लोक में, गलियों के उस भ्रामक भूल भुलैया में, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते, कभी कभी शाम के समय जब मैं किसी शाही खानदान के राजकुमार की तरह बड़े से दर्पण के सामने सज धज कर खड़ा होता था, जिसके दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही होती थी, तो अचानक मुझे अपने बगल में एक फारसी सुंदरी का प्रतिबिंब दिखाई देता था। उसके गर्दन का एक तेज घुमाव, उसकी काली आंखों में तीव्र जुनून और पीड़ा की एक झलक, उसके कोमल लाल होठों पर वाणी का हल्का सा आभास, उसका कोरा और पतला शरीर खिलती हुई लता की तरह यौवन से परिपूर्ण था। वो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। पहाड़ियों और जंगलों की सुगंध से लती हवा का एक तेज झोंका मेरी रोशनी बुझा देता और मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता, आंखें बंद कर लेता और मेरा शरीर आनंद से सिहर उठता। फिर हवा में, जंगलों में और पहाड़ियों की सारी खुशबू के बीच शांत अंधकार में कई दुलार हाथों का कोमल स्पर्श, मेरे कानों में हल्की फुसफुसाहट और मेरे माथे पर सुगंधित सांसें तैरने लगती, या एक मीठी सुगंध से भरा रुमाल बार बार मेरे गालों पर लहराता। फिर धीरे धीरे एक रहस्यमय नाग अपने स्तब्ध करने वाले कुंडल मेरे चारों ओर लपेट लेता और एक गहरी आह भर के मैं बेहोश हो जाता और फिर गहरी नींद में सो जाता। उसमें पीड़ा थी, लालसा थी, आकर्षण था और उसके आकर्षण में मैं अपने आप को बिल्कुल ही भूलता जा रहा था। काम में भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे मैं बदलने लगा, इतना धीरे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे भूख लगनी बंद हो गई, नींद आंखों से चली गई, दिन और रात का फर्क मिटने लगा। महल अब बाहर नहीं था, वो मेरे भीतर उतर चुका था। मेरे बचपन की बातें, माँ की आवाज, पिता की परछाई, पहली खुशी, पहला डर, सब जैसे किसी ने धुंध में लपेट लिया हो। मैं सोचता तो दीवारें सोचती, मैं डरता तो फर्श ठंडी सांस लेती। दिन में मैं थका हारा काम पे जाता और रात में मैं फिर से उसी जाल में फंस जाता। एक शाम मैंने बाहर जाने का फैसला कर लिया। पता नहीं किसने मुझे रुकने के लिए कहा। उस दिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मेरी अंग्रेजी टोपी और कोट रैक पे रखे थे और मैं उन्हें उतारने ही वाला था कि अचानक नदी की रेत, पहाड़ियों के सूखे पत्तों से भरी एक तेज बवंडर ने उन्हें उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। हंसी की एक जोरदार गूंज ऊंची होती चली गई, जो आनंद के सभी सुरों को झंझोरती हुई सूर्यास्त की भूमि में विलीन हो गई। पर मैं आगे बढ़ता रहा। सब चिल्ला रहे थे,
प्लीज मत जाओ मत जाओ, यहाँ रहो। मैंने पीछे नहीं देखा क्योंकि मुझे पता था अगर देखा तो रुक जाऊंगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, मेरी सांसें भारी होने लगी। किसी ने मेरी कलाई पकड़ी, किसी ने कपड़े खींचे, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने यादों को पकड़ लिया जबरदस्ती। मैंने अपने बचपन का नाम जोर जोर से लेना शुरू किया, अपनी माँ की आवाज याद की और दौड़ा। महल चीखा, पहली बार दीवारें फटने लगी जैसे पत्थर रो रहे हो, और फिर अचानक सब हिलने लगा। थोड़ी देर के लिए मेरे पैर जम गए। उस दिन मैंने किसी के दिल दहलाने वाले सिसकने की दबी हुई आवाज सुनी, जैसे बिस्तर के नीचे, जमीन के नीचे, उस विशाल महल की पथरीली नींव के नीचे, किसी कब्र की गहराई से कोई आवाज करुणता से मुझसे विनती कर रही हो, हे भगवान मुझे बचाओ। कठोर भ्रम, मृत्यु जैसी नींद और व्यर्थ सपनों के इस दरवाजे को तोड़ दो, मुझे अपने पास बैठाओ, अपने दिल से लगा लो, मुझे छोड़ के मत जाओ। और पहाड़ियों, जंगलों और नदी के पार से गुजरते हुए मुझे अपने ऊपर के धूप से जगमगाते कमरों के गर्म रोशनी में ले जाओ। मेरे ऊपर आंसू टपकने लगे, बाहर तूफान चीख पुकार कर रहा था। मैंने कहा अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगा। तूफान और बारिश के बावजूद मैं महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और तभी मुझे एक सकरा सा रास्ता दिखाई दिया। मैं बाहर निकला, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं रुका नहीं, दौड़ता गया, भागता गया और अंत में अपने कार्यालय पहुँचा। वहाँ बूढ़ा करीम खान बैठा हुआ था। मैंने कहा करीम खान मुझे प्लीज इन सब का मतलब समझाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। उस बूढ़े क्लर्क ने धीरे धीरे मुझसे बहुत सारी बातें किया। मुझे जो समझ में आया वो ये था कि एक समय उस महल में अनगिनत अधूरी इच्छाएं, असंतुष्ट लालसाएं और प्रचंड आनंद की ज्वालाएं धधक रही थी, और उन सभी दिल के दर्द और चकनाचूर आशाओं के अभिशाप ने उसके हर पत्थर को प्यासा और भूखा बना दिया था। मानो वो किसी भी जीवित व्यक्ति को जो संयोगवश पास आ जाए, एक भूखी राक्षसी की तरह निगलने को बेताब हो। वहाँ लगातार 3 रात बिताने वालों में से कोई भी इन क्रूर चंगुलों से नहीं बच सका, सिवाय एक मेहर अली के, जो अपनी बुद्धि खोकर बच निकला था। उसी क्षण कुलियों ने घोषणा कर दी कि ट्रेन आ रही है। टैगोर जी कहते हैं कि मैं घबरा गया। मैंने कहा अरे इतनी जल्दी? जैसे ही ट्राम अंदर आई हमने जल्दी से जल्दी अपना सामान लपेटा। एक अंग्रेज सज्जन जो शायद अभी अभी नींद से जागे थे, फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर हमारे सहयात्री पर पड़ी, उन्होंने उनको हेलो कहा। वो उनको पहचानते थे और उन्हें अपने डिब्बे में ले गए। चूंकि हम सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए थे, इसलिए हमें ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि वो व्यक्ति कौन था और इस कहानी का क्या अंत हुआ। प्यारे श्रोतागण, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं लिखी गई है, ये चेताने के लिए लिखी गई है। हर वीरान जगह खाली नहीं होती, कुछ जगह यादों से भरी होती है, इतनी भरी कि और यादों की भूखी हो जाती है। वो प्रेम की भूखी होती है, उनमें आही कैद होती है, और कुछ पत्थर भूखे रह जाते हैं और चुपचाप तुम्हें खा जाते हैं। प्यारे श्रोतागण, पुराना महल और कोई सूनी इमारत अगर देर तक आपको देखने लगे तो समझ जाइएगा कि वो आपको नहीं देख रही, वो आपको याद कर रही है। आप सुन रहे थे 89.6 FM लेट नाइट हॉरर सीरीज में रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कहानी हंग्री स्टोन्स। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे, फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। गुड नाइट, और अगर नींद ना आए तो डरिए मत, कभी कभी पत्थर बस याद दिलाने आते हैं।

0: जाती है। जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है, वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
0: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग। चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग, संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे आपको।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की ज़ुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: हाँ जी
1: कोई
0: दोस्तों,
1: बात
0: जब
1: नहीं।
0: हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिम झिम रिम झिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिम झिम रिम झिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया। सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है। पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी सी रात। दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट। अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल। पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं। अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
0: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
0: शुभ रात्रि।

0: की स्किल है टच वुड, टच वुड, टच वुड, स्किल है, स्किल है, टच वुड, टच वुड, स्किल है। मैं पुजारी जो बन का बन जाऊंगा एक दिन जोगी, इतने टाइम से तेरे पीछे कब दोगे लाजमाले बेबी, कली कहीं तो मुझको मिल, करूं कोई अनहोनी तो तू खा लियो पिल।
1: अरे कुछ नहीं होता,
0: मैं तेरा